तैन दर्स पीखो निस भूर हस्त हमरे संत टहल प्राण मन तन संत बहल संत संग मेरे मन की प्रीत संत गुण बस है मेरे चीत संत आग्या मन है मीत मेरा कमल बिकसै संत डीत संत संग मेरा होए निवास संतन की मोहे बहुत प्यास।

आधार चरण संतन के मेरे हृदय मझार माली गौड़ा महला पंजवां सब कै संगी नाही दूर करन करावन हाजरा हजूर रहाउ सुनत जियो जास नाम दुख बिन से सुख

जी जंतर करे प्रतपाल, सदा सदा सेवो कृपाल, सदा धर्म जाकै दीवान, बे मोहताज नहीं किस कान, सब किस करना अपने आप, रे मन मेरे तू तां को जाप, साध संगत को हों बलिहार, जास मिल हुए उधार।

आप माधव तू धन के सो सांवलियो बीठ लाए रहाओ कर धरे चक्र बैकुंठ ते आए गज हस्ती के प्राण उधारी अले दुःशासन की सभा द्रौपदी अंबर लेत अबारी अले गौतम नार अहल्या तारी पावन केतक तारी अले ऐसा अधम अजात नाम देव तौ शरणागत आई अले।

सलाहिया जिन कर देखिया खेल संजोगी मेलावड़ा इन तन कीते भोग वे जोगी मिल विछड़े नानक भी संजोग मारू महला पहला मिल मात पिता पिंड कमाया तिन करता लेख लिखाया लिख दात जोत वड़ियाई मिल माया सुरत गवाई मूर्ख मन काहे कर सहमाना उठ चलना खसमै भाणा रहाउ तज साध सहज सुख होई घर छड़ने रह ना कोई किस खाजै किस धर जाइए जे बहुड़ दुनिया आइए सज काया पट हंडाई फरमाइश बहुत चलाई कर सेज सुखाली सोवै हथी पौंदी काहे रोवै घर घूमण वाली पाई

काल दिन हुआ जेती घड़ी फाही तेती रस रस चोग चुगह नित फस है सूटस मूड़े कमन गुणी काया आरन मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही कोले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत भई भया मनूर कंचन फिर होवै।

निर्मल मजार बसस निर्मल जल पद्मन जावल रे पद्मन जावल जल रस संगत संग दुख नहीं रे दादर तू कबह न जानस रे पक्षस बाल बसस निर्मल जल अमृत न लक्ष रे रहाउ बस जल नित न वस्त अलियल मेर चचा गुण रे चंद कुमुंदनी दूरोह निवसस अनपहु कारण रे अमृत खंड दूध मद संचस तू बन चातुर रे अपना आप तू कबहु ना छोड़स किसन प्रीत ज्यो रे पंडित संग वसह जन मूरख आगम सास सुने अपना आप तू कबहु ना छोड़स स्वान पूछ ज्यो रे एक पाखंडी नाम नाराच है।

का पत तपनीत असंख होहे हर चरनी मन लाग अठ सठ तीरथ नाम प्रभ नानक जिस मस्तक भाग शब्द सखी सहेली गर्भ गहेली सुन सह की एक बात सहेली जो मैं बेदन सा किसे आखा माई हर बिन जियो न रह कैसे राखा माई रहाओ हौ दुहागन खरी रजानी गया सो जोबन तन पछताणी।

पाएही, बिन दर्शन कैसे रहूं सनेही। मारू महला पहला, मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाऊ सभागा, गुर की बचनी हाट बिकाना। जित लाया तित लागा, तेरे लाले क्या चतुराई,

जाई, ना यह धन डूबै, ना इस धन को मिलै सजाई। इस धन की देखो वडियाई, सहजे माते अन दिन जाई। एक बात अनूप सुनो नर पाई, इस धन बिन कहो किनै परम गत पाई। भणत नानक अकथ की कथा सुनाए, सतगुर मिलै ता एहो धन पाए। मारू महला पहला, सूर सर सोस लै, सोम सर पोख लै। जुगत कर मरत सो संबंध कीजै, मीन की चपल स्यो जुगत मन राखी। उड़ै नह हंस नह कंध सीजै, मूड़े काचे भरम भुला। नह चीनिया परमानंद बैरागी रहाओ, अजर गहो जार लै, अमर गहो मार लै। प्राणत तज छोड़ तव अप्यो पीजै, मीन की चपल स्यो जुगत मन राखी है। उड़ै नह हंस नह कंध सीजै, भणत नानक जनो रवै जे हर मनो। मन पवन स्यो अमृत पीजै, मीन की चपल स्यो जुगत मन राखी है।

दर ढोई झूठा आवण जान साचा नाम सलाही है साचे ते तृप्त होए ज्ञान रतन मन मांझी है बहुड़ न मैला होए जब लग साहिब मन वसे तब लग बिघन न होए नानक सिर दे छुटी है मन तन साचा सोए।

नाम अजाची एको हाट साहो सबना सिर बन जारे एक भांति दोवें सिरे सतगुरु नबेड़े सो बूझै जिस एक लिव लागी जियो रह ने परांती।

पुनवासी गुरबचनी बाहर घर एको नानक भया उदासी राग मारू महला पहला घर पंजवा।

सहसा तोड़े भरम चुकाए, सहजे सिफती तनख चढ़ाए। गुरु कै शब्द मरै मन मारी, सुंदर जोगा तारी जियो, हम है जलिया मनो विसारी।

सच सोए। एक भगती सार ना जाननी, मनमुख भरम भुलाए। ओना विच आप वरतदा, करना किशु ना जाए। जिस नाल जोर ना चले, खले की चै अरदास। नानक गुरमुख।

बाल्मीक बटवारा गुरमुख पार पया रहाउ सुर नारे गण गंधर बेज पियो रिख बपरै हर गाया शंकर ब्रह्म देवी जपियो मुख हर हर नाम जपिया हर हर नाम जिन्ना मन पीना ते गुरमुख पार पया कोट कोट ते तीस त्यायो हर जपत्या अंत ना पाया वेद पुराण सिमरत हर जपया मुख पंडित हर गाया नाम रसाल जिन्ना मन वसिया ते गुरमुख पार पया अंत तरंगी नाम जिन जपया मैं गणत ना कर सकिया गोविंद कृपा करे थाए पाए जो हर प्रभ मन पाया।

मैं हर हर कथा मन पाणी, हर हर कथा नित सदा कर, गुरमुख अकथ कहानी रहाउ। मैं मन तन खोज टंडोलिया, क्यों पाईए कथ कहानी, संत जना मिल पाया, सुन अकथ कथा मन पाणी। मेरे मन तन नाम आधार हर, मैं मेले पुरख सुजानी, गुरपुरख है पुरख मलाए प्रभ, मिल सुरती सुरत समाणी। बड़ भागी गुर सेविया, हर पाया सुगड़ सुजानी।

सुगुण सुजानी जन नानक शरणागती कर कृपा नाम सुमानी। मारू महला चौथा हर भाव लगा बैरागिया वडभागी हर मन राख मिल संगत शरदा उपजै गुर शब्दी हर रस चाख सब मन तन हरिया होया गुरबाणी हर गुण पाख मन प्यारिया मित्रा हर हर नाम रस चाख गुर पूरै हर पाया हलत पलत।

लाग हर हर भगत परे पंडहारा गुरमुख राम करे निसतारा जिसनो कृपा करे मेरा स्वामी सो हर के गुण गावे जियो हर हर कृपा करे बनवाली हर हृदय सदा सदा संभाली हर हर नाम जपो मेरे जियड़े।

हर हर का मन मानिया सो सेवक चहो जुग चहो कुंट जानिया जे उसका बुरा कह कोई पापी तिस जम कंकर खाई जियो सब मह एक निरंजन करता सब कर कर वेख अपने चलता जिस हर राख है तिस कौन मारे जिस करता आप छाई जियो हम अन दिन नाम लई करतारी जिन

बात सुनी सो सुखिया सो सदा सुहेला जो गुर मिल गाए गुनी रहाओ देह धार अर देवा दर्प है सिद्ध साधक डर मोया लख चौरासी ही मर मर जन्मे फिर जो नी जोया राजस सातक तामस डरप है केते रूप उपाया छल बपरी ये कौला डरप है अत डरप है धर्म राया सगल समगरी डर है ब्यापी बिन डर करने हारा कहो नानक भगतन का संगी भगत सोह है दरबारा मारू महला पंजवा पांच बरख को अनाथ ध्रुव बारक हर सिमरत अमरे अटारी पुत्र हेत नारायण कहियो जम कंकर मार बदारी मेरे ठाकुर केते अगणत उधारी मोहे

दीन अल्प मत निर्गुण परयो सरल द्वारी रहाओ। वाल्मीक सुपचारो तरयो वदक तरे बेचारी। एक निमख मन माहे अरादेव गजपत पार उतारी। कीनी रखिया भगत प्रहलाद हरनाखस नखह बेदारी। विदर दासी सुत भयो पनीता।

मान्यो भयो कृपाल ठाकुर सेवक को सबरे हलत पलाता धन सेवक सफल ओहो आया जिन नानक खसम पछाता।

तिस को कबहु ना गाव सरी, छोड़ जाए खिन पीतर ताको, वा को फिर ताव सरी, अपने प्रभ को क्यों ना समार सरी, बैरी संग रंग रस रचिया,

ब्राह्मण ब्रह्म छूटा जो प्रभ पय सहाय मारू महला पंजवा अंतर जामी सब बिद जाने तिस ते कहां दुलारियो हस्त पाम चरे खिन पीतर अग्न संग लै जा रियो मूड़े तै मन ते राम बसारियो लून खाए करह हराम खोरी पेखत नैन बिदारियो रहाओ असाद रोग उपजे तन पीतर।

हुक्म बावर दलाब जन्म अकारथ रे नार ऐसी करह यानथ ताज सारंग थार भ्रम तू भूला मोहे लपट्यो दासी संग सानथ रहाओ धरनी तर त्याग नीच कुल सेवह हौ हौ करत बिहावथ हो कट कर्म करह अज्ञानी मन मुख अंध कहावथ सत होता असत कर मानिया जो बिन सत सो निचल जानथ पर की कहो अपनी कर पकरी ऐसे भूल पलानथ।

ससी मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी अलिपाई स्वभावत जैसे बैसंतर अलिप्त सदा निर्मलाई जिस कर्म खुलिया तिस लहया पड़दा जिन गुर पह मनिया सुपाई।

परम का मन पयो परगास काटी बेरी पगहते गुर कीनी बंद खलास आवन जान रहे हो तपत कड़ाहा बुझ गया गुर शीतल नाम दियो रहाओ जब ते साधु संग पया तो

दिसताना ब्रह्मचार ब्रह्मचज कीना हृदय भया गुमाना सन्यासी होए कै तीर्थ भ्रम्यो उस मह क्रोध बिगाना कुंगर बांध पए रामदास।

सब किस जाने मेरे जी का प्रीतम बिसर गए बकबाया रहा दूजा मारू महला पंजवा कोट लाख सर्ब को राजा जिस हृदय नाम तुम्हारा जाको नाम ना दिया मेरे सतगुर से मर जन्म है गावारा मेरे सतगुर ही पत राख चीत आवह तब ही पत पूरी बिसरत रलिए खाक रहाऊ रूप रंग खुशियां मन भोगण।

माया रंग बिरंग खिना मह ज्यो बादर की छाया से लाल पये गूड़े रंग राते जिन गुर मेल हर हर गाया ऊच मूच अपार स्वामी अगम दरबारा नामो वड्याई सुबा नानक खसम प्यारा मारू महला पंजवा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद ओंकार उत्पाती किया दिन सब राती वन त्रिण त्रि भवन पानी।

मात गर्भ में जिन प्रित पारिया, जियो पिंड दे साज सवारिया, सोई बधाता खिन खिन जपिया, जिस सिमरत अवगुण सब ढकी, चरण कमल उरे अंतर तारू, बिठिया बन ते जियो उधारू।

सत करमानी हित लायो सठ मूड अज्ञानी काम क्रोध लोभ मद माता कौडी बदले जन्म गवाता अपना छोड़ पराया राता माया मद मन तन संग जाता त्रिशन ना बूझे करत कलोला ऊनी आस मिथ्या सब बोला आवत अकेला जात अकेला हम तुम संग झूठे सब बोला पाए ठगौरी आप पलायो नानक किरत न जाए मटायो पास पंखी।

उठ उठ फिर तावे, मन तन बासना बहुत बिस्थारा, अहम में मूठो बेचारा, अनक दुख अर बहुत सजाई, ता की कीमत कहन ना जाई, प्रभ बिसरत नरक में पाया, तह मात ना बंद ना मीत ना जाया, जिस को होत कृपाल स्वामी, सो जन नानक पार ग्रामी, प्रमत प्रमत प्रभ सरनी आया, दीना नाथ जगत पित माया, प्रभ दयाल दुख दर्द बदारन, जिस पावे तिस ही निस्तारन, अंधकूप ते काड नहारा, प्रेम भगत होवत निस्तारा, साध रूप अपना तन तारिया, महा अग्न ते आप उबारिया।

मारू महला पंजवा कत कौ डहकावो लोगा मोहन दीन किरपाई ऐसी जान पाई सरन सूरो गुरदाता राखे आप वडाई रहाओ भगतां का आज्ञाकारी।

पंजवा पतत उदारन तारन बल बल बले बल जाइए ऐसा कोई भेट संत जित हर हरे हर त्याइए मोको कोई ना जानत कहियत दास तुम्हारा एहा ऊट आधारा रहा सर्व धारण प्रति।

मोहन अलाखे अपारा दान पावो संता संग नानक रेन दसारा मारू महला पंजवा त्रिपत अगाए संता गुर जाने जिन मंता ताकी किछ कहन ना जाई जाको नाम बढ़ाई लाल अमोला लालो अगह

सगल त्यानु तजियो मन ते अब महनु निश्चल तिन काठाना गुरते महल पछाणा अन दिन गुर मिल जागी हर की सेवा लागी पूरन त्रिपत अगहाई सहज समाध सुपहाई हर भंडार हाथ।

चेत मन मह हर हर निधाना एह निर्मल रीत रहाउ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै तिस सीध नवल नवतन चतर सुंदर मन नानक।

देख सिमर हर हर सदा नानक तरे कई अनेक मारू महला पंजवा पतत पावन नाम जाको अनाथ को है नाथ महाभोजन माहे तुलहो जाको लिखियो माथ डूबे नाम बिन घन साथ करण कारण चेतना आवे दे कर राखे हाथ रहाउ साध संगत गुण उचा

सगल जन्म बिछियन सिंह खोया, सिमरियो नाही कनाई रहाओ। काल पास जब गर्भ मेली, तेह सुध सब बिसराई। राम नाम बिन यह संकट मह, को अब होत सहाय। जो संपत अपनी करमानी, छिन मह पई पराई। कहो नानक यह सोच रही मन,

पछताए छूटत नाहिन भाग्यो एह चिंता उपजी घट मह जब गुर चरणन अनुराग्यो सफल जन्म नानक तब हुआ जो प्रभ जस मह पाग्यो मारू अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

साहिब निर्मलो मन मान एका तू अजरावर अमर तू सब चालन हारी नाम रसायन पाए ले पर हर दुख भारी रहाओ हर पढ़िए हर बुझिए

सुख नहीं गाढ़े लादे शार विछड़िया मेला नहीं दुख कणो जम द्वार अगे क्या जाना नाही मैं भूले तू समझाए भूले मार्ग जो दसे

लालह गर्भ छोड़िया गुर कै पै सहज सुपाई लालह खसम पछाणिया वड्डी वड्याई खसम मिलिया सुख पाया।

ऐसवाया जियो पिंड सब तिसदा साहु तिनह विच पाया जां कृपा करे तां सेवीऐ सेव सच समाया लाला सो जीवत मरै मर विचों आप गवाए बंधन टूटै मुक्त होए तृष्णा अग्न बुझाए।

चलना मुख अमृत नाम। मेरे ठाकुर हथ वडियाइया मिल है मन चाओ, कीता क्या सलाही है कर देखै सोई। जिनकी आसु मन वसै मैं अवर ना कोई। सो साचा सलाही है साची पत होई। पंडित पढ़ना पहुंचई बहुआल जंजाला, पाप पुन दोए संग में खुदिया जमका।

खार समुंदर कंडो लिए एक मनिया पावे दोए दिन चार सोहावना माटी तिस खावे गुरसागर सत सेवी है।

पिया पारस संग पीजै वन्नी साचे लाल की किन कीमत कीजै पेखी हाथ न लबई तीरथ नहीं दाने पूछो बेद पढ़ंतिया

कर हेरै ग्रह धर्म गवाए सतगुर ना भेटै दुर्मत कुमन घेरै दसंतर भवै पाठ पढ़ थाका तृष्णा होए बधेरै काची पिंडी शब्द ना चीनै उधर भरै जैसे ढूरै बाबा ऐसी रवत रवै सन्यासी गुर कै शब्द एक लिव लागी तेरे नाम रते त्रिपतासी रहाओ कोली गेरू रंग चढ़ाया वस्त्र पेख पेखारी कापड़ फार बनाई छिंथा चोली माया तारी घर घर मांगे जग प्रबुद्ध मन अंधे पतहारी परम पलाना शब्द ना चीनै जुए बाजी हारी अंतर अगन ना गुर बिन बूजै बाहर कुवर तापै गुर सेवा बिन भगत ना होवी क्यों कर कीन से आपै निंदा कर कर नरक निवासी अंतर आत्म जापै अठ सठ तीरथ परम बगूचै है क्यों मल धोपै पापै छाणी खाक बेभूत चढ़ाई

दिस तावे बिन रत आत्म ज्ञाना अमृत छोड़ महाबिख पीवे माया का देवाना कितना मिटही हुक्म ना बूझे पशुआ माहे समाना हाथ कमंडल कापड़िया मन तृष्णा उपजी पारी स्त्री तज कर काम व्यापिया चित लाया।

पानी गगन पताली जनता जोत तुम्हारी सब सुख मुकत नाम धुन बाणी सच नाम उरतारी नाम बिना नहीं छूटस नानक साची तर तू तारी मारू महला पहला मात पिता संजोग उपाई रकत बिंद मिल पिंड करे अंतर गर्भ उर्द लिव लागी सो प्रभ सारे दात करे संसार पवजल क्यों तरै गुरमुख नाम निरंजन पाई है।

सिर एहन सदात सुमार करी चार पदार्थ ले जग जन्मिया सिर शक्ति घर वास धरी लागी भूख माया मग जो है मुक्त पदार्थ मोहे खरे कर्ण पलाव करे नहीं पावे एते उत ढूंढत थाक परे काम क्रोध अहंकार व्यापे कूड़ कटंब स्यों प्रीत करे खावे भोगे सुन सुन देखे पहर दिखावे काल करे

हो मैं कर भूले, मेरी मेरी करते शीन खरे, तन धन बिन सह सह सह सहसा, फिर पछतावे मुख धूर परे, बिरद पया जो बन तन खिसिया, कप कंठ बरू दो नैनोह नीर धरे, चरन रहे कर कंपन लागे, साकत राम नारिदै हरे, सुरत गई काली हूं तौले, किसे न पावे रखियो करे, बिसरत नाम ऐसे दुख लागे, जम मार समारे नरक खरे, पूरब जन्म को लेख न मितई, जन्म मरे का को दोष तरे, बिन गुर बाद जीवन होर मरना, बिन गुर शब्द जन्म जरे, खुशी खुआर पए रस।

नानक नाहो ना विछड़े इन सच्चै रतड़िया मारू महला पहला ना भैणा परजाइया ना से ससुड़िया सच्चा साक ना तुटई गुर मेले सहिया बलिहारी गुर अपने सद बलिहारे जाऊं गुर बिन एता भव थकी गुर पिर मेले।

देव दृष्ट जागे परम चकाई, गुर प्रसाद परम पद पाई। सो जोगी एह जुगत पछाणे, गुर कै शब्द बिचारी जियो। संजोगी तन पिर मेला होए।

सोई। सतगुर मिले मरे मंदा होवै ज्ञान बिचारी दियो। एहो शब्द सार जिसनो लाए गुरमुख कृष्णा भुख गवाए। आपन लिया किशु ना पाई कर कृपा कल तारी जियो। अगम निगम सतगुरु दिखाया कर कृपा अपने घर आया। अंजन माहे निरंजन जाता जिनको नदर तुम्हारी जियो। गुरमुख होवे सो तत पाए अपना आप विचो गवाए। सतगुर बाजो सब धंद कमावे वेखो मन विचारी जियो। एक भ्रम भूले फिरे अहंकारी

अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद लाख चौरासी भ्रमते द्राब जन्म अब पायो रे मुंडे तू हो छह रस लपटायो अमृत संग बस्त है तेरे बिख्या स्यो उर जायो रहाओ रत्न जवे हर बन जन आयो।

सुखदाई एक निमुख नहीं तुझ गायो जहां जाना सुथान वसारियो एक निमुख नहीं मन लायो उत्तर कलत्तर ग्रह देख समग्री इस ही मैं उर जायो जित को लायो तित ही लागा तैसे कर्म कमायो जो पयो कृपाल ता साध संग पाया जन नानक ब्रह्म ते आयो।

अगम अगाह सिद्ध साधक देव मुन जान वेद करह ओचार सिमर स्वामी सुख सहज पुंचह नहीं अंत पारावार अनक परासत मिटह खिन मह हृदय जप भगवान पाम नाते महापावन कोट दान इशनान बाल बुद्ध शुद्ध पुराण सर्वस संतना की रास।

तीर महासागर नह व्यापै खिनह उतरियो तीर चंदन अगर कपूर लेपन तिस संगे नहीं प्रीता।

मित्र सत्धर ना कछु जान सर्ब जी समत कर परगास प्रचंड प्रगट्यो अंधकार विनाश पवित्र अपवित्र है।

शंका मान सुपाए अपाए जो निकट आवे सीत ता का जाए आप पर का कछ न जाने सदा सहज सुपाए चरण सरन सनाथ इहु मन रंग राते लाल गोपाल गुण नित गाउ नानक पए प्रभ किरपाल मारू महला पंजवां घर चौथा अष्टपदियां।

का हर जस गुर ते मांगना जागना जागन नीका हर कीर्तन मह जागना लागना लागन नीका गुर चरणी मन लागना एह बिदत सह प्राप्ति जा कह मस्तक भागना कहो नानक तिस सब कि

आवत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम संग गावना संत कृपा ते हृदय वासै दूजा पाओ मिटावना भगत दया ते बुद्ध परगासै दुर्मत दुख तजावना दर्शन भेट तो होत पनीता पुनरप गर्भ ना पावना नौ निद रिद सिद्ध पाई जो तुमरै मन पावना संत बिना मैं थाओ ना कोई अवर ना सूजै जावना मोहे निर्गुण को कोई ना राखै संता संग सुमावना कहो नानक गुर चलत दिखाया मन मदे हर हर रावना मारू महला पंजवा जीवना सफल जीवन सुन हर जप जप सद जीवना रहाओ पीवना जित मन आघावे नाम अमृत रस पीवना खावना जित भूख ना लागे संतोख सदा तृप्तीवना पहनना रख पत परमेश्वर फिर नांगे नहीं थीवना भोगना मन मदे हर रस संत संगत महलीवना बिन तागे बिन सोई आनी मन हर भगती संग सीवना मातिया हर रस महराते तिस बहुड़ना कबहू औखीवना मिलियो तिस सर्ब निदाना प्रभ कृपा।

उठ स ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिर परमंता, दुहु व्यवस्था तेजो मुक्ता, सोई सोहेला पाली है, ग्रह राज मह नरक उदास करोदा, बहु विद वेद पाठ सब सोदा, देही मैं जो रह अलिपता, जिस जन की पूर्ण काली है, जागत सूता परम भगूता, बिन गुर मुक्त न होइए मीता, साध संग टुट है हो बंधन, एको एक निहाली है, कर्म करे ता बंदा, नह करे ता निंदा, मोह मगन मन व्यापिया चिंदा, गुर प्रसाद सुख दुख सम जाने।

भो मन माही, तिस ही मह जिसकी पत राख है, तिस साधु चौर टाली है, जो सूरा तिस ही होए मरना, जो भागै तिस जो नी फिरना, जो वरताए सोई पल मानै, बुझ हुक्मै दुरमत जाली है, जित जित लाव है तित तित लगना।

सब जनते इकट्ठे एक तत्ते एक बोलन मिठे हस्त अधोत पया उठ चले ज्यों ज्यों औद बिहानिया पाप करेंदड़ सर पर मुठे अजराइल फड़े फड़ कुठे दोजक पाए सिर जनहार लेखा मंगै बाणिया संग न कोई भैया बेबा माल जोबन तन छोड़ वंजेसा करन करीम ना जातो करता तिल पीड़े ज्यो कहानिया खुस खुस लैंदा वस्त पराई वेखै सुने तेरे नाल खुदाई दुनिया लभ पया खात अंदर

अनाह ध्यान देन कट कट शब्द रजाई है। आपे रतन अनूप अमोलो आपे परखे पूरा तोलो आपे किस ही का सब

हे देवानी शब्द सहज रस अंतरमानी आपे मुकत तृप्त वरदाता भगत भाए मन भाई हे आप निरालम गुर गम ज्ञाना।

चाल है, पार कर जो है घर नहीं पाल है। काया नगर टह टह तेरी, बिन शब्द पत जाई। गुरते बूजै त्रिपवन सूजै।

साहिब सबना सिर भाई मिले भव जाई हे भूले चूके मार्ग पावह आप भलाए तू है समझावह।

गगन जलै पड़कारी मनमुख तके कुंडा चारी बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाई है साचे हाथ वडाई हे काम क्रोध अहंकार निवारी तस्कर पंच शब्द संघारी ज्ञान खड़गलै मन स्यों लूजै मनसा मन है समाई हे माँ की रकत पिता बिद धारा मूरत सूरत।

जमण मरना, गुरते समझ पड़ी क्या डरना। तू दयाल दया कर देख, दुख दर्द शरीर हो जाई है। निज कर बैस रहे पहु खाया, तावत राखे ठाक रहाया। कमल बिगास हरे सरस पर,

जुग जुग बिरली गुरमुख जाता, साचा रव रहया मन राता। तिसकी ओट गही सुख पाया, मन तन मैल ना काई। जीवर साइन साचे राती, हर प्रभ संगी पहो ना प्रांति। श्रवण स्रोत रजे गुरबाणी, ज्योति ज्योत मलाई हे। रख रख पैर तरे पौ तरना, जत कत देखो तेरी सरना। दुख सुख देहे तू है मन भाव है।

साच परम पौ पंजन गुरमुख साच सखाई त्रेतै धर्म कला एक चूकी तीन चरण एक दुबदा सूकी गुरमुख हो सो साच पछाणै मनमुख पचै अवाई हे मनमुख कदे ना दरगाह सीजै बिन शब्द क्यों अंतर रीजै बांधे आवह बांधे जावह सोजी बूझ ना काई हे दया दुआ पर यदि होई गुरमुख विरला चीन कोई दोए पग धर्म धरे तरनी।

ठाके कर्म कमाई है, कर्म धर्म कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ शब्द सलाही, बिन गुर शब्द मुक्त न हुई, परपंच कर परमाई है, माया ममता छोड़ी न जाई, से छूटे सचकार कमाई, अहनस भगत रते विचारी, ठाकुर स्यों बन आई है, एक जप तप कर कर तीरथ नावे है, ज्यों तुद भावे तिवें चलावे है, हठ निग्रह अपतीज न पीजे, बिन हर गुर किन पत पाई है, कली काल में एक कल राखी, बिन गुर पूरे किने ना पाखी, मन

गुरमुख कोट असंख्य उधारी सर्ब जिया जग जीवन दाता निरपहु मैल ना काई हे सगली जाचह गुर पंडारी आप निरंजन अलख अपारी।

ए शब्द मलाई जांत सिपाणा सहज समाई त्रे पवन जोत तरी परमेश्वर अवर न दूजा पाई है जिसके चाकर तिसकी सेवा शब्द पतीजै अलख अपेवा भगतां का गुण।

गुरमुख सुरत समाई है, कूड़ मुठी ठगी ठगवाड़ी, ज्यो वाड़ी ओजाड़ उजाड़ी, नाम बिना किस साधना लागे, हर बिसरे दुख पाई है, भोजन साच मिले।

तन तन अर्प मिले जग जीवन, हर सियों बणत बनाई। प्रभ की गत मित कोई ना पावे, जे को वड्डा कहाए वडाई खावे। साके साहेब तोट ना दाती।

योग व्यापे जो किछ करे सो आपे आपे भगत पाओ गुर की मत पूरी अनहद शब्द लखाई है एक नांगे भूखे पवह पवाए एक हठ कर मरह ना कीमत पाए गाते अवगत की सार ना जाने बूझे शब्द कमाई है एक तीर्थ नाव है अन न खाव है एक अग्न जलाव है देख पाव है राम नाम बिन मुक्त न होई केत बिद पार लंगाई है गुरमत छोड़ है उजड़ जाई मन

तह पर हर दुख दालद जिन नाही चिंत पराई है। वे जागत रह ना सूते दिसह संगत कुल तारे साच परिसह। कल मल मैल नाही ते निर्मल होए रह भगत लिवलाई।

प्राणी हर जप जप रिजै त्याई हे। छोड़ो प्राणी कूड़ कबाड़ा कूड़ मारे काल उशाहाड़ा। साकत कूड़ पचह मन हउमै दोह मार्ग पचह पचाई हे। छोड़ो हो निंदा तात पराई पड़ पड़ दज है शांत न आई। मिल सत संगत नाम सलाह हो आत्म राम सखाई हे। छोड़ हो काम क्रोध बुरे आई हो मैं तंद छोड़ हो लंपटाई। सतगुर सरन पर हो ता उबर हो यों तरिय पव जल पाई हे। आगे बिमल नदी अगन बिख झेला तिथै अवर न कोई।

एकहु करनंदर बिघन नाही गुरमुख तर तारी क्यों पव जल पार लंगाई है। देही अंदर नाम नवासी आपे करता है अब नास्ती ना जियो मरे ना मारिया जाई कर देखै शब्द रजाई है। ओह निर्मल है ना ही अंधियारा ओह आपे तख्त बह सत्यारा साकत कूड़े बंद पवाई है मर जन्म है आई जाई है। गुर के सेवक सत गुर प्यारे वही वैस है तखत सो शब्द विचारे तत लह अंतर्गत जा।

कर वास न पाई पेयड़ सिर माराही खाजे पेंजे रली करीजे बिन अब भगती बाद मरीजे सर।

पाए अमृत रस पाए जम जगात नाही कर लागे जिस अग्न बुझी ठर सीना है काया हंस प्रीत बहुतारी ओह जोगी पुरख ओह सुंदर नारी अहनस भुगे चोज बिनोदी उठ चलते मता ना कीना है श्रिष्ट अपाए रहे प्रभ साजै पौन पानी बह संतर गाजै मनुआ डोले दूत संगत मिल सो पाए जो किछ कीना है नाम विसार दोख दुख सही है हुक्म भया चलना क्यों रही है नरक कूप मह गोते खावे ज्यों जलते बाहर मीना है चौरासी नरक साकत पोगाई है जैसा की कहते सो पाई है सतगुर बाजो मुक्त ना हुई किरत बांधा ग्रस दीना है खंडे धार गली अत पीड़ी लेखा लीजै तिल ज्यों पीड़ी मात पिता कलत्तर सुत बेली नाही बिन हर रस मुक्त ना की नाही मीत सखे केते जग माही बिन गुर परमेश्वर।

मुखर ले चल्लुहु दर्शन पावहु सहज महल्लुहु गुरमुख खोज लह जन पूरे यो समदर्शी चीना ही प्रभ बेअंत गुरमत को पाव है गुर कै शब्द मन को समझावे है सतगुर की बाणी सत सत कर मानुहु।

नाही। एक दर सेव है दर्ज बुझाई, कोई दरगाह पैंदे सतगुरु छदाई। हम मैं बंधन सतगुरु तोड़े, चित चंचल चलन ना दीना है। सतगुर मिलो चीनो बेदसाई, जित प्रभ पावो गणत ना काई। हम मैं मार करो गुर सेवा, जन नानक हर रंग पीना है। मारू महला पहला, असुर संघारण राम हमारा।

शरण तुम्हारी, कर कृपा प्रभ पार उतारी। अगन पानी सागर अत गहरा, गुर सतगुर पार उतारा ही। मनमुख अंदले सो जी नाही, आवह जाहे मरह मर जाही। पूर्व लिखिया लेख न मिटई, जमदारे अंध खुआरा ही। एक आवह जावह कर वास न पावह, किरत के बांधे पाप कमावह। अंदले सोजी बूझ न काई, लोभ बुरा अहंकारा ही। फिर बिन क्या तिस धन सिंगारा, पर फिर राती खसम बसारा। ज्यों बेसवा पूत बाप को कही है, त्यों फोकट कार विकारा ही। प्रेत पिंजर मह दुख कनेरे, नरक पचह।

अगन बेख चाला अपत पशु मन मुख बेताला आसा मनसा कूड़ कमावह रोग बुरा बुरिया राही मस्तक पहार कलर सिर पहारा क्यों कर भवजल लंगस पारा।

राम जपहु अंतरगत ध्यानि, लालच छोड़ रचहु अपरंपर। यूं पावहु मुक्त द्वारा ही, जिस बिसरै जम जोहन लागै। सब सुख जाहे दुखा फुन आगै, राम नाम जप गुरमुख जी अड़ी।

जिस को सतगुर मेल मलाई तिस चूका जम पै पारा ही पंच तत् मिलकाया कीनी तिस महराम रतन लै चीनी आत्म राम राम है आत्म हर पाइये शब्द विचाराई सत संतोख रहो जन पाई।

सिर अपरे उपार अपाराही, बिन गुर साकत कहू को तरया, हम मैं करता पव जल परया, बिन गुर पार न पावे कोई, हर जपिए पार उताराही, गुर की दात न मेटे कोई, जिस बख्शे तिस तारे सोई, जन्म मरण दुख नेड़ न आवे, मन सो प्रभ अपरे अपाराही, गुरते भूले आवो जावो, जन्म मरहो फुन पाप कमावो, साकत मूड अचेत ना चेत है, दुख लागे ता राम पकाराही, सुख दुख पूर्व जन्म के किए, सो जाने जिन दाते दिए, किसको दोष दे तू प्राणी, सहु अपना किया कराराही, हम मैं ममता कर दायाया, आसा मनसा बंद चलाया, मेरी मेरी करत क्या ले चाली, बिखला दे शार बिकारा ही, हर की भगत करो जन पाई, अकथ कथो मन मन समाई, उठ चलता ठाक रखो घर अपने, दुख काटे काटन हारा ही, हर गुर पूरे की ओट पराती, गुरमुख हर लेव गुरमुख जाती।

गुप्त रहा ताही। चार नदी ही अग्नि असराला, कोई गुरमुख बूझे शब्द नराला। साकत दुर्मत डूब बहता जह, गुर राखे हर लिवराता ही। अप तेज वाए पृथ्वी आकाशा, दिन मह पांच तत् घर वासा। सतगुर शब्द रह रंग राता, तज माया हो मैं प्रांता ही। इह मन पीजह शब्द पतीजै, बिन नावै क्या टेक टकीजै। अंतर चोर मुह घर मंदर, इन साकत दूत ना जाता ही। दुंदर दूत पूत पिहाले, खिंचो तान करह बेताले। शब्द सुरत बिन आवै जावै,

कहो क्यों लखिए जिस बख्शे सह पछाता है अंतर प्रेम परापत दर्शन गुरबाणी स्यों प्रीत सो परसन अहनस निर्मल ज्योत सुबाई।

बैरागी मन मनसा मार समाताही सतगुर सेवह से परदाना तिन घट घट अंतर ब्रह्म पछाना नानक हर जस हर जन की संगत दीजै जिन सतगुर हर प्रभ जाता ही मारू महला पहला साचे साहेब सिरजनहारी जिन तार चक्र

सच सौदा लह गुर विचारी, सच्चा वखर जिस तन पल्ले, शब्द सच्चे ओ माहाही, काची सौदी टोटा आवे, गुरमुख वणज करे प्रभ पावे, पूंजी साबत रास सलामत, चूका जम का फाहाही, सबको बोले आपन पाणे, मनमुख दूजे बोल ना जाने, अंदले की मत अंदली बोली, आई गया दुख ताही, दुख मह जन्मे दुख मह मरना, दुख ना मिटे बिन गुर की सरना, दुखी उपजे दुखी बिन से, क्या ले आया क्या ले जाहाही, सच्ची करनी गुर की सिरकारा, आवन जान नहीं जम तारा, दाल छोड़ ता

बल्दी जल निवरै किरपाती आपे जल निध पाएंदा तरत उपाए तरी धर्मशाला उत्पत परलो आप निराला पवन खेल किया सब थाई कला खिंच टहाएंदा भार अठारह मालन तेरी चौर टुलै पवन लै फेरी चंद सूरज द्वे दीपक राखी सस कर सूर समाएंदा पंखी पंच उडर नहीं तावह।

अनहद वाजै ब्रह्म पौ पाजै सगल व्याप रहया प्रभ साजै सब तेरी तू गुरमुख जाता दरसो है गुण गाएं दा आद निरंजन निर्मल सोई।

जाने जो किस करे सो अपन पाने लख चौरासी जी अपाई पाने सहा लवाई दा जो तिस पावे सो निचो होवे।

कोई, गुर बिन सोजी किन ना होई, साच मिले सो साचे पाई, ना विछड़ दुख पाईंदा, तुरों विछुन्ने ताही रुन्ने, मर मर जन्म है मोहलत पुन्ने, जिस

दुख पाया, जिसनो कृपा करे हर गुरमुख, गुण चौथा मुक्त कराईंदा। सुनो उपजे दास अवतारा, शिष्ट उपाय किया पासारा, देव दानव गण गंधर्व साजी, सब लिखिया कर्म कमाईंदा। गुरमुख समझे रोग ना होई, ये गुर की पौड़ी जाने जन कोई, जुगा जगंतर मुक्त परायण, सो मुक्त भया पत पाईंदा। पंच तत् सुनो परगासा, देह संजोगी कर्म अभ्यासा, बुरा भला दोए मस्तक लिखे, पाप पुन भी जाएंदा। उत्तम सतगुर पुरख निराले, शब्द रत्ते हर रस मतवाले, रिद बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाईए, पूरे भाग मलाएंदा। इस मन माया को नेहो कनेरा, कोई बूझो ज्ञानी करहो नबेरा, आसा मनसा हो मैं सहसा, नर लोभे कूड़ कमाईंदा। सतगुर ते पाए विचारा, सुन समाद सच्चे घर बारा, नानक निर्मल नाद शब्द धुन, सच रामै नाम समाईंदा। मारू महला पहला, जह देखा तह दीन दयाला, आए न जाई प्रभ कृपाला, जिया अंदर जुगत समाई, रहो निराल मराया। जग तिसकी छाया, जिस बाप ना माया, ना तिस भैण ना भ्राऊ कमाया, ना तिसे उपत खपत कुल जाती, ओह अज रावर मन पाया। तू अकाल पुरख नाही सिर काला, तू पुरख अलेख अगम निराला, सत संतोख शब्द अत सीतल, सहज पाए लिवलाया। त्रै वरताए चौथे घर वासा, काल बिकाल किए एक ग्रासा, निर्मल ज्योत सर्व जग जीवन, गुर अनहद शब्द दिखाया। उत्तम जन संत भले हर प्यारी, हर रस माते पार उतारी, नानक रेण संत जन संगत,

संचो रे जन पाई सतगुर सेव रहो सरनाई तस्कर चोर न लागे ता को धुन उपजै शब्द जगाया तू एक अंकार नरानम राजा तू आप सवार है जन के काजा अमर अडोल अपार अमोलक हर अस्थर तान सुहाया देही नगरी उत्तम थाना पंच लोक वसह परधाना।

निवास निरंतर आवण जान चुकाया ना मन चले ना पौन उड़ावे जोगी शब्द अनाह दबावे पंच शब्द चुनकार नरालम प्रभ आपे वाहे।

जन राया दुख भय भंजन प्रभ अवनासी रोग कटे काटी जम फासी नानक हर प्रभ सो पौ भंजन गुर मिले हर प्रभ पाया काले कवल निरंजन जाने बूझे कर्म सो शब्द पछाने आपे जाने आप पछाने सब तिसका चोज सबाया आपे साहु आपे वणजारा आपे परखे परखनहारा आपे कस कस वट्टी लाए आपे कीमत पाया आप दयाल दया प्रभतारी घट घट रब रहया बनवारी पुरख अतीत वसै नेह केवल गुरपुरख है पुरख मलाया।

उन निरंजन गाया हम अमित शब्द सुख हुई आप विचारे ज्ञानी सोई नानक हर जस हर गुण लाहा सत संगत सच फल पाया मारू महला पहला सच कहो सच्चे कर रहना जीवत मरहो पव जल जग तरना गुर बोहित गुर बेड़ी तुलहा मन हर जप पार लंघाया हूं मैं ममता लोभ बनासन नौ दर मुक्ते दसवै आसन ऊपर परे परे अपरंपर जिन आपे आपे उपाया गुरमत लेव हर लिव तरिया

मोख मुक्त क्यों पाईऐ, बिन गुर राम नाम क्यों त्याईऐ, गुरमत लेहो तरो भव दुत्तर, मुक्त भये सुख पाया, गुरमत कृष्ण गवर धन तारी, गुरमत शायर पाहन तारी, गुरमत लेहो परम पद पाईऐ, नानक गुर परम चुकाया।

गुरमुख बूजै शब्द पतीजै उस्तत निंदा किस की कीजै जिन्हों आप जपो जगदीसर हर जगन्नाथ मन पाया जो ब्रह्मांड खंड सो जानो गुरमुख बूजो शब्द पछाणो कट कट भोगे भोगण हारा रह अतीत सबाया गुरमत बोलो हर जस सूचा गुरमत आखी देखो ऊचा सरवणी नाम सुने हर बाणी नानक हर रंग रंग।

नानक गुरमत सो पाया, अंतर की गत सत गुर जाने, सो निरभउ गुर शब्द पछाने, अंतर देख निरंतर बूझे, अनत ना मन डोलाया, निरपौ सो आबे अंतर वसिया, अहनस नाम निरंजन रसिया, नानक हर जस संगत पाई है, हर सहजे सह

आपे सिर सिर हुक्म चलाया, हुक्म चलाए रहया पर पूरे, किस नेड़े किस आखां दूरे, गुपत प्रगट हर कट कट देखो, वरतै ताक सुबाया, जिस को मेले सुरत समाए, गुर शब्दी हर नाम ते आए, आनंद रूप अनूप अगोचर, गुर मिले है परम जाया, मन तन तन ते नाम प्यारा, अंत सखाए चलन वारा, मोह पसार नहीं संग बेली, बिन हर गुर किन सुख पाया, जिसको नदर करे गुर पूरा, शब्द मलाए गुरमत सूरा, नानक गुर के चरण सरेव हो, जिन पूला मार्ग पाया, संत जना हर तन जस प्यारा, गुरमत पाया नाम तुम्हारा, जाचक सेव करे दर हर कै, हर दरगाह जस गाया, सतगुर मिले त महल बुलाई, साची दरगाह गत पत पाई, साकत ठोर नाही हर मंदर, जन्म मरे दुख पाया, सेवहु सतगुर समुंद अथाहा, पावहु नाम रतन तन लाहा, बिखिया मल जाए अमृत सर नाभु, गुर सर संतोख पाया, सतगुर सेवहु संक ना कीजै,

नाम रतन पाया। मनसा मार मन माए समाया, आपे खेल करे सब करता, आपे दे बुझाई है।

तिस जोहे ना साकै साचे स्यों बन आई हे। तृष्णा अग्न जलै संसारा जल जल खपै बहुत विकारा। मन मुख ठौर न पाए कबहू सतगुर बूझ बुझाई हे। सतगुर सेवन से वडभागी साचै नाम सदा निबलागी। अंतर नाम रव्या नेह केवल तृष्णा शब्द बुझाई हे। सच्चा शब्द सच्ची है बाणी गुरमुख विरलै किनै पछाणी। सच्चा शब्द रत्ते बैरागी आवण जान रहाई हे। शब्द बुझै सो मैल चुकाई निर्मल नाम वसै मन आई। सतगुर अपना सद ही सेवह हम मैं विचों जाई हे। गुरते बूझै तां दर सूझै नाम में हूणा कथ कथ लूझै। सतगुर सेवे की वडियाई तृष्णा भूख गवाई हे। आपे आप मिलै तां बूझै ज्ञान में हूणा किशु ना सूझै। गुर की दात सदा मन अंतर बाणी शब्द बजाई हे। जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया कोई ना मेटै तुर फुरमाया। सत संगत मह तिन्ही वासा जिनको तुर लिख पाई।

जम का पौ भागै अंतर शब्द सदा सुख दाता गुरमुख बूझै कोई आपे मेले मेल मलाए पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाए आन दिन भगत करे दिन राती।

बार तृष्णा अग्न निवारी शब्द कीन सुख होई है। काया कुटंब मोह ना बूझै गुरमुख होवै ता आखी सूझै। अन दिन नाम रवै दिन राती मिल प्रीतम सुख होई है। मनमुख तात दूजै है लागा जनमत की नाम वो अभागा।

हंस बैरागी निज कर ताड़ी लाई हे। शब्द मरे सोई जन पूरा सतगुर आख सुनाए सूरा। काया अंदर अमृत सर साचा मन पीवे पाए सुपाई हे। पढ़ पंडित अवरा समझाए घर जलते की खबर ना पाए। बिन सतगुर सेवे नाम ना पाईए पढ़ था के शांत ना आई हे। एक भस्म लगाए फिर भेख तारी बिन शब्द हूं मैं किन मारी। अन दिन जलत रह दिन राती परम पेख परमाई हे। एक ग्रह कटम मह सदा उदासी शब्द मोए हर नाम निवासी। हर दिन सदा रह रंग राती पै पाए भगत चित लाई हे। मनमुख निंदा कर कर विगुत्ता अंतर लोभ भौंकै जिस कुत्ता।

सुख पाया सहजी साच समाई ही तंदै तावत मन पया मनूरा फिर हुए कंचन पेटै गुरपूरा आपे बख्श लए सुख पाए पूरे शब्द मलाई है दुर्मत झूठी बुरी बुरियार औगण यारी औगण यार कच्ची मत फीका मुख बोले दुर्मत नाम ना पाई है औगण यारी कंत ना पावे मन की झूठी झूठ कमावे फिर का साहू ना जाने मूरख बिन गुर बूझ ना पाई है दुर्मत खोटी खोट कमावे सिंगार करे फिर खसम ना पावे।

न पाई, बिन सतगुर सुख ना पाई। किसनो कहिए जा आप कराई, जित पावे तित राहि चलाई। आपे मेहरवान सुखदाता, जो पावे

बिनसै तहत न लागे बारा कंचन काया गुरमुख बूजै जिस अंतर नाम नवासी है सच्चा चौका सुरत की कारा हर नाम पूजन सच आधारा सदा त्रिपत पवित्र है पावन जित घट हर नाम नवासी है हों तिन बलिहारी जो साचै लागे हर गुण गावह अन दिन जागे साचा सूख सदा तिन अंतर रसना हर

सब सच दिखाया सच्चै नाम निवासी हे ब्रह्म ब्रह्म जोनी फिर आया आप भूला जा खसम पुलाया हर जियो मिलै ता गुरमुख बूजै चीनै शब्द अबनासी हे काम क्रोध भरे हम अपराधी क्या मुँह लै बोल है ना हम गुण ना सेवा सादी डुबदे पात्र।

आपे बख्श लह सुख पाई सद ही नाम नवासी है। एहो तन धरती शब्द बीज अपारा हर साचे सेती वणज व्यापारा।

मन मुख अंधे किछु ना सूझै गुरमत नाम परगासी। मन मुख मैं माया सूते अपना घर ना संभालै अंत बगूते। पर निंदा करह बहु चिंता जल दुखे दुख नवासी। आपे करत कार कराई आपे गुरमुख दे बुझाई। नानक नाम रते मन

काल कड़ी मोहत निहाली अन दिन आर जासी जाय अंतर लोभ करे नहीं बूझै सिरी ऊपर जम काल ना सूझै ऐसे कमाणा सो अगे आया अंत काल क्या की जाय जो सच लागे तिन साची सोए दूजे लागे मन मुख रोए दोहां सिरियां का खसम है आपे आपे गुण मह पी जय ही गुर कै शब्द सदा जन सो है नाम रसायन इहो मन मोहै माया मोह मैल पतंग ना लागे गुरमति हर नाम पी जय ही सबना विच वरतै इक सोई गुर प्रसादी प्रगट होई हौं मैं मार सदा सुख पाया नाए साचै अमृत पी जय ही किल बिख दुख निवारण हारा गुरमुख सेविया शब्द विचारा सब किश आपे आप वरतै गुरमुख तन मन पी जय ही माया अग्न जलै संसारी गुरमुख निवारै शब्द विचारी अंतर शांत सदा सुख पाया गुरमति नाम ली जय ही इंद्र इंद्रासन बैठे जम का भउ पाव है जम ना छोड़ै बहु कर्म कमाव है सतगुर भेटै ता मुक्त पाई हर हर रसना पी जय ही मनमुख अंतर भगत ना होई गुरमुख भगत।

कृष्ण महेश विचारी त्रै गुण बधक मुक्त निरारी गुरमुख ज्ञान एको है जाता अन दिन नाम रवि जय ही वेद पढ़ है हर

मन तन साचा भगत परे भंडारी हे, आपे वेखै हुक्म चलाए अपना भाणा आप कराए, नानक नाम रते बैरागी मन तन

कोई। गुरमुख ज्ञान सदा सलाही, जुग जुगे को जाता ही। मनमुख कार करे सब दुख सबाई, अंतर शब्द नाही क्यों डर जाई। गुरमुख शब्द वसै मन साचा, सद सेवे सुख दाता ही। जह देखा तू सबनी थाई, पूरै गुर सब सोजी पाई। नामो नाम त्याई है सदा सद।

रतने अमोलो आपे नदनी तोले तोलो जी जंत सब शरण तुम्हारी कर कृपा आप पछाताई जिसनो नदर होवे तुर तेरी मरे न जम्मे चूकै फेरी साचे गुण गावे दिन राती जुग जुग एको जाताई माया मोहे सब जगते उपाया ब्रह्मा विष्णु देव सुबाया जो तुद पाणे से नाम लागे ज्ञान मती पछाताई पाप पुन वरत संसारा हरख सोग सब दुख है पारा गुरमुख होवे सो सुख पाई।

रत्न अमोलक अग में अपारा, कीमत कमन करे विचारा, गुर कै शब्दे तोलत लाई, अंतर शब्द पछाताई, सिमरत शास्त्र बहुत बिस्थारा, माया मोह पसरिया पासारा, मूर्ख पढ़े शब्द ना बूझे, गुरमुख विरले जाताई, आपे करता करे कराई, सच्ची वाणी सच दृढ़ाई, नानक नाम मिले वड्याई, जुग जुग एको जाताई, मारू महला तीजा, सो सच सेवे हो सिरजनहारा, शब्दे दुख निवारण हारा, अगमय गोचर कीमत नहीं पाई, आपे अगमय अथाहाई, आपे सच्चा सच वरताई, एक

लाई सच्ची भगती आपे लाई साची बाणी सदा गुण गावे इस जन्म में काला हाही गुरमुख वणज करह पर आप पछाण है एक सबिन को अवर ना जाण है सच्चा साहु सच्चे वणजारी पूंजी नाम वसाही आपे साजे सिरत अपाई बिरले को गुर शब्द बुझाई सतगुर सेव है से जन साची काते जम का पाही पन्ने कड़े सवारे साजी माया मोहे दूजे जंत पाजी मन मुख फिर है सदा अंध कमाव है जम का जेवड़ा गल पाही आपे बख्शे गुर सेवा लाई।

सच्ची नाई गुरमुख देव मन वसाई जिन मन वसया से जन सो है तिन सिर चूका काहाई अगम अगोचर कीमत नहीं पाई गुर प्रसादी मन वसाई सदा।

मनमुख हुक्म न जाने सारा। हुक्मे मन्ने हुक्मे वड़ियाई, हुक्मे वे परवाहाई। गुर प्रसादी हुक्म पछाण, तावत राखे इकत कर आण। नामे राता सदा बैरागी, नाम रतन मन ताहाई। सब जग मह वरतै इको सोई, गुर प्रसादी प्रगट होई। शब्द सलाह है से जन निर्मल, निज करवासा ताहाई। सदा भगत तेरी सरनाई, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई। ज्यों तुद भाव है त्यों त्यों राख है, गुरमुख नाम त्याहाई। सदा सदा तेरे गुण गावा, सच्चे साहिब तेरे मन पावा। नानक साच कह बेनंती, सच देव हो सच समाहाई। मारु महला तीजा, सतगुर सेवन से वडभागी। अन दिन साच नाम लिवलागी, सदा सुखदाता रव्या घट अंतर। शब्द सच्चै ओ माहाई, नदर करे ता गुरु मलाई। हर का नाम मन वसाई, हर मन वसिया सदा सुखदाता। शब्दे मन ओ माहाई, कृपा करे ता मेल मलाई। हौ मैं ममता शब्द जलाई, सदा मुकत रह इक रंगी। नाही किसे नाल काहाई, बिन सतगुर सेवे कोर अंधारा। बिन शब्द कोई ना पावे पारा, जो शब्द राते महा बैरागी। सो सच शब्दे लाहाई, दुख सुख करते तुर लिख पाया। दूजा भाव आप वरताया, गुरमुख होवे सो अलिप तो वरते। मनमुख का क्या विसाहाई, से मनमुख जो शब्द ना पछाण है। गुर के पै की सार ना जान है, पै बिन क्यों निरभउ सच पाई है। जम काड लएगा साहाई, अफरियो जम मारिया न जाई। गुर कै शब्दे नेड़ ना आई, शब्द सुने ता दूर हो भागै।

सतगुरु पूरा शब्द सुनाई, अन दिन भगत करहो लिवलाई। हर गुण गावे है सद ही निर्मल, निर्मल गुण पातशाही। गुण का दाता सच्चा सोई, गुरमुख विरला बूझे कोई। नानक जन नाम

पूरे सतगुर बूझ बुझाया, हुक्मे ही सब जगते पाया, हुक्म मन्ने सोई सुख पाए, हुक्म सिर चाह पात चाहाई, सच्चा सतगुर शब्द अपारा।

रा पद हुए गुर कै शब्द रस ताहाए आप पछाण सो सब गुण जाने गुर कै शब्द हर नाम बखाण अन दिन नाम रत्ता।

है। सील संतोख सब ताहाई, हम मैं मोह उपजै संसारा, सब जग बिन सह नाम वसारा, बिन सतगुर सेवे नाम ना पाई है, नाम सच्चा जग लाहाई। सच्चा अमर शब्द सुहाया, पंच शब्द मिल वाजा वाया, सदा कार्ज सच नाम सुहेला, बिन

ए बैरागी निज करवा सा पाएंदा गुर की साखी अमृत पाखी सच्चा शब्दे सच सुपाखी सदा सच रंग राता मन मेरा सच्चे सच सुमाएंदा गुरमुख मन निर्मल सत सर नावे मैल न लागे सच सुमावे सचो सच कमावे सद ही सच्ची भगत दिरड़ाएंदा गुरमुख सच बैणी गुरमुख सच नैणी गुरमुख सच कमावे करनी सद ही सच कह दिन राती अवरा सच कहाएंदा गुरमुख सच्ची उत्तम बाणी गुरमुख सचो सच बखाणी गुरमुख सद सेव है सचो सच्चा गुरमुख शब्द सुनाएंदा गुरमुख होवै सो सोजी पाए हम मैं माया परम गवाए गुर की पौड़ी उत्तम उची दर सच्चै हर गुण गाएंदा गुरमुख सच संजम करनी सार गुरमुख पाए मोख द्वार पाए भगत सदा रंग राता आप गवाए समाएंदा गुरमुख होवै मन खोज सुनाए सच्चै नाम सदा निभलाए जो तिस भावै सोई करसी जो सच्चे मन पाएंदा जा तिस भावै सतगुरु मलाई जा तिस भावै ता मन वसाई अपने भाणे सदा रंग राता भाणे मन वसाएंदा मन हथ कर्म करे सो सीजै बहुते भेख करे नहीं पीजै बिखिया राते दुख कमावै दुखे दुख समाएंदा गुरमुख होवै सो सुख कमाए मरण जीवन की सोजी पाए मरण जीवन जो सम कर जाणै सो मेरे प्रभ पाएंदा गुरमुख मरहै सो है परवान आवण जाणा शब्द पछाण मरै न जम्मै ना दुख पाए मन ही मनह समाएंदा सेवड भागी जिन्नी सत गुर पाया हम मैं विचोह मोह चकाया मन निर्मल फिर मैल ना लागे दर सच्चै सोभा पाएंदा आपे करे कराए आपे आपे वेखे थापे उथापे गुरमुख सेवा मेरे प्रभ पावे सच सुन लेखे पाएंदा गुरमुख सचो सच कमावे गुरमुख।

करता आपे मन वसाईंदा। निर्मल भगत है निराली, मन तन धोवे है शब्द विचारी। अन दिन सदा रह रंग राता, कर कृपा भगत कराईंदा। इस मन मंदर मह मनुआ तावे, सुख पलर त्याग महा दुख पावे। बिन सतगुर भेटे ठौर ना पावे, आपे खेल कराईंदा। आप अपरंपर आप

हुक्म सलाही अगम अगोचर वे परवाही जे ही मत देहे सो हुए तू आपे शब्द बजाएंदा अन्न ने आरजा सिजदी जाई रहण दे।

करता, ज्यो भावे तिवे चिलाईंदा। सिमरत सास्ते अंत न जाने, मूर्ख अंधा तत न पछाणे। आपे करे कराई करता, आपे परम पलाईंदा।

पाई सब खेल तमाशा तेरी वड्याई आपे वेख करे सब साचा आपे पन कढ़ाएंदा बाजी गर इक बाजी पाई पूरे गुर ते नदरी आई सदा अलिपत रह गुर शब्दी साचे सिंह चित लाएंदा बाजे बाजे धुन अकारा आप बजाए बजावन हारा कट कट पौन वह इक रंगी मिल पवन सब बजाएंदा करता करे सो निश्चो होवे गुर कै शब्दे हो मैं खोवे गुर प्रसादी किसे दे वड्याई नामो नाम त्याएंदा।

वह क्यों सुख पाई है, बिन नावह दुख पाईंदा, आप करी न आप कराई, गुर प्रसादी किसे बुझाई, गुरमुख होवह से बंधन तोड़ है, मुक्ति

नानक नाम संभाल सदा तू गुरमति मन वसाईंदा मारू महला तीजा हर जीव दाता अगम अथाह उस किल न तमाए वे परवाह तिसनो अपन ना सकै कोई आपे मेल मलाईंदा जो किछ

हट नाली सतगुर दिखाए अंतर नाली नावै काबा पारी होवे गुर शब्दी को पाएंदा सतगुर सेवे सहज आनंदा हृदय आए बुठा गोविंदा सहजे भगत करे दिन राती आपे भगत कराएंदा सतगुर ते विछड़े तिन्नी दुख पाया आन दिन मारिया है दुख सबाया मत्थे काले महल ना पावे दुख ही विच दुख पाएंदा सतगुर सेव है सेवद भागी सहज पाए सच्ची लिव लागी सचो सच कमावे सद ही सच्चै मेल मलाएंदा जिसनो सच्चा दे सो पाए अंतर साच परम चुकाए सच सच्चै का

आप बुझाए बूझै कोई, आपे बख्शे दे वडियाई, आपे मेल मलाएंदा, हम मैं कर दिया जन्म गवाया, आगे मोह ना चूकै माया, अगे जम काल लेखा लेवे, जो तिन कहानी पीड़ाएंदा, पूरे भाग गुर सेवा होई, नदर करे ता सेवे कोई, जम काल तिस नेड़ ना आवे, महल सच्चै सुख पाएंदा, किन सुख पाया जो तुद पाई।

गुर कृपा ते मन तन पीजै, रसना नाम त्याए रस पीजै, रस ही ते रस पाएंदा, महलै अंदर महल को पाए, गुर कै शब्द सच चित लाए, जिसनो सच दे सोई सच पाए, सच्चे सच मलाएंदा, नाम वसार मन तन दुख पाया, माया मोह सब रोग कमाया, बिन नावे मन तन है कुश्ती, नरके वासा पाएंदा, नाम रते तिन निर्मल देहा, निर्मल हंसा सदा सुख नेहा, नाम सलाहे सदा सुख पाया, निज कर

वा पारा निश्चलवा सा पाईला अंतर कर बंके थान सुहाया गुरमुख विरलै किन थान पाया इत साथ निभ सलाही सच्ची हर सच्चा मन।

अनदिन हर सेवे ओ सच्ची बाणी हर जियो शब्द मलाएंदा हर चेत है तिन बलिहार जाऊं गुर कै शब्द तिन मेल मलाऊं इनकी धूर लाई मुख मस्तक सत संगत बह गुण गाएंदा हर के गुण गावा जे हर प्रभ पावा अंतर हर नाम शब्द सुहावा गुरबाणी चहो कुंडी सुनिए साचे नाम समाएंदा सो जन साचा जे अंतर पाले गुर कै शब्द हर नदर निहाले ज्ञान अंजन पाए गुर शब्दी नदनी नदर मलाएंदा वड्डे भाग एहो शरीर पाया मानस जन्म शब्द चित लाया बिन शब्द है सब अंध अंधेरा गुरमुख किसै बुझाएंदा एक कित आए जन्म गवाए मनमुख लागे दूजे पाए एह वेला फिर हाथ ना आवे पग खिसे

दूजे पाए परम पलाया, हर ना चेते सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाएंदा, जे सतगुर सेवे सो परवान, काया हंस निर्मल दर सच्चे जान, हर सेवे हर मन वसाई, सो है हर गुण गाएंदा, बिन भागा गुर सेविया न जाए, मन मुख भूले मोए बिल लाए, जिन को नदर होवे गुर केरी, हर जियो आप मलाएंदा, काया कोट पक्के हट नाले, गुरमुख लेवे वस्त संभाले, हर का नाम त्याए दिन राती, उत्तम पदवी पाएंदा, आपे सच्चा है सुखदाता, पूरे गुर कै शब्द पछाता, नानक नाम सलाए साचा, पूरे भाग को पाएंदा, मारू महला तीजा, निरंकार आकार उपाया, माया मोह हुक्म बनाया, आपे खेल करे सब करता, सुन साचा मन वसाएंदा, माया माई त्रै गुण परसूत जमाया, चारी वेद ब्रह्मे नू फरमाया, वरे महावार तिथि कर, इस जग मह सोजी पाएंदा, गुर सेवा ते करनी सार, राम नाम राखो उरतार, गुरबाणी वर्ती जागे अंतर, इस बाणी ते हर नाम पाएंदा, वेद पढ़े अनदिन वाद समाले, नाम ना चेते बद्दा जम काले, दूजे पाए सदा दुख पाए, त्रै गुण परम पलाएंदा, गुरमुख एकस स्यों लिवलाए, त्रिविध मनसा मनह

पाए, हित रंग साचे माहे समाए, पूरे भाग को एहो रंग पाए, गुरमति रंग चढ़ाईंदा, मन मुख बहुत करे अपमान।

गुरमुख वणज सदा सुख पाई सहजी सहज मलाएंदा सच्चा महल सच्चे भंडारा।

कहे आसमाई गुर प्रसादी पाया जाई आपे मेल मलाए आपे शब्दे सहज समाइंदा आपे सच्चा शब्द मलाई शब्दे विच्चों परम चुकाई।

रस नह हर रस पाया, शब्द मर है से मरन सवार है, हर के गुण हृदय उरतार है, जन्म सफल हर चरणी लागी, दूजा पाओ चुकाया, हर जियो मेले आप मलाई, गुर कै शब्द आप गुआई, अन दिन सदा हर भगती राती, इस जग महला पाया।

पाया। जिसनो बजाए सोई बूझे, हर गुण गावे अंदर सूझे। हम मैं मेरा ठाक रहाई, सहजे ही सच पाया। बिन कर्मा होर फिरे कनेरी, मर मर जम्मे चुके ना फेरी। बिख का राता बिख कमावे, सुख ना कबू पाया। बहुते भेख करे भेख तारी, बिन शब्द हूं मैं किने ना मारी। जीवत मरे ता मुक्त पाई, सच्चै नाए समाया। अज्ञान तृष्णा इस तनह जलाई, किस दी बूझे जे गुर शब्द कमाई।

भगत सुहाई, अंतर सुख तेरे मन पाई, मन तन सच्ची भगती राता, सच्चे सिहो चित लाया, हउ मैं विच सद जलै शरीरा, कर्म होऐ भेटे गुरपूरा, अंतर अज्ञान शब्द बुझाए, सतगुर ते सुख पाया, मन मुख अंधा अंध कमाई, बहु संकट जोनी परमाई, जम का जेवड़ा कदे ना काटे, अंते बहु दुख पाया, आवन जाना शब्द निवारे, सच नाम रखे उरतारी, गुर कै शब्द मरे मन मारी, हों मैं जाहि समाया, आवन जाने परज बिगोई, बिन सतगुर थिर कोई ना होई, अंतर जोत शब्द सुख वस्या।

मुक्त होवै। पंच दूत वस आया, बाज गुरु है मोह गुबारा, फिर डुबै वारू वारा। सतगुर भेटे सच दृढ़ाई, सच नाम मन पाया।

नाम रतन धन पाया, सतगुर की सेवा पाई। बिन सतगुर जो दूजे लागे, आवह जाहे भ्रम मरह अभागे। नानक तिनकी फिर गा

ज्ञान रतन मन परगट भया, नाम पदार्थ सहजे लया। एह वडे आई गुरते पाई, सतगुर कहो सद बल जाई। प्रगटिया सूर निस मिटिया अंधियारा, अज्ञान मिटिया गुर रतन अपारा। सतगुर ज्ञान रतन अत भारी,

सदा मन बिगसै हर चरणी मन लाई हम मूर्ख अज्ञान ज्ञान किस नाही सतगुर ते समझ पड़े मन माही हो दयाल कृपा करा हर जीओ सतगुर की सेवा लाई है जिन सतगुर जाता तिनेक पछाता सर्वे राव रहया सुख दाता आत्म चीन परम पद पाया सेवा सुरत समाई है जिनको आद मिली वड्याई सतगुर मन वस्या निभलाई आप मिलिया जग जीवन दाता नानक अंक समाई है। मारू महला चौथा हर अगम अगोचर सदा अबनासी सर्वे रव रहया कटवासी तिस बिन अवर न कोई दाता हर तिस ऐसरे वो प्राणी है जां को राखै हर राखन हारा ताको कोई ना साक समारा।

पूजै तै करते हर अन दिन नाम बखाणी हे। किस ही जोर अहंकार बोलन का किस ही जोर देबान माया का मैं हर बिन टेक तारे अवर ना काई तू करते राख मैं निमाणी हे। निमाणे माण करह तुद पावे होर केती चक चक आवे जावे।

बनी प्रभ तेरी बिनस गई हम मैं मत मेरी अंगीकार किया प्रभ अपने जग में है सोब सुहाई है जय जयकार जपो जगदीश है बल बल जाई प्रभ अपने ईसे तिस बिन दूजा अवर ना दिसे एका जगत सबाई है सत सत सत प्रभ जाता गुर प्रसाद सदा मन राता सिमर सिमर जीव है जन तेरे एकंकार समाई है भगत जना का प्रीतम प्यारा सब उदाहरण खसम हमारा सिमर नाम उन्नी सब इच्छा जन नानक पैज रखाई है मारू सोले महला पंजवा।

किरत संजोगी पय इकत्तरा करते भोग बलासाहि जो पिर करै सो धन तत मानै फिर तन है सिंगार रखै संगान मिल एकत्र वसह दिन राती प्रियो दे तन है दलासाही धन मांगै प्रियो बहु बिद तावै जो पावै सो आनंद खावै एक वस्त को पहुँच न साकै धन रहती पू

ऐसा वणिज करहो ग्रह पीतर जित उतरै भूख प्यासा ही सगले कर्म धर्म जुग सादा बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा पई कृपा नानक सत संगी तौ धन फिर आनंद उलासा ही तन अंधी फिर चपल सियाना पंच तत् का रचन रचाना जिस वखर को तुम आए हो सो पायो सतगुर पासाई धन कह तू वस मैं नाली प्रिय सुखवासी बाल गोपाली तुझे बिना हों कित ही ना लिख है वचन देह छोड़ ना जासा ही फिर कहे आहो हुक्मी बंदा ओ भारू ठाकुर जिस कान ना छंदा जिचर राख है तिचर तुम संग रहना जां सदे ता ऊठ सदा साहे जो प्रिय बचन कहे तन साचे तन कशु ना समझे चंचल काचे बहोर बहोर फिर ही संग मांगे ओह बात जाने कर हासा ही आई आ गया फिर हो बुलाया ना तन पूछी ना मता पकाया ऊठ सदायो शूटर माती देख नानक मिथन मुहासा ही रे मन लोभी सुन मन मेरे सतगुर सेव दिन रात सदेरे बिन सतगुर पचमुए साकत नगुरे गल जम फासा ही मनमुख आवै मनमुख जावै मनमुख फिर चोटा खावै जितने नरक से मनमुख भोगै गुरमुख लेप ना मासा ही गुरमुख सोए जे हर जियो पाया तिस कौन मिटावै जे प्रभ पहराया सदा आनंद करे आनंदी जिस सिर पाओ पया गल खासा ही हौ बलिहारी सतगुर पूरे शरण के दाते बचन के सूरे ऐसा प्रभ मिलिया सुखदाता विचरना कत ही जासा ही गुण निदान किश कीम ना पाई कट कट पूर रहो सब ठाई नानक शरण दीन दुख भंजन हौ रेण तेरे जो दासा ही मारू सोलहे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद करे आनंद आनंदी मेरा घट घट पूरन सिर सिर नबेरा सिर साहा कै सच्चा साहिब अवर नाही को दूजा ही हर कवंत आनंत दयाला प्रगट रहो प्रभ सर्ब उजाला रूप करे कर देखे बिगसै आपे ही आप पूजा ही आपे कुदरत करे विचारा आपे ही सच करे पसारा आपे खेल खलावै दिन राती आपे सुन सुन पीजा ही साचा तखत सच्ची पातशाही सच खजीना साचा साही आपे सच धार्यो सब साचा सच्ची सच वरती जाही सच तप

है वड राजा, हुक्म सच्ची कह पूरे काजा, अंतर बाहर सब किस जाने, आपे ही आप पति जाहे।

सहज घर तेरा, हमें तेरी दृष्टि जाहे, तेरी दात तुझै ते होए, देह दान सबसे जंत लोए, टूट न आवे पूर पंडारे, तृप्त रहे आगी जाहे, जाच है सिद्ध साधक बनवासी, जाच है जति सती सुखवासी, एक दातार सगल है जाचिक, देह दान सृष्टि जाहे, करह भगत अर रंग अपारा, किन मैं थापयो थापनहारा, भारू तोल बेअंत स्वामी, हुक्म मन भगती जाहे, जिस देह दर्स सोई तुद जाने, ओह गुर कै शब्द सदा रंग माने, चतुर स्वरूप सियाणा सोई, जो मन तेरे पावी जाहे, जिस चीत आवह सोवे परवाह, जिस चीत आवह सो साचा साहा, जिस चीत आवह तिस पौ केहा, अवर कहां किस की जाहे, तृष्णा बूझी अंतर ठंडा, गुरपूरे लै टूटा गंडा, सुरत शब्द हृदय अंतर जागी, हमयो चोल चोल पी जाहे, मरे नाही सद सद ही जीवे, अमर भया बनासी थीवे, ना को आवे ना को जावे, गुर दूर किया परमी जाहे, पूरे गुर की पूरी बाणी, पूरे लागा पूरे माहि समाणी, चढ़े सवाया नित नित रंगा, कटे नाही तोली जाहे, बारह कंचन शुद्ध कराया, नदर सराफ बन्नी सचड़ाया, परख खजाना पाया सराफी।

महा सुख पाया देख दर्शन एहो मन पी जाहे मारू महला पंजवा सोले एक ओंकार।

खट कर्मा गुर पवित्र अस्थान नाही। गुर सिमरत सब किल विख नास है, गुर सिमरत जम संग ना फस है। गुर सिमरत मन निर्मल होवे, गुर काटे अपमान नाही। गुर का सेवक नरक ना जाई, गुर का सेवक पार ब्रह्म त्याई। गुर का सेवक साध संग पाई, गुर करता नित जी दानाई। गुरुद्वार हर कीर्तन सुनिए, सतगुर भेट हर जस मुख भनिए। कल कलेश मटाए सतगुर, हर दरगाह देवे मानाई। अगम अगोचर गुरु दिखाया, भूला मार्ग सतगुर पाया। गुर सेवक को बिघन न भगती, हर पूर दरड़ाया ज्ञान नाही। गुर दृष्टाया सबनी ठाई, जल थल पूर रहया गोसाई। ऊंच ऊन सब एक समाना, मन लागा सहज ध्यान नाही। गुर मिले सब तृष्ण बुझाई, गुर मिले नह जो है माई। सत संतोख दिया गुर पूरे, नाम अमृत पी पानाही। गुर की बाणी सब माहे समाणी, आप सुनी तै आप बखाणी। जिन जिन जपी तेई सब निस्तरे, तिन पाया निचल थानाही। सतगुर की महिमा सतगुर जाने, जो किछ करे सो आपन पाणे। साधु तूर जाचह जन तेरे, नानक सद कुर्बानाई। मारू सोले महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आद निरंजन प्रभ निरंकारा, सब मह वरतै आप नरारा। वर्ण जात चिन्ह नहीं कोई, सब हुक्मे सृष्ट उपाएंदा। लख चौरासी जोन सबाई, मानस कहो प्रभ दी वड्याई। इस पौड़ी ते जो नर चूकै, सो आए जाए दुख पाएंदा। कीता होवै तिस क्या कहियै, गुरमुख नाम पदार्थ लहियै। जिस आप भुलाए सोई भूलै, सो बूझै जिसह बुझाएंदा। हरख सोग का नगर एहो किया, से उभरे जो सतगुर सरनिया। त्रिहां गुणा ते रह निरारा, सो गुरु

प्रभु भी परवाह। काट सिलक जिस मार्ग पाई, सो विच संगत वासा पाईंदा। हुक्म बूझै सो सेवक कहियै, बुरा भला दुइ समसर सहियै। हउ मैं जाए ता एको बूझै, सो गुरमुख सहज समाईंदा। हर के भगत सदा सुखवासी, बाल सुपाए अतीत उदासी। अनक रंग करह बहु भांति, ज्यो पिता पूत लडाईंदा। अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, ता मिलिया जा ले मलाई। गुरमुख प्रगट भया तिन जन को, जिन तुर मस्तक लेख लखाईंदा। तू आपे करता कारण करना, सृष्ट उपाय धरी सब धरना। जन नानक शरण पया हर द्वारे, हर पावे लाज।

है स्वामी तुम मना। मारू महला पंजवा, प्रभ समरथ सर्व सुख दाना, सिमरो नाम हो मेरवाना। हर दाता जी जंत पेखारी, जन बांचै जा चंगना। मांगो जन तूर परम गत पावो, जन्म जन्म की मैल मिटावो। दीर्घ रोग मिटह हर औखद,

चराव है बानना, आप उपाव है आप खपाव है, तुझ लेप नहीं एक तिलरंगा, एक जी ही गुण कमन बखान, सहस फनी सेख अंत न जान, नवतन नाम जपै दिन राती, एक गुण नाही प्रभ कह संगा, ऊट गही जगत पित सरनाया, पै भयानक जमदूत दुतर है माया, हो कृपाल इच्छा कर राख हो, साध संतन कह संग संग।

परम पद पावो जिस प्राप्त सो पावेगा जिनको कृपा करी सुख दाती तिन साधु चरण लै हृदय पराती सगल नाम निधान तिन पाया अनहद शब्द मन वाजंगा कीर्तम नाम कथे तेरे जिहवा सत नाम तेरा परा पूर्वला कहो नानक भगत पये सरनाई देहो दर्श मन रंग लगा तेरी गत मित तू है जान है तू आपे कथ है तै आप बखान है नानक दास दासन को करियो हर भाव है दासा राख संगा मारू महला पंजवा अल्लाह अगम खुदाई बंदे छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे हुए पै खाक फकीर मुसाफर एहो दरवेश कबूल दरा सच निवाज यकीन मसल्ला मनसा बार निवार हुआसा देह मसीत मन मौलाना कलम खदाई पाक खरा सरासरयत लेख मावहु तरीकत तर्क खोज टलावहु मारफत मन मारहु अबदाला मिलहु हकीकत जित फिर न मरा करान कतेब दिल माहे कमाही दस औरात रखो बदराही पंच मर्द सिदकले बंद हो खैर सबूरी कबूल परा मक्का मेहर रोजा पै खाका पिसत पीर लफज कमाए अंदाजा पूर नूर मुस्क खुदाया बंदगी अल्लह आला हुजरा सच कमावे सोई काजी जो दिल सोदे सोई हाजी सो मुल्ला मलऊन निवारे सो दरवेश जिस सिफत धरा सबे वक्त सबे कर वेला खालक याद दिले महमौला तस्बी याद करहु दस मर्दन सुन्नत सील बंधान बरा दिल मह जानहु सब फिलहाला खिलखाना बिरादर हमू जंजाला मीर मलक उमरे फानाया एक मुकाम खुदाए दरा अवल सिफत दूजी साबूरी तीजै हलेमी चौथै खैरी पंजवै पंजे इकत मकामे एह पांज वक्त तेरे अपर परा सगली जान करो मौदीफा बद अमल छोड़ करो हाथ पूजा खुदाए एक बुझ देव हो बांगा बुरगु बर खुरदार खरा हक हलाल बखोर हो खाना गिल करे आओ तो वो मैं लाना पीर पछाण पिस्ती सोई अजराइल ना दोज ठरा काया किरदार औरत यकीना रंग तमाशे मान हकीना नपाक पाक कर हदूर हदीसा साबत सूरत दस्तार सिरा मुसलमान मोम दिल होवे अंतर की मल दिल ते धोवे दुनिया रंग ना आवे नेड़े ज्यों कुसुम पाट घ्यो पाक हरा जा को मेहर मेहर मेहरवाना सोई मर्द मर्द मर्दाना सोई सेख मसाय कहाजी सो बंदा जिस नजर नरा कुदरत कादर करन करीमा सिफत मोहब्बत अथाह रहीमा हक हुकम सच खुदाया बुझ नानक बंद खलास तरा मारू महला पंजवा पार ब्रह्म सब ऊच बराजी आपे थापे उथापे साजे प्रब की शरण गहत सुख पाई है किस भौ न व्यापै बालका गर्भ अगन मह जिन्ह उभारिया रक्त किरम मह नहीं संघारिया अपना सिमरन दे प्रतपालिया ओहो सगल कटा का मालका चरण कमल सरण आई आया साध संग है हर जस गाया जन्म मरण सब दुख नवारे जप हर हर भो नहीं काल का समरथ अकथ अगोचर देवा जी जंत सब तां की सेवा अंडज जेरज सेतज उत्पुज बहु परकारी पालका तिसह प्राप्त हो।

आदि अंत मद प्रभ सोई, आपे करता करे सो होई। ब्रह्म पो मिटिया साध संगते, दालत ना कोई काल का। उत्तम बाणी गाओ गोपाला, साध संगत की मंगो होर वाला। बासन मेट न बासन होई है, कल मल सगले जाल का। संता की एह रीत नराली, पार ब्रह्म कर देख नाली। सास सास आराधन हर हर, क्यों सिमरत की जय आल का। जह देखा तह अंतर जामी, निमख न विसरहो प्रभ मेरे स्वामी। सिमर सिमर जीव है तेरे दासा, बन जाले पूर्ण थाल का। तत्ती वाओ ना ताको लागे, सिमरत नाम अन दिन जागे। आनंद बनोद करे हर सिमरन, तिस माया संग ना ताल का। रोग सोग दुख तिस नाही, साध संग हर कीर्तन गाही। अपना नाम देहे प्रभ प्रीतम, सुन बेनंती खाल का। नाम रतन तेरा है प्यारी, रंग रते तेरा।

जिन विसरह नाही काहू बेरा, तिन कै संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अहंकार जाए, किस जन को उपदेश निर्माल का, तुद विण नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभ के पैरा, हौ बलिहारी सतगुर पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रभ बिसरै नाही, आठ पहर हर हर कौ त्याई, नानक संत तेरै रंग राती, तू समरथ बडाल का, मारू महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, चरण कमल हिरदय नित तारी, गुरपूरा खिन खिन नमचकारी, तन मन अर्प धरी सब आगे, जग मह नाम सुहावना, सो ठाकर क्यों मनहु वसारी, जियो पिंड दे साज सवारी, सास ग्रास संभाले करता, कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पहर हर रख मन माही, साध संग पाजे चुत स्वामी, दरगाह सोभा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निध, सर्व कल्याण जे मन मह चाह, मिल साधु स्वामी रावणा, सास्त सिमरत बेद बखानी, जन्म पदार्थ जीत पराणी, काम क्रोध निंदा पर हरिय, हर रसना नानक गावना, जिस रूप ना रेखिया कुन नहीं जाती, पूर्ण पूर रहे दिन राती, जो जो जपै सोई बड़ भागी, बहुड़ना जोनी पावना, जिसनों बिसरै पुरख बधाता, जलता फिरै रह नित ताता, किरत कण को रखै ना कोई, नरक कोर मह पावना, जियो प्राण तन धन जिन साजिया, मात गर्भ मह राख निवाजिया, किस स्यो प्रीत छाड़िया नराता, काहू सिरै ना लावना, तार अनग्रहो स्वामी मेरे, कट कट वस है सबन कै नेरे, हाथ हमारे कछु है नाही, जिस जनाए है किसे जनावना, जा कै मस्तक तुर लिख पाया, किस ही पुरख ना व्यापे माया, नानक दास सदा सरनाई, दूसर लवे ना लावना, आग्या दुख सुख सब कीने, अमृत नाम बिरले ही कीने, ताकी कीमत कहन ना जाई, जात कत ओही समावना, सोई भगत सोई वडदाता, सोई पूर्ण पुरख बधाता, बाल सहाई सोई तेरा, जो तेरे मन पावना, मृत दुख सुख लिख पाए, तिल नहीं बद है कट है ना कटाए, सोई होए जे करते पावे, कह कह आप मन्यावना, अंध कूप ते से ही काडे, जन्म जन्म के टूटे गांडे, कृपा तार रखे कर अपने, मिल साधु गोविंद त्यावना।

एक बांधे एक ढीलिया एक सुखिए हर प्रीता नानक सच्चा मन ले सच करनी सच रीत पौड़ी गुरते ज्ञान पाया अत खड़ग करारा दूजा भ्रम गढ़ कटिया मोह लोभ अहंकारा हर का नाम मन वसिया गुर शब्द विचारा सच संजम मत उत्तम हर लगा प्यारा सब सचो सच वर्तदा सच सिरजनहारा सलोक महला तीजा केदारा रागा विच जानिए पाई शब्दे करे प्यार सत संगत स्यों मिल दूर है सच्चे तरे प्यार विच्चों मल कटे अपनी कुल्ला का करे उदार गुणा की रास संग्रह अवगण कड्डे वडार नानक मिलिया सो

सच दृढ़ा ए सच दृढ़ सच्चा ओह शब्द दे हिरदय जिस दै सच है तन मन भी सच्चा होए नानक सच्चा हुक्म मन्ने है सच्ची वडियाई दे सच्चे माहे समावसी जिसनो नदर करे पौड़ी सूरे एह ना आखी है अहंकार मर है दुख पाव है अंधे आप ना पछाणनी दूजे पच जावे है हत क्रोध स्यों लूज दे

सेव गति गए। मर जन्म है फिर आवे है, सलोक महला तीजा। कागो हुए न उजला, लोहे नाव ना पार। किरम पदार्थ मन ले, धन सवार नहार। हुक्म पछाण उजला, सिर काष्ट लोहा पार। कृष्णा छोड़े भय वसे, नानक करनी सार। महला तीजा, मारू मारन जो गए, मार ना सकह गवार। नानक जे उह मारी है, गुर शब्दी विचार। इहो मन मारिया ना मरे, जे लोचे सब कोई। नानक मन ही कहो मन मारसी, जे सतगुर भेटै सोई। पौड़ी दोए तरफा उपायन, विच सख्त शिव वासा। शक्ति किने ना पायो, फिर जन्म बनासा। गुर सेवे शांत पाई, जप सास ग्रासा। सिमरत सास्त सोध देख, उत्तम हरदासा। नानक नाम बिना को थिर नहीं, नामे बल जासा। सलोक महला तीजा, हुआ पंडित ज्योत की। वेद पढ़ा मुख चार, नव खन मदे पूजिया। अपने चज विचार, मत सच्चा अखर भुल जाए।

देवड़े आईया कहो नानक सच्चा सोए पौड़ी। कंटक काल एक है होर कंटक ना सूजै, अफरयो जग मह वर्तदा पापी स्यों लूजै। गुर शब्दी हर भेदी है हर जप हर बूजै, सो हर सरनाई छुट्टी है जो मन स्यों जूजै। मन विचार हर जप करी हर दरगाह सीजै। सलोक महला पहला हुक्म रजाई साखती, दरगाह सच कबूल साहिब लेखा मंगसी। दुनिया देख ना भूल दिल दरवानी जो करे दरवेसी दिल रास। इश्क महब्बत नानका लेखा करते पास महला पहला, अलगो जोए मधुकड़ो सारंग पान सबाई। हीरे हीरा बेदिया नानक कंठ सुपाए पौड़ी। मनमुख काल वे आपदा मोहे माया लागे, खिन मह मार पछाड़ सी पाए दूजे खागे। फिर वेला हाथ न आवई जम का डंड लागे, तिन जम डंड न लगई जो हर लिव जागे। सब तेरी तुद छामणी सब तुदे लागे। सलोक महला पहला सर्बे जोए अगछमी, दुख कनेरो आथ कालर लादस सर लांगनो। लाभ ना पूंजी सात महला पहला, पूंजी साचो नाम तू अखुटो दर्ब अपार। नानक वखर निर्मलो धन साहा वापार। महला पहला पूरब प्रीत प्राण ले मोटो ठाकुर मान। माथे उभे जम मारसी नानक मेलण नाम पौड़ी। आपे पिंड सवारियों विच नव निद नाम, एक आपे परम पलायन तिन निफल काम। इकनी गुरमुख बुझिया हरे आत्म राम, इकनी सुनकै मन्या हरे उत्तम काम। अंतर हर रंग उपजिया गाया हर गुण नाम। सलोक महला पहला पोल तन पै मन वसै, हेकै पद रहीड अत डाहपन दुख कणु तीने थाम परीड। महला पहला मांदल भेद से बाजणु कणु तड़िया जोए, नानक नाम संभाल तू बीजो अवर ना कोई। महला पहला सागर गुणी अथाह किन हथाला देखिए, वड्डा वे परवाह सतगुर मिले ता पार पवा। मज भर दुख बदुख नानक सच्चे नाम बिन किसे न लथी भुख पौड़ी। जिन्नी अंदर पालिया गुर शब्द सुहावे, जो इच्छन सो पाए दे हर नाम ते आवे। जिसनो कृपा करे तिस गुर मिले सो हर गुण गावे। धर्म राय तिनका मित है जम मग ना पावे। हर नाम ते आवे दिन सरात हर नाम समावे। सलोक महला पहला सुनिए एक बखानिए, सुरग मृत पयाल हुक्म न जाई मिटिया। जो लिखिया सो नाल कौन मुआ कौन मारसी, कौन आवे कौन जाए। कौन रहसी नानका किसकी सुरत समाए। महला पहला हों मुआ मैं मारिया पौन वह दरियाओ, तृष्णा थकी नानका जा मन रत्ता नाए।

अंदर मुश्क चुकोलिया कीमत कही ना जाय। पौड़ी इस जुग में नाम निदान है नामो नाल चल है एहो अखुट कदे नान खुटई खाए खर्चियो पल्ल हर जन नेड़ ना आवई जम कंकर जम कल से साहा सच्चे बन जा रहा जिन हर अन पल्ल हर कृपा ते हर पाई है जा आप हर कल। सलोक महला तीजा मनमुख व्यापार है सार ना जाननी बिख विहाज है बिख संग्रह बिख स्यों तर है प्यार बाहर हो पंडित सदाई दे मनहो मूर्ख गावार हर स्यों चेतना लाइनी वादी तरन प्यार वादा किया करन कहानियां कूड़ बोल कर है आहार जग मह राम नाम हर निर्मला होर मैला सब आकार नानक नाम ना चेतनी होए मैले मरह गवार। महला तीजा दुख लगा बिन सेवे है हुक्म मन्ने दुख जाए आपे दाता सुख है दा आपे दे सजाए नानक एवै जानिए सब किश तिसै रजाए। पौड़ी हर नाम बिना जगत है निर्धन बिन नामै तृप्त नाही दूजे परम पलाया हौ मैं दुख पाही बिन कर्मा किशु ना पाईए जे बहुत लुचाही आवै जाए जम्मै मरै गुर शब्द छुटाही आप करै किसे आखिए दूजा को नाही। श्लोक महला तीजा इस जग मह संती धन खटिया जिन्ना सतगुर मिलया प्रभयाई सतगुर सच दृढ़ाया इस धन की कीमत कही ना जाय इत धन पाया भुख लथी सुख वस्या मन आय जिन्ना को तुर लिखिया तिन्नी पाया आय मनमुख जगत निर्धन है माया नो बिल लाय अंदिन फिरदा सदा रह भूख ना कदे जाय शांत ना कदे आवई नह सुख वसै मन आय सदा चिंत चित वधा रह सहसा कदे ना जाय नानक बिन सतगुर मत पवी सतगुर नो मिलै ता शब्द कमाय सदा सदा सुख मह रह सच्चे माहे समाय। महला तीजा जिन उपाई मेदनी सोई सार करे एको सिमरहु पाई रहो किस बिन अवर ना कोई खाना शब्द चंगियाईया जित खादै सदा तृप्त होए पैनन सिफत सुनाए है सदा सदा ओह ऊजला मैला कदे ना होए सहजे सच धन खटिया थोड़ा कदे ना होए देही नो शब्द शिंगार है जित सदा सदा सुख होए नानक गुरमुख बुझिए जिसनो आप बखाले सोए। पौड़ी अंतर जप तप संजमो गुर शब्दी जापै हर हर नाम त्याईए हौ मैं अज्ञान गुआपै अंदर अमृत भरपूर है चाखिया साध जापै जिन चाखिया से निरपो भए से हर रस त्रापै हर कृपा तार पी आया फिर काल ना व्यापै। श्लोक महला तीजा लोक अवगणा की बन्नै गंठड़ी गुण ना व्याजै कोई गुण का गाहक नानका विरला कोई होए गुर प्रसादी गुण पाइन जिसनो नदर करे। महला तीजा गुण अवगुण समान है जे आप कीते करतार नानक हुक्म मन्या सुख पाईऐ गुर शब्दी विचार। पौड़ी अंदर राजा तख्त है आपे करे नियाउ गुर शब्दी दर जानिए अंदर महल असराउ खरे परख खजाने पाइन खोटिया नाही थाउ सब सचो सच वर्तदा सदा सच नियाउ अमृत का रस आया
मन वसिया ना हूं सलोक महला पहला हौ मैं करी ता तू नाही तू हो वह हौ नाही बूझो ज्ञानी बूझना ए अकथ कथा मन माहे बिन गुर तत न पाईए अलख वसै सब माहे सतगुर मिले ता जानिए जा शब्द वसै मन माहे आप गया भ्रम पहो गया जन्म मरण दुख जाहे गुरमत अलख लखाईए उत्तम मत तराए नानक सोहंग हंसा जप जप हो त्रे भवन तिसै समाहे महला तीजा मन माणक जिन परखिया गुर शब्दी विचार से जन बिरले जानी है कल युग विच संसार आपै नो आप मिल रहिया हौ मैं दुबदा मार नानक नाम रते दुत्तर तरे भौजल बिकम संसार पौड़ी मनमुखे अंदर ना पालनी मुठे अहमते चारे कुंडा भव थके अंदर तिख तत्ते सिमरत सास्त ना सोधनी मनमुख विगुते बिन गुर किनै ना पायो हर नाम हर सत्ते तत् ज्ञान विचारिया हर जप हर गते सलोक महला दूजा आपे जाने करे आप आपे आने रास किसे अग्गे नानका खले की कै अरदास महला पहला जिन किया तिन देखिया आपे जाने सोई किसनों कहिए नानका जा घर वरते सब कोए पौड़ी सबे थोक वसार इको मित कर मन तन होए निहाल पापा दह हर आवन जाना चुके जन्म ना जाहे मर सच नाम आधार सोग ना मोहे जर नानक नाम निदान मन मह सांझ धार सलोक महला पंजवां माया मनो ना विसर मांगै दम्मा दम सो प्रभ चेतना आवई नानक नहीं करम महला पंजवा माया साथ ना चलै क्या लपटावह अंध गुर के चरण त्याए तू टूटह माया बंद पौड़ी भाणे हुक्म मनायन भाणे सुख पाया भाणे सतगुर मेलियन भाणे सच त्याया भाणे जेवड़ होर दात नाही सच आख सुनाया जिनको पूर्व लिखिया तिन सच कमाया नानक तिस शरणागती जिन जग ते उपाया सलोक महला तीजा जिनको अंदर ज्ञान नहीं पै की नाही बिंद नानक मुया का क्या मारना जे आप मारे गोविंद महला तीजा मन की पत्री वाचनी सुखी हूं सुख सार सो ब्राह्मण भला आखिए जे बूझ ब्रह्म विचार हर सलाहे हर पढ़े गुर कै शब्द विचार आया ओ प्रवान है जे कुल का करे उधार अग्गे जात ना पुछिए करनी शब्द है सार होर कूड़ पढ़ना कूड़ कमावना विख्या नाल प्यार अंदर सुख ना होवे मन मुख जन्म खुआर नानक नाम रते से उबरे गुर कै हित अपार पौड़ी आपे कर कर वेखदा आपे सब सच्चा जो हुक्म ना बूझै खसम का सोई नर कच्चा जित पावै तित लाएंदा गुरमुख हर सच्चा सबना का साहिब एक है गुर शब्दी रचा गुरमुख सदा सलाही है सब तिस दे जच्चा ज्यो नानक आप नचाएंदा ते वही को नचा शुद्ध मारू वार महला पंजवा दखणे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तू चौ सज्जन मैंडिया देई से उतार नैण महिंजे तरस दे कद पसी दीदार महला पंजवा
नीहो मिहिंजा तौ नाल ब्या नेह कुड़ावे देख कप्पड़ भोग डरावणे जिचर प्री ना देख महला पंजवा उठी झालू कंतड़े हों पसी तौ दीदार काजल हार तमोल रस बिन पसे हब रस चार पौड़ी तू सच्चा साहिब सच सच सब तारिया गुरमुख की तो थाट सिरज संसारिया हर आग्या होए बेद पाप पुन विचारिया ब्रह्मा बिछन महेश त्रै गुण विस्थारिया नवखंड पृथ्वी साज हर रंग सवारिया वेकी जंत उपाए अंतर कल तारिया हेरा अंत न जाने कोई सच सिरजन हारिया तू जान है सब बेदयाप गुरमुख निस्तारिया दखणे महला पंजवा जे तू मित्र असाडड़ा एक भोरी ना वे छोड़ जियो महिंजा तौ मोहया कद पसी जानी तो हे महला पंजवा दुर्जन तू जल पहाड़ी विछोड़े मर जाहे कंता तू सौ सिजड़ी मैंडा हबो दुख अलाहे महला पंजवा दुर्जन दूजा पाओ है विछोड़ा हम रोग सज्जन सच्चा पातशाह जिस मिल की चै भोग पौड़ी तू अगम दयाल बेअंत तेरी कीमत कह कौन तुद सिरजिया सब संसार तू नायक सगल पौन तेरी कुदरत कोई ना जाने मेरे ठाकुर सगल रौन तुदे अपन कोई ना सकै तू अबनासी जग उधरन तुद थापे चारे जुग तू करता सगल धरन तुदे आवन जाना किया तुद लेप ना लगे त्रिण जिस होवह आप दयाल तिस लावह सतगुर चरण तू होरत अपाए ना लभही अवनासी सृष्ट करन दखणे महला पंजवा जे तू बतह अंगणे हब तरत सुहावी होए हिकस कंतै बाहरी मैंडी वात ना पुछे कोई महला पंजवा हबे टोल सहावणे सहो बैठा अंगण मल पही ना वंजे बिरथड़ा जो घर आवे चल महला पंजवा सेज वछाई कंत को किया अब शिंगार इत्ती मंज ना समावई जे गल पहरा हार पौड़ी तू पार ब्रह्म परमेश्वर जोन ना आवही तू हुक्मी साजह सृष्ट साज समावही तेरा रूप ना जाई लखिया क्यों तुझह त्यावही तू सब मह वरत है आप कुदरत देखावही तेरी भगत भरे भंडार तोट ना आवही एह रतन जवेहर लाल कीम ना पावही जिस होवह आप दयाल तिस सतगुर सेवा लावही किस कदे ना आवे तोट जो हर गुण गावही दखणे महला पंजवा जामु पसी हठ मैं प्री महिंजै नाल हब्बे दुख उलाहयम नानक नदर निहाल महला पंजवा नानक बैठा पखे वाऊ लम्मे सेवै दर खड़ा प्रिये तू जान महिंजा साऊ जोई साई मुह खड़ा महला पंजवा क्या गलायो भूष पर वेल ना जोहे कंत तू नानक फुला संधी वाड़ खिड़िया हब संसार ज्यो पौड़ी सुगण सुजान स्वरूप तू सब मह वरतंता तू आपे ठाकुर सेवको आपे पूजनता दाना बिना आप तू आपे सतवंता जति सती प्रभ निर्मला मेरे हर भगवंता सब ब्रह्म पसार पसारे हो आपे खेलंता एहो आवा गौण रिचायो कर चोज देखंता तिस बहुड़ गर्भ ना पावही जिस देव है गुरमंता
जो आप चलावे है त्यों चल दे, किस वस ना जनता दखणे महला पंजवां, कुरिए कुरिए वैद्या तल गाला महरीर, वेखे छिटड़ थीम दो जाम खिसन दो पेर, महला पंजवां, सच जाने कच वैद्यो तू आगू आगे सलवे, नानक आत सड़ी मांज नैनू ब्या ढल पबण ज्यो जुम्यो, महला पंजवां, पोरे पोरे रूहड़े सिवेंदे आलक, मुद्दत पई चराणिया फिर कड्डू आवे रुत, पौड़ी, तुद रूप ना रेखिया जात तू वरना बाहरा, ये मानस जान है दूर तू वरत है जाहरा, तू सब कट भोग है आप तुद लेप ना लाहरा, तू पुरख आनंदी अनंत सब जोत समाहरा, तू सब देवा महदेव पदाते नरहरा, क्या अरादे जिहवा एक तू अबनासी अपर परा, जिस मेल है सतगुरे आप तिसके सब कुल तरा, सेवक सब कर दे सेव दर नानक जन तेरा, दखणे महला पंजवां, गह डरड़ा तृण छाया गाफल जल्यो पाहे, जिन्ना भाग मथाहड़ै तिन उस्ताद पनाहे, महला पंजवां, नानक पीठा पक्का साजिया धरिया आण मौजूद, बाजो सतगुरे अपने बैठा झाक दरूद, महला पंजवां, नानक पुसरियां पकाइया पाइया थाले माहे, जिन्नी गुरु मनाया रज रज से खाहे, पौड़ी, तुद जग मह खेल रचाया विच हों मैं पाइया, एक मंदर पंच चोर है नित करह बुरियाइया, दस नारी एक पुरख कर दसे साध लुभाइया, एन माया मोहनी मोहिया नित फिरह परमाइया, हाथा दोवै कीतियो शिव सकत वरताइया, शिव अग्गै सकति हारिया केवै हर पाइया, एक विचों ही तुद रखिया जो सतसंग मलाइया, जल विचों बिंब उठालियो जल माहे समाइया, दखणे महला पंजवां, अगाहा कूतरांग पिछा फेरना मोहडड़ा, नानक सिज अवेहा वार बहुड़ ना होई जन्मड़ा, महला पंजवां, सज्जन मैंदा चाइया हब कही दा मित, हबे जानने अपना कहीं ना खाहे चित, महला पंजवां, गुजड़ा लदम लाल मथे ही प्रगट थिया, सोई सहावा खान जिथे प्रिये नानक जी तू उठिया, पौड़ी, जा तू मेरे वल है ता क्या मुह छंदा, तुद सब किछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा, लक्ष्मी टोट ना आवई खाए खर्च रहंदा, लख चौरासी मेदनी सब सेव करंदा, ए वैरी मित्र सब कीतिया नह मंगे मंदा, लेखा कोई ना पुछे जा हर बख्शंदा, आनंद भया सुख पाया मिल गुर गोविंदा, सबे काज सवारे जा तुद पावंदा, दखणे महला पंजवां, देखण को मुस्ताक मुख कजिया तौ तनी, फिरदा कितै हाल जा डिठम ता मन त्रापिया, महला पंजवां, दुखिया दर्द घणे वेदन जाने तू तनी, जाना लख पवे इरी दिखंदो ता जीवसा, महला पंजवां, कहंदी जाए करार वैण वहंदे मैं डिठिया, से ही रहे अमान जिन्ना सतगुरु भेटिया, पौड़ी, जिस जन तेरी भुख है तिस दुख ना व्यापै, जिन जन गुरमुख बुझिया सो चहो कुंडी जापै, जो नर उसकी सरनी परै तिस कंबह पापै, जन्म जन्म की मल उतरै गुर धूड़ी नापै, जिन हर पाणा मन्या
तिस सोग ना संतापे, हर जियो तू सबना का मित है, सब जान है आपे, ऐसी शोभा जने की जे वडहर प्रतापे, सब अंतर जन वरताया हर जन ते जापे, दखणे महला पंजवा जिन्ना पिछे हो गई से मैं पिछे पी रव्यास, जिन्ना की मैं आसड़ी

पौड़ी मन लोचै हर मिलन को क्यों दर्शन पाइया मैं लख विड़ते साहेबा जे बिंद बुलाइया मैं चारे कुंडा पालिया तुद जेवड़ ना साइया मैं दसे हो मार्ग संत हो क्यों प्रभु मिलाइया मन अर्पे हो हौ मैं तज हो इत पंत जलाइया नित सेवे हो साहेब अपना सतसंग मलाइया सबे आसा पूरिया गुर महल बुलाइया तुद जेवड़ होर ना सुजई मेरे मित्र गुसाइया रखने महला पंजवा मूथिया तख प्री महिंजे पातशाह पाव मलावे कोल कमल जिवै बिगसाम दो महला पंजवा प्रिया संदड़ी भुख।

कमावना, किया तुर मौले तुदहो बार किस नहीं, नानक गुण बोले राग मारू बाणी कबीर जीओ की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पंडिया कवन कमत तुम लागे, बूढ़ हो गए परवार सकल सिंह, राम ना जपो अपागे रहाओ, वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खर चंदन जस पारा, राम नाम की गत नहीं जानी, कैसे उतरस पारा, जी बदहो सो धर्म कर थापो, अधर्म कहो कत पाई, आपस को मुनवर कर थापो, का को कहो कसाई, मन के अंधे आप न बूझो, काहे बुझावो पाई, माया कारण विद्या बेचो, जन्म अभिथा जाई। नारद बचन व्यास कहत है, सुख को पूछो जाई, कह कबीर रामे राम छूटो, नाहे ता बूढ़े पहाई, बनह बसे क्यों पाई है, जौलो मनो ना तजह बेकार, जेहे घर बन समसर किया, ते पूरे संसार, सार सुख पाई है रामा, रंग रवो आत्मे राम रहाओ, जटा भस्म लेपन किया, कहां गुफा महबास, मन जीते जग जीतिया, जाते बिखिया ते हुए उदास, अंजन दे सबै कोई, टुक चाहन माए बिडान, ज्ञान अंजन जेह पाया, ते लोइन परवान, कह कबीर अब जानिया, गुर ज्ञान दिया समझाए, अंतरगत हर पेटिया, अब मेरा मन कतहु ना जाए, रिद सिद जा को खुरी, तब काहू स्यो क्या काज, तेरे कहने की गत क्या कहो, मैं बोलत ही बदलाज, राम जेह पाया राम, ते पवह न बारे बार रहाओ, झूठा जग डहके कना, दिन दोए बर्तन की आस, राम उदक जेह जन पिया, तेह बहुर न पई प्यास, गुर प्रसाद जेह बूझिया, आसा ते भया निरास, सब सच नदरी आया, जो आत्म भया उदास, राम नाम रस चाखिया, हर नामा हर तार, कहो कबीर कंचन भया, भ्रम गया समुद्र पार, उदक समुंद सलल की साखिया, नदी तरंग समावहंगी, सुन है सुन मिलिया समदर्सी, पवन रूप होए जावहंगे, बहुर हम काहे आवहंगे, आवन जाना हुक्म तिसै का, हुक्मे बुझ समावहंगे, रहाउ जब चूके पंच धात की रचना, ऐसे परम चुकावहंगे, दर्शन छोड़ पये समदर्सी, एको नाम त्यावहंगे, जित हम लाए तित ही लागे, कैसे कर्म कमावहंगे, हर जी कृपा करे जो अपनी, तौ गुर के शब्द समावहंगे, जीवत मरहु मरहु पुन जीवहु, पुनरप जन्म ना होई, कहो कबीर जो नाम समाने, सुन रहया लिव सोई, जो तुम मोह को दूर करत हो, तौ तुम मुक्त बतावहु, एक अनेक होए रहयो सगल में, अब कैसे परमावहु, राम मुख को तार कहां ले जई है, सुदो मुक्त कहां देओ कैसी, कर प्रसाद मोहे पाई है रहाओ, तारन तरन तबे लग कही है, जब लग तत ना जानिया, अब तो बिमल पई घट ही मह, कह कबीर मन मानिया, जिनगढ़ कोट किए कंचन के, छोड़ गया सो रावन, काहे कीजत है मन पावन, जब जम आए केस ते पकरे, तह हर को नाम छडावन रहाओ, काल अकाल खसम का कीना, एहो परपंच बधावन, कह कबीर ते अंते मुकते, जिन हृदय राम रसायन, देही गावा जियो तर महतो, बसह पंच किरसाना, नैनू नकटू सर्वनू रसपत, इंद्री कहया ना माना, बाबा
अब ना बसों ए गांव, करी करी का लेखा मांगे, कायत के तू नाव रहाओ। धर्म राय जब लेखा मांगे, बाकी निकसी भारी, पांच किरसानवा भाग गए, लह बांधे हो जी हो दरबारी। कह कबीर सुनो रे संत हो, खेत ही करो निबेरा, अब की बार बख्श बंदे कहो।

साध संगत कबहू नहीं कीनी, रचियो तंदै झूठ सवान सूकर बायस जिवे भटकत चालियो ऊठ। आपस को दीर्घ कर जाने औरन को लग मात, मनसा बाचा कर्म ना मैं देखे दोजक जात। कामी क्रोधी चातुरी

मूर्ख मुग्ध ग्वार, राम नाम जान्यो नहीं कैसे उतरस पार। राग मारू बाणी जय देओ जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चंद सत भेदया, नाद सत पूरिया, सूर सत खोड़ सा दत किया। अबल बल तोड़िया, अचल चल थपिया, अघड़ घड़िया तहां अपियो पिया। मन आद गुण आद वखाणिया, तेरी दुबदा दृष्ट समानिया। रहाओ अर्ध को अर्धया, सर्द को सर्दया, सलल को सलल सम्मान आया। बदत जय देव को रम्या, ब्रह्म निर्वाण लिवलीन पाया। कबीर मारू राम।

दास जीओ की एक ओंकार सतगुर प्रसाद ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे गरीब नवाज गुसैया मेरा माते शतर तरे रहाऊ जाति शोत जगत को लागे ता पर तू ही तरे नीचे है ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते ना डरे नाम देव कबीर तलोचन सद

सुख सागर सुर तर चिंता मन काम धीन बस जा कीरी चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध नव निध कर तल कै हर हर हरना जपस रसना अवर सब शाद बचन रचना रहाव नाना ख्यान प्राण बेद बिद चौतीस अक्षर माही व्यास बी चार कहो परमार्थ राम नाम सर नाही सहज समाद अपाद रहत हुए बड़े भाग लिव लागी कह रविदास उदास दास मत जन्म मरन पै भागी तुखारी संत महला पहला बारह माहा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तू सुन किरत करमा पुरब कमाया सिर सिर सुख सहमा देह सो तू भला हर रचना तेरी क्या गत मेरी हर बिन घड़ी ना।

तू सुन हर रस भिन्ने प्रीत में अपने मन तन रवतर वन्ने घड़ी ना बिसरे क्यों घड़ी बिसारी हों बलिहारी हों जीवा गुणगाई ना कोई मेरा हों किस केरा हर बिन रहन ना जाए ओट गही हर चरण निवासी भये पवित्र शरीरा नानक दृष्ट धीरग सुख पावे गुर शब्दी मन तीरा बरसे अमृत तार बूंद सुहावणी साजन मिले सहज सुभाई हर स्यों प्रीत बणी हर मंदर आवे जा प्रभ भावे तनी उभी गुण सारी कर कर कंत रवे सुहागण हौ क्यों कंत वसारी उन्नव घन छाए बरस सुभाई मन तन प्रेम सुखावे नानक वरसै अमृत बाणी कर कृपा कर आवे चेत बसंत भला भवर सुहावड़ी बन फूले मंझ भार मैं फिर घर बहुड़ै फिर घर नहीं आवे तन क्यों सुख पावे बिरह विरोध तन सीजै कोकिल अंब सुहावी बोले क्यों दुख अंक सहीजै पवर पवंता फूली डाली क्यों जीवा मर माए नानक चेत सहज सुख पावे जे हर वार कर तन पाए वैसाख भला साखा वीस करी तन देखे हर द्वार आवो दया करी कर आओ प्यारे दुत्तर तारे तुद बिन अड ना मोलो कीमत कौन करे तुद पावा देख दिखावे ढोलो दूर ना जाना अंतर माना हर का महल पछाना नानक वैसाखी प्रभ पावे सुरत शब्द मन माना माह जेठ भला प्रीतम क्यों बिसरे थल तप है सर भार सा तन बिनो करे तन बिनो करेंदी गुण सारेंदी गुण सारी प्रभ पावा साचै महल रह बैरागी आवन देहे ता आवा ने माणी ने ताणी हर बिन क्यों पावे सुख महली नानक जेठ जाने तिस जैसी कर्म मिले गुण गहली असाड़ भला सूरज गगन तपे धरती दुख सहे सुखे अगन पखे अगन रस सुखे मरिये धूखे पीसो कीर्तना हारे रथ फिरे छाया तन ताके तीद लवे मंज बारी अवगण बांध चली दुख आगे सुख तिस साच संभाले नानक जिसनो एहो मन दिया मरण जीवन प्रव नाले सावन सरस मना कण वरस है रूते आई मैं मन तन सहो भावे फिर परदेस सिधाई फिर घर नहीं आवे मरिये हावे दामन चमक डराई सेज अकेली खरी दोहेली मरन पया दुख माए हर बिन नींद भूख कहो कैसी कापड़ तन ना सखावे नानक सा सुहागन कंती फिर कै अंक समावे पादो परम पुली पर जोबन पछताणी जल थल नीर भरे बरस रुते रंग माणी बरसै निसकाली क्यों सुख बाली दादर मोर लवंते प्रियो प्रियो चवै बबीहा बोले पोयंगम फिर डसंते मच्छर डंग शायर भर सपर बिन हर क्यों सुख पाई नानक पूछ चलो गुरे अपने जह प्रभु तह ही जाइए असन आओ पिरा सा तन झूर मुई ता मिलिया प्रभ मेले दूजे पाए खुई झूठ विगुती ता पिर मुती कुकाहा कहा से फुले अगे काम पिछे रुत जाडा देख चलत मन डोले दह दिस साख हरी हरियावल सहज पक्कै सो मीठा नानक असुन मिलो प्यारे सतगुर पए बसीठा कत्तक किरत पया जो प्रभ पाया दीपक सहज बलै त
तत जलाया। दीपक रस तेलो धन पिर मेलो, तन अमा है सरसी अवगुण मारी मरै ना सीजै, गुण मारी ता मरसी नाम भगत दे निज कर बैठे। अजहो तनाड़ी आसा नानक मिलहो, कपट दर खोलहो एक घड़ी खट मासा, मगर माहो भला हर गुण अंक समावे, गुणवंती गुण रवे मैं फिर निश्चल पावे। निश्चल चतुर सुजान बधाता, चंचल जगत सवाया, ज्ञान ध्यान गुण अंक समाणे, प्रभ पाणे ता पाया। गीत नाद कवित कवे सुन, राम नाम दुख भागै, नानक सा तन नाह प्यारी, अब भगती फिर आगै। पोखत खार पड़ै वन तृण रस सुखै, आवत की नाही मन तन वसह मुखे। मन तन रव रहे आ जग जीवन, गुर शब्दी रंग माणी, अंडज जेरज सेतज उत्पुज, कट कट जोत समाणी। दर्शन देहो दया पत दाते, गत पावो मत देहो, नानक रंग रवै रस रसिया, हर सिओ प्रीत स्नेहो। माघ पनीत पई तीरथ अंतर जानिया, साजन सहज मिले गुण गह अंक समानिया। प्रीतम गुण अंके सुन प्रभ बंके, तुद पावा सर नावा, गंग जमन तह बेणी संगम, सात समुंद समावा। पुन दान पूजा परमेश्वर, जुग जुग एको जाता, नानक माघ महारास हर जप, अठ सठ तीरथ नाता। फल गुण मन रहसी प्रेम सुभाया, अनदिन रहस पया आप गुआया, मन मोह चुकाया जा किस फाया, कर कृपा कर आऊ बहुते वेस करी पिर बाजू, महली लहा ना थाऊ। हार डोर रस पाट पटंबर, पिर लोड़ी सिंगारी, नानक मेल लई गुर अपने, घर वर पाया नारी। दे दस महारुति थिती वार भले, घड़ी मूर्त पल साची आए सहज मिले, प्रभ मिले प्यारे कारज सारी। करता सब बिद जाने जिन सिंगारी, तिसह प्यारी मेल भया रंग माने। कर सेज सुहावी जा फिर रावी, गुरमुख मस्तक भागो, नानक ऐन सरावै प्रीतम, हर वार थिर सुहागो। तुखारी महला पहला, पहले पहरे नैन सलोनड़िए,

नानक मूर्ख कबह ना चेतै, क्या सूझै रैन अंधेरिया, दूजा पहर भया जाग अचेती राम, वखर राख मुइये खाजै खेती राम, राखो खेती हर गुर हेती, जागत चोर ना लागै, जम मग ना जावहो ना दुख पावहो, जम का डर पहु भागै, राव सस दीपक गुरमत द्वारै, मन साचा मुख त्यावै, नानक मूर्ख

नानक तीजै त्रे बिद लोका माया मोहे व्यापी चौथा पैर भया दौत बिहागै राम तिन घर राखियड़ा जो अन दिन जागै राम गुरपूछ जागे नाम।

कंपै नैन अंधले तन पसम से नानक दुखिया जोग चारे बिन नाम हर के मन वसे खुली गंठ उठो लिखिया आया राम रस कस सुख ठाके बंद चलाया राम बंद चलाया जा प्रभ पाया ना दिसे ना सुनिए अपन वारी सब सह आवे पक्की खेती लुनिए घड़ी चसे का लेखा लीजे बुरा भला सहो जिया नानक सुर नर शब्द मलाए तिन प्रभ कारण किया तुखारी महला पहला तारा चढ़िया लम्मा क्यों नदर निहालिया राम सेवक पूर करम्मा सतगुर शब्द दिखा लिया राम गुर शब्द दिखा लिया सच संभालिया एहन सदेख बिचारिया।

चूकी अब मानी राम अन दिन भोर भया साच समानी राम साच समानी गुरमुख मन पानी गुरमुख साबत जागे साच नाम अमृत गुर दिया हर चरणी लिव लागे प्रगति जोत जोत मह जाता मनमुख परम पलानी नानक भोर भया मन मानिया।

साची सच मत तेरी साजन देश वदेसी अड़े सनेहड़े देंदी सार संभाले तिन सजना मुंद नैन परेंदी मुंद नैन परेंदी गुण सारेंदी क्यों प्रभ मिला प्यारी मार्ग पंथ ना जानो विखड़ा क्यों पाई है पिर पारी सतगुर शब्दी मिले विशुन्नी तन मन आगे राखे नानक अमृत बिरख महारस फलिया मिल प्रीतम रस चाखे महल बुलाएड़िए बिलम ना कीजे अन दिन रतड़िए सहज मलीजे सुख सहज मलीजे रूस ना कीजे गर्भ निवार समाणी साचे राती मिले मलाई मनमुख आवन जानी जब नाची तब घूंघट कैसा मटकी फोड़।

लाल रंगीले हम लालन के लाले गुर अलख लखाया अवर ना दूजा पाले गुर अलख लखाया जा तिस पाया जा प्रभ कृपा धारी जग जीवन दाता पुरख बधाता सहज मिले बनवारी नदर करह तू तार है तरिय सच देव हो दीन दयाला प्रणवत नानक दासन दासा तू सर्व जिया प्रतपाला भरपुर धार रहे अत प्यारे शब्दे रव रहे गुरु रूप मरारे गुरु रूप मरारे त्रे भवन धारे ताका अंत ना पाया रंगी जिनसी जंत अपाई नित देव है चढ़ सुवाया अपरंपर आपे थाप उथापे जिस भावे सो होवे नानक हीरा हीरे बेदिया गुण कै हार परोवे गुण गुण है समाणी मस्तक नाम निशानु सच साच समाया चूका आवन जानू।

अलाराम हर सिमर एकंकार साचा सब जगत जिन उपाया पौन पानी अगन भांदे गुर खेल जगत दिखाया आचार तू विचार आपे हर नाम संयम जप तपो सखा सहन प्यार प्रीतम नाम हर।

राम गुण गाए राम रसाए रसिय है गुरु ज्ञान अंजन सारे त्रैलोक दीपक शब्द चानन पंच दूत संघारे।

गुर शब्द सुरत लंगावे मिल साध संगत करह रलिया फिर ना पछोतावे कर दया दान दयाल साचा हर नाम संगत पावो नानक पयम पै सुनो प्रीतम गुर शब्द मन समझावो।

राम जब लग दर्शना होए क्यों अमृत पीवी है राम क्यों अमृत पीवी है हर बिर जीवी है तिस बिन रहन ना जाए अन दिन प्रियो प्रियो करे दिन राती फिर बिन प्यास ना जाए अपनी कृपा करो हर प्यारी हर हर नाम सद सारिया गुर कै शब्द मिलिया मैं प्रीतम हों सतगुर विटो हों।

अन दिन गुरु गोपाल त्याई, हम सतगुर बिटहु कुमाए, हम पाथर गुर नाव, बिख भवजन तारिए राम, गुरदेव हो शब्द सुपाए, मैं मूड निस्तारिए राम, हम मूड मुगद किशमित नहीं पाई, तू अगम वड जानिया, तू आप दयाल दया कर मिल है, हम निर्गुणी निमाणिया, अनेक जन्म पाप कर परमे, हुण तौ शरणागत आई, दया करहो रख ले वो हर जियो, हम लाग हैं सतगुर पाए, गुर पारस हम लोह, मिल कंचन होया राम, ज्योति ज्योत मलाए, काया गढ़ सोहया राम, काया गढ़ सोहया मेरे प्रभ मोहया, क्यों सास ग्रास वसारी है, अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी, हों सतगुर कै बलिहारी है, सतगुर आगे सीस भेट देउ, जे सतगुर साचे पावे आपे दया करहु प्रभ दाती, नानक अंक समावे तुखारी महला चौथा, हर हर अगम अगाध अपरंपर अपर परा, जो तुम प्यावह जगदीश ते जन पहो बिखम तरा, बिखम पहो तिन तरिया सुहिला, जिन हर हर नाम त्याया, गुरवाक सतगुर जो पाए चले, तिन हर हर आप मलाया, ज्योति ज्योत मिल ज्योत समाणी, हर कृपा कर तरनी तरा, हर हर अगम अगाध अपरंपर अपर परा, तुम स्वामी अगम अथाह, तू घट घट पूर रहया, तू अलख अपेओ अगम, गुर सतगुर बचन लहया, धन धन ते जन पुरख पूरे, जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे, विवेक बुद्ध विचार गुरमुख, गुर शब्द खिन खिन हर नित चवे, जां बह गुरमुख हर नाम बोले है, जां खड़े गुरमुख हर हर कहया, तुम स्वामी अगम अथाह, तू घट घट पूर रहया, सेवक जन सेवह ते प्रवान, जिन सेविया गुरमत हरे, तिनके कोट सब पाप खिन पर हर हर दूर करे, तिनके पाप दुख सब बिनसे, जिन मन चित एक अरादया, तिनका जन्म सफलियो सब किया करते, जिन गुरबचनी सच पाखिया, ते धन जन वड पुरख पूरे, जो गुरमत हर जप पहो बिखम तरे, सेवक जन सेवह ते प्रवान, जिन सेविया गुरमत हरे, तू अंतर जामी हरे आप, ज्यों तू चलावह प्यारे हों तिवें चलना।

तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत भया मिल आए नगर महाजना गुर सतगुरु उठ गही गुर सतगुरु गुर गोविंद पुछ सिमरत कीता सही सिमरत शास्त्र सबनी सही कीता सुख प्रहलाद श्री राम कर गुर गोविंद त्याया देही नगर कोट पंच चोर बटवारी तिनका थाऊ थे हो गुआया कीर्तन पुराण नित पुन हो वह गुरबचन नानक हर भगत लही मिल आए नगर महाजना गुर सतगुर ओट गही तुखारी संत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोल कमाई लालना गुर मन दीना सुन शब्द तुम्हारा मेरा मन पीना एहो मन पीना ज्यों जल मीना लागा रंग मरारा कीमत कही ना जाई ठाकुर।

सुन प्रभ मेरे निमक दृष्ट पेख जीवा अमृत नाम सुनी जय तेरा कृपा करह ता पीवा आस प्यासी।

गुरमुख जाता सगल रंग बने आए सोई कर्म कमावे प्राणी जेहा तू फरमाए जा को कृपा करी जगदीश्वर किन साध संग मन जिता कहो नानक जीअड़ा बलिहारी जियो पिंड तौ दिता निर्गुण राख लिया संतन का सदका सतगुर ताक लिया मोहे पापी पड़दा ताक नहारे प्रभु हमारे जी प्राण सुख दाते अवनाशी अवगत स्वामी पूर्ण पुरख विधाते उस्तत कहन न जाए तुम्हारी कौन कह तू कद का।

देख गऊ सुख माने त्यों नानक हर गल लावी रे। केदारा महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन हर हर गुण कहो रे। सतगुरु के चरण तोए तोए पूजो हो इन बिद मेरा हर प्रभ लहोरे। रहाओ काम क्रोध लोभ मोह अभमान बिखै रस इन संगत ते तू रहो रे। मिल सत संगत की जय हर।

रे अंतर का अवमान जोर तू किस किस किस जानता ए दूर करहो आपन गहोरे जन नानक को हर दयाल हो स्वामी।

संत संग जागी प्रिय रंग देखै जपती नाम निधानी रहाउ दर्शन प्यास लोचन तार लागी बिसरी त्यास बडानी अव गुर पायो है सहज सुखदायक दर्शन पेखत मन लपटानी देखत मोदर रहस मन उपजेउ नानक प्रिय अमर

दोखी एक मन अनाथ नाथ रात हो कृपाल रहाओ अनक जतन गवन करूं खट कर्म जुगत ध्यान धरूं अपाव सगल कर हारियो नह नह हुटह बिकराल सरन बंधन करना पति भाव हरन हर हर हर हर।

कहती साध संग मन लाभहु ब्रह्म भउ मोह कट्यो गुर बचनी अपना दर्श दिखावहु सब की रेन होए मन मेरा अहम बुद्ध तजावहु अपनी भगत देह दयाला वड भागी नानक हर पावहु किदारा महला पंजवा हर बिन जन्म अकारथ जात ताज गोपाल आन रंग राचत।

मद मोहक काम क्रोध कै खात कर गह लेहो दास नानक कहो प्रभ जियो होए सहात। केदारा महला पंजवां हर बिन कोए ना चाल ससाथ दीना नाथ करुणा पत स्वामी आनाथा के नाथ रहाउ। सुत संपत बिखिया रस भुगवत नह लिबहत जम कै पाथ। नाम नदान गाओ गुण गोबिंद उदर सागर के खात। सरन समराथ अकाथ अगोचर हर सिमरत दुख लाथ। नानक दीन तूर जन बाँचत मिले।

मन रहाउ। त्याग चलना सगल संपत काल सिर पर जान, मितन मोह दुरंत आसा झूठ सर परमान। सतपुरख अकाल मूरत हृदय धारो ध्यान, नाम निधान लाभ नानक बस्त एह परवान। केदारा महला पंजवां हर के नाम को आधार, कल कलेश ना कश व्यापै संत संग व्यवहार। रहाउ कर अनुग्रह आप राखियो नह उपज तो बेकार, जिस प्राप्त हुए सिमरै तिस दहत नह संसार। सुख मंगल आनंद हर हर प्रभ चरण अमृत सार, नानक

आउ पूर रहया सर्वतन में सो पुरख बधाता मार्ग प्रभ का हर किया संतन संग जाता संतन संग जाता पुरख बधाता घट घट नजर निहालिया जो सरनी आवे सर्ब सुख पावे तिल नहीं भन्ने घालिया हर गुण निद गाई सहज सुपाई प्रेम महारस माता नानक दास तेरी सरनाई तू पूरन पुरख बधाता हर प्रेम भगत जन बेदिया सियान कत जाही मीन बशोहा ना सह जल बिन मर पाही हर बिन क्यों रही है दुख किन सही है चातरक बूंद प्यासिया कबरैन बिहावे चकवी सुख पावे सूरज किरण परगासिया हर दर्श मन लागा दिन सुसभागा अन दिन हर गुण गाही नानक दास कह बेनंती कत हर बिन प्राण टकाही सास बिना ज्यों देहुरी कत सोभा पावे दर्श बिहूना साध जन खिन टिकन ना आवे हर बिन जो रहना नरक सो सहना चरण कमल मन बेदिया हर रसक बैरागी नाम लिव लागी कतहु ना जाए न खेदिया हर स्यो जाए मिलना साध संग रहना सो सुख अंक ना मावे ओहो कृपाल नानक के स्वामी हर चरण है संग समावे खोजत खोजत प्रभ मिले हर करुणा तारे निर्गुण नीच अनाथ में नहीं दोख बिचारे नहीं दोख बिचारे पूर्ण सुख सारे पावन बिरद बखानिया भगत वश्यल सुन अंचलो गहया कट कट पूर समानिया सुख सागरो पाया सहज सुपाया जन्म मरण दुख हारे कर गह लीने नानक दास अपने।

बिन पानी चलत कत टेडे टेडे टेडे हस्त चरम बिस्टा के मुंडे दुर्गंध ही के बेटे रहाओ राम ना जप हो कमन भ्रम भूले तुम ते काल ना दूरे अनक जतन कर एहो तन राख हो रह अवस्था पूरे आपन किया कछु ना होवे क्या को करे प्राणी जा तिस भावे सतगुर भेटै एको नाम बखानी बलुआ के करुआ मह बसते फुलवत देह अयानी।

खान पाउ भगत सिंह काज न कछु है मेरो काम दीवान राम बसारियो है अभमान कनक कामनी महा सुंदरी पेख पेख सच मान रहाओ लालच झूठ बिकार महामद एह बिद औद बिहान कह कबीर अंत की बेर आए लागो काल निदान चार दिन अपनी नौबत चले बजाए इतनक खटिया गठिया मतिया संग ना कछ लै जाए रहाओ गहरी बैठी मेहरी रोवे द्वारे लो संग माए मरहत लग सब लोग कटंब मिल हंस अकेला जाए वै सुत वै बित वै पुर पाटन बहुर न देखे आए कहत कबीर राम की ना सिमर हो जन्म अकारथ जाए राग केदारा बाणी रविदास जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद खट कर्म कुल संयुगत है हर भगत हृदय नाही चरनार बिंद ना कथा भावे सुपच तुल

पद है अमरेऊ, राम भगत बसेख रहाउ, स्वान सत्र अजात सब ते कृष्ण लावै हेत, लोक बपरा क्या सरा है तीन लोक प्रवेश, अजामल पिंगला लुभत कुंचर गए हर के पास, ऐसे दुर्मत निस्तरे तू क्यों ना तरह रविदास, राग भैरो महला पहला घर पहला चौपदी,

क्या कहिए किस कही ना जाए, जो किस अहै सब तेरी रजाए रहाओ, जो किस करना सो तेरे पास।

रूप रंग रहस नहीं साचा, क्यों छोड़े जम जालू प्राणी, हर जप जन्म गयो साच, शब्द बिन कभू ना छूटस, बिरथा जन्म पयो रहाओ, तन मह काम क्रोध हौ ममता, कठन पीर अत भारी, गुरमुख राम जपो रस रसना, इन बिद तर तू तारी, बहरे करन अकल पई होशी, शब्द सहज नहीं बूझिया, जन्म पदार्थ मन मुख हारिया, बिन गुर अंध ना सूझिया, रह उदास आस नरासा, सहज ध्यान बैरागी, प्रणवत नानक गुरमुख छूटस, राम नाम लिव लागी, भैरो महला पहला, पूंदी चाल चरण कर खिसरे, तुचा देह कुमलानी, नेत्री धुंद करन पय बहरे, मनमुख नाम ना जानी, अंधले क्या पाया जग आई, राम हृदय नहीं गुर की सेवा, चाले मूल गवाए रहाओ, जिहवा रंग नहीं हर राती, जब बोले तब फीके, संत जना की निंदा व्यापस, पशु पये कदे होहे ना नीके, अमृत का रस विरली पाया, सतगुर मेल मलाई, जब लग शब्द भेद नहीं आया, तब लग काल संताए, अन को दर कर कबहू ना जानस, एको दर सचियारा।

साच रते सच अमृत जिहवा मिथ्या मैल न राई निर्मल नाम अमृत रस चाखिया शब्द रते पत पाई गुणी गुणी मिल लाहा पावस गुरु।

ते जग जन्मा बिख खावे बिख बोली बोले बिन नावे निफल मर भ्रम ना रहाउ। पुस्तक पाठ व्याकरण वखाणे संध्या कर्म तिकाल करे बिन गुर शब्द मुक्त कहां प्राणी। राम नाम बिन उर्ज मरे दंडक मंडल सिखा सूत धोती तीर्थ गमन अत भ्रमण करे। राम नाम बिन शांत ना आवे जप हर हर नाम सो पार परे। जटा मुकट तन भस्म लगाई वस्त्र छोड़ तन नग्न भया। राम नाम बिन तृप्त ना आवे किरत कै बांधे भीख भया। जेते जी जंत जल थल महियल जतर कतर तू सर्ब जिया। गुर प्रसाद राख ले जन को हर रसना।

जात का गर्भ ना करियो कोई, ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई। जात का गर्भ ना कर मूर्ख गवारा, इस गर्भ पे चल है बहुत बेकारा। रहाउ चारे वर्ण आख सब कोई, ब्रह्म बिंद ते सब उपत होई। माटी एक सगल संसारा, बहु विद भांडे घड़ै कुमारा। पंच तत् मिल देही का अकारा, घट वद को करै बीचारा। कहत नानक एहो जियो कर्म बंद होई, बिन सतगुर भेटे मुक्त ना होई। भैरो महला तीजा, जोगी गृही पंडित भेख धारी। ए सूते अपने अहंकारी, माया मद माता रहया सोई। जागत रह ना मूसे कोई, रहाउ सो जागे जिस सतगुर मिले। पंच दूत ओह वसगत करे, सो जागे जो तत बीचारे। आप मरे अवरा नह मारे, सो जागे जो एको जाने। परकिरत छोड़े तत पछाणे, चहो वरना विच जागे कोई। जमे काले ते छूटे सोई, कहत नानक जन जागे सोए। ज्ञान अंजन जाकी नेत्री होए। भैरो महला तीजा, जाको राख है अपनी सरनाई। साची लागे साचा फल पाई, रे जन कैस्यो करो पुकारा। हुक्मे हुआ हुक्मे वर्तारा, रहाउ एहो आकार तेरा है तारा। खिन मैं बिनसै करत न लागे बारा, कर प्रसाद एक खेल दिखाया। गुर कृपा ते परम पद पाया।

तिस भावै तां करी भूग तन मन साची साहिब जोग रहाउ उस्तत निंदा करे क्या कोई जाय आपे वरतै इको सोई गुर प्रसादी पिरम कसाई मिलोगी दयाल पंच शब्द वजाई पणत नानक करे क्या कोई जिसनो आप मलावै सोए भैरो महला तीजा सो मन जे मन की दुबदा मारे दुबदा मार ब्रह्म बिचारी इस मन को कोई खोजो हो पाई मन खोजत नाम नौ निध पाई रहाव मूल मोह कर करतै जगते पाया ममता लाए भरम भुलाया इस मन ते सब पिंड पराणा मन कै विचार हुक्म बुझ समाणा कर्म होवै गुर कृपा करै एहो मन जागै इस मन की दुबदा मरै मन का सुभाओ सदा बैरागी सब मह वसै अतीत अनरागी।

आप उदरे सब कुल उदाहरण हार, बिन नावै मन मुख जम पुर जाहे, औखे होवै चोटा खाहे, आपे करता देवै सोए, नानक नाम प्राप्त होए। भैरों महला तीजा, गोविंद प्रीत सनकादिक उधारे, राम नाम शब्द बीचारे, हर जियो अपनी कृपा तार, गुरमुख नामे लगे प्यार, रहाउ अंतर प्रीत भगत साची होए, पूरे गुर मेलावा होए, निज कर वसै सहज सुपाई।

दूजा कल युग में है राम नाम उरतार बिन नावे माथे पावे शार राम नाम दुलभ है पाई गुर प्रसाद वसे मन आई रहाउ राम नाम जन पालह सोए पूरे गुर ते प्राप्त होए हर का पाणा मन है से जन परवान गुर कै शब्द नाम निशान सो सेव हो जो कल रहे आतार नानक गुरमुख नाम प्यार पैरो महला तीजा कल युग में बहु कर्म कमाहे ना रुत ना कर्म थाए पाहे कल युग में राम नाम है सार गुरमुख साचा लगे प्यार रहाउ तन मन खोज करे मह पाया गुरमुख राम नाम चित लाया ज्ञान अंजन सतगुर ते होए राम नाम रव रहया त्यों लोए कल युग में हर जियो एक होर रुत ना काई नानक गुरमुख हिरदय राम नाम लेहो जमाई भैरों महला तीजा कर दूजा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद दुबदा मनमुख रोग व्यापे तृष्णा जलह अधकाई मर मर जमह ठौर ना पावह बिरथा जन्म गवाई मेरे प्रीतम कर कृपा देहो बुझाई हौ मैं रोगी जगत उपाया बिन शब्द रोग न जाई रहा सिमरत शास्त्र पढ़ मुन केते बिन शब्द सुरत ना पाई त्रै

मान आए। चौथी पदवी गुरमुख वर्त है तिन निज घर वास्ता पाया। पूरे सतगुर कृपा कीनी विचों आप गवाया। एक सकी सिरकार एक जिन ब्रह्मा विष्णु रुद्र उपाया। नानक निहचल साचा एको ना ओह मरे ना जाया। पैरू महला तीजा मनमुख दुबदा सदा है रोगी रोगी सगल संसारा। गुरमुख बूझै है रोग गवाव है गुर शब्दी विचारा। हर जियो सत संगत मेलाए नानक तिसनो दे वडियाई। जो राम नाम चित लाए रहाव ममता काल सब रोग व्यापे। तिन जम की है सिरकारा गुरमुख प्राणी जम नेड़ न आवै। जिन हर राखिया उर तारा जिन हर का नाम न गुरमुख जाता। से जग मह काहे आया गुर की सेवा कदे न कीनी बिरथा जन्म गवाया। नानक से पूरे वडभागी सतगुर सेवा लाए। जो इच्छ सोई फल पावह गुरबाणी सुख पाए। भैरों महला तीजा दुख विच जमे दुख मरे दुख विच कार कमाए। गर्भ जोनी विच कदे न निकले बिस्टा माहे समाए। त्रिग त्रिग मन मुख जन्म गवाया पूरे गुर की सेवना कीनी। हर का नाम ना पाया रहाऊ गुर का शब्द सब रोग गवाए। जिसनो हर जियो लाए नामे नाम मिले वडियाई। जिसनो मन वसाए सतगुर भेटे ता फल पाए। सच करनी सुख सार से जन निर्मल जो हर लागे। हर नामे तरह प्यार तिनकी रेण मिले ता मस्तक लाई। जिन सतगुर पूरा त्याया नानक तिनकी रेण पूरे भाग पाई है। जिन्नी राम नाम चित लाया भैरों महला तीजा। शब्द बीचारे सोजन साचा जिनकै हृदय साचा सोई। साची भगत करै दिन राती ता तन दुख ना होई। भगत भगत कह सब कोई बिन सतगुर सेवे भगत ना पाई। पूरे भाग मिले प्रभ सोई रहाओ। मनमुख मूल गवाव है लाभ मांग है लाहा लाभ किड्डू होई। जम काल सदा है सिर ऊपर दूजे पाए पत खोई। बहले भेख पवह दिन राती हमे रोग ना जाई। पढ़ पढ़ लूजह बाद बखान है मिल माया सुरत गवाई। सतगुर सेव है परम गत पाव है नाम मिले वडियाई। नानक नाम जिन्ना मन वसिया दर साचै पत पाई। भैरों महला तीजा मनमुख आसा नहीं उतरै दूजे भाई खुआई। उदर नै सान ना परियै कबहू तृष्णा अग्न पचाई। सदा आनंद राम रस राती हृदय नाम दुबदा मन भागी। हर हर अमृत पी त्रिपताते रहाऊ। आपे पार ब्रह्म सृष्ट जिन साजी सिर सिर तंदै लाई।

मन वसाई आप तरे सगले कुल तारी जिन्नी राम नाम लिवलाई मेरा प्रभ है गुण का दाता अवगुण शब्द जलाई जिन मन वसिया से जन सोहे हृदय नाम वसाई घर दर महल सतगुरु दिखाया रंग सोरलिया माण जो किश कह सो भला कर मान नानक नाम बखाण भैरों महला तीजा मनसा मन है समाए लै गुर शब्दी विचार गुर पूरे ते सो जी पवे फिर मरे ना वारो वार मन मेरे राम नाम आधार गुर प्रसाद परम पद पाया सब इच्छ पजामन हार रहाऊ सब मह इको रव रहिया गुर बिन बूझ ना पाई गुरमुख प्रगट हुआ मेरा हर प्रभ अन दिन हर गुण गाई सुख दाता हर एक है होर थे सुख ना पाए सतगुर जिनी ना सेव्या दाता से अंत गए पछताए सतगुर सेव सदा सुख पाया फिर दुख ना लागे ताए नानक हर भगत प्राप्त होई ज्योति ज्योत समाई भैरों महला तीजा बाज गुरु जगत बौराना भूला चोटा खाई मर मर जमे सदा दुख पाई डर की खबर ना पाई मेरे मन सदा रहो सतगुर की सरना हृदय हर नाम मीठा सद लागा गुर शब्दे भवजल तरना रहाऊ पेख करे बहुत चित डोले अंतर काम क्रोध अहंकार अंतर तिसा भूख अत बहुती भौंकत फिरे दरबार गुर कै शब्द मरह फिर जीव है तिनको मुक्त द्वार अंतर शांत सदा सुख होवे हर राखिया उरतार ज्यों तिस भावे तिवें चलावे करना किछु ना जाई नानक गुरमुख शब्द संभाले राम नाम वडियाई भैरों महला तीजा हम मैं माया मोहे खोआया दुख खटे दुख खाए अंतर लोभ हलक दुख भारी बिन विवेक परमहाय मन मुख त्रिक जीवन संसार राम नाम सुपने नहीं चेतिया हर स्यों कदे न लागे प्यार रहाऊ पशुआ कर्म करे नहीं बूझै

अष्टम थीत गोविंद जन्मासी परम भूले नर करत कचराएन जन्म मरण ते रहत नारायण रहाव कर पंजीर खवायो चोर ओह जन्म ना मरे रे साकत ढोर सगल पराध देहे लोरोनी सो मुख जलो।

पंजवा उठत सुखिया बैठत सुखिया पौ नहीं लागे जाय ऐसे बुझिया राखा एक हमारा स्वामी सगल कटा का अंतर जामी रहा सोए अचिंता जाग अचिंता जहां कहां प्रभु तू वर्तनता कर सुख वसया बाहर सुख पाया कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया पैरू महला पंजवा वर्तना रहो ना महरम दाना तिस सेवी जो रखे निधाना एक गुसाई अल्लोह मेरा हिंदू तुर्क दुहान बेरा रहाओ हज काबे जाओ ना तीर्थ पूजा एको सेवी अवर ना दूजा पूजा करो ना निवाज गुजारो एक निरंकार ले हृदय नमस्कारो ना हम हिंदू ना मुसलमान अल्लाह राम के पिंड प्राण कहो कबीर एहो किया वखाना गुर पीर मिल खुद खसम पछाना पैरू महला पंजवा दस मिर्गी सहजे बंद आनी पांच मिर्ग बेदे शिव की बानी संत संग ले चढ़ो शिकार मृग पकड़े बिन घोर हथियार रहाओ अखेर बिरत बाहर आयो ताए अहेरा पायो कर कह गाए मृग पकड़े कर आने हाट चुख चुख ले गए बांडे बाट एहो अहेरा कीनो दान नानक कह कर केवल नाम पैरू महला पंजवा जे सौ लोच लोच खावाया साकत हर हर चीत नाया संत जना की लेहो मते साध संग पावो परम गते रहाओ पाथर को बहु नीर पवाया नह पीजे अधिक सुकाया खट शास्त्र मूर्ख है सुनाया जैसे दह दिस पवन चुलाया बिन कण खलहान जैसे गाहन पाया त्यों साकत ते को ना ब्रासाया कित ही लागा जित को लाया कहो नानक प्रभ बणत बढ़ाया पैरू महला पंजवा जियो प्राण जिन रचियो शरीर जिन्ह अपाए तिस को पीर गुर गोबिंद जी कै काम हलत पलत जाकी सद शाम रहाओ प्रभ आराधन निर्मल रीत साध संग बिनसी विपरीत मीत हीत धन नह पारना तन

नारायण मद भाग हर प्रेम रसायन प्रभु हमारे शास्त्र सोण सुख सहज आनंद ग्रह पौन रहाउ रसना नाम करण सुन जीवे प्रभ सिमर सिमर अमर थिर थीवे जन्म जन्म के दुख निवारे अनहद शब्द बजे दरबारे कर कृपा प्रभ लिए मलाए नानक प्रभ शरणागत आए पैरों महला पंजवा कोट मनोरथ आवह हाथ जम मार्ग कै संगी पाक गंगा जल गुरु गोविंद नाम जो सिमरै तिसकी गत होवै पीवत बहुड़ ना जोन परमाम।

नानक दास एहो किया बीचार, बिन हर नाम मिथ्या सब शार। भैरो महला पंजवा, लेप न लागो तिनका मूल, दुष्ट ब्राह्मण मुआ।

शोभा पावे प्रभु के द्वार, सर्व कल्याण चरण प्रभ सेवा, धूर बांछ है सब सुर नर देवा, नानक पाया नाम निदान, हर जप जप उदरिया सगल जहान, पैरों महला पंजवां, अपने दास कहो कंठ लगावे, निंदक कहो अगन मह पावे, पापी तेरा के नारायण, पापी की गत कत हूं नाही, पापी पचिया आप कमाएं, रहाऊ दास राम जियो लागी प्रीत, निंदक की होई विपरीत, पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगटाया, दुखी अपना कीता पाया, आए न जाई रहया समाई, नानक दास हर की सरनाई, राग भैरो मोहल्ला पंजवां, चौपदी घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्री तर मोहन सगल उपावन, निरंकार सुखदाता, ऐसा प्रभ छोड़ करह अन सेवा, कमन बिख्या रस माता, रे मन मेरे तू गोविंद भाज, अवर उपाव सगल मैं देखे, जो चित भी है चित बिगरस काज रहाउ, ठाकुर छोड़ दासी को सिमरह, मनमुख अंध अज्ञाना, हर की भगत करह।

अहम बुद्ध दुर्मत है मैली बिन गुर पव जल फेरा होम जग जप तप सब संयम तट तीर्थ नहीं पाया मिटिया आप पई सरनाई गुरमुख नानक जगत तराया पहरो महला पंजवां बन मह पेखियो तृण मह पेखियो ग्रह पेखियो उदासाई दंड धार जट धारै पेखियो।

आई। तपी तपी सर मुन मह पेखियो, नट नाटक निरताई। चहो मह पेखियो खट मह पेखियो, दस अस्ति सिमरताई। सब मिल एको एक वखान है, तौ किस्ते कहो दुराई। अगह अगह बेअंत स्वामी, नह कीम कीम कीमाई। जन नानक तिन कह बल बल जाइए, जेह घट प्रगटी आई। भैरु महला पंजवा, निकट बुझै सो बुरा क्यों करै। बिक संचै नित डरता फिरै, है निकटे अर भेद ना पाया। बिन सतगुर सब मोही माया, नेड़ै नेड़ै सब को कह। गुरमुख भेद बिरला को लह, रहाउ निकट न देखै पर ग्रह जाय। दर्ब हिरै मिथ्या कर खाई, पैठ गौरी हर संग न जानिया। बाज गुरु है परम पुलानिया, निकट न जाने बोलै कूड़। माया मोहि मूठा है मूड़, अंतर वस्तद संतर जाए। बाज गुरु है परम पुलाई, जिस मस्तक कर्म लिखिया लिलाट।

जिन सेविया निरपहो सुखदाता, तिन पहो दूर किया एक प्राता, जो तू करह सोई फुन होए, मारे ना राखे दूजा कोए, क्या तू सोचे है मानस बाण, अंतर जामी पुरख सुजान, एक टेक एको आधार, सब किस जान है सिरजनहार, जिसे ऊपर नदर करे करतार, तिस जन के सब काज सुवार, तिसका राखा एको सोए, जन नानक अपड़ ना साके कोए, पहरों महला पंजवा, तव कड़िया जे हुवे बाहर, तव कड़िया जे विसरे नरहर, तव कड़िया जे दूजा पाए, क्या कड़िया जा रहे आसमाए, माया मोहे कड़े कड़ पचिया, बिन नाम है प्रम प्रम प्रम खपिया रहाओ, तव कड़िया जे दूजा करता, तव कड़िया जे अन्याय को मरता, तव कड़िया जे किस जाने नाही, क्या कड़िया जा भरपूर समाही, तव कड़िया जे किस होए तिंगाने, तव कड़िया जे फूल रिंजाने, गुर कहया जो हुए सब प्रभते, तब काड़ा छोड़ अचिंत हम सोते, प्रभ तू है ठाकुर सब को तेरा, ज्यो पावे त्यों करह निबेरा, दुतिया नास्त एक रहे आसमाए, राखो पैज नानक सरनाए, पहरू महला पंजवा, बिन बाजे कैसो निर्तकारी, बिन कंठे कैसे गावनहारी, जील बिना कैसे बजै रबाब, नाम बिना बिरते सब काज, नाम बिना कहो को तरिया, बिन सतगुर कैसे पार परिया रहाओ, बिन जिहवा कहां को बकता,

कहा कोई पंडत, बिन अमरे कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहा मन ठहराना, नाम बिना सब जग बोराना, बिन बैराग कहा बैरागी, बिन हों त्याग कहा को त्यागी, बिन बस पंच कहा मन चूरे, नाम बिना सद सद ही चूरे, बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान।

दृष्ट रोग पच मोए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा। जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। रहाउ जिहवा रोग मीन ग्रसियानु।

मोहे दुहागने आप शिंगारी रूप रंग दे नाम सवारी मिट्यो दुख हर सगल संताप गुर होए मेरे माई बाप सखी सहेरी मेरा ग्रस्त आनंद कर कृपा भेटे मोहे कंत रहाओ तपत बुझी पूर्ण सब आसा मिटे अंधेर भये परगासा अनहद शब्द अचरज बिस्माद।

पियावे बेसवा भजत किस नह शरमावे सारो दिन समजूरी करे हर सिमरन की वेला बजर सिर परे माया लग भूलो संसार आप भलाया भलावन हारे राज रहिया बिरथा व्यवहार रहाउ देखत माया रंग बिहाई गड़बड़ करे कौडी रंग लाई अंध व्यवहार बंद मन तावे करने हार न जी मह आवे करत करत इव ही दुख पाया पूर्ण होत न कारज माया काम क्रोध लोभ मन लीना तड़प मुआ ज्यो जल बिन मीना जिसके राखे होए हर आप हर हर नाम सदा जप जाप साध संग हर के गुण गाया नानक सतगुर पूरा पाया भैरो महला पंजवा अपनी दया करे सो पाए हर का नाम मन वसाए साच शब्द हिरदे मन माहे जन्म जन्म के किल विख जाए राम नाम जी को आधार गुर प्रसाद जप हो नित पाई तार लए सागर संसार रहाउ जिनको लिखिया हर एहो निदान सीजन दरगाह पावह मान सुख सहज आनंद गुण गाओ आगे मिले न थावे थाओ जुगा जगंतर एहो तत सार हर सिमरन साचा विचार जिस लड़ लाए लए सो लागे जन्म जन्म का सोया जागे।

रोम रोम रविया हर नाम, सतगुर पूरे कीनो दान, नाम रतन मेरे पंडार, अगम अमोला अपर अपार, रहाव नाम हमारे निश्चल तनी, नाम की महिमा सब मह बनी, नाम हमारे पूरा सार, नाम हमारे बेपरवाह, नाम हमारे भोजन पाओ।

आस्था, दुख सुख हमरा तिस ही पासा, राख लीनो सब जन का पड़दा, नानक तिसकी उस्तत करदा, पैरों महला पंजवां, रोवन हारी रोज बनाया, बलन बर्तन को

कर मन तन नानक हर गुण गाओ साध संग जिस देवै नाओ भैरू महला पंजवा निरतन को तुम देव हो तना अनक पाप जाहि निर्मल मना।

तुम थान बैठावो दास अपने को भगति लावो नमाने को प्रभ दे तो मान मूड मुग्ध होए चतर सुगयान सगल पयान का पौ नसै जाने अपने कै हर मन बसै।

नानक साधु संग समाई पैरों महला पंजवा संत मंडल मह हर मन वसै संत मंडल मह दुर्त सब नसै संत

संत मंडल मह जन्म मरण रहे, संत मंडल मह जम किशु ना कहे, संत संग होए निर्मल बाणी, संत मंडल मह नाम वखाणी, संत मंडल का नि चले आसन, संत मंडल मह पाप बनासन, संत मंडल मह निर्मल कथा, संत संग हों मैं दुख नसा, संत मंडल का नहीं बनास, संत मंडल मह हर गुण तास, संत मंडल ठाकुर विश्राम, नानक ओत पोत भगवान, भैरो महला पंजवा, रोग कवन जा राखे आप, तिस जन होए ना दुख संताप, जिस ऊपर प्रभ कृपा करे, तिस ऊपर ते काल पर हरे, सदा सखाई हर हर नाम, जिस चीत आवे तिस सदा सुख होवे।

एहो ना सो तब किन्ह उपाया, कवन मूल ते क्या प्रगटाया, आपह मार आप जीवाले, अपने भगत को सदा प्रतपाले, सब किस जान हो तिस कै हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, दुख भंजन ताका है नाऊ, सुख पावे है तिसके गुण गाओ, सुन स्वामी संतन अरदास, जियो प्राण धन तुमरे पास, एहो जग तेरा सब तुझे त्याए।

उतर गई सब मन की चिंता, लोभ मोह सब कीनो दूर, परम वैष्णो प्रभ देख हजूर, ऐसो त्यागी बिरला कोए, हर हर नाम जपै जन सोए रहाउ। अहम बुद्ध का छोड़िया संग, काम क्रोध का उतरिया रंग, नाम ते आए हर हर हरे, साध जना कै संग निस्तरे, बैरी मीत होए सम्मान, सर्व मह पूर्ण भगवान।

बंधन का मूल, हर के भजन बिन बिरथा पूल, बिन खाए दूजे नहीं भूख, रोग जाए ता उतर है दुख, काम क्रोध लोभ मोह व्यापिया, जिन प्रभ कीना सो प्रभ नहीं जापिया, तन तन साध तन हर नाओ, आठ पहर कीर्तन गुण गाओ, तन हर भगत तन करण हार, शरण नानक प्रभ पुरख अपार, भैरो महला पंजवा, गुरसो प्रसन्न होए पौ गए, नाम निरंजन मन मह लई, दीन दयाल सदा किरपाल, बिनस गए सगले जंजाल, सुख सहज आनंद घने, साध संग मिटे भय भरमा, अमृत हर हर रसन भने रहाओ, चरण कमल स्यो लागो हेत, खिन मह बिन स्यो महापरेत, आठ पहर हर हर जप जाप, राख नहार गोविंद गुरे आप, अपने सेवक को सदा प्रित पारे, भगत जना के सास निहारे, मानस की कहो के तक बात, जम ते राख दे कर हाथ,

करन कारण समरथ गुर मेरा, जी प्राण सुख दाता नेरा, पै भंजन अबनासी राय, दर्शन देखे है सब दुख जाए, जत कत पेखो तेरी सरना, बल बल जाई सत

पूरन मन पाणी जल थल मही अल रवे आसोई नानक सब किश प्रभ ते होए पैरो महला पंजवा मन तन राता राम रंग चरनी सर्ब मनोरथ पूरन करनी आठ पहर गावत भगवंत।

जन धन भैरु महला पंजवा भगता मन आनंद गोबिंद अस्थित भय बिनसी सब चिंद पै ब्रह्म बिनस गए खिन माहे पार ब्रह्म वस्या मन आई राम राम संत सदा सहाय।

नित सुख प्रतपाल, अपने दास कहो दे राखै हाथ, निमख न छोड़ै सद ही साथ, हर सा प्रीतम अवर न कोए, सार संभाले साचा सोए, मात पिता सुत बंद नारायण, आदि जुगाद भगत गुण गायन।

प्रभु हमारा सारे स्वार्थ पैरु महला पंजवा पै कौ पौ पढ़िया सिमरत हर नाम सगल ब्याद मिटी त्रिहो गुण की दास के होए पूर्ण काम रहाव हर के लोक सदा गुण गावे तिनको मिलिया पूर्ण ताम जन का दर्श बांचे दिन राती होए पनीत धर्म राए जाम काम क्रोध लोभ मद निंदा साध संग मिटिया अवमान ऐसे संत पीतह वडभागी नानक तिन कै सद कुर्बान पैरु महला पंजवा पंच मजमी जो पंचन राखे मिथ्या रसना नित उठ पाखे चक्कर बनाए करे पाखंड चुर चुर पचै जैसे त्रयरंड हर के नाम बिना सब झूठ बिन गुर पूरे मुक्त ना पाईए साची दरगह साकत मूठ रहाओ सोई कुचील कुदरत नहीं जाने लीपे थाए ना सोच हर मान।

कबहे न काले सीधा पाऊं, जिन किया तिस चीत ना आणे, कूड़ी कूड़ी मुखों बखाणे।

नहीं भंग पैरों महला पंजवा निंदक को फिटके संसार निंदक का झूठा व्यवहार निंदक का मैला आचार दास अपने को रखनहार निंदक मुआ निंदक कै नाल पार ब्रह्म परमेश्वर जन राखे निंदक कै सिर कड़के ओ काल रहाओ निंदक का कहया कोई ना माने निंदक झूठ बोल पछताने हाथ पछोर है सिर धरन लगाहे निंदक को दई छोड़े नाहीं हर का दास किस बुरा ना मांगे।

जाकै ग्रह मह सगल निदान, जाकी सेवा पाईऐ मान, सगल मनोरथ पूरन हार, जी प्राण भगतन आधार, कट कट अंतर सगल परगास, जप जप जीवह।

प्रभु ते आया गुरपुरे डर सगल चुकाया सब ते वड समरथ गुरुदेव सब सुख पाई तिसकी सेव रहाउ जाका किया सब किछ होए तिसका

काल कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रतपाल प्रभ कृपाल कमन गुन गुनी अनक रंग बहुत रंग सर्ब को तनी रहाओ अनक ज्ञान अनक ध्यान अनक जाप जाप ताप अनक गुणत तुनत ललत अनक तार मुनि अनक नाद अनक बाज निमख निमख अनक स्वाद अनक दोख अनक रोग मिट है जस सुनी नानक सेव अपार देव तट है खट है बर्त पूजा गमन पवन जातर करन सगल फल पुनी पैरों अष्टपदियां महला पहला कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आत्म मह राम राम मह आत्म चीनस गुर बीचारा अमृत बाणी शब्द पछाणी दुख काटे हो मारा नानक हो मैं रोग बुरे जह देखा तह का बेदन आपे बख्शे शब्द तुरे रहाओ आपे परखे परखन हारे बहुर सुलाक ना हुई जिनको नदर पई गुर मेले प्रभ पाणा सच सोई पौन पानी बै संतर रोगी रोगी तरत सपोगी मात पिता माया देह से रोगी रोगी कुटुंब संजोगी रोगी ब्रह्मा विष्णु सुरुद्रा रोगी सगल संसारा हर पद चीन पए से मुक्ते गुर का शब्द विचारा रोगी सात समुंद स नदियां खंड पताल से रोग परे हर के लोक से साच सुहेले सर्वी थाई नदर करे रोगी खट दर्शन भेख तारी नाना हठी अनेका बेद कतेव करह कह बपरी नह बूझ एक एका मिठरा सखाए सो रोग परी जय कंद मूल सुख नाही नाम विसार चल है अन मार्ग अंत काल पछताही तीरथ पर मैं रोग ना छूटस पड़िया बाद विवाद भया दुबदा रोग सो अधिक वडेरा माया का मोहताज भया गुरमुख साचा शब्द सलाह है मन साचा तिस रोग गया नानक हर जन अन दिन निर्मल

सब नगरी मह भगत दिरड़ाई, दुष्ट सभा का किसना वसाई, संडै मरकै की पुकार, सभी दैत रहे चाख मार, भगत जना की पत राखै सोई, कीते कै कहे क्या होई, किरत संजोगी दैत राज चलाया, हर ना बूझै तिन आप पुलाया, पुत्र प्रहलाद स्यो वाद रचाया, अंधा ना बूझै काल नेड़ै आया, प्रहलाद कोठे विच राखिया, बार दिया ताला, निरपो बालक मूल ना डरई,

भगता मन आनंद बजी वधाई अपने सेवक कौ दे वडियाई जम्मन मरना मोह उपाया आवण जाना करतै लिख पाया।

माता नर सिंह का रूप निवार। लक्ष्मी भौ करै ना साकै जाए, प्रहलाद जन चरणी लागा आए। सतगुर नाम निधान दिरडाया, राजमाल झूठी सब माया। लोभी नर रहे लपटाए, हर के नाम बेन दरगाह मिले सजाए। कह नानक सब को करे कराया, से परवान जिन्नी हर स्यों चित लाया।

सो सब मैं जाता, जिस नाम हृदय सो पुरख बधाता, जिस नाम हृदय सो सब ते ऊंचा, नाम बिना भ्रम जो नी मूचा, जिस नाम हृदय तिस प्रगट पहारा, जिस नाम हृदय तिस मिटिया अंधारा, जिस नाम हृदय सो पुरख परवान, नाम बिना फिर आवन जान, तिन नाम पाया जिस भयो किरपाल, साध संगत मह लखे गोपाल, आवन जान रहे सुख पाया, कहो नानक तत्ते तत मलाया, भैरु महला पंजवा, कोट बिशन कीने अवतार, कोट ब्रह्मांड जाके धर्मसाल, कोट महेश उपाय समाए, कोट ब्रह्मे जग साजन लाए, ऐसो तनी गोविंद।

सिह जाए, कोट अपार जना तेरा अंग, कोट भगत बस्त हर संग, कोट छत्रपत करत नमस्कार, कोट इंद्र ठाडे है द्वार, कोट बैकुंठ जाकी दृष्टि माही, कोट नाम जाकी कीमत नाही, कोट पूरियत है जा कै नाद, कोट अखारे चलत बिस्माद, कोट सकत सिव आज्ञाकार, कोट जी देवै आधार, कोट तीर्थ जाके चरण मझार, कोट पवित्र जपत नाम चार, कोट पुजारी करते पूजा, कोट विस्थारन अवर ना दूजा, कोट महिमा जाकी निर्मल हंस, कोट उस्तत जाकी करत ब्रह्मंस, कोट परलो ओपत निमख माहे, कोट गुणा तेरे गणे ना जाहे, कोट ज्ञानी कथह ज्ञान, कोट त्यानी तरत त्यान, कोट तपीसर तप ही करते, कोट मनीसर मोन मह रहते, अवगत नाथ अगोचर स्वामी, पूर रहया घट अंतर जामी, जत कत देखो तेरा वासा, नानक को गुर कियो परगासा, भैरो महला पंजवां, सतगुर मोको कीनो दान, अमोल रतन हर दीनो नाम, सहज बनोद चोज अनंता, नानक को प्रभ मिलियो अचिंता, कहो नानक कीरत हर साची, बहुर बहुर पिस संग मन राची, रहाओ अचिंत हमारे पूजन पाओ, अचिंत हमारे लीचे नाओ, अचिंत हमारे शब्द उदार, अचिंत हमारे परे पंडार, अचिंत हमारे कार्य पूरे, अचिंत हमारे लथे वसूरे, अचिंत हमारे बैरी मीता, अचिंतो ही एहो मन वस कीता, अचिंत प्रभु हम किया दलासा, अचिंत हमारी पूर्ण आसा, अचिंत हमा को सगल सिद्धांत, अचिंत हम को गुर दीनो मंत, अचिंत हमारे बिन से बैर, अचिंत हमारे मिटे अंधेर, अचिंतो ही मन कीर्तन मीठा, अचिंतो ही प्रभ घट घट दीठा, अचिंत मिट्यो है सगलो भरमा, अचिंत वस्यो मन सुख बिसरामा, अचिंत हमारे अनहत वाजे, अचिंत हमारे गोविंद गाजे, अचिंत हमारे मन पतियाना, निश्चल तनी अचिंत पछाना, अचिंतो उपजियो सगल बबेका, अचिंत चरी हाथ हर हर टेका, अचिंत प्रभु तुर लिखिया लेख, अचिंत मिलियो प्रभ ठाकुर एक, चिंत अचिंता सगली गई, प्रभ नानक नानक नानक मई, भैरों बाणी भगतां की, कबीर जियो घर पहला।

राम राजा नौ निध मेरा संपहित कलत धन तेरे रहाओ आवत संग न जात संगाती कहां पयो दर बांधे हाथी लंका गढ़ सोने का पया मूर्ख रावण क्या ले गया कह कबीर।

कह कबीर हो भया दीवाना, मुस मुस मनुआ सहज समाना, गंगा कै संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा हुए निबरी, बिगरियो कबीरा राम दोहाई, साच पयो अल कत है ना जाई, रहाउ चंदन कै संग तरवर बिगरियो, सो तरवर चंदन हुए निबरियो, पारस कै संग तांबा बिगरियो, सो तांबा कंचन हुए निबरियो, संतन संग कबीरा बिगरियो, सो कबीर रामे हुए निबरियो, माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खलौना जाना, जौ हौ बौरा तौ राम तोरा, लोग मर्म कह जाने मोरा, रहाउ तोरो ना पाती पूजो ना देवा, राम भगत बिन

पंडित मुल्ला जो लिख दिया छाड़ चले हम कछु ना लिया। हृदय इखलास निरखले मीरा आप खोज खोज मिले कबीरा। निरतन आदर कोई ना दे लाख जतन करे ओहो चेतना तरे रहाओ। जो निरतन सर तन कह जाए आगे बैठा पीठ फुराए। जो सर धन निर्धन कह जाए दिया आदर लिया बुलाए। निर्धन सर धन

रावी ऊपर गहरा ख्या चंद पच्छम द्वार सूरज तपै मेर डंड सिर ऊपर बसै पश्चिम द्वारे।

परे आने गगन मंडल मह लश्कर करे सो सुरतान सत्तर सिर तरे जोगी गोरख गोरख करे हिंदू राम नाम उच्चरे मुसलमान का एक खुदाई कबीर का स्वामी रहे आसमाई। महला पंजवा जो पाथर को कहते देव ताकि बिरथा हो सेव जो पाथर की पाई पाई तिसकी काल अजाई जाई ठाकुर हमरा।

किस दे, फूकट कर्म निःफल है सेव। जे मृतक को चंदन चढ़ावे उसते कहो कवन फल पावे। जे मृतक को बिस्टा माही रुलाई ता मृतक का क्या घट जाई। कहत कबीर हो कहो पकार समझ देख साकत गावार। दूजे भाए बहुत कर गाले राम भगत है सदा सुखाले। जल मह मीन माया के बेदे दीपक पतंग माया के छेदे। काम माया कुंचर को व्यापे भुयंगम प्रिंग माया मह खापे।

जाती साकर माखी अधिक संतापी तुरे उष्ट माया मह पीला सिद्ध चौरासी ही माया मह खीला शे जति माया के बंदा नवे नाथ सूरज अरचंदा तपे रखी सर माया मह सूता माया मह काल अर पंच दूता स्वान स्याल माया मह राता बंतर चीते अर सिंगाता मां जार गाडर अर लूंभरा बिरख मूल माया मह परा माया अंतर पीने देव सागर इंद्रा

वित जाई, तब प्रभ काज सुआ रह आई। ऐसा ज्ञान विचार मना, हर की ना सिमर हो दुख भंजना रहाऊ। जब लग सिंह रह बन माही,

साध संगत बैकुंठ आई, क्यों लीजै गढ़ बंका पाई, दूवर कोट अर तेवर खाई, रहाउ पांच पचीस मोह मद मत्सर, आडी पर बल माया, जन गरीब को जोर ना पहुंचे, कहां करो रघुराया, काम कवारी दुख सुख दरवानी, पाप पुन दरवाजा, क्रोध प्रधान महाबड दुंदर, तह मन मावासी राजा, स्वाद सनाहा टोप ममता को, कबुद्ध कमान चढ़ाई, तिसना तीर रहे काट पीतर, यों गाड़ लियो ना जाई, प्रेम पलीता सुरत हवाई, गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म अगन सहजे पर जाली, एक है चोट सजाया, सत संतोख ले लरने लागा, तोरे दुए दरवाजा, साध संगत अर गुर की कृपा ते, पकरे ओ गढ़ को राजा, भगवत पीर

फिर है बासक कोट सेज बिस्थर है समुंद कोट जाके पानी हार रमावल कोट अथार है पार कोट कमेर पर है पंडार कोटक लक्ष्मी करे श्रृंगार कोटक पाप पुन बहो हिरह इंद्र कोट जाके सेवा करह छप्पन कोट जाके

पर हरि ताकै निकट बसै नर हरि जो ना पजंते नारायणा तिनका मैं ना करूं दर्शना रहाउ जिनकै भीतर है अंतरा जैसे पास तैसे हुए नरा प्रणवत नाम देव ना कह बिना ना सो है 32 लखना।

मेरो मन पतियाए, नाहीं ता घर को बाप रसाए रहाओ। सोइन कटोरी अमृत भरी, लैना मैं हरिया गै तरी। एक भगत मेरे हृदय बसे, नामे देख नारायण हसे। दूध पियाए भगत घर गया, नामे हर का दर्शन पया। मैं बौरी मेरा राम पतार, रच रच ता को करो शिंगार। भले निंदो लोग, तन मन राम प्यारे जोग रहाओ। बाद बार काहू स्यो ना कीजै, रसना राम रसायन पीजै। अब जी जान ऐसी।

अहंकार गज हस्ती दीनो चमकार रुदन करे नामे की माए छोड़ राम की ना पजै खुदाए ना हो तेरा पूंगड़ा ना तू मेरी माए पिंड पड़े तो हर गुण गाए।

मोहे जब मटकी भरी, ले बादशाह के आगे तरी, बादशाह महल में जाई, औकट की घट लागी आई, काजी मुल्ला बिनती फुरमाए, बख्शी हिंदू मैं तेरी गाय, नामा कह सुनो बादशाह, एहो किस

वैकुंठ तरै, जो गुर देव ता जीवत मरै। सत सत सत सत सत गुर देव, झूठ झूठ झूठ झूठ।

सहज निकसाई। जो गुरुदेव ता अठ सठ नहाया, जो गुरुदेव तन चक्र लगाया। जो गुरुदेव ता द्वा दस सेवा, जो गुरुदेव सबै बेख मेवा। जो गुरुदेव ता संसार टूटै, जो गुरुदेव ता जम के छूटै। जो गुरुदेव ता पौ जल तरै, जो गुरुदेव ता जन्म ना मरै। जो गुरुदेव अठ दस व्यवहार, जो गुरुदेव अठारह भार। बिन गुरुदेव अवर नहीं जाई, नाम देव गुर की शरणाई। भैरो बाणी रविदास जियो की कर दूजा।

कोई पारस परसै दुबदा ना हुई रहाउ सो मुन मन की दुबदा खाई बिन द्वारे त्रै लोक सुमाई मन का सुभाव सब कोई करे करता हुए सो अर्पै रह फल कारण फूली बन राई फल लागा तब फूल बुलाई ज्ञान कारण कर्म अभ्यास ज्ञान भया तह कर्म है नास कृत

पहला घर पहला चौपदे दो तुके एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह भंगुर प्रसाद महा महाम मारखी चढ़िया सदा बसंत पर फड़ चित संभाल सोए सदा सदा गोबिंद भोलिया हऊ मैं सुरत वसार हऊ मैं मार बिचार मन गुण विच गुण लै सार रहाउ कर्म पेड़ साखा हरी धर्म फुल फल ज्ञान पत परापत शाम घणी चूका मन अभमान अखी कुदरत कन्नी बाणी मुख आखण सच नाम पत का धन पूरा हुआ लागा सहज ध्यान महारुति आवना वेखो हो कर्म कमाए नानक हरे ना सूके जे गुरमुख रहे समाए महला पहला बसंत रुत आई ले सरस बसंत माए रंग राते रवै से तेरे चाए किस पूज चढ़ावो लगो पाए तेरे दासन दासा कहो राय जग जीवन जुगत ना मिले काय रहाउ तेरी मूर्त एका बहुत रूप किस पूज चढ़ावो देवो धूप तेरा अंत ना पाया कहां पाए तेरा दासन दा

काजी मुल्ला हुवै सेख जोगी जंगम भगवे पेख को गिरही कर्मा की संद बिन बूजे सब खड़ी अस बंद जेते जी लिखी सिरकार करनी ऊपर हो अगसार हुक्म कर है मूर्ख गावार नानक साचे के सिफत भंडार बसंत महला तीजा बस्तर उतार दिगंबर होग जटा धार।

पार उत्तर जाहे एक खिना रहाऊ, सिमरत शास्त्र करह वख्यान, नादी बेदी पढ़ पुराण, पाखंड दृष्ट मन कपट कमाहे, तिन कैर मैया नेड़ नाई, जे को ऐसा संजमी होए, क्रिया वसेख पूजा करे।

मैला हुए तीर्थ पवै दसंतर लोए नानक मिलिया सतगुर संग तौ पवजल के तू तस बंद बसंत महला पहला सगल भवन।

बिन साधना पाई है हर का संग, बिन गुर महल मलीन अंग, बिन हर नाम ना शुद्ध होवे, गुर शब्द सलाहे साच सोए। जाको तू रख है रखन हार, सतगुरु मलावह करह सार, बिक हो मैं ममता पर हराए, सब दुख

अपरंपरे अगमय गोचर गुरमुख हर आप तलाए अतुल तोल रहाउ गुर चरण सरे वह गुर सिख तोर गुर सेव तरे तज मेर तोर नर निंदक लोभी मन कठोर गुर सेव ना पाई से चोर चोर गुर तुठा बख्शे भगत पाओ गुर तुठै पाइय हर महल ठाऊ पर हर निंदा हर भगत जाग हर भगत सुहावी कर्म भाग गुर मेल मलावै करे दात गुर सिख प्यारे दिन सरात फल नाम प्राप्त गुर तुस दे कहो नानक पावह बिरले के बसंत महला तीजा इक तुका साहिब भावै सेवक सेवा करै जीवत मरै सब कुल उधर है।

खाया मन है तिना ही सेती वासा प्रणवत नानक दासन दासा खिन तोला खिन मासा बसंत हंडोल महला पहला साचा साहो गुरु सुख दाता हर मेले भुख गवाई कर कृपा हर भगत दृढ़ाई अन दिन हर गुण गाई मत भूलै हरे मन चेत हरी बिन गुर मुक्त नाही त्रै लोई गुरमुख पाईऐ नाम हरी रहाओ बिन भगती नहीं सतगुर पाईऐ बिन भागा नहीं भगत हरी बिन भागा सतसंग न पाईऐ कर्म मिलै हर नाम हरी घट घट गुप्त अपाए वेखै प्रगट गुरमुख संत जना हर हर करह सो हर रंग पीने हर जल अमृत नाम मना जिनको तख्त मिलै वडियाई गुरमुख से प्रधान किए पारस भेट भये से पारस नानक हर गुर संग थीए बसंत महला तीजा कर पहला दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद महारुति मह सद बसंत जित हरिया सब

सेव परम सुख पावह आत्म देव रहाउ। कर्म होवे ता सेवा करे गुर प्रसादी जीवत मरे अन दिन साच नाम उच्चरे इन विद प्राणी दुत्तर तरे देखे अमृत करतार उपाई संसार बिरख को दोए फल लाई आपे करता करे कराई जो तिस पावे तिसे खुआई नानक जिसनो नदर करे अमृत नाम आपे दे विख्या की बासना मन है करे अपना पाणा आप करे बसंत महला तीजा राते साच हर नाम निहाला दया करो प्रभ दीन दयाला तिस बिन अवर नहीं मैं कोई ज्यों पा

लोभ लुभाना, राम विसार बहुर पछताना, विसरत मलाए गुर सेव रांगी, हर नाम दियो मस्तक वड भागे, पौन पानी की एह दे शरीरा, हौं मैं रोग कठन तन पीरा, गुरमुख राम नाम दारू गुण गाया, कर कृपा गुर रोग गवाया, चार नदियां अग्नि तन चारी, तृष्णा जलत जले अहंकारी, गुर राखे वड भागी तारे, जन नानक उर हर अमृत धारी, बसंत महला तीजा, हर सेवे सो हर का लोग, साच सहज कदे ना होए सोग, मन मुख मुए नाही हर मन माही, मर मर जम्मह पी मर जाहि, से जन जीवे जिन हर मन माहि, साच सुमाल है साच सुमाहि रहाउ, हर ना सेवह ते हर ते दूर, दसंतर पवह सिर पावह तूर, हर आपे जन लिए लाए, तिस सदा सुख है तिल ना तमाए, नदर करे चूकै अभमान, साची दरगाह पावै मान, हर जियो वेखै सद हजूर, गुर कै शब्द रहया परपूर, जी जंत की करे प्रतपाल, गुर प्रसादी सद संभाल, दर साचै पत स्यों घर जाए, नानक नाम वडाई पाए, बसंत महला तीजा, अंतर पूजा मन ते होए, एको वेखै और ना कोए, दूजै लोकी बहुत दुख पाया।

पाए, तौ जग जीवन वसै मन आए, भगत करे सद वेखै हजूर, मेरा प्रभ सद रहया भरपूर, इस भगति का कोई जाने पियो, सब मेरा प्रभ आत्म देव, आपे सतगुर मेल मलाए, जग जीवन स्यो आप चित लाए, मन तन हरिया सहज सुपाए, नानक नाम रहे लिव लाए, बसंत महला तीजा, भगत वच्छल हर वसै मन आए, गुर कृपाते सहज सुपाए, भगत करे विचों आप खोए, तद ही साच मलावा होए, भगत सोह है सदा हर प्रभ द्वार, गुर कै हित साचै प्रेम प्यार रहाउ, भगत करे सो जन निर्मल होए, गुर शब्दी विचों

संत मन तन हरिया रव गुण गोविंद बिन नाम सूका संसार अग्न तृष्णा जल वारो वार सोई करे जे हर जियो पावे

ले आई। बसंत महला तीजा, माया मोह शब्द जलाई, मन तन हरिया सतगुर पाई, सफलो बिरख हर कै द्वार, साची बाणी नाम प्यार, ए मन हरिया सहज सुपाई, सच फल लागे सतगुर पाई रहाऊ, आपे नेड़ आपे दूर, गुर कै शब्द वेखै सद हजूर, शाम घणी फूली बनराई, गुरमुख बिबसै सहज सुपाई, अन दिन कीर्तन करह दिन रात, सतगुर गवाई विचों जूठ परांत, परपंच वेख रहया विस्माद, गुरमुख पाईए नाम प्रसाद, आपे करता सब रस भोग, जो किछ करे सोई पर होग, वड्डा दाता तिन नात माई, नानक मिलिए शब्द कमाई।

नाम रता जन प्रगट हुए, एक साचा शब्द रहे लिव लाए, से जन साचे साचे पाए, साच त्याइन देख हजूर, संत जना की पग पंकज तूर, एको करता अवर न कोए, गुर शब्दी में लावा हुए, जिन साच सेवया तिन रस पाया, नानक सहजे नाम समाया, बसंत महला तीजा, पगत करह जन देख हजूर, संत जना की पग पंकज तूर, हर सेती सद रह लिव लाई, पूरे सतगुर

गुर कै शब्द हर दर निशान है, दर साचै सच सोभा हुए, निज कर वासा पावै सोए, आप अपुल सच्चा सच सोए, होर

देव बिरख जम्यो है पार जात फूल लगे फल रतन पांत तृप्त अगाने हर गुण गाई जन नानक हर हर हर त्याई बसंत।

तिस साद बसंत जिस हृदय नाम ग्रह ताके बसंत गनी जा कै कीर्तन हर धुनी रहाऊ प्रीत पार ब्रह्म मौल मना ज्ञान कमाई पूछ जना सो तपसी जिस साध संग साध ध्यानी जिस गुरह रंग से निर्भउ जिन भउ पया सो सुखिया जिस भ्रम गया सो एकांती जिस हृदा थाए सोई निश्चल साच ठाए एका खोजै एक परीत दर्शन।

दयाल नाम जपत होवत निहाल मेरे प्रीतम कारण करण जोग हौ पावो तुम ते सगल थोक रहाउ नाम जपत होवत उदार नाम जपत सुख सहज सार नाम जपत पत सोबा होई नाम जपत बिघन नाही कोई जा कारण एह दलभ दे

तम प्राण आधार मन जियो प्राण सब तेरो धन रहाउ जाको खोजह सुर नर देव मुन जन सेख ना लह भेव जा की गत मित कही ना जाए घट घट घट घट रहे आसमाए जाके भगत आनंद मै जाके भगत को नाही खै जा।

अगम अगम ऊंचा ते ऊंचा, हम थोरे तुम बहुत मूचा, जिन तू त्याया से गनी, जिन तू पाया से तनी, जिन तू सेव्या सुखी से, संत सरण नानक परे, बसंत महला पंजवा, तिस तू सेव जिन तू किया, तिस अराध जिन जियो दिया, तिसका चाकर होहे फिर डान ना लागे, तिसकी कर पोत दारी फिर दुख ना लागे, एवड भाग होहे जिस प्राणी, सो पाए इहो पद निर्वाणी, रहाउ दूजी सेवा जीवन बिरथा, कछु ना होई है पूर्ण अर्था, मानस सेवा खरी दोहेली, साध की सेवा सदा सुहेली, जे लोड़ है सदा सुख पाई।

जिसके धारे तरन आकाश कट कट जिसका है परगास जिस सिमरत पतत पनीत होए अंत काल फिर ना रोए सगल धर्म मह उत्तम धर्म कर्म करतूत कै ऊपर कर्म जिसको चाह है सुर नर देव संत सभा की लगो सेव आद पुरख जिसकी आदान तिसको मिलिया हर निदान तिसकी गत मिट कही ना जाए नानक जन हर हर त्याय बसंत महला पंजवां मन तन भीतर लागी प्यास गुरदयाल पूरी मेरी आस किल विख काटे साध संग नाम जपियो हर नाम रंग गुर प्रसाद बसंत बना चरण कमल हृदय उरतारी सदा सदा हर जस सुना।

जह गोविंद भगत सो धन देश हर भगत हीन उद्यान थान गुर प्रसाद कट कट पहचान हर कीर्तन रस भोग रंग मन पाप करत तू सदा संग निकट पेख प्रभ करन हार ईत ऊत प्रभ कार्ज सार चरण कमल स्यों लगो।

पंजवा गुरचरण सरेवत दुख गया पार ब्रह्म प्रभ करी मया सर्व मनोरथ पूर्ण काम जप जीवै नानक राम नाम सारुत सुहावी जित हर चेते आवै बिन सतगुर दीसै बिल लांती साकत फिर आवै जावै रहाउ से तनवंत जिन हर प्रभ रास काम क्रोध गुर शब्द नास पै बिन से निरपै पद पाया गुरमिल नानक खसम त्याया साध संगत प्रभ कियो निवास हर जप जप होई पूर्ण आस जल तल मही अल रव रहिया गुरमिल नानक हर हर कहिया अष्ट सिद्ध नव निध एह कर्म परापत जिस नाम दे प्रभ जप जप जीवह तेरे दास गुरमिल नानक कमल परगास बसंत महला पंजवा घर पहला एक तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल इच्छा जप पुनिया प्रभ मेले चिरी वछुनिया तुम रवहु गोविंद रमण योग जित रवे सुख सहज भोग रहाउ कर कृपा नदर निहालिया अपना दास आप संभालिया सेज सुहावी रस बनी आए मिले प्रभ सुख धनी मेरा गुण अवगुण ना बिचारिया प्रभ नानक चरण पूजारिया बसंत महला पंजवा किल बिख बिन से गाए गुना अन दिन उपजी सहज धुना मन मौले ओ हर चरण संग कर कृपा साधु जन भेटे नित रातो हर नाम रंग रहाउ कर कृपा प्रगटे गोपाल लड़ लाए उधारे दीन दयाल एहो मन होआ साध तूर नित देखै स्वामी हजूर काम क्रोध तृष्णा गई नानक प्रभ कृपा पई

सदब संत गुरपुरे की सरनी आए, कल्याण रूप जप हर हर मंत रहाउ, सोग संताप कटे प्रभ आप, गुरे अपने को नित नित जाप, जो जन तेरा जपे नाउ, सब फल पाए निश्चल गुण गाओ, नानक भगतां।

फूल फूले अहं त्याग त्यागे चरण कमल पागे तुम मिलो हो प्रभ सुभागे हर चेत मन मेरे रहाओ सगन बास कूले एक रहे सूख कठूले बसंत रुत आई पर फूल तारहे अब कलू आयो रे एक नाम बोवहो अन रूत नाही नाही मत परम भूलो गुर मिले हर पाए जिस मस्तक है लेखा मन रुत नाम रे गुण कहे नानक हर हरे बसंत महला पंजवां घर दूजा हिंडोला।

पया द्वारे रख ले वो मुगद अजाना। बसंत हंडोल महला पंजवा मूल ना बूझै आप ना सूझै भरम व्यापी अहंग मनी पिता पार ब्रह्म प्रभ धनी मोहे निस्तार हो निर्गुणी रहाउ ओपत परलो प्रभ ते होवै एह बिचारी हर जनी नाम प्रभु के जो रंग राते कलम है सुखिये से जनी अवर अपाओ न कोई सूझै नानक करियै गुर बचनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग बसंत हंडोल महला नौवा साधो ए तन मिथ्या जानो जा भीतर जो राम बसत है साचो ताहे पछानो रहाओ एहो जग है संपत सुपने की देख कहां ऐडानो संग तिहारै कछु ना चालै ताहे कहां लपटानो उस्तत निंदा दो पर हर हर कीरत उरियानो जन नानक सब ही मैं पूरन एक पुरख भगवानो बसंत महला नौवा पापी ही है मैं काम बसाए मन चंचल याते गहयो ना जाए रहाउ जोगी जंगम अर सन्यास सब ही पर डारी एह फास जेह जेह हर को नाम समार ते भव सागर उतरे पार जन नानक हर की सरनाए दीजै नाम रह गुण गाए।

संग तेरा हर बसत नीत निस बासर भज ताहे मीत बार अंत की हुए सहाय कहो नानक गुण तां के गाए बसंत महला पहला अष्टपदियां घर पहला दो तुकिया

सब दुख सखाई गुण है बीन, मन चले न जाई ठाक राख, बिन हर रस राते पत ना साख, तू आपे सुरता आप राख, तर धारण देख जान है आप, आप भलाए किस कहो जाए, गुरमेले बिरथा कहो माए, अवगुण छोड़ो गुण कमाए, गुर शब्दी राता सच समाए, सतगुर मिले है मत उत्तम होए, मन निर्मल हम मैं कदै धोए, सदा मुक्त बांध ना सकै कोई, सदा नाम वखाणै और ना कोई।

दुख घणो मरिए करतारा, बिन प्रीतम को करे ना सारा, सब उत्तम किसे आखो ही ना, हर भगती सच नाम पतीना, रहाऊ औखद कर थाकी बहु तेरे, क्यों दुख चूकै बिन गुर मेरे, बिन हर भगती दुख कनेरे, दुख सुख दाते।

आप आपे बशरु गऊ खीर आपे मंदर थम शरीर आपे करनी करनहार आपे गुरमुख कर विचार तू कर कर देख करनहार जोत जी असंख दे आधार तू सर सागर गुण गहीर तू अकुल निरंजन परम हीर तू आपे करता करन जोग नेह केवल राजन सुखी लोग नानक त्रापे हर नाम स्वाद बिन हर गुरु प्रीतम जन्म वाद बसंत हंडोल महला पहला कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नौ सत चौदह तीन चार कर महलत चार बहाली चारे दीवे चौ हथ दिए एकाएका वारी मेहरवान मधुसूदन माधो ऐसी सकत तुम्हारी रहाओ कर कर लश्कर पावक तेरा धर्म करे सिखदारी।

मार पवै नित मुदगर पाप करे कोटवारी पावे चंगा पावे मंदा जैसी नजर तुम्हारी आद पुरख को अल्लाह कही है सिखा आई वारी देवल देवतियां कर लागा ऐसी कीरत चाली कूजा बांग निवाज मुसल्ला नील रूप बनवारी घर घर मियां सबना जिया बोली अवर तुम्हारी जे तू मीर महीपत साहेब कुदरत कौन हमारी चारे कुंत सलाम करेंगे घर घर सिफत तुम्हारी तीरत सिमरत पुन दान किशलाहा मिले दिहाड़ी नानक नाम मिले वड्याई मेका घड़ी संभाली बसंत हंडोल घर दूजा महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद काया नगर एक बालक वसिया हिन पल फिर ना रहाई अनक अपाव जतन कर थाकी बारंबार परमाई मेरे ठाकुर बालक इकत घर आन सतगुर मिले ता पूरा पाई है पज राम नाम निशान रहाओ एहो मृतक मड़ा शरीर है सब जग जित राम नाम नहीं वसिया राम नाम गुर उदक चुआया फिर हरिया हो आरसिया मैं निरखत निरखत शरीर सब खोजिया एक गुरमुख चलत दिखाया बाहर खोज मुए सब साकत हर गुरमति कर पाया दीना दीन दयाल भये हैं ज्यों कृष्ण बिदर घर आया मिले उस दामा पावनी तार सब किसे आगे दालद पंज समा

नरेन ले मस्तक लाऊ कर कृपा देन रहाउ गन का उदरी हर कह तूत गज इंद्र त्यायो हर कियो मूख बिपर सदामे दाल्द पंज रे मन तू पी पज गोविंद बदक उदारे हो खम परहार कुबजा उदरी अंगुष्ट तार बिदर उदारे उदास्त पाय रे मन तू पी हर त्याय प्रहलाद रखी हर पैज आप बस्तर सीनत द्रौपदी रखी लाज जिन जिन सेव्या अंत बार रे मन सेव तू परह पार तन्नै सेव्या बाल बुद्ध त्रिलोचन गुरमिल पई सिद्ध बेणी कौ गुर कियो परगास रे मन तू पी होए दास जय

भगत राख तिनका गुण अवगुण ना विचार्यो कोए। एह बिद देख मन लगा सेव कबीर त्यायो एक रंग नाम देव हर जियो बसह संग रविदास त्याए प्रभ अनूप गुरु नानक देव गोविंद रूप बसंत महला पंजवा अनक जन्म भ्रमे जोन माहे हर सिमरन बिन नरक पाहे भगत बिहूना खंड खंड बिन बूझे जम देत दंड गोविंद भजो हो मेरे सदा मीत साच शब्द कर सदा प्रीत रहाउ संतोख ना आवत कहूं काज धूम बादर सब माया साज पाप करम तव नह संगाई बिख का माता आवै जाई हौ हौ करत बदे बेकार मोह लोभ डूबो संसार राम क्रोध मन वस किया सुपने नाम ना हर लिया कब ही राजा कब मंगन हार दुख सुख बांधो संसार मन उधरन का

मौली सिंह कतेब शंकर मौल्यो जोग त्यान कबीर को स्वामी सब समान पंडित जन माते पढ़ पुराण जोगी माते जोग त्यान सन्यासी माते अहमेव तपसी माते तप कै भेव सब मद माते को न जाग संग ही चोर कर मुसन लाग रहाउ जागै सुख देओ अर अकूर हनुमंत जागै तर लंकूर शंकर जागै चरण सेव कल जागे नामा जय देव जागत सोवत बहु प्रकार गुरमुख जागै सोई सार इस देही के अधिक काम कह कबीर पज राम नाम जोए खसम है जाया पूत बाप खेलाया बिन श्रवणा खीर पिलाया देखो लोगा कल को पाओ सुतम कलाई अपनी माओ रहाओ पगा बिन हुरिया मारता बदने बिन खिर खिर हासता निंद्रा बिन नर पैसो है बिन बासन खीर बलोवै बिन अस्थन गऊ लवेरी पेंडे बिन बाट कनेरी बिन सतगुर बाट न पाई कहो कबीर समझाई प्रहलाद पठाए पर्ण साल संग सखा बहु लिए बाल मोको कहां पढ़ाव से आल जाल मेरी पटिया लिख दे हो श्री गोपाल नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम मेरो और पढ़न स्यो नहीं काम रहाओ संडे मर कह कहो जाए प्रहलाद बलाए बेगताए तू राम कहन की छोड़ बान तुझ तुरत छाऊ मेरो कहो मान मोको कहां सताव हो बार बार प्रभ जल थल गिर किए पहार एक राम ना छोड़ो गुरहगार मोको काल जार पावे मार डार काड खड़ग को प्यो रिसाए तुझ राखनहार मोहे बताए प्रभ थंब ते निकसे कै विस्थार हरनाक्ष छेदे हो नख बेदार ओए परम पुरख देवाद देव भगत हेत नर सिंह भेव कह कबीर को लखै ना पार प्रहलाद उधारे अनक बार इस तन मन मधे मदन चोर जिन ज्ञान रत्न हिरलीन मोर मैं अनाथ प्रभ कहो काहे को ना बेगूतो मैं को आहे माधो दारण दुख सहयो न जाए मेरो चपल बुद्ध स्यो

बैठ खाया। गोबर जूठा चौका जूठा जूठी दीनी कारा, कहत वीर तेई नर सूचे साची परी बेचारा। रामानंद जी का

मेरा चेतना चले मन भयो पंग रहाउ एक दिवस मन भई उमंग कस चंदन चुआ बहु सुगंध पूजन चाली ब्रह्म ठाए सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माए।

सतगुर मैं बलिहारी टोर, जिन सकल बिकल भ्रम काटे मोर। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटे कोट कर्म। बसंत बाणी नाम देव जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। साहिब संकट वै सेवक भजै, चिरंकाल ना जीवै दो कुल लज्जै। तेरी

है, कैसे संत जना राम नाम ना छाड़े। गंगा गया गोदावरी संसार के कामा नारायण सो प्रसन्न हुए।

हों तार भी ना जानो मोको बाहां दे बीठला सहज अवल धूड़ मणि गाडी चालती पीछे तिनका लै कर हाकती जैसे पनकत थ्रू टिट हाकती सर धोवन चाली लाडुली रहाउ धोबी धोवे बिरह बराता हर चरण मेरा मन राता पणत नाम देओ राम रहिया अपने भगत पर कर दया बसंत बाणी रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद तुझे सुजनता कछु नाही पहरावा देखे ऊब जाए गर्भ

रूब राज तू तिस ते खरी उतावली रहाउ, जैसे कुरंक नहीं पायो भेद, तन सुगंध ढूंढै परदेस, आप तन काजो करे विचार,

पाछे किसह पकार है पियो पियो। साधु की जो लेहे ओट, तेरे मिट है पाप सब कोट कोट। कहर वदास जो जपे नाम, तिस जात ना जन्म ना जोन काम। बसंत कबीर जीओ एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुरा की जैसी तेरी चाल, तेरी पूछत ऊपर चमक बाल। इस कर्म है

साधना फीकी रस बिन बिन प्रभ काल संता पै रहाउ। जब लग दर्शन परसै प्रीतम तब लग भूख प्यासी। दर्शन देखत ही मन मानिया जल रस कमल बिगासी। ऊनम कनहर गरजै बरसै कोकिल मोर बैरागै। तरवर बिरख बिहंग पोयंगम घर पेर तन सोहागै। कुचिल करूप कुनार कुलखनी बिरका सहज ना जानिया। हर रस रंग रसन नहीं तृप्ति दुर्मत दुख समानिया। आए ना जावे ना दुख पावे ना दुख दर्द शरीरे। नानक प्रभ ते सहज सुहेली प्रभ देखत ही मन धीरे। सारंग महला पहला दूर नाही मेरो प्रभ प्यारा। सतगुर बचन मेरो मन मानिया हर पाए प्राण अधारा रहाउ। इन विद हर मिलिया वर कामन तन सुहाग प्यारी। जात बरन कुल सहसा चूका गुरमत शब्द बिचारी। जिस मन माने अभमान ना ताको हिंसा लोभ वसारे। सहज रवै वर कामन पिरकी गुरमुख रंग सुवारे। जारो ऐसी प्रीत कटंब सलबंदी माया मूप सारी। जिस अंतर प्रीत राम रस नाही दुबदा कर्म बेकारी। अंतर रत्न पदार्थ हित को दुरै न लाल प्यारी। नानक गुरमुख नाम अमोलक जुग जुग अंतर तारी। सारंग महला चौथा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर के संत जना की हम धूर मिल सत संगत परम पद पाया। आत्म राम रहया भरपूर रहाउ। सतगुर संत मिले शांत पाईए किल विख दुख काटे सब दूर। आत्म ज्योत पई परफूलत पुरख निरंजन देखिया हजूर। वड्डै भाग सत संगत पाई हर हर नाम रहया भरपूर। अठ सत तीरथ मज्जन किया सत संगत पग नाए धूर। दुर्मत बिकार मलीन मत होशी हिरदा कसुद्ध लागा मोह कूर। बिन कर्मा क्यों संगत पाईऐ होमै व्याप रहया मन चूर। हो दयाल कृपा कर हर जी मांगो सत संगत पग धूर। नानक संत मिले हर पाईऐ जन हर पेटिया राम हजूर। सारंग महला चौथा गोबिंद चरणन को बलिहारी। भवजन जगत ना जाई तरना जप हर हर पार उतारी रहाउ। हृदय प्रतीत बनी प्रभ केरी सेवा सुरत बिचारी। हर दिन राम नाम जप हृदय।

रखारी अंतर हर नाम सर्व धरनी तर साकत को दूर भया अहंकारी तृष्णा जलत न कबू बूझ जुए बाजी हारी उठत बैठत हर गुण गावे गुर किंचित कृपा तहारी नानक जिनको नदर पई है।

गुरमुख मन मानिया तिनके काज सुवारे रहाउ। जो जन दीन भये गुर आगै तिनके दुख निवारी। आन दिन भगत करह गुर आगै गुर कै शब्द सुवारी। हिरदय नाम अमृत रस रसना रस गावह रस बिचारी। गुर प्रसाद अमृत रस चीनिया वे पावह मूख दुवारी। सतगुर पुरख अचल अचलह मत जिस दृढ़ता नाम अधारी। तिस आगै जियो देवो अपना हौ सतगुर कै बलिहारी। मन मुख ब्रह्म दूजै भाई लागी अंतर अज्ञान गुबारी। सतगुर दाता नदर ना आवै ना उरवार ना पारी। सर्वे कट कट रविया स्वामी सर्व कला कल तहारी। नानक दासन दास कहते है कर कृपा ले हो उभारी। सार महला चौथा गोविंद की ऐसी कार कमाई। जो किछ करे सो सत कर मानो गुरमुख नाम रहो लिव लाई। रहाओ गोविंद प्रीत लगी अत मीठी अवर विसर सब जाय। अन दिन रहस भया मन मानिया ज्योति ज्योत मलाई। जब गुण गाए तब ही मन तृप्त शांत वसै मन आई। गुर कृपाल भये तब पाया हर चरणी चित लाए। मत प्रगास भई हर त्याया ज्ञान तत् लिव लाए। अंतर ज्योत प्रगटी मन मानिया हर सहज समाद लगाए। हिरदय कपट नित कपट कमावह मुखो हर हर सुनाए। अंतर लोभ महा गुबारा तोह कूटै दुख खाए। जब सो प्रसन्न भये प्रभ मेरे गुरमुख पर क्या लाए। नानक नाम निरंजन पाया नाम जपत सुख पाए। सार महला चौथा मेरा मन राम नाम मन मानी। मेरा ही रह सतगुर प्रीत लगाई। मन हर हर कथा सुखानी रहाओ। दीन दयाल हो जन ऊपर जन देव हो अकथ कहानी। संत जना मिल हर रस पाया हर मन तन मीठ लगानी। हर कह

मेरा प्रीतम जन संतो मोहे मार्ग दिखलावे। तिस जन के हो मल मल धुआ पाऊ, हर जन को हर मिलिया, हर श्रद्धा ते मिलिया, गुरमुख हर मिलिया। मेरा मन तन आनंद भये, मैं देखिया हर राउ। जन नानक को कृपा पई, हर की कृपा पई, जगदीश्वर कृपा पई। मैं अनदिनो साध साध सदा, हर जपिया हर नाउ। सारंग महला चौथा, जप मन निरभउ, सत सत सदा सत, निर्वैर अकाल मूरत अजूनी संभव। मेरे मन अन दिनो त्याए, निरंकार निराहारी रहाओ। हर दर्शन को हर दर्शन को, कोट कोट ते तीस, सिद्ध जति जोगी तट तीर्थ पर पवन करत रहत निराहारी। किन जन की सेवा थाए पई, जिनको कृपाल होवत बनवारी। हर के हो संत भले, ते उत्तम भगत भले, जो पावत हर राम मरारी। जिनका अंग करे मेरा स्वामी।

मन हर बोल हर पुरख अविनाशी रहाउ हर का नाम अमृत हर हर हरि सो पिए जिस राम प्यासी हर आप दयाल दया कर मेले जिस सतगुरु सो जन हर हर अमृत नाम च खासी जो जन सेव है सद सदा मेरा हर हरि इनका सब दुख भरम पहु जासी जन नानक नाम लए तां जीवै ज्यों चात्रक जल पिए त्रिपतासी सारंग महला चौथा जप मन श्री राम राम रमत राम सत सत राम बोलो पैया सद राम राम राम रव रहया सर्बगे रहाउ राम आपे आप आपे सब करता राम आपे आप आप सबत जगे जिस आप कृपा करे मेरा राम राम राम राय सो जन राम नाम लिव लागे राम नाम की उपमा देखो हर संतो हो जो भगत जना की पात राख बिच कल युगे अगे जन नानक का अंग किया मेरे राम राय दुश्मन दुख गए सब भगे

अंतर प्यास चातरक ज्यो जल की सफल दर्शन कद पाऊं रहाओ अनाथा को नाथ सर्व प्रत पालक भगत वच्छल हर नाउ जा को कोई न राखे प्राणी तिस तू देहे असराऊ।

मित नहीं पाई है, सब तेरो खेल दिखाओ। साधन का संग साध स्यों गोसत, हर साधन स्यों लिवलाओ। जन नानक पाया है गुरमत, हर देहो दर्श मन चाओ। सारंग महला पंजवां, हर जियो अंतर जामी जान। करत बुराई मनुख ते छपाई, साखी भूत पवान रहाओ। वैसनो नाम करत खट करमा, अंतर लोभ जुठान। संत सभा की निंदा करते, डूबे सब अज्ञान। करह सोम पाक, हिरह पर दर्भ।

करह सब वर्ता, जो सपरी दम्फान प्रभु पुलाए उजड़ पाए, निफल सब करमान। सो ज्ञानी सो वैष्णव पढ़िया, जिस करी कृपा।

यह बचन उपहास कहूं, जो सुरजन ग्रह पीतर आयो तब मुख काज लजो, ज्यों कनको कुठारी चढ़ो कबरो होत फिरो, जब ते सुध पय है बारह तब ते थान थिरो, जो दिन रैन तौ लौ बजियो मूर्त करी पलो, बजाव नहारो ऊठ सधारियो तब फिर बाज ना पयो, जैसे कुंभ उदक पूरे आने हो तब ओह भिन्न दृष्टो, कहो नानक कुंभ जलै मह डारियो अंबै अंब मिलो, सारंग महला पंजवा अब पूछे क्या कहा, लैनो नाम अमृत रस नीको।

कालर बिरख जिवहा आयो लाभ लाभन कहताई मोहन ठगौरी स्यो उलझ पाहा काच बादर लाल खोई है फिर एहो अवसर कद लाहा सगल पराध एक गुण नाही ठाकर छोड़ है दास भजहा आई मस्त जड़वत की न्याई ज्यो तस्कर दरसा नेहा आन अपाओ न को सूजे हरदासा सरणी पर रहा कहो नानक तब ही मन छुटी जो सगले अवगुण मेट तरहा सारग महला पंजवा माई तीर रही प्रिय बहुत बरागेव अनक पांत अनूप रंग रे तिन स्यो रुचे न लाग्यो रहाओ निसबासर प्रिय प्रिय मुख टेरो नींद पलक नहीं जाग्यो हार कजर बस्तर अनक शिंगार रे

सब मन तने अर्पण शीस चरण पर राखियो चरण बंदना मोल दासरु देओ साध संगत अरदागियो करहु कृपा मोहे प्रभु मलावहु निमुख दर्श पे खागियो दृष्ट पई तब पीतर आयो मेरा मन अन दिन सीत लागियो कहो नानक रस मंगल गाए शब्द अनाहद बाजियो सारंग महला पंजवां माई सत सत सत हर सत सत सत साधा बचन गुरु जो पूरे कहियो मैं शीक गांठरी बांधा रहा निसबासर नखियतर बनासी राव ससियर बेनादा गिर बसदा जल पवन जाएगो एक साध बचन अटलादा हंड बनासी जेर बनासी उत्पुज सेत बनाधा चार बनासी खटह बनासी एक साध बचन निहचलादा राज बनासी ताम बनासी सातक पी बेनादा दृष्ट मान है सगल बनासी एक साध बचन आघादा आपे आप ही आपे सब आपन खेल दिखादा पायो ना जाई कहीं पांतरे प्रभ नानक गुर मिल लादा सार महला पंजवां मेरा मन बास गो गुरु गोबिंद जहां सिमरन पयो है ठाकुर तहां नगर सुख आनंद रहाउ जहां बीसरे ठाकुर प्यारु तहां दुख सब आपद जह गुण गाए आनंद मंगल रूप तहां सदा सुख संपद जहां श्रवण हर कथा ना सुनिए तह महाप्यान उदयांद जहां कीर्तन साध संगत रास तह सगन बास फलानंद बिन सिमरन कोट बरख जीवे सगली औद बिर

काजर मह परया बहोर बहोर फिर चारे काटे पेड़ दाल पर ठांडो खाए खाए मुश्कार है गिरयो जाए रसातल परयो सिटी सिटी सिर पार है निर्वैर संग वैर रचाए पहुंच ना सके ग्वार है कहो नानक संतन का राखा पार ब्रह्म निरंकार है सारंग महला पंजवा अवर सब भूले भ्रमत ना जानिया एक सदाखर जा कै हिरदय वसिया किन बेद है तत पछानिया रहाउ परविरत मार्ग जेता किश होई है तेता लोग पचारा जौ लो हृदय नहीं परगासा तौ लो अन्न अंधारा जैसे धरती साधै बहु बिद बिन बीजै नहीं जामै राम नाम बिन मुक्त ना हुई है टुटै नाही अभिमानै नीर बलोवै अत श्रम पावै नैनु कैसे रिसै बिन गुर पेटे मुक्त ना काहू मिलत नहीं जगदीसै खोजत खोजत एह बिचारियु सर्व सुखा हर नामा कहो नानक तिस पयो पराप।

एहो मन नहीं धीरै को है रे संत मलाई जप तप संयम पुन सब होम तिस अर्पों सब सुख जाई एक निमक प्रिय दर्शद खावै इस संतन कै बल जाई करो निहोरा बहुत बेनती सेवो दिन रह नाई मान अवमान हो सगल त्यागो जो प्रिय बात सुनाई देख चरित्र पई हो बिस्मन गुर सतगुर पुरख मलाई प्रभ रंग दयाल मोहे ग्रह मह पाया जन नानक तपत बुझाई सारी महला पंजवा रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही नरक कोर मह उर्द तप करता निमख निमख गुण गाही रहाओ अनक जन्म भ्रम तो ही आयो मानस जन्म दुल पाही गर्भ जोन छोड़ जो निकस्यो तो लागो अनठाही करह बुराई ठगाई दिन रहन निफल कर्म कमाही कण नाही तुहो गाहन लागे ताए ताए दुख पाही मिथ्या संग कूड़ लपटायो उर्ज पर्यो कुसमाही धर्म राए जब पकरस बबरे तो काल मुखा उठ जाही सो मिलिया जो प्रभु मलाया जिस मस्तक लेख लिखाही कहो नानक तिन जन बलिहारी जो अलिप रहे मन माही सारंग महला पंजवां क्यों जीवन प्रीतम बिन माई जाके बिसरत होत मृत का ग्रह मह रहन ना पाई रहाओ जी ही प्राण को दाता जा कै संग सुहाई करहु कृपा संतो मोहे अपनी प्रभ मंगल गुण गाई चरण संतन के माथे मेरे ऊपर नैनो तूर बाशाई जिहे प्रसाद मिलिया प्रभ नानक बल बल ता कह हो जाई सार महला पंजवा वा अवसर कह हो बल जाई आठ पहर अपना प्रभ सिमरन वड भागी हर पाई रहाओ भलो कबीर दास दासन को उत्तम सैन जन नाई ऊच ते ऊच नाम देहो समदर्सी रविदास ठाकुर बन आई जियो पिंड तन तन साधन का एहो मन संत रिनाई संत प्रताप परम सब नासी नानक मिले गुसाई सार महला पंजवा मनोरथ पूरे सतगुरे आप सगल पदार्थ सिमरन जाकै आठ पहर मेरे मन जाप रहाओ अमृत नाम स्वामी तेरा जो पीवै तिस ही त्रिपतास जन्म जन्म के किलबिख नस है आगे दरगाह हुए खलास शरण तुम्हारी आयो करते पार ब्रह्म पूर्ण अविनाश कर कृपा तेरे चरण त्यावो नानक मन तन दर्स प्यास सार महला पंजवा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन कहां लभाइए आन।

यह अघावन पान को अकाल मूर्त है साध संतन की था हरने की ध्यान को वाणी मंत्र महापुरखन की मन है उतारन मान को खोज लहो नानक सुख थाना हर नामा विश्राम को सार महला पंजवा मन सदा मंगल गोविंद गाय रोग सोग तेरे मिट है सगल अग निमख ही है हर नाम त्याय रहाओ छोड़ सियानप बहो चतराई साधु सरनी जाए पाए जो हुए कृपाल दीन दुख भंजन जमते होए धर्म राय एक बिन नाही को दूजा आनना बियो लवे लाए मात पिता भाई नानक को सुख दाता हर प्राण साए सार महला पंजवा हर जन सगल उधारी संग के पये पनीत पवित्र मन जन्म जन्म के दुखारे रहाओ मार्ग चले तिन्नी सुख पाया जिन स्यों गोष्ट से तरे बूढ़त कोर अंधकूप में ते साधु संग पार परे जिनके भाग बड़े हैं भाई तिन साधु संग मुख जोरे तिनकी धूर बांछे नित नानक प्रभ मेरा कृपा करे सार महला पंजवा हर जन राम राम राम त्याय एक पलक सुख साध समागम

पतत के पातक उत्तर है, हर नामा उर धार है। जो जो सुने राम जस निर्मल, ताका जन्म मरण दुख नासा, कहो नानक पाई है वड भागी।

मान करो अब मान बोलो भूल चूक तेरी प्रह क्रिया रहाओ निकट सुनो हर पेखो नाही परम परम दुख परिया होए कृपाल गुरलाहे पार दो मिलो लाल मन हरिया एक निमक जे बिसरे स्वामी जानो कोट दिन सलाख बरिया साध संगत की पीर जो पाई तौ नानक हर संग मिरिया सार महला पंजवा अब क्या सोचो सोच बिसारी करना सा सोई कर रहिया दे नाओ बलिहारी रहाओ चौहो बिस फूल रही बिखिया बिख गुरमंत्र मूख गरुड़ारी हाथ दे राख्यो कर अपना जो जल कमला अलपारी हो नाही किस मैं क्या हुसा सब तुम ही कल तारी नानक भाग परयो हर पाछे राख संत सदकारी सार महला पंजवा अब मोहे सर्व उपाव बिरकाते कर्म कारण समरथ स्वामी हर एकस ते मेरी गाते रहाओ देखे नाना रूप बहुरंगा अन नाही तुम भांते देहे आधार सर्व को ठाकुर जी प्राण सुख दाते भ्रमतो भ्रमतो हार जो परयो तौ गुर मिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया ए सुख बेहानी राते सार महला पंजवा अब मोहे लभ दियो है हर टेका गुर दयाल भये सुखदाई अंधलै मानक देखा रहाउ काटे अज्ञान तिमर निर्मलिया बुद्ध बिगास विवेका ज्यो जल तरंग फेन जल हुई है सेवक ठाकुर भये एका जहते उठ्यो तह ही आयो सब ही एकै एका नानक दृष्ट आयो सर्ब ठाई प्राणपति हर समका सार महला पंजवा मेरा मन एकै ही प्रिय मांगै पेखायो सर्ब थान देश प्रिय रोम ना समसर लागै रहाओ मैं नीरे अनक भोजन बहु बिंजन तिन स्यो दृष्ट न करै रुचांगै हर रस चाहै प्रिय प्रिय मुख तेरै जो अल कमला लो भांगै गुण निधान मन मोहन लालन सुखदाई सर्वांगै गुरु नानक प्रभ पाहे पठायो मिलहु सखा गल लागै।

तुम ही सुग्र सुजाना सगल जोग अर ज्ञान ध्यान एक निमख ना कीमत जाना तुम ही नायक तुम है शत्रपत तुम पूर रहे भगवाना पावो दान संत सेवा हर नानक सद कुर्बाना सार महला पंजवा मेरा मन चीत आए प्रियरंगा विसरो धंद बंद माया को रजन सबाई जंगा रहाओ हर सेवो हर हृदय बसावो हर पाया सतसंगा ऐसो मिलो मनोहर प्रीतम सुख पाए मुख मंगा प्रियो अपना गुरबस कर दीना भोगो भोग नसंगा निरपौ भए नानक पौ मिटिया हर पायो पाठंगा सारंग महला पंजवा हर जियो के दर्शन कौ कुर्बानी बचन नाद मेरे श्रवन हो पूरे देहा प्रिय अंक समानी रहाओ छूटर ते गुर की सुहागन हर पायो सुगुड़ सुजानी जेह घर मह बैसन नहीं पावत सो थान मिलियो बासानी उनके बास आयो भगत बचल जिन राखी आन संतानी कहो नानक हर संग मन मन

दर्शन देख पए मन आनंद गुर कृपा ते छूटा रहाउ। बिखम थान बहुत बहुत धरिया अनक राख सुरूपता। बिखम गार कर पहुंचे नाही संत सानत पए लूटा। बहुत खजाने मेरे पाले परिया अमोल लाल अखूटा। जन नानक प्रभ कृपा तारी तौ मन मह हर रस कूटा। सारंग महला पंजवां अब मेरो ठाकर स्यो मन लीना। प्राण दान गुर पूरे दिया उरजायो ज्यो जल मीना। रहाओ काम क्रोध लोभ मद मत्सर एह अर्प सगल दान कीना। मंत्र दरडाए हर औखद गुर दियो तौ मिलियो सगल प्रबीना। ग्रह तेरा तू ठाकुर मेरा गुर हौ खोई प्रभ दीना। कहो नानक मैं सहज घर पाया हर भगत भंडार खजीना। सारंग महला पंजवां मोहन सब जी तेरे तू तार है। सुटह संघार निमख कृपा ते कोट ब्रह्मांड उधार है। रहाओ करह अरदास बहुत बेनंती निमख निमख समार है। हो कृपाल दीन दुख भंजन हाथ दे निस्तार है। क्या ए पूपत बपरे कही है कहो ए किसनो मार है। राख राख राख सुख दाते सब नानक जगत तुम्हार है। सारंग महला पंजवां अब मोहे तन पायो हर नामा पय अचिंत त्रिशन सब बुझी है। एहो लिखियो लेख मथामा रहाओ खोजत खोजत पयो बैरागी फिर आयो दे ग्रामा।

के दुख सहामा, गोविंद भजन के निर्भय व्यापारी, हर रास नानक राम नामा, सार महला पंजवा, मेरा मन मिष्ट लगे प्रय बोला, गुरबाह पकड़ प्रभ सेवा लाए, सद दयाल हर ढोला रहाओ, प्रभ तू ठाकुर सर्व प्रित पालक, मोहे कलत्तर सहत सब गोला, मान तान सब तू है तू है, एक नाम तेरा मैं बोला, जे तख्त बसाल है तो दास तुम्हारे, कास बढ़ाव है के तक बोला, जन नानक के प्रभ पुरख बधाते, मेरे ठाकुर अगह अतोला, सार महला पंजवा, रसना राम कहत गुण सोहन, एक निमख पाए समावे, देख चरित मन मोहंग रहाओ, जिस सुनिए मन हुए रहस्यत, हृदय मान दुख जोहं, सुख पायो दुख दूर परायो, बाण आई प्रभ तोहं, किल विख गए मन निर्मल होई है, गुर काटे माया द्रोहं, कहो नानक मैं सो प्रभ पाया, करन कारण समर्थो हं, सारंग महला पंजवा, नैन हूं देखियो चलत तमाशा, सब हूं दूर सब हूं ते नेरे, अगम अगम घट वासा रहाओ, अपूल ना पूले लिखियो ना चलावे, मता ना करे पचासा, खिन मह साज सुवार बना है, भगत वशल गुणतासा, अंध कूप मह दीपक बलियो, गुर हृदय कियो परगासा, कहो नानक दर्श पेख सुख पाया, सब पूरन होई आसा, सार महला पंजवा, चरन है गोविंद मार्ग सुहावा, आन मार्ग जीता किस ताई है, ते तो ही दुख हावा रहाओ, नेत्र पनीत पये दर्श पेखे, हस्त पनीत टहलावा, हृदय पनीत हृदय हर बसेओ, मस्त पनीत संत तुरावा, सर्ब निदान नाम हर हर कै, जिस कर्म लिखिया तिन पावा, जन नानक कहो गुर पूरा भेट्यो, सुख सहजे अनद बिहावा, सार महला पंजवा, त्यायो अंत बार नाम सखा, जह मात पिता सुत भाई ना पहुंचे, तहां तहां तू रखा रहाओ, अंध कूप ग्रह मह तिन सिमरियो, जिस मस्तक लेख लिखा, खुले बंधन मुक्त गुर कीनी, सब तू है तू ही दिखा, अमृत नाम पिया मन तृप्तिया, अघाए रसन चखा, कहो नानक सुख सहज मैं पाया, गुर लाही सगल तिखा, सार महला पंजवा, गुर मिले ऐसे प्रभु ते आया, पयो कृपाल दयाल दुख भंजन, लगे ना ताती बाया रहाओ, जेते सास सास हम लेते, तेते ही गुण गाया, निमख न बिसरे करी न बिसरे, सद संगे जत जाया, हौ बल बल बल बल चरण कमल कहो, बल बल गुर दरसाया, कहो नानक काहू परवाहा, जो सुख सागर में पाया।

गासा कट कट हर हर दीठा रहाओ पार ब्रह्म आजो नी संभव सर्वथान घट बीठा पयो प्रापत अमृत नामा बल बल प्रभ चरण।

और दुतिया आस बराथे नैन त्रिपतासे देख दरसावा गुर कर धारे मेरे माथे कहो नानक मैं अतुल सुख।

फूल फूल बेख खाई रहाओ, प्रव सुंदर चतुर अनूप बधाते, तिस स्यों रुच नहीं राई, मोहन स्यों बावर मन मोहयो, झूठ ठगौरी पाई, भयो दयाल कृपाल दुख हरता, संतन स्यों बन आई, सगल निदान करै मह पाए, कहो नानक जोत समाई, सारंग महला पंजवा, वं प्रिय प्रीत चीत पहलरिया, जो तौ बचन दियो मेरे सतगुर, तौ मैं साज सिंगरिया रहाऊ, हम भूले हैं तुम सदा अभूला, हम पतत तुम पतत उधरिया, हम नीच बिरख तुम मैलागर, लाज संग संग बसरिया, तुम गंभीर तीर उपकारी,

सिद्ध कार्य सब सवरे अहंग रोग सगल ही खया कोट पराद खिन मह खो पई है गुर मिल हर हर कहया पंच दास गुर वसगत कीने मन निश्चल निर्भया आए ना जावे ना कत ही डोले फिर नानक राजया सार मोहल्ला पंजवा प्रभ मेरो केते उत सदा सहाय मन मोहन मेरे जी को प्यारो कमन कहां गुण।

की न्याई, जैसे मात पिताई, तिस बिन निमक नहीं रह सकी है, बिसरना कब हूं जाई। कहो नानक मिल संत संगत ते, मगन पए लिवलाई। सारंग महला पंजवा, अपना मीत स्वामी गाइए, आसना अवर काहू की कीजै, सुखदाता प्रभ त्याई रहाओ, सुख मंगल कल्याण जिसह घर, तिस ही सरणी पाइए, किसह त्याग मनुख जे सेव हो, तो लाज लोन होए जाइए। एक ओट पकरी ठाकुर की, गुर मेल मत बुद्ध पाइए, गुण निधान नानक प्रभ मिलिया, सगल चुकी मोहताइए। सारंग महला पंजवा, ओट सतानी प्रभ जियो मेरे, दृष्ट न लियावो अवर काहू को, मान महत प्रभ तेरे रहाओ। अंगीकार कियो प्रभ अपने, काड लिया बिख केरे।

सूझै प्रभ बिन कहूं को किस पह जासी ज्यों जान हो त्यों राखो ठाकुर सब किस तुम ही पासी हाथ दे राखे प्रभ अपने सद जीवन अपनासी कहो नानक मन आनंद भया है काटी जम की फासी सारंग महला पंजवा मेरो मन जत कत तुझ सुमहारै हम बारक दीन पिता प्रभ मेरे ज्यों जानह त्यों पारै रहाउ जब भूखो तब भोजन मांगै अघाए सूख सघारै तब अरोग जब तुम संग बसतो छुटकत होए रवारै कमन बसेरो दास दासन को थापियो थापन हारै नाम न बिसरै तब जीवन पाईऐ बिनती नानक एह सारै सारंग महला पंजवां मन ते पै पौ दूर परायो लाल ब्याल गुलाल लाडले सहज सहज गुण गायो रहाव गुर बचनात कमात कृपाते बहुर न कतहु तायो रहत उपाद समाद सुख आसन भगत वच्छल ग्रह पायो नाद बनोद कोड आनंदा सहजे सहज सुमायो करना आप करावने आपे कहो नानक आप आपायो सार महला पंजवां अमृत नाम मन है आधारो जिन दिया तिस कह कुर्बानै गुरपूरे नमस्कारो रहाओ बूझी तृष्णा सहज सुहेला काम क्रोध बिख जारो आए ना जाए बसै एह ठाहर जह आसन रंकारु एकै प्रगट एकै गुप्ता एकै तुंडुकारु आद मद अंत प्रभ सोई कहो नानक साच बीचारु सारंग महला पंजवां बिन प्रभ रहन ना जाए करी सर्ब सुख ताहू कै पूरन जां कै सुख है हरि रहाओ मंगल रूप प्राण जीवन तन सिमरत आनंद कना वड समरथ सदा सद संगे गुण रसना कमन पना थान पवित्रा मान पवित्रा पवित्र सुनन कहन हारे कहो नानक ते पवन पवित्रा जा मह संत तुम्हारे सारंग महला पंजवां रसना जपती तू ही मात गर्भ तुम ही प्रतपालक मृत मंडल एक तू

अंतर जामी जान, जिन संतन जानिया तू ठाकुर ते आए परवान। जन का संग पाईए वडभागी, नानक संतन कै कुरबान। सारंग महला पंजवां, करहो गत दयाल संतो मोरी, तुम समरथ कारण करना, टूटी तुम ही जोरी रहाओ। जन्म जन्म के बिखई तुम तारे, समत संग तुम्हारे पाई। अनक जोन भ्रमते प्रभ बिसरत, सास सास हर गाई। जो जो संग मिले साधु कै, ते ते पतत पनीता। कहो नानक जाके वडभागा, तिन जन्म पदार्थ जीता। सारंग महला पंजवां, ठाकुर बिनती करन जाने आयो। सर्ब सुख आनंद सहज रस, सुनत तुहारो नायो रहाओ। कृपा निधान सुख के सागर, जस सब मैं जा को छायो। संत संग रंग तुम किए, अपना आप दृष्ट।

गत ठानी वेद पुराण सिमरत साधु जन खोजत खोजत काढ़ी रहाओ सेव ब्रंच अर इंदर लोक तामह जल तो फिरिया सिमर सिमर स्वामी पय सीतल दुख दर्द भ्रम हिरिया जो जो तरयो परातन नवतन भगत पाए हर देवा नानक की बेनंती प्रभ जियो मिले संत जन सेवा सारंग महला पंजवा जिहवे अमृत गुण हर गाओ हर हर बोल कथा सुन हर की उच्चरहो प्रभ को नाओ रहाओ राम नाम रतन तन संचो मन तन लाभ हो पाओ आन बेभूत मिथ्या कर मानो।

पाद को आचार चरण कमल अस्थित हृदय अंतर पूजा प्राण को आधार प्रभ दीन दयाल सुनो बेनंती।

नाही। जप तप संयम कर्म सुख साधन तुलना कछु ऐ लाहे। चरण कमल नानक मन बेदेहो, चरण है संग समाहे। सारंग महला पंजवां, मेरा प्रभु संगे अंतर जामी। आग्या कुशल पाशै खेम सुखा, सिमरत नाम स्वामी रहाओ। साजन मीत सखा हर मेरे, गुण गोपाल हर राया। बिसरना जाई निमक हिरदय ते, पूरे गुरु मलाया। कर कृपा राख।

को बल होए सगल मनोरथ पूर्ण ताऊ के दुख ना व्यापै कोई रहाउ। जो जन भगत दास निज प्रभ का सुन जीवा तिस सोए उद्म करो दर्शन पेखन कहो कर्म प्राप्त होए। गुर प्रसादी दृष्ट निहारो दूसर नाही कोए दान दे नानक अपने को चरण जीवा संतत होए। सारंग महला पंजवा जीवत राम के गुण गाए करहु कृपा गोपाल बीठले बिसरना कब ही जाए रहाओ। मन तन धन सब तो

तेरी सरनाई जो भावै तिवै चलाए। सारंग महला पंजवा मन रे नाम को सुख सार, आन काम विकार माया सगल दिसह शार रहाओ। ग्रह अंध कूप पतत प्राणी नरक घोर गुबार, अनक जोनी भ्रमत हारे हो भ्रमत बारंबार। पतत पावन भगत बच्छल दीन कृपा तार, कर जोड़ नानक दान मांगे साध संग उधार। सारंग महला पंजवा विराजित राम को प्रताप, आद बेआद उपाद सब नास्ती।

मन तन आत्म त्राप काम क्रोध लोभ मद मत्सर साधु कै संग खाप भगत वचल भय काटन हारे नानक के माई बाप सारंग महला पंजवा आतुर नाम बिन संसार त्रिपत न होवत कुकरी आसा इत लागो बिखिया चार रहाव पाए ठगौरी आप पलायो जन्मत बारो बार हर का सिमरन निमख ना सिमरियो जम कंकर करत खुआर हो कृपाल दीन दुख पंजन तेरिया संत है कीरा वार नानक दास दर्श प्रभ जाचे मन तन को आ

प्रभ सात्याय आप पुलाया बिकैठ गौरी पियो रहाओ कोट जन्म भ्रम तो बहु भांति थित नहीं कतहु पाई पूरा सतगुर सहज ना भेटिया साकत आवै जाई राख ले हो प्रभ समृत दाते तुम प्रभ अगम अपार नानक दास तेरी सरनाई पव जल उतरियो पार सारंग महला पंजवां रमण कौ राम के गुणबाद साध संग त्याई परमेश्वर अमृत जाके स्वाद रहाओ सिमरत एक अचुत अबनासी बिनसे माया माद सहज आनंद अनहद धुन बाणी बहुर न पये बिखाद सनकादक ब्रह्मादक गावत गावत सुख प्रहलाद पीवत अमेओ मनोहर हर रस जप नानक हर बिस्माद सारंग महला पंजवां कीने पाप के बहु कोट दिन सरैणी थकत नाही कतह नाही छोट रहाव महाबज्जर बिख ब्यादि सिर उठाई पोट उगर गइयां खिनह भीतर जमह ग्रासे झूट पशु परेत उष्ट गर्धव अनक जोनी लेट भज साध संग गोविंद नानक कछ ना लागै फेट सारंग महला पंजवां अंधे खावह बिसु के गताक नैन श्रवन शरीर सब हुट्यो सास गयो तत घाट रहाओ अनाथ रिझान उदर लै पुख है माया गईया हाट किल बिख करत करत पछताव है कभू ना साक है शांत निंदक जमदूती आए संघारे हो देव है मूड ऊपर मटाक नानक आपन कटारी आपस को लाई माने अपना की नो फाट सारंग महला पंजवां टूटी निंदक की अद बीच जन का राखा आप स्वामी बेमुख को आए पहुंची मीच रहाव उसका कहया कोई ना सुनी कहीं ना बैसन पावे इहां दुख आगे नरक पुंचे बहु जोनी परमावे प्रगट भया खंडी ब्रह्मणी कीता अपना पाया नानक शरण निरपहु करते की आनंद मंगल गुण गाया सारंग महला पंजवां तृष्णा चलत बहु प्रकार पूर्ण होत न कतहो बात है अंत प्रतिहार रहाओ सांत सूख ना सहज उपजे एह इस व्यवहार आप पर का कछ ना जाने काम करो दहजार संसार सागर दुख ब्यापियो दास लेव तार चरण कमल सरनाए नानक सद सदा बलिहार सारंग महला पंजवां रे पापी तैं कवन की मत लीन निमख करी ना सिमर स्वामी जियो पिंड जिन दीन रहाओ खात पीवत संवंत सुखिया नाम सिमरत कीन गर्भ उदर बिललाट करता तहां होत दीन महामाद बिकार भांदा अनक जोन परमीन गोविंद बिसरे कमन दुख गनी है सुख नानक हर पद कीन सारंग महला पंजवां माई रे चरन है उठ गही दर्शन पेख मेरा मन मोहयो दुर्मत जात बही रहाओ अगह अगाध ऊच अबनासी कीमत जात ना कही जल थल पेख पेख मन बिगस्यो पूर रहयो सब मही दीन दयाल प्रीतम मन मोहन मिल साध है कीनो सही सिमर सिमर जीवत हर नानक जम की पीर ना पही सारंग महला पंजवां माई री मन मेरो मतवारो पेख दयाल आनंद सुख पूरन हर रस रप्यो खमारू रहाओ निर्मल पये उजल जस गावत बहोर ना होत कारू चरण कमल स्यो डोरी राखी भेट्यो पुरख अपारू कर गहलीने सरबस दीने दीपक भयो उजारू नानक नाम रसक बैरागी
कुलह समूहा तारू सारी महला पंजवा माई री आन सिमर मर जाहि त्याग गोविंद जीयन को दाता माया संग लपताहि रहाउ नाम बसार चलह अनमार्ग नरक कोर मह पाहि अनक सजाई गणत न आवै गर्भ गर्भ परमाहि से तनवंते से पतवंते हर की शरण समाहि गुर प्रसाद नानक जग जीत्यो बहुर न आवह जाहि सारंग महला पंजवा हर काटी कुटलता कुठार ब्रह्म बन दहन भये खिन पीतर राम नाम परहार रहाउ काम क्रोध निंदा परहरिय काढे साधु कै संग मार जन्म पदार्थ गुरमुख जीते आ बहुर न जुवै हार आठ पहर तब के गुण गावे पूर्ण शब्द विचार नानक दासन दास जन तेरा पुनः पुनः नमस्कार सारंग महला पंजवा पोथी परमेश्वर का थान साध संग गावे गुण गोविंद पूर्ण ब्रह्म ज्ञान रहाउ साधक सिद्ध सगल मुन लोचह बिरले लागे ध्यान जिसै कृपाल हुए मेरा स्वामी पूर्णता को काम जा कै हृदय वसै पै पंजन तिस जानै सगल जहान खिन पल बिसर नहीं मेरे करते एहो नानक मांगै दान सारी महला पंजवा बूठा सर्ब थाई मेह आनंद मंगल गाओ हर जस पूर्ण प्रगट्यो नेह रहाओ चार कुंट दह दिस जल निद ऊन थाओ न के कृपा निद गोविंद पूर्ण जी दान सब देव सत सत हर सत स्वामी सत साध संगेव सत तेज अन जिन प्रतीत उपजी नानक नह परमेव सारी महला पंजवा।

परवार रहाओ। कर मस्तक धार्यो मेरे माथे, साध संग गुण गाए, तुमरी कृपा ते सब फल पाए, रसक राम नाम त्याए। अब चलनी मतराई सतगुर, कबहू डोलत नाही, गुर नानक जब भये दयारा, सर्व सुखा निद पाही। सारी महला पंजवा, निभे नाम की सच खेप, लाभ हर गुण गाए निद तन, बिखे माहे अलेप रहाव। जी जंत सगल संतोखे, अपना प्रभ त्याए, रत्न जन्म अपार जीतेओ।

मन मोहिहु अचर्जता के स्वाद रहाउ। मात पिता बंदप है सोई मन हर को अहलाद। साध संग गाए गुण गोविंद बिन सेउ सब परमाद। डोरी लपट रही चरन संग ब्रह्म पै सगले खाद। एक आधार नानक जन किया बहुर ना जोन परमाद। सारंग महला पंजवा माई री माती चरण समूह। एक सबिन हो आन ना जानो दुतिया भाउ सब लूह रहाव। त्याग गोपाल अवर जो करना ते बिखिया के खूह। दर्श प्यास मेरा मन मोहयो काडी नरक ते तुहू। संत प्रसाद मिलो सुख दाता बिनसी हौ मैं हूह। राम रंग राते दास नानक मौल्यो मन तन जूहू। सारंग महला पंजवा बिनसे काच के व्यवहार। राम भज मिल साध संगत एह जग मह सार रहाव। ईत ऊत ना डोल कतहू नाम हृदय धार। गुर चरण बोहत मिलियो भागी उत्तरियो संसार। जल थल महियल पूर रहियो सर्वनाथ अपार। हर नाम अमृत पियो नानक आन रस सब खार। सारंग महला पंजवा ताते करन पलाह करे महा विकार मोह मद मातो। सिमरत नाहे हरे रहाओ साध संग जपते नारायण। तिनके दोख जरे सफल देह तन ओए जन्मे। प्रभ कै संग रले चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध। सब ऊपर साध भले नानक दास धूर जन बांछे। उदरह लाग पल्ले सारंग महला पंजवा हर के नाम के जन कांखी। मन तन बचन एही सुख चाहत प्रभ दर्श देखे कब आखी रहाओ। तू बेअंत पार ब्रह्म स्वामी गत तेरी जाए न लाखी। चरण कमल प्रीत मन बेदया तर सर्बस अंतर राखी। वेद प्राण सिमरत साधु जन एह बाणी रसना भाखी। जप राम नाम नानक निस्तरी है होर दुतिया बिरथी साखी। सारंग महला पंजवा माखी राम की तू माखी। जह दुर्गंध तहा तू बैसह महा बिखिया मद चाखी। रहाव कितह स्थान तू टिकन ना पावह एह बिद देखी आखी। संता बिनत कोई ना छाडिया संत परे गोविंद की पाखी। जी जंत सगले तै मोहे बिन संता किने ना लाखी। नानक दास हर कीर्तन राता शब्द सुरत सच साखी। सारंग महला पंजवा माई री काटी जम की फास। हर हर जपत सर्ब सुख पाए बीचे ग्रस्त उदास। रहाओ कर कृपा लीने कर अपने उपजी दर्श प्यास। संत संग मिल हर गुण गाए बिनसी दुतिया आस। महाध्यान अतवी ते काडे मार्ग संत कहियो। देखत दर्श पाप सब नास्ते हर नानक रतन लहियो। सारंग महला पंजवा माई री अरे ओ प्रेम की खोर। दर्शन रुचत प्यास मन सुंदर सकत ना कोई तोर। रहाव प्राण मान पत पित सुत बंदप हर सर्बस धन मोर। त्रिग शरीर अस्त बिस्ता क्रिम बिन हर जानत होर। पयो कृपाल दीन दुख भंजन परा पूर्ब ला जोर। नानक सरण कृपा निध सागर बिन से वान निहोर। सारंग महला पंजवा नीकी राम की धुन सोए। चरण कमल अनूप स्वामी जपत साधु होए रहाओ। चितवता गोपाल दर्शन कलमला कडत होए। जन्म मरण विकार अंकुर हर काट छाडे खोए। परा पूर्व जिसह लिखिया बिरला पाए कोए। रमण गुण गोपाल करते
नानका सच जोए। सारंग महला पंजवां, हर के नाम की मत सार, हर बसार जो आन राच है, मिथन सब विस्थार रहाव। साध संगम भज स्वामी, पाप होवत खार, चरनार बिंद बसाए हृदय, बहुर जन्म ना मार। कर अनुग्रह राख लीने, एक नाम आधार, दिन रहन सिमरत सदा नानक, मुख उज्जल दरबार। सारंग महला पंजवां, मानी तू राम कै दर मानी, साध संग मिल हर गुण गाय, बिनसी सब अवमानी रहाव। तार अनुग्रह अपनी कर लीनी, गुरमुख पूर ज्ञानी, सर्ब सुख आनंद कनेरे, ठाकुर दर्श त्यानी, निकट वर्तन सा सदा सुहागन, दह दिस साई जानी। प्रिय रंग रंग रती नारायण, नानक तिस कुर्बानी। सारंग महला पंजवां, त्वा चरण आसरो ईस, तुम्हें पछानू साख तुम्हें संग।

तू बेअंत अपरंपर स्वामी गुर कृपा कोई लाखै बिन बकने बिन कहन कहावन अंतर जामी जानै जा को मेल लए प्रभ नानक से जन दरगाह मानी सारंग महला पंजवा चौपदे घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर भज आन कर्म बेकार मान मोह ना बुझत तृष्णा काल ग्रास संसार रहाव खात पीवत हस्त सोवत औद बिती आसार नरक उदर परमंत जल तो जमह कीनी सार पर द्रोह करत बेकार निंदा पाप रत कर चार बिना सतगुर बूझ नाही तम मोह महा अंधार बिकठ गौरी खाए मूठो चेतना सिरजनहार गोविंद गुप्त होए रहो नियारो मातंग मत अहंकार कर कृपा प्रभ संत राखे चरण कमल आधार कर जोर नानक सरने आयो गोपाल पुरख अपार सारंग महला पंजवा कर छेवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद शुभ बचन बोल गुण अमोल किंकरी बेकार देखरी बिचार गुर शब्द त्याए महल पाए हर संग रंग करती।

सर्वरी प्रीत प्यार प्रभ सदारी दयार काए आन आन रुचिय हर संग संग खचिय जो साध संग पाए कहो नानक हर त्याए अब रहे जमह मेल सारंग महला पंजवा कंचना बहु दत करा भूम दान अर्प धरा मन अनक सोच पवित्र करत नाही रे नाम तुल मन चरण कमल लागे रहाओ चार वेद जेहव भने दस अष्ट खष्ट सरवन सुने नहीं तुल गोविंद नाम तुने मन चरण कमल लागे बरत संध सोच चार क्रिया कुंत निराहार अपरस करत पाक सार निवली कर्म बहु विस्तार धूप दीप करते हर नाम तुल ना लागे राम दयार सुन दीन बेनती देहो दर्श नैन पेखो जन नानक नाम मिष्ट लागे सारंग महला पंजवा राम राम राम जाप रमत राम सहाई रहाओ संतन कै चरण लागे काम क्रोध लोभ त्यागे गुरु गोपाल भय कृपाल लभदे अपनी पाई बिनसे भ्रम मोह अंध टूटे माया के बंद पूर्ण सर्वत्र ठाकुर नह को बैराई स्वामी सो प्रसन्न भय जन्म मरण दुख गए संत

हर जन की रेन बांछ दैन हार स्वामी सर्ब कुशल सुख विश्राम आनंदा आनंद नाम जम की कश नाही त्रास सिमर अंतर जामी एक शरण गोविंद चरण संसार सगल ताप।

जगत सब मिथ्या ज्यों सुपना रह नाई सारन महला नौवा कहां मन बिखिया स्यों लपटाही या यग मह को रहन ना पावे।

सगल बला सह ज्यो बादर की शाही ताज अवमान सरल संतन गहो मुक्त हो हे शिन माही जन नानक भगवंत भजन बिन सुख सुपने पी नाही सारंग महला नौवां कहा नर अपनो जन्म गवावे माया मद भिख्या रस रचियो राम शरण नहीं आवे रहाओ एह संसार सगल है सुपनो देख कहां लोभावे।

जन नानक सो जन मुक्ता राम भजन चित लावे सारंग महला नौवां मन कर कबहू ना हर गुण गायो बिख्या सकत रहो निस बासुर कीनो अपनो पायो रहाओ गुर उपदेश सुनियो नह कानन पर दारा लपटायो पर निंदा कारण बहु तावत समझियो नह समझायो कहां कहो मैं अपनी करनी जिह बिद जन्म गवायो कह नानक सब औगन मोह मह राख लेहो सरनायो राग सारंग अष्टपदियां।

जस जाचो मैं हर बिन रहन ना जाई रहाओ। हर की प्यास प्यासी कामन देखो रहन सुबाई। श्री तारनाथ मेरा मन लीना प्रभ जाने पीर पराई। गणत शरीर पीर है हर बिन गुर शब्दी हर पाई। हो दयाल कृपा।

विषम भये गुण गाए मनोहर निरपौ सहज समाई हृदय नाम सदा तुन निश्चल घटै न कीमत पाई बिन नावै सब कोई निरतन सतगुरु बूझ बुझाई प्रीतम प्राण भये सुन सजनी दूत मोए बिख खाई जब की उपजी तब की तैसी रंगुल पही मन पहाई सहज समाध सदा निवहर सियों जीवा हर गुण गाई गुर कह शब्द रत्ता बैरागी निज कर ताड़ी लाई।

ऐसी गुरमत पाई सनक सनाद ब्रह्माद इंद्रादिक भगत रते बने आई नानक हर बिन करी न जीवा हर का नाम बढ़ाई सारंग महला पहला हर बिन क्यों तीरै मन मेरा कोट कल्प के दुख बनासन साच दृढ़ाए निबेरा रहाओ क्रोध नवार जले हो ममता प्रेम सदा नौरंगी हन पहु बिसर गए प्रभ जाचिया हर निर्माल संगी चंचल मत त्याग पहु भंजन पाया एक शब्द लिव लागी हर रस चाख त्रिखा निवारी हर मेल लय बड़ भागी अपरत सिंच पय सुपर सर गुरमत साच निहाला मन रत नाम रते नेह केवल आद जुगाद दयाला मोहन मोहे लिया मन मोरा बड़े भाग लिव लागी साच विचार किलविक दुख काटे मन निर्मल अनरागी गहर गंभीर सागर रतनागर अवर नहीं अन पूजा शब्द विचार परम पहु पंजन अवर न जानिया दूजा मनुआ मार निर्मल पद चीनिया हर रस रते अदकाई एक बिन मैं अवर न जाना सतगुर बूझ बुझाई अगम अगोचर अनाथ अजोनी गुरमत एको जानिया सुपार भरे नाही चित डोले मन ही ते मन मानिया गुर प्रसादी अकथो कथिया कहो कहावे सोई नानक दीन दयाल हमारे अवर ना जानिया कोई सारंग महला तीजा अष्टपदियां घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन मेरे हर कै नाम बढ़ाई हर बिन अवर ना जाना कोई हर कै नाम मुक्त गत पाई रहाओ शब्द पहु भंजन जम काल निखंजन हर सेती लिवलाई हर सुख दाता गुरमुख जाता सहजे रहे आसमाई भगतां का भोजन हर नाम निरंजन पैनन भगत बढ़ाई निज कर वासा सदा हर सेवन हर दार शोभा पाई मनमुख बुद्ध काची मनुआ डोले अकथ न कथै कहानी गुरमत निश्चल हर मन वसिया अमृत साची बानी मन के तरंग शब्द निवारे रसना सहज सुपाई सतगुर मिल रही है सदे अपने जिन हर से ती लिवलाई मन शब्द मरे ता मुक्तो होवे हर चरणी चित लाई हर सर सागर सदा जल निर्मल नावे सहज सुपाई शब्द विचार सदा रंग राते हम मैं तृष्णा मारी अंतर नेह केवल हर रविया सब आत्म राम मरारी सेवक सेव रहे सच राते जो तेरे मन पाणी दुबदा महल ना पावे जग झूठी गुण अवगण ना पछाणी आपे मेल लए अकथ कथिया सच शब्द सच बाणी नानक साचे सच समाणी हर का नाम बखाणी सारंग महला तीजा मन मेरे हर का नाम अत मीठा जन्म जन्म के किल विख पौ भंजन गुरमुख एको डीठा रहाओ कोट कुटंतर के पाप बनासन हर साचा मन पाया हर बिन अवरना सूजै दूजा सतगुर एक बुझाया प्रेम पदार्थ जिन घट वसिया सहजे रहे सुमाई शब्द रते से रंग चलूले राते सहज सुपाई रसना शब्द विचार रस राती लाल पई रंग लाई राम नाम ने केवल जानिया मन तृप्तिया शांत आई पंडित पढ़ पढ़ मोनी सब थाके ब्रह्म भेख थके भेख तारी गुर प्रसाद निरंजन पाया साचे शब्द विचारी आवा गौण निवार सच राते साच शब्द मन पाया सतगुर सेव सदा सुख पाईए जिन विचों आप गुआया
साचै शब्द सहज धुन उपजै, मन साचै लिव लाई अगम अगोचर नाम निरंजन गुरमुख मन वसाई। एक समय सब जगतो वरतै विरला एक पछाणै, शब्द मरै ता सब किस सूजै अन दिन एको जाने। जिसनो नदर करे सोई जन बूजै, होर कहना कथन ना जाई। नानक नाम रते सदा बैरागी, एक शब्द लिवलाई। सारंग महला तीजा, मन मेरे हर की अकथ कहानी, हर नदर करे सोई जन पाए गुरमुख विरले जानी रहाओ। हर गहर गंभीर गुणी गहीर गुर कै शब्द पछानिया, बहु विद कर्म करह भाई दूजै बिन शब्द बहुरानिया। हर नाम नावै सोई जन निर्मल फिर मैला मूल ना होई, नाम बिना सब जग है मैला दूजै परम पत खोई। क्या दृढ़ा क्या संग्रह त्यागी, मैं ता बूझ ना पाई। हो दयाल कृपा कर हर जियो नामो हुए सखाई। सच्चा सच दाता कर्म विदाता, जिस भावै तिस नाए लाए। गुरु द्वारे सोई बूझै

मुख द्वारा जिन दर सूझै से कदे ना बगाड़ै सतगुर बूझ बुझाई सत संयम करनी किरत कमावै आवण जान रहाई से दर साचै साच कमावै जिन गुरमुख साच अधारा मन मुख दूजै परम भुलाए ना बूझै विचारा आपे गुरमुख आपे देवै आपे कर कर वेखै नानक से जर थाए पए हैं

करन करावन उपाय समावन सगल सत्र पत बीठा रहाउ। राणा राव राज भय रंका उन झूठे कहन कहायो। हमरा राजन सदा सलामत ताको सगल घटा जस गायो। उपमा सुनहो राजन की संतो कहत जेत पहुंचा। बेशुमार वद साहा तारा ऊचे ही ते ऊचा। पमन परोयो सगल अकारा पावक काष्ट संगे। नीर तरन कर राखे एकत कोए ना किसी ही संगे। काट काट कथा राजन की चाल कर कर तुझे उमाहा। जी जंत सब पाछे करया प्रथमे रिजित समाहा। जो किछ करना सो आपे करना मसलत काहू दीनी। अनक जतन कर करह दिखाए साची साखी चीनी। हर भगता कर राखे अपनी दीनी नाम बडाई। जिन जिन करी अवग्या जन की ते तै दिए रुड़ाई। मुक्त भए साध संगत कर तिनके अवगन सब पर हरिया। तिनको देख भए कृपाला तिन भव सागर तरिया। हम नाने नीच तुमे बड साहिब कुदरत कौन बीचारा। मन तन शीतल गुरदर्श देखे नानक नाम आधारा। सारग महला पंजवा अष्टपदी घर छेवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद अगम अगाध सुनो जन कथा। पार ब्रह्म की अचर्ज सभा रहाओ। सदा सदा सतगुर नमस्कार गुर कृपा ते गुण गाए अपार। मन भीतर होवे परगास ज्ञान अंजन अज्ञान बनास। मित नाही जाका विस्थार सोभा ताकी अपर अपार। अनक रंग जाके गने ना जाहे सोग हरख दोहु मैं नाहे। अनक ब्रह्मे जाके वेद तुन करह अनक महेश बैस ध्यान तरह। अनक पुरख अंसा अवतार अनक इंदर उभे दरबार। अनक पवन पावक अरनीर अनक रतन सागर दाद खीर। अनक सूर ससियर नखियात अनक देवी देवा बहुपात। अनक बसुदा अनक कामतेन अनक पार जात अनक मुखवेन। अनक आकाश अनक पाताल अनक मुखी जपिया गोपाल। अनक शास्त्र सिमरत पुराण अनक जुगत होवत बखियान। अनक सरोते सुनह निदान सर्व जी पूर्ण भगवान। अनक धर्म अनक कुमेर अनक वर्ण अनक कनक सुमेर। अनक सेख नवतन नाम ले पार ब्रह्म का अंत ना ते। अनक पुरिया अनक तह खंड अनक रूप रंग ब्रह्मांड। अनक बना अनक फल मूल आपह सूखम आपह असथूल। अनक जुगाद दिनस अर रात अनक परलो अनक उत्पात। अनक जी जाके ग्रह माहे रमत राम पूर्ण सर्व ठाए। अनक माया जाकी लखी ना जाए अनक कला खेले हर राय। अनक तुनत ललत संगीत अनक गुपत प्रगटे तह चीत। सब ते ऊच भगत जा कै संग आठ पहर गुण गावह रंग। अनक अनाहद आनंद चुनकार वा रस का काश अंत न पार। सत पुरख सत स्थान ऊच ते ऊच निर्मल निर्वाण। अपना किया जन है आप आपे घट घट रहे हो बे आप। कृपा निदान नानक दयाल जिन जपया नानक ते पहे निहाल। सारंग संत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सब देखिए अनपह का दाता कट कट पूर्ण है अलपाता। कट कट पूर्ण कर बिस्थीरन जल तरंग स्यों रचन किया। अब रस माने भोग कटाने आनना बिया कोथिया। हर रंगी इक रंगी ठाकुर संत संग प्रभ जाता। नानक दर्श लीना ज्यों जल मीना सब देखिए अनपह का दाता।
कौन उपमा देवो कमल बढ़ाई, पूर्ण पूर रहो सब ठाई, पूर्ण मन मोहन कट कट सोहन, जब खिंचे तब शाई, क्यों ना अराध हो मिलकर साधु हो, करी मोहतक बेला आई, अर्थ दर्ब सब जो किस दिसे, संग ना कछु हूं जाई, कहो नानक हर हर अराध हो।

ऐसा अंग अंग सुखदाई पूर्ण ब्रह्माई थान थान अंतर देसा बंधन ते मुक्ता कट कट जुगता कह ना सको हर जैसा देख चरित नानक मन मोहयो पूछे दीन मेरो ठाकुर कैसा कर कृपा अपने पह आया तन सोरदा जेह चरण बसाया चरण बसाया संत संगाया अज्ञान अंधेर गुआया भया प्रगास हृदय उलास प्रभ लोड़ींदा पाया दुख नाठा सुख घर मह बूठा महा आनंद सहजाया कहो नानक मैं पूरा पाया कर कृपा अपने पह आया सारंग की वार महला चौथा राय महमे हसने की धुन एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला दूजा गुर कुंजी पाहु निवल मन कोठा तन छत नानक गुरबिन मन का ताक न उगड़ै अवरना कुंजी हाथ महला पहला ना पी जय रागी ना दी मेद ना पी जय सुरती ज्ञानी जो ना पी जय सोगी की तैरोज ना पी जय रूपी माली रंग ना पी जय तीत पवे नंग ना पी जय दाती की तै पुन ना पी जय बाहर बैठिया सुन ना पी जय भेड़ मरह भिड़ सूर ना पी जय केते होए तूड़ लेखा लिखिया मन कै पाए नानक पी जय साचै नाए महला पहला नव शे खटका करे विचार निस दिन उतरे पार अठार तिन पी अंत न पाया तोहे नाम बिहून मुक्त क्यों होए नाब वस्त ब्रह्म अंत न जानिया गुरमुख नानक नाम पछाणिया पौड़ी आपे आप निरंजना जिने आप उपाया आपे खेल रचायोन सब जगत सबाया त्रै गुण आप सिरजियन माया मोह वधाया गुर प्रसादी उबरे जिन पाणा पाया नानक सच वरतदा सब सच समाया स्लोक

कायत की चह दावे मूल मत परवाना एहो नानक आख सुनाए करनी उपर हुए तपावस जे को कह कहाए पौड़ी गुरमुख चलत रचाय उन गुण प्रगटी आया गुरबाणी सद उच्चरै हर मन वसाया सकत गई भ्रम कटिया शिव जोत जगाया जिनकै पोतै पुन है गुरपुरख मलाया नानक सहजे मिल रहे हर नाम सुमाया सलोक महला दूजा सा चले बन जा रिया लिखिया देवै नाल लिखे उपर हुक्म होए लइयै वस्त सुमाल वस्त लई बनजारी वखर बद्दा पाए के इलाहा लै चले एक चले मूल गवाए थोड़ा किन ना मंगियो किस कही ऐसा बास नदर तिन्ना को नानका जे साबत लाए रास महला पहला जुड़ जुड़ विछड़े विछड़ जुड़े जीव जीव मोए मोए जीवे केतियां के बाप केतियां के बेटे केते गुर के ले हुए आगे पाछे गणत ना आवे क्या जाति क्या हुण हुए सब करना किरत कर लिखिए कर कर करता करे करे मन मुख मरिए गुरमुख तरिए नानक नदरी नदर करे पौड़ी मन मुख दूजा परम है दूजा लोभाया कूड़ कपट कमावंदे कूड़ो आलाया पुत्र कलत्र मोह हेत है सब दुख सबाया जम दर बद्धे मारिय है परम है परमाया मन मुख जन्म गवाया नानक हर पाया सलोक महला दूजा जिन वडियाई तेरे नाम की तेरते मन माहे नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाहे नानक अमृत मने माहे पाईऐ गुर प्रसाद तिन्नी पीता रंग सिउं जिनको लिखिया आद महला दूजा कीता क्या सलाहिऐ करे सोए सलाहे नानक एकी बाहरा दूजा दाता नाहे करता सो सलाहिऐ जिन कीता आकार दाता सो सलाहिऐ जे सब सह दे आधार नानक आप सदीव है पूरा जिस भंडार वड्डा कर सलाही है अंत ना पारावार पौड़ी हर का नाम निदान है सेवे सुख पाई नाम निरंजन उच्चरा पत सियो कर जाई गुरमुख बाणी नाम है नाम हृदय वसाई मत पंखे रू वस हुए सत गुरु त्याई नानक आप दयाल हुए नामे लिवलाई सलोक महला दूजा किस सिओ कैसा बोलना जे आपे जाने जान चीरी जाकी ना फिरे साहिब सो परवान चीरी जिसकी चलना मीर मलक सालार जो

आए तले आवह नानका सदे उठी जाहे। महला दूजा सिफत जिना को बख्शी है से पोते दार कुंजी जिन को दितिया तिना मिले पंडार। जह पंडारी हूं गुण निकल है ते की यह परवान नदर तिना को नानका नाम जिन्ना निशान पौड़ी। नाम निरंजन निर्मला सुनिए सुख होई सुन सुन मन वसाई है बूझे जन कोई। बहदिया उठदिया ना विसरे साचा सच सोई भगतां को नाम आधार है नामे सुख होई। नानक मन पन रव रहिया गुरमुख हर सोई। श्लोक महला पहला नानक तुलिया है तो

आख एक आख आख है शब्द पाख है अर्ध उर्द दिन रात जे कहो होए ता केहो दिसे जापै रूप ना जात सब कारण करता करे काटे ओ काट काट थाप आखने औखा नानका आख ना जापै आख पौड़ी नाए सुनिए मन रहसीए ना मेषा ते आई नाए सुनिए मन तृप्तिए सब दुख गवाई नाए सुनिए ना उपजे नामे वड्याई नामे ही सब जात पत नामे गत पाई गुरमुख नाम त्याई है नानक लिवलाई सलोक महला पहला झूठ न रागी झूठ न वेदी झूठ न चंद सूरज की भेदी झूठ न अन्नी झूठ न नाई झूठ न मिंबर है सब थाई।

की गिरही का सत दान राजे चुड़ी नियाम की पढ़िया सच त्यान पानी चेतना धूपे मुख पीता तिख जाए पानी पिता जगत का फिर पानी सब खाए पौड़ी नाए सुनिए सब सिद्ध है रिद पिछे आवे नाए सुनिए नौ निद मिले मन चिंदिया पावे नाए सुनिए संतोख होए कबला चरण ते आवे नाए सुनिए सहजी उपजे सहजी सुख पावे गुरमति ना उपाइये नानक गुण गावे सलोक महला पहला दुख विच जम्मन दुख मरन दुख वर्तन संसार दुख दुख अगे आखिए पढ़ पढ़ करह पुकार दुख किया पंडा खुलिया सुख ना निकले ओ कोई दुख विच जियो जलाया दुखिया चलिया रोए नानक सिफती रत्या मन तन हरिया होए दुख किया अग्नि मारी है ई दुख दारू होए महला पहला नानक दुनिया पास रंग पशु हूं पास खे पशु पास कमावनी पी पास परिया दे जा जियो विचों कढ़िए पशु परिया जाए अगे लेखे मंगिए होर दसूनी पाए पौड़ी नाए सुनिए सुच संयमो जम नेड़ ना आवे नाए सुनिए घट चानना अनेर गुआवे नाए सुनिए आप बुझिए लाहा ना पावे नाए सुनिए पाप कटिए निर्मल सच पावे नानक नाए सुनिए मुख उजले नाओ गुरमुख त्यावे सलोक महला पहला कर नारायण सभा नाल पूज करे रखे नवाल कुन्नू चन्नन फुल चढ़ाए पैरी पै पै बहुत मनाए माणुआ मंग मंग पहने खाए अंधी कमी अंध सजाए।

सबे बुद्धि सुध सब सब तीर्थ सब थान सब पातशाहियां अमर सब सब खुशियां सब खान सबे

हुक्म चलाए आपने करमी वह कलाम नानक सच्चा सच नाई सच सभा दी बान पौड़ी नाए मने सुख उपजे नामे गत होई नाए मने पत पाई है हिरदय हर सोई नाए मने पव जल लंघी है फिर बिघन ना होई नाए मने पंथ प्रगटा नामे सब लोई नानक सतगुर मिले नाओ मनी है जिन देवे सोई श्लोक महला पहला पुरियां खंडा सिर करे एक पैर ते आए पौन मार मन जप करे सिर मुंडी तले दे किस ऊपर ओह टिक टिके किसनो जोर करे किसनो कहिए नानका किसनो करता दे हुक्म रहाए आप।

सहजे हर रस पीजे, नानक सुखदाता सदा सलायो, रसना राम रवीजे। पौड़ी गढ़ काया शिंगार बहु भांत बनाई, रंग परंग कतीफिया पहरह धर्म आई, लाल सफेद दुलीचिया बहु सभा बनाई, दुख खाना दुख भोगना गर्भै गर्भाई, नानक नाम ना चेत्यो अंतले छुड़ाई। सलोक महला तीजा, सहजे सुख सुती शब्द समाए, आपे प्रभ मेल लई गल लाए, दुबदा चूपी सहज सुपाए, अंतर नाम वसया मन आए, से कंठ लाए जे भन कढ़ाए, नानक जो तुर मिले से हुण आन मलाए। महला तीजा, जिन्नी नाम वसारिया क्या जप जप है होर, बिस्ता अंदर कीत से मुठे तंदे चोर, नानक नाम न ना विसरे झूठे लालच होर। पौड़ी नाम सलाहन नाम मन अस्त्र जग सोई, हिरदय हर हर चितवे दूजा नहीं कोई, रोम रोम हर कुचरे खिन खिन हर सोई, गुरमुख जन्म सकार था निर्मल मल खोई, नानक जीवन दा पुरख त्याया अमरा पद होई। सलोक महला तीजा, जिन्नी नाम वसारिया बहु कर्म कमावह होर, नानक जानपुर बदे मारी है ज्यो सन्नी उपर चोर। महला पंजवा, तरत सुहावड़ी आकाश सुहंदा जपंदिया हर नाउ, नानक नाम मिहूनिया तिन तन खावह काउ। पौड़ी नाम सलाहन भाउ कर निज महली वासा, ओए बहुड़ जोन ना आमनी फिर होहे ना बनासा, हर से तीरंग रव रहे सब सास ग्रासा, हर का रंग कदे ना उतरे गुरमुख परगासा, ओए कृपा कर कै मेलियन नानक हर पासा। सलोक महला तीजा, जिचर इहो मन लहरी विच है हऊ मैं बहुत अहंकार, शब्द साध ना आवई नाम ना लगे प्यार, सेवा थाए ना पवई तिसकी खप खप हुए खुआर, नानक सेवक सोई आखी है जो सिर धरे उतार, सतगुर का भाणा मन ले शब्द रखे उर धार। महला तीजा, सो जप तप सेवा चाकरी जो खसमै पावे, आपे बख्शे मेल ले आपत गुआवे, मिलिया कदे न विछड़े ज्योति ज्योत मलावे, नानक गुर प्रसादी सो बुझसी जिसे आप बुझावे। पौड़ी सब को लेखे विच है मनमुख अहंकारी, हर नाम कदे न चेतई जम काल सिर मारी, पाप विकार मनूर सब लदे बहु भारी, मार्ग बिकमंड रावणा क्यों तरिये तारी, नानक गुर राखे से उभरे हर नाम उधारी। सलोक महला तीजा, बिन सतगुर सेवे सुख नहीं मर जम्मे वार वार, मोह ठगौली पाईन बहु दूजे पाए विकार, एक गुर प्रसादी उभरे किस जन को करह सब नमस्कार, नानक अन दिन नाम त्याए तू अंतर जित पावह मूख द्वार। महला तीजा, माया मोहे वसारिया सच मरना हर नाम, तंदा करत्या जन्म गया अंदर दुख सहाम, नानक सतगुर सेव सुख पाया जिन पूर्व लिखिया कराम। पौड़ी लेखा पढ़िया हर नाम फिर लेख ना होई, पुछ ना सकै कोई हर दर सद ढोई, जम काल मिलै दे भेट सेवक नित होई, पूरे गुरते महल पाया पत प्रगट लोई, नानक अनहद धुनी दरवाज दे मिलिया हर सोई। सलोक महला तीजा, गुर का कहया जी करे सुखी हूं सुख सार, गुर की करनी पौ कटिया नानक पावे पार। महला तीजा, सच पराणा ना थी नाम ना मैला होए, गुर कै भाणे जे चल बहुड़ ना आवन होए, नानक नाम वसारिया
ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਦੋਏ ਪੌੜੀ। ਮੰਗਤ ਜਨ ਜਾਚੈ ਦਾਨ, ਹਰ ਦੇਹੁ ਸੁਭਾਏ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ। ਖਿਨ ਪਲ ਘੜੀ ਨਾ ਜੀਵਉ, ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਮਰਾਂ ਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਦਿਖਾਲਿਆ, ਰਲ ਰਹਿਆ ਸਭ ਥਾਏ। ਸੁਤਿਆਂ ਆਪ ਉਠਾਲ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਨਮੁਖ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ।

आपे सेठ उपायन आप करे विचार। नानक किसनो आखी है सब वरते आप सत्यार। महला तीजा हर गुरमुख तिनी आराध्या जिन कर्म प्राप्त होए। नानक हो बलिहारी तिन कहो जिन हर मन बसिया सोए पौड़ी। आस करे सब लोक बहु जीवन जानिया नित जीवन को चित गढ़ मंडप सवारिया। वलवंच कर अपाव माया हिरियाणिया जमकाल निहाले सास आव घटै बेतालिया। नानक गुर सरनाई उबरे हर गुर रखवालिया। सलोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित वाद बखान दे माया मोह सवाए। दूजे पाए नाम वसारिया मन मूरख मिले सजाए। जिन कीते तिसै ना सेवनी देंदा रिजक समाए। जम का पाहा गलहो ना कटिए फिर आवह जाए। जिनको पूर्व लिखिया सतगुर मिलिया तिन आए। अन दिन नाम त्याए दे नानक सच समाए। महला तीजा सच वणजह सच सेवन दे जे गुरमुख पैरी पाए। नानक गुर कै पाण जे चलह सहजे सच समाए पौड़ी। आसा विच अत दुख घणा मन मुख चित लाया। गुरमुख भए निरास परम सुख पाया। विचे ग्रह उदास अलिपत लिव लाया। उन्ना सोग बजोग ना व्यापई हर भाणा पाया। नानक हर सेती सदा रव रहे तुर लए मलाया। सलोक महला तीजा पराई अमान क्यों रखी है दित्ती ही सुख होए। गुर का शब्द गुर थै टिकै होर थै प्रगट ना होए। अन्ने बस माणिक पया घर घर वेचण जाए। ओना परख ना आवई अड ना पल्ले पाए। जे आप परख ना आवई तां पारखियां थावो लयो परखाए। जे ओस नाल चित लाए तां वत लहै नौ नित पल्ले पाए। घर हुंदै धन जग भुखा मोआ बिन सतगुर सोजी ना होए। शब्द सीतल मन तन वसै कितै सोग वजोग ना कोए। वस्त पराई आप गर्भ करे मूर्ख आप गणाए। नानक बिन बूझे किनै ना पायो फिर आवै जाए। महला तीजा मन आनंद भया मिलिया हर प्रीतम सरसे सज्जन संत प्यारे। जो तुर मिले ना विचड़ है कबहू जे आप मेले करतारे। अंतर शब्द रविया गुर पाया सगले दुख नवारे। हर सुखदाता सदा सलाही अंतर रखा उरतारे। मन मुख तिनकी बखीली के करे जे सच्चा शब्द सवारे। उन्ना दी आप पात रख सी मेरा प्यारा शरणागत पए गुरुद्वारे। नानक गुरमुख से सुहेले पए मुख उजल दरबारे पौड़ी। स्त्री पुरख है बहु प्रीत मिल मोह वधाया। पुत्र कलत्र नित वेख है विकसै मोह माया। देश परदेश धन चराए आन मोहे पाया। अंत होवै वैर विरोध को सकै ना छडाया। नानक बिन नावै त्रिग मोह जित लग दुख पाया। सलोक महला तीजा गुरमुख अमृत नाम है जित खादै सब भुख जाए। तृष्णा मूल ना हो गई नाम वसै मन आए। बिन नावै जे होर खाना तित रोग लगै तन धाए। नानक रस कस शब्द सलाहना आपे लए मलाए। महला तीजा जिया अंदर जियो शब्द है जित सह मेलावा होए। बिन शब्द जग अनेर है शब्दे प्रगट होए। पंडित मोनी पर पढ़ थके भेख थके तन धोए। बिन शब्द किनै ना पायो दुखिए चले रोए। नानक नदरी पाई है कर्म प्राप्त होए पौड़ी। स्त्री पुरख है अत नेहो बह मंद पकाया। दिसदा सब किस चल सी मेरे प्रभ पाया। क्यों रही है थिर जग
को कढ़ो उपाया, गुर पूरे की चाकरी थिर कंध सबाया, नानक बख्श मलायन हर नाम सुमाया। सलोक महला तीजा, माया मोहे वसारिया, गुर का भउ हेत अपार, लोभ लहर सुध मत गई, सच न लगै प्यार। गुरमुख जिन्ना शब्द मन वसै, दरगाह मूख द्वार, नानक आपे मेल लए, आपे बख्शन हार। महला चौथा, नानक जिस बिन घड़ी ना जीवना, विसरे सरै ना बिंद, किस स्यों क्यों मन रूसी है, जिसे हमारी चिंद। महला चौथा, सामने आया चिम चिमा, हर गुरमुख नाम ते आए, दुख भुख काड़ा सब चुकाए सी, मीह उठा शहबर लाए, सब तरत पई हरियावली, अन जमया बोहल लाए। हर अचिंत बुलावै कृपा कर, हर आपे पावै थाए, हर तसै त्याव संत जन हो, जो अंते लए छाए। हर कीरत भगत आनंद है, सदा सुख वसै मन आए, जिन्ना गुरमुख नाम आराध्या, तिन्ना दुख भुख लह जाए। जन नानक तृपतै गाए गुण, हर दर्शन देहो सुभाए पौड़ी, गुर पूरे की दात, नित देवै चढ़ै सवाइया, तुस देवै आप दयाल, ना छपै छपाइया, हिरदै कवल परगास, उन मन लिव लाइया, जे को करे उस दी रीस, सिर छाई पाइया। नानक अपड़ कोई ना सकई, पूरे सतगुर की वडियाइया। सलोक महला तीजा, अमर वे परवाहो है, तिस नाल सियाणप ना चलई, ना हुज्जत करनी जाए, आप छोड़ सरनाए पवे, मन लए रजाए। गुरमुख जम डंड ना लगई, हौ मैं विचों जाए, नानक सेवक सोई आखी है, जे सच रह लिवलाए। महला तीजा, दात जोत सब

चलत संगात कहत कबीर राम भज बौरे जन्म अकारथ जात राजा श्रमित नहीं जानी तेरी तेरे संतन की हों चेरी रहाओ हस्तु जाए सो रोवत आवे रोवत जाए सो

मन बिखिया बन जाए, भूलो रे ठगमूरी खाए रहाओ। जैसे मीन पानी में रहे, काल जाल की सुध नहीं लहे, जेह बा स्वादी लीलत लोह।

माया कारण श्रम अत करै, सो माया ले गाडै धरै, अत संचै समझै नहीं मूड़। धन धरती तन होए गयो धूड़, काम क्रोध तृष्णा अत जरै,

पूरा दास अनिन मेरो निज रूप दर्शन निमुख त्राप त्रई मोचन परसत मुक्त करत ग्रह कूप रहाउ मेरी बांदी भगत छिडावै।

कामनी भगत नहीं उपजे, भूखे दान ना दीना रहाउ। काम ना बिसरयो, क्रोध ना बिसरयो, लोभ ना छूटयो देवा, पर निंदा मुख ते नहीं छूटी, निफल पई सब सेवा। बाट पार घर मूस बिरानो, पेट भरे अपराधी, जेहे परलोक जाए अपकीरत, सोई अविद्या साधी। हिंसा तो मन ते नहीं छूटी, जी दया नहीं पाली, परमानंद साध संगत मेल, कथा पनीत ना चाली। छाड़ मन हर बेमुखन को संग, सारंग महला पंजवां सूरदास, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर के संग बसे हर लोक, तन मन अर्प सर्बस सब अर्प्यो, आनंद सहज तुन झोक रहाओ। दर्शन पेक पय निर्भिखे, पाए है सगले थोक, आन बस्त स्यों काज न कछुऐ, सुंदर बदन अलोक। श्याम सुंदर ताजे आन जो चाहत,

साध हर बिन कौन सहाई मन का मात पिता भाई सुत बनता हित लागो सब पन का रहाउ आगे कौ किश तुलहा बंद हो क्या परवासा धन का कहां बसासा इस भांडे का इतना कलागै ठन का सगल धर्म पुन फल पाव हो तूर बांचो हो सब जन का कह कबीर।

पुर तारा मलार महला पहला जिन धन पिर का साधना जानिया सा बिलख बदन कुमलानी पई नरासी कर्म की फासी बिन गुर भरम पुलानी बस कना मेरा पिर कर आया बल जावा गुरे अपने प्रीतम जिन हर प्रभ आन मलाया रहाउ नौ तन प्रीत सदा ठाकुर स्यों अन दिन भगत सुहावी मुक्त भये गुरदर्श दिखाया जुग जुग भगत सुभावी हम थारे त्रे पवन जग तुमरा तू मेरा हो तेरा सतगुर मिलया निरंजन पाया बहुर ना भवजन फेरा अपने पिर हर देख वगासी तौ धन साच शिंगारू अकुल निरंजन स्यों सच साची गुरमत नाम आधारू मुक्त भई बंधन गुर खोले शब्द सुरत पत पाए।

प्रकार पीतर अमृत सोई जन पावे जिस गुर का शब्द रत्न आचार रहाव दुख सुख दो सम कर जाने बुरा भला संसार शुद्ध बुद्ध सुरत नाम हर पाईए सत संगत गुर प्यार एहन सलाहा हर नाम प्रापत गुरदाता देवन हार गुरमुख सिख सोई जन पाए जिसनु नदर करे करतार काया महल मंदर घर हर का तिस मह राखी जोत अपार नानक गुरमुख महल बलाईए हर मेले मेलन हार मलार महला पहला घर दूजा।

ता तन उठ खलोए रोग मन अंधे को मिले सजाए वैद ना भोले दारू लाए चंदन का फल चंदन वास मानस का फल घट महसास सास गए काया ढल पाए ताके पाछे कोई ना खाए कंचन काया निर्मल हंस जिसमें नाम निरंजन अंश दुख रोग सब गया गवाए नानक छूटस साचे नाए मलार महला पहला दुख मोहरा मारन हर नाम सिला संतोख पीसन हाथ दान नित नित लेहो ना सीजे दे अंत

सब शाम रत परमद दी सह थाम देहे ना नाव ना हुए जात उतै देहो ऐतै सब रात साध कर समदा कृष्णा क्यो तेल काम क्रोध अग्नि स्यो मेल होम जग अर पाठ पुराण जो तिस भावे सो परवान तप कागद तेरा नाम निशान जिनको लिखिया इहो निदान से तनवंत जिसह घर जाए नानक जननी तन्नी माए मलार महला पहला।

असमान साहिब समर्थ तेरे तान जल थल डूंगर देखा तीर थान थनंतर साहिब वीर जिन तन साज दिए नाल खंभ हाथ तृष्णा उडना की डंज नदर करे ता बंदा तीर ज्यों विखाले त्यों वेखा वीर ना एहो तन जाएगा ना जाहेंगे खंभ पौने पानी अग्नि का संबंध नानक कर्म होवै जपिए कर गुर पीर सच समावै एहो शरीर मलार महला तीजा चौपदे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद निरंकार आकार है आपे आपे परम पलाय कर कर करता आपे वेख जित पावे तित लाए सेवक को एहा

बुद्ध बदा तैसा इहो संसारा जिस ते होआ तिसै समान चूक गया पासारा मलार महला तीजा जिन्नी हुक्म पछाणिया से मेले हों मैं शब्द जलाए सच्ची भगत करह दिन राती सच रहे निवलाए सदा सच हर वेख दे गुर कै शब्द सुपाए मन रे हुक्म मन सुख होए प्रभ पाणा अपना भावदा जिस बख्शे तिस बिघन ना कोई रहाव त्रै गुण सभा धात है ना हर भगत ना पाए गत मुक्त कदे ना होवे हौ मैं कर्म कमाए साहिब भावै सो थीऐ पयै किरत फराए सतगुर भेटै मन मर रहै हर नाम वसै मन आए तिसकी कीमत ना पवै कहना किशु ना जाए चौथै पद वासा होया सच्चै रहै समाए मेरा हर प्रभ अगम अगोचर है कीमत कहण ना जाए गुर प्रसादी बुझिऐ शब्दे कार कमाए नानक नाम सलाहे तू हर हर दर शोभा पाए मलार महला तीजा गुरमुख कोई विरला दूजै जिसनो नदर करे गुर बिन दाता कोई नाही बख्शे नदर करे गुर मिलिया शांति उपजै आनंद नाम लय मेरे मन हरे अमृत नाम ते आए सतगुरु पुरख मिले।

दे त्रिपतास्ते सत्य नाम सुवाही आनंदेन हर रव्या हृदय अंतर सहज समाद लगाही सतगुर शब्दी इहो मन भेदिया हृदय साची बाणी मेरा प्रभ अलख न जाई लखिया गुरमुख अकत कहानी आपे दया करे सुखदाता जपिए सारिंग पाणी आवन जाना बहुड़ ना होवै गुरमुख सहज ते आया मन ही ते मन मिलिया स्वामी मन ही मन समाया साचे ही सच साच पतीजै विचों आप गवाया।

सच सोई नानक नाम प्रभु ते पाई जिनको तुर लिखिया होई मलार महला तीजा गण गंधर्व नामे सब उदरे गुर का शब्द विचार हम मैं मार सद मन वसाया हर राखिया उर तार जिस है बुझाए सोई बुझे जिसनो आपे लय मलाए अन दिन बाणी शब्दे गावे साच रहे निवलाए मन मेरे खिन खिन नाम संभाल गुर की दात शब्द सुख अंतर सदा निभ तेरे नाल रहाओ मन मुख पाखंड कदे ना चूके दूजे पाए दुख पाए नाम विसार बिख्या मन राती बिरथा जन्म गुआई एह वेला फिर हाथ न आवे अन दिन सदा पछताई मर मर जन्मे कदे ना बूझे विष्टा माही समाई गुरमुख नाम रते से उदरे गुर का शब्द विचार जीवन मुक्त हर नाम ते आया हर

अंतर वसिया अलाखी अपीवा गुरमुख होए लखाई नानक जिस भावै तिसे आपी दीवै भावै तिवें चलाई मलार महला तीजा तो तुके सतगुर ते पावै घर दर महल सोथान गुर शब्दी चूकै अभमान जिनको ललाट लिखिया धुर नाम अन दिन नाम सदा सदा त्यावह साची दरगाह पावह मान रहाउ मन की बिद सतगुर ते जाने अन दिन लागै सद हर सिउ ध्यान गुर शब्द रते सदा बैरागी हर दरगाह साची पावह मान इहो मन खिलै हुक्म का बांधा एक खिन मह दह दिस फिर आवै जाय आपे नदर करे हर प्रभ साचा ता इहो मन गुरमुख तत्काल वासे आवै इस मन की बिद मन हूं जानै बूझै शब्द विचार नानक नाम त्याए सदा तू भव सागर जित पावह पार मलार महला तीजा जियो पिंड प्राण सब तिसके घट घट रहे समाई एक सबिन मैं अवर ना जाना सतगुरु दिया बुझाई मन मेरे नाम रहो लिवलाई अदृष्ट अगोचर अपरंपर करता गुर कै शब्द हर

पांड उतारै अनंदन एको नाम बखाणै सतगुर की ओहो दीखिया ले सतगुर आगै सीस तरे सदा अलग रह निर्भ

नानक कवन बिद करे क्या कोए सोई मुकत जाको कृपा होए फन दिन हर गुण गावे सोए शास्त्र वेद की फिर कूक ना होए मलार महला तीजा प्रम प्रम जोन मनमुख परमाई जम काल मारे नित पत गुआई सतगुर सेवा जम की कान चुकाई हर प्रभ मिलिया महल घर पाई प्राणी गुरमुख नाम त्याए जन्म पदार्थ दुखदा खोया कौडी बदलै जाए रहाउ कर कृपा गुरमुख लगे प्यार अंतर भगत हर हर उरतार भवजल शब्द लंघावन हार दर साचै दिसै सचियार बहु कर्म करे सतगुर नहीं पाया बिन गुर परम भूले बहु माया हउ मैं ममता बहु मोह वधाया दूजै पाए मनमुख दुख पाया आपे करता अगम अथाहा गुर शब्दी जपिए सच लाहा हाजर हजूर हर वे परवाहा नानक गुरमुख नाम समाहा मलार महला तीजा जीवन मुक्त गुरमति लागे हर की भगत अन दिन सद जागे सतगुर सेव है आप गवाए हौ तिन जन के सद लागो पाए हौ जीवा सदा हर के गुण गाई गुर का शब्द महा

तीर्थ आठ साठ मज्जन नहाई, सत संगत की धूर परी उड नेतनी, सब दुरमत मैल गवाई रहाउ। जाहर नवी तपै भगीरथ आनी, केदार थाप्यो महसाई, कांसी कृष्ण चरावत गाऊ। मिला

सोई हर जन का हरे आपे जन मह आप रखांत तन तन गुरु नानक समदर्सी जिन निंदा उस्तत तरी तरांत मलार महला चौथा अगम गोचर नाम हरि उत्तम हर कृपा ते जप लया सत संगत साध पाई वट भागी संग साधु पार पया मेरा मन आनंद ने आनंद पया गुरु प्रसाद नाम हर जपया मेरे मन का भ्रम पौ गया रहाउ जिन हर गाया जिन हर जपया तिन संगत हर मेलो करमया तिनका दर्श देख सुख पाया दुख हम मैं रोग गया जो अनदिन हृदय नाम त्याग है सब जन्म तिन्ना का सफल भया वे आप तरे श्रेष्ट सब तारी सब कुल भी पार पया तुदे आपे आप अपाया सब जग तुदे आपे वस कर लिया जन नानक को प्रभ कृपा तारी बिख डुबदा काढ लिया मलार महला चौथा गुर प्रसादी अमृत नहीं पिया तृष्णा भूख न जाई मन मुख मूड जलत अहंकारी हम मैं विच दुख पाई आवत जात बिरता जन्म गवाया दुख लागे पछताई।

जाई सार संभाल माता मुख नीरै तब ओह तृप्त अघाई हम बारक पिता प्रभ दाता भूलह बारक अनक लख बरिया अनठौर नाही जह जाता रहाउ चंचल मत बारक बपुरे की सर्प अग्न कर मेलै मात पिता कंठ लाए राखै आनंद सहज तब खेलै जिसका पिता तू है मेरे स्वामी तिस बारक भूख कैसी नव निध नाम निदान ग्रह तेरै मन बांचै सो लैसी पिता कृपाल आग्या एह कीनी बारक मुख मांगै सो देना नानक बारक

गुर कार्य हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुखदाता, छोड़ ना जाई दूरे। मलार महला पंजवां, राज ते कीट, कीट ते सुरपत, कर दोख जठर कौ भरते, कृपा निद छोड़ आन को पूजह, आत्म घाटी हरते, हर बिसरत ते दुख दुख मरते, अनक बार ब्रह्मह बहु जोनी, टेक न काहू धरते रहाउ, त्याग स्वामी आन को चितवत, मूड मुग्ध खल खरते, कागर नाव लंघ कत सागर, बिरथा कथत हम तरते, सेव ब्रंच असुर सुर जेते, काल अगन मह जरते, नानक सरन चरण कमलन की, तुम ना डार हो प्रभ करते।

यह संग राती एहं मैं की तिथाई पई निमाणी शरण एक ताकी गुर सतगुर पुरख सुखदाई एक निमख मह मेरा सब दुख काटिया नानक सुख रैन बेहाई मलार महला पंजवा बरस मेघ जी तिल बिल मना लाओ बरस प्यारे मनह सधारे होए आनंद सदा मन चाओ रहाओ हम तेरी धर स्वामिया मेरे तू क्यों मनहु बसारे।

कहो नानक मेरो बन्यो सुहागो पत शोभा भले अचारी मलार महला पंजवां प्रीतम साचा नाम त्याय दुख दर्द बिनसै भव सागर गुर की मूर्त हृदय बसाए रहाउ दुश्मन हत्ते दुखी सब व्यापे हर सरनाई आया राखन हारे हाथ दे राख्यो नाम पदार्थ पाया कर कृपा किलविख सब काटे नाम निर्मल मन दिया गुण निदान नानक मन वसिया बहुड़े दुख ना थिया मलार महला पंजवां प्रभ मेरे प्रीतम प्राण प्यारे प्रेम भगत अपनो नाम दीजै दयाल अनुग्रह तारे रहाउ सिमरो चरण तुहारे प्रीतम हृदय तुहारी आसा संत जना पह करो बेनती मन दर्शन की प्यासा बिसरत मरण जीवन हर मिलते जन को दर्शन दीजै नाम आधार जीवन धन नानक प्रभ मेरे कृपा की जय मलार महला पंजवां अब अपने प्रीतम स्यों बन आई राजा राम रमत सुख पायो बरस मेघ सुखदाई रहाउ एक पल बिसरत नहीं सुख सागर नाम नमै निद पाई उदहत भयो पूर्ण भावी को पेटे संत सहाई सुख उपजे दुख सगल बनासे पार ब्रह्म लिवलाई तरियो संसार कठन भय।

मेरे आनंद मंगल सुख पाया रहाउ। मिटे कलेश त्रिशन सब पूजी, पार ब्रह्म मन त्याया, साध संग जन्म मरण निवारी, बहुर न कतहु ताया, मन तन नाम निरंजन रातहु, चरण कमल लेव लाया, अंगीकार कियो प्रभ अपने, नानक दास शरणाया, मलार महला पंजवा, बिसरत क्यों जीवे ओए जीवन, चितह उलास आस मिलवे की, चरण कमल रस पीवन रहाउ, जिनको प्यास तुम्हारी।

राव रहियो सबे अंतर सर्ब रहे आपर पूरे मलार महला पंजवा हर कै भजन कौन कौन ना कारे खग तन मीन तन मृग तन ब्राहा तन साधु संग उधारे रहाउ देव कुल दैत कुल जख किनर नर सागर उतरे पारे जो जो भजन करे साधु संग ताके दुख बदारे काम क्रोध महा बिख्या रस इनते भय नरारे दीन दयाल जप

अचोते अबनासी किलबिख काढे है शांत काल कलेश मिटे दास नानक बहुर ना जोनी मात मलार महला पंजवा बहु विद माया मोह हिरानू कोट मध्ये को बिरला सेवक पूर्ण भगत चिरानू रहाउ इत उत डोल डोल श्रम पायो तन तन होत बिरानू लोग दराए करत ठगियाई हुतो संग ना जानू मृग पंखी मीन दीन नीच एह संकट फिरे आनू कहो नानक पाहन प्रवतारु साध संगत सुख मानू।

अंतर्जामी सब मह वरतै ता भौ कैसा पहाई संग सहाई छोड़ ना जाई प्रभ दिसै सबनी ठाई अनाथानाथ दीन दुख भंजन

प्रभु को भगत बचल बिरदायो निंदक मार चरण तल दीने अपनो जस वरतायो रहाओ जय जयकार कीनो सब जग मह दया जीयन मह पायो कंठ लाए अपनो दास राखियो ताती वाव न लायो अंगीकार कियो मेरे स्वामी प्रम पौ मेट सखायो महानंद करहु दास हर के नानक विश्वास मन आयो। राग मलार महला पंजवा चौपदे कर दूजा।

बिन गुर पूरे कोर अंधार मेरे मन गुर गुर करत सदा सुख पाई है गुर उपदेश हर हृदय वस्यू सास ग्रास अपना खसम त्याई रहाऊ गुर के चरण विटोह बल जाऊ गुर के गुण अन दिन नित गाऊ गुर की धूड़ करू इशनान साची दरगाह पाई मान गुर बोहित भवजल तारन हार गुर भेटे ना हुए जोन अवतार गुर की सेवा सो जन पाए जां को कर्म लिखिया तुर आई गुर मेरी जीवन गुर आधार गुर मेरी वर्तन गुर परवार गुर मेरा खसम सतगुर सरनाई नानक गुर पार ब्रह्म जा की कीम ना पाई मलार महला पंजवां गुर के चरण हृदय वसाई कर कृपा प्रब आप मलाई अपने सेवक को ले प्रभ लाई ताकि कीमत कही ना जाई कर कृपा पूर्ण सुख दाती।

राखे सब जंत, गुण गावहु नित नित भगवंत, एको करता आपे आप, हर के भगत जानह प्रताप, नावे की पैज रखदा आया, नानक बोले तिसका बुलाया, मलार महला पंजवां, गुर सरनाई सगल निदान, साची दरगाह पाईए मान, प्रम पौ दुख दर्द सब जाए, साध संग सद हर गुण गाए, मन मेरे गुर पूरा सलाहे, नाम निदान जपो दिन राती, मन चिंदे फल पाए रहाउ, सतगुर जे वडे अवर ना कोई, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सो

भाव सगर किए नह दुख सा कहलाहे। पज सरन साधु नानका मिल गुण गोबिंद गाहे। मलार महला पंजवा प्रिय की सोभ सहावनी नीकी। हा हा हू हू गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी नीकी। रहाउ तुनत ललत गुनगह अनक भांत बहु विध रूप दिखावनी नीकी। गिर तार जल तल भवन भरपुर घट घट लालन शामनी नीकी। साध संग रामैया रस पायो नानक जा कै भावनी नीकी। मलार महला पंजवा गुरप्रीत प्यारे चरण कमल हृदय अंतर धारी। रहाउ दर्श सफल्यो दर्श पेख्यो गए किल बिख गए मन निर्मल उजियारी। विषम विषम विषम भई अग कोट हरते नाम लई। गुर चरण मस्तक डार पही प्रभ एक तू ही भगत टेक तुहारी। जन नानक सरन द्वारी मलार महला पंजवा बरस सरस आ गया होहे आनंद सगल भाग। रहाउ संत संगे मन पर फड़ै मिल मेघ धर सुहाग। कन घोर प्रीत मोर चित चातरक बूंद ओर ऐसो हर संगे मन मोह।

रूप गुण गावत सुख चैन रहाउ हर चरण सर्म कर्म सागर तुन अनहता रस बैन पथक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन हर दर्श

सखाई, तिस बिन घड़ी नहीं जग दीवा, ऐसी प्यास तसाई रहाओ, सरवर कमल किरण आकाशी, दिगसै सहज सुपाई, प्रीतम प्रीत

आई कन हर कोर दसो दिस बरसै बिन जल प्यास न जाई मीन नवास उपजै जल ही ते सुख दुख पुरब कमाई खिन तिल रह न सकै पल जल बिन मरन जीवन तिस ताई तन वांदी पिर देश नवासी सच्चे गुर पह शब्द पठाई गुण संग्रह प्रभ हृदय नवासी भगत रत्ती हर खाई प्रियो प्रियो करै सबै है जेती गुर भावै प्रियो पाई प्रियो नाले सद ही सच संगे नदरी मेल मलाई सब मह जियो जियो है सोई घट घट रहे आसमाई गुर प्रसाद घर ही परगासिया सहजे सहज समाई अपना काज सुवारो आपे सुख दाते गोसाई गुर प्रसाद घर ही फिर पाया तौ नानक तपत बुझाई मलार मोहल्ला पहला जागत जाग रह गुर सेवा बिन हर मैं को नाही अनक जतन कर रहन ना पावे आच काच धर पाही इस तन धन का कहो गर्भ कैसा बिन सतबार ना लागे बबरे हौ मैं गर्भ खपै जागे ऐसा रहाऊ जय जगदीश प्रभु।

अंजन कागद कोट एहो जग है बपरू रंगन चेहन चतराई नानी सी बूंद पवन पत खोए जन्म मरे खिन ताई नदी उप कंठ जैसे कर तरवर सरपन कर कर मा

बचनी दिखिया गुरमत जारी मन तन हेम भय सच पाया हर की भगत निरारी जेती है तेती तुद जाचे तू सर्ब जिया दयाला तुमरी सरन परे पत राखो साच मिले गोपाला बांधी तंद अंध नहीं सूजे बद्धक कर्म कमावे सतगुर मिले ता सूजस बूजस सच मन ज्ञान समावे निर्गुण दे साच बिन काची मैं पूछूं गुरे अपना नानक सो प्रभ प्रभु दिखावे बिन साचे जग सुपना मलार महला पहला चातरक मीन जल ही ते सुख पावे सारंग शब्द सुहाई।

नींद गई हम मैं तन थाकी सच मत हृदय समाई रूखी बिरखी ऊडों भूखा पीवा नाम सुपाई लोचन तार ललता बिललाती दर्शन प्यास रजाई प्रिया बिन श्रृंगार करी तेता तन तापै कापर अंग ना सुहाई अपने प्यारे बिन एक खिन रह ना सको बिन मिले नींद ना पाई फिर नजीक ना बूझे बकड़ी सतगुरु दिया दिखाई सहज मिलिया तब ही सुख पाया तृष्णा शब्द बुझाई कहो नानक तुझते मन मानिया हिम्मत कहन ना जाई मलार महला पहला।

रहाउ। सतगुर शब्दी पादर जान, गुर कै तकिया साचै तान। नाम संभाल सरूड़ी बाण, थै भावै दर लहस प्राण। ऊडा बैसा एक लिवतार, गुर कै शब्द नाम आधार। ना जल डूंगर ना ऊंची धार, निज कर वासा तह मग ना चालन हार। जित घर वसै तू है बिद जान है, बीजो महल ना जापै। सतगुर बाजो समझ ना होवी, सब जग दबिया छापै। करन पलाव कर बिललातो, बिन गुर नाम ना जापै। पल पंकज मह नाम छडाई, जे गुर शब्द सिंहापै। एक मूर्ख अंधे मुग्ध गुआर, एक सतगुर कै भै नाम आधार। साची बाणी मीठी अमृत धार।

संसा जाय सतगुर ते हर बुझी गर्भ जोनी नह पाई गुर प्रसादी जीवत मरे मर जीवै शब्द कमाई।

चार करै विवेक बुद्ध पाई पुरखै पुरख मलाई धातुर बाजी संसार अचेत है चलै मूल गवाई लाहा हर सत संगत पाई करमी पल्लै पाई सतगुर विण किनै ना पाया मन वेखो हृदय विचार वड भागी गुर पाया भव जले उतरे पार हर नामा हर टेक है हर हर नाम आधार कृपा करो गुर मेलो हर जियो पावो मोख द्वार मस्तक ललाट लिखिया धुर ठाकुर मेटना ना जाय नानक से जन पूर्ण होए जिन हर भाणा पाए मलार महला तीजा वेद बाणी जग वर्तदा त्रै गुण करे विचार बिन नावे जम डांड सह मर जन्मै वारु वार सतगुर भेटे।

हर हर नाम त्याई रहाऊ, हरे अपने पाने से टिपाई, हरे आपे दे आधार, हरे अपने पाने मन निर्मल किया, हर स्यों लागा प्यार, हर कै पाने सतगुर पेटिया, सब जन्म सवार नहार, वाह वाह बाणी सत है, गुरमुख बूझै कोई, वाह वाह कर प्रभ सलाही है, तिस जे वड़े अवर ना कोई, आपे बख्शे मेल लई।

कमल प्रगास तित काट नामै नाम निवास हऊ मैं भगत करे सब कोई ना मन पीजै ना सुख होए कह कह कहण आप जनाई बिरथी भगत सब जन्म गवाए से भगत सतगुर मन पाए अन दिन नाम रहे लिवलाए सद ही नाम वेख हजूर गुर कै शब्द रहया भरपूर आपे बख्शे दे प्यार हम मैं रूप।

बिनवंत नानक शरण तिनकी, जिन्नी हर हर त्याया वार मलार की महला पहला, राणे कैलाश तथा मालदे की धुन, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला तीजा, गुर मिले मन रहसी है, जो उठे परम शिंगार, सब दिसे हरियावली सर भरे सुभर ताल, अंदर रचे सच रंग ज्यो मंजीठे लाल, कमल विगसे सच मन गुर कै शब्द निहाल, मनमुख दूजी तरफ है वेखो नदर निहाल, थाही पाथे मिर्ग ज्यो सिर दिसे जमकाल, खुदिया तृष्णा निंदा बुरी काम क्रोध विकराल, इनी अखी नदर ना आवई जिचर शब्द ना करे विचार, तुद भावै संतो।

सब सुख साचो नाम पौड़ी, आपी ने आप साज आप पछाणिया, अंबर धरत विछोड़ चंदोआ ताणिया, बिन थम्मा गगन रहाए शब्द निशाणिया, सूरज चंद उपाए जोत समाणिया, तीए रात दिनंत चोज वडाणिया, तीर्थ धर्म विचार नावन कुर्बाणिया, तुद सारे अवर ना कोई के आख वखाणिया, सच्चा तख्त निवास।

पौड़ी तू सच्चा सच्यार जिन सच वरताया बैठा ताड़ी लाए कवल छपाया ब्रह्म वड्डा कहाए अंत ना पाया ना तिस बाप ना माए किन तू जाया ना तिस रूप ना रेख वर्ण सवाया ना तिस भुख प्यास रज्जा ताया गुरमह आप समोए शब्द वरताया सच्चे ही पति आए सच समाया। श्लोक महला पहला वैद बुलाया वैदगी पकड़ ढोले बाह भोला वैद ना जानई करक कलेजे माही महला दूजा वैदा वैद सो वैद तू पहला रोग पछाण ऐसा दारू लोड़ लहो जित मन्य रोगा कान जित दारू

राम राजा आया, दैंता मारे ताई हुक्म सबाया, ईश महेश्वर सेव तिन्नी अंत ना पाया, सच्ची कीमत पाए तक

सखी संतै चित करे हो नानक चूर मरहै दोहागणी जिन अवरी लागा ने हो। महला दूजा सावण आया है सखी जल हर बर सनहार नानक सुख समन सोहागणी जिन सह नाल प्यार पौड़ी आपे सिंह पवाए मल्ला खाड़ा रचिया लथे पड़थू पाए गुरमुख मचिया मनमुख मारे पछाड़ मूर्ख कचिया आप भिड़ै मारे आप आप कारज रचिया सबना खसम एक है गुरमुख जानिए हुक्मी लिखै सिर लेख बिन कलम मसवाणिए सत संगत मेलाप जितै हर गुण सदा वखाणिए नानक सच्चा शब्द सलाही सच पछाणिए।

वरसै लाए झड़ी नानक पाणै चलै कंत कै सो माणे सदा रली महला तीजा क्या उठ उठ देखो बपणे किस मेघै हथ किश नाही जिन इहो मेघ पठाया किस राखो मन माहे तिसनो मन वसाए सी जाको नदर करे नानक नदरी बाहरी सब करन पला।

संबाहि, जित खादै सुख उपजै, फिर दुख न लागै आई पौड़ी। हर जियो सच्चा सच तू, सच्चे लहै मलाई, दूजै दूजी तरफ है, कूड़ मिलै ना मिलिया जाई। आपे जोड़ विछोड़ै,

जो हर चरणी रहे लिवलाय। ज्यो जल मह कमल अलिप्त है ऐसी बणत बणाई, से सुखिए सदा सोहणे जिन विचो आप गवाय। तिन सोग वजोग कदे नहीं जो हर कै अंक समाय। सलोक महला तीजा नानक सो सलाही है, जिस वस सब किश होए तिसै सरे विहो प्राणी हो, तिस बिन अवर ना कोई। गुरमुख हर प्रभ मन वसै ता सदा सदा सुख होए, सहसा मूल ना हो वई सब।

چمکیا وٹھا سہ برلائی جت وٹھے ان تن بہت اوپجے جاں سہو کری رجائی

तू तनी तू सब किसे आपे आप दूजे किस जानी मानस कूड़ा गर्भ सच्ची तुद मणि आवा गौण रचाए उपाय।

तीरथ लाया हथी सिर खोहाए ना पद कराया कुचल रह दिन रात शब्द ना पाया तिन जात ना पात ना कर।

मनखन सच्चा सच मन सच्चे सच्ची सोए अंदर सच्ची भगत है सहजे ही पत होए। कलयुग में घोर अंधार है मनमुख राह न कोए से वडभागी नानका जिन गुरमुख प्रगट होए। महला तीजा इंद वरसै कर दया लोका मन उपजै चाऊ जिसकै हुक्म इंद वरसदा तिसकै सद बलिहार जाऊ। गुरमुख शब्द संभालिए सच्चे के गुण गाऊ नानक नाम रते जन निर्मले सहजे सच समाऊ। पौड़ी पूरा सतगुर सेव पूरा पाया पूरा कर्म त्याई पूरा शब्द मन वसाया पूरा ज्ञान ध्यान मैल चुकाया हर सर तीर्थ जान मनुआ नाया।

खसम मिट्टी फिर पानी अद गुल्ला चिड़ी का चुगन गैन चढ़ी बिललाई खसम भावे उहा चंगी जे करे खुदाई खुदाई सख्त।

भूख सुनावे, खसमै मूल ना पावे, अक स्यो प्रीत करे अक तिद्दा, अक डाली बह खाई, खसमै पावे ओहो चंगा, जे करे खुदाई खुदाई, नानक दुनिया चार दिहाड़ी।

आवे तिन भौ सागर तरना पौड़ी अगम अगोचर तू धनी सच्चा अलख अपार तू दाता सब मंगते इको देवनहार जिन्नी सेव्या तिन्नी सुख पाया गुरमती विचार इक नानोपद एवं भावदा माया नाल प्यार गुर कै शब्द सलाही है अंतर प्रेम प्यार विण प्रीति भगत ना हो गई विण सतगुर ना लगे प्यार तू प्रभ सब तुद सेव दे एक ढादी करे पुकार देह दान संतोखिया सच्चा नाम मिले आधार सलोक महला पहला राती काल घटे दिन काल सिजे काया हुए पराल वर्तन वर्त्या सर्ब जंजाल भुलिया चुक गया तपताल अंधा चख चख पया चेर पिछे रू वह लिया वह फेर बिन बूझे

जिस पाणा मन वसाई अपने पाणे कहो किन सुख पाया अंधा अंध कमाई बिख्या कदे ही रजे नाही मूरख भुख न जाई दूजे सब को लग विगुता बिन सतगुर बूझ ना पाई सतगुर सेवे सो सुख पाई जिसनो कृपा करे रजाई सलोक महला पहला शर्म धर्म दोए नानका जे धन पल्ले पाई सो तन मित्र ना कांडी है जित सिर चोटा खाई जिनकै पल्ले धन बसै तिनका नाओ फकीर जिनकै हृदय तू वसै ते नर गुणी गहीर महला पहला दुखी दुनी सहेड़ी है जाए ता लगे है दुख नानक सच्चे नाम बिन किसै ना लथी भुख।

तीर्थ का नाव चौधरी कूड़ी पूरे थाऊ नानक गुरमुख जानिए कल का इहो नियाउ महला पहला हरना बाजा तै सिकदारा इना पढ़िया नाऊ फांदी लगी जात पहाइन अग्गै नाही थाऊ सो पढ़िया सो पंडित भी।

खाम पूजै हिकमत खुदाया मानतवाना तू कुदरती आया सग नानक दे बान मस्ताना नित चढ़ै सवाया आतस दुनिया।

तुद फिर दूजा को नहीं, तू रहे आसमाई, तेरी गत मित तू है जानदा, तुद कीमत पाई, तू अलाखे गोचर अगम है, गुरमत देखाई, अंतर अज्ञान दुख भरम है, गुर ज्ञान गवाई, जिस कृपा करह तिस मेल लह, सो नाम ते आई, तू करता पुरख अगम है, रविया सब ठाई, जित तू लाए सचिया तित को लगे, नानक गुण गाई, शुद्ध

जाचै भस्मति सुऐसा राजा त्रिभुवनपति जाचै कारे कूर्मा पाल सहस्रफनी बासक सेज वालुआ अठारह पार बनास्पति मालनी सिनवै करोड़ी मेघ माला पानी हारिया नख परसेव जाचै सुरसरी सप्त समुंद जाचै घड़खली एते जी जाचै वर्तनी सो ऐसा राजा त्रिभुवन धनी जाचै कर निकट वर्ती अर्जुन ध्रुव प्रहलाद अम्बरीक नारद नेजै सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बान वै हेला एते जी जाचै है करी।

रे लोक प्रसिद्ध कबीरा, जाके कुटंब के ढेर सब ढोर टवंत फिर है। अजहो बनारसी आस पासा, आचार सहत बिपर करह डंडौत, तिन तन रवदास दासान दासा मलार, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मृत प्यारो प्राणनाथ कमन भगत ते, साध संगत पाई।

जप मन राम नाम परगास हर के संत मिल प्रीत लगानी विचे ग्रह उदास रहाओ हम हर हृदय जपियो नाम नर हर प्रभु कृपा करी कृपास अन दिन अंत भया मन बिगसिया उदम भय मिलन की आस हम हर स्वामी प्रीत लगाई जितने सास लिए हम ग्रास किल बिख दहन भय खिन अंतर टूट गए माया के फास क्या हम किर्म क्या कर्म कमाव है मूर्ख मुग्ध रखे प्रवतास अवगन आरे पाथर पहारे सत संगत मिल तरे तरास जेती सृष्ट करी जगदीशर ते सब ऊच हम नीच बिख्यास हमरे अवगुण संग गुर मेटे जन नानक मेल लिए प्रभ पास कानड़ा महला चौथा मेरा मन राम नाम जपियो गुरवाक हर हर कृपा करी जगदीशर दुर्मत दूजा पाओ गयो सब चाक रहाओ नाना रूप रंग हर केरे घट घट राम रवियो गुपलाक हर के संत मिले हर प्रगटे उगर गए बिख्या के ताक संत जना की बहुत बहुत शोभा जिन उर तारियो हर रस कर साक हर के संत मिले हर मिलिया जैसे गऊ देख बछराक हर के संत जना मह हर हर ते जने उत्तम जनक जनाक तिन हर हृदय बास बसानी छूट गई मुश्की मुश्काक तुमरे जन तुम ही प्रभ किए हर राख ले हो आपन अपनाक जन नानक के सखा हर पाई मात पिता बंद पहर साक कानड़ा महला चौथा मेरे मन हर हर राम नाम जप चीत हर हर वस्त माया गढ़ वेड़ी गुर कै शब्द लियो गढ़ जीत रहाओ मिथ्या भरम भरम बहु भ्रमे।

परे बिख बिखिया सतगुर काढ लिए देहाथ रहाव स्वामी अपै निरंजन नरहर तुम राख ले हो हम पापी पात काम क्रोध बिखिया लोभ लुभते काष्ट लोहो तरे संग साथ तुम वड पुरख वड अगम अगोचर

राम तेहाय सत संगत मिल साधु पाथ हर हर कथा सुनी मिल संगत हर हर जपेओ अकथ कथ काथ हमरे प्रभ जगदीश गुसाई हम राख ले हो जगन्नाथ जन नानक दास दास दासन को प्रभ करहु कृपा राखो जन साथ कानड़ा महला चौथा पड़ताल घर पंजवा।

बीस जप हर हर शब्द जपीस हर हो किरपीस रहाओ हर कृपा कर स्वामी हम लाए हर सेवा हर जप जपे हर जप जपे।

जन नानक अमृत पिया गुरमति तन तन तन तन तन गुरु साबीस कानड़ा महला चौथा पज रामो मन राम जिस रूप नरेख वडाम सत संगत मिल पज राम बड हो भाग मथाम रहाउ जित ग्रह मंदर हर होत जास तित कर आन दो

कुल सगल तरादु कानड़ा महला चौथा हर जस गावो भगवान जस गावत पाप लहान मत गुरमत सुन जस कान हर हो किरपान रहाओ तेरे जन त्याव है एक मन एक चित ते साधु सुख पाव है जप हर हर नाम निदान उस्तत करह प्रभ तेरिया मिल साधु साध जना गुर सत गुरु भगवान जिनकै हृदय तू स्वामी ते सुख फल पाव है ते तरे भव सिंध ते भगत हर जान तिन सेवा हम लाए हरे जन नानक के हर तू तू तू तू तू भगवान कानड़ा महला पंजवा घर दूजा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद गाइया गुण गोपाल कृपा निद दुख बदारन सुख दाते सतगुर जा को भेटत हुए सगल सिद्ध रहाओ सिमरत नाम मन साधार कोट पराधी खिन महतार जा को चीत आवै गुर अपना ता को दुख नहीं तिल सुपना जा को सतगुर अपना राखै सो जन हर रस रसना चाखै कहो नानक गुर कीनी मया हलत पलत मुख उजल भया कानड़ा महला पंजवा अरादो तुझै स्वामी अपने उठत बैठत सोवत जागत सास सास सास हर जपने।

रसन अनक बार कर बंदन संतन ऊहा चरण गोविंद जी के बस न रहाओ अनक भांत कर द्वार न पावो होए कृपाल ता हर हर त्यावो कोट कर्म कर दे न सोदा साध संगत मेहमान प्रबोधा त्रिशन्ना बूजी बहु रंग माया नाम लैत सर्व सुख पाया पार ब्रह्म जब पाई।

तैल संतन की संग साधु का हर नामा जप परम गते रहाओ पूजा चरना ठाकुर सरना सोई कुशल जो प्रभ जियो करना सफल होत ए दुर्लभ देही जां कौ सतगुर मया करे ही अज्ञान भरम बिनसै दुख डेरा जां कै हृदय बसह गुर पैरा साध संग रंग प्रभ त्याया कहु नानक तिन पूरा पाया कानड़ा महला पंजवा भगत भगतन हूं बन आई तन मन गलत भय ठाकुर स्यों।

परना मान महत तुम्हारे ऊपर तुमरी ओठ तुम्हारी सरना रहाउ तुमरी आस भरोसा तुमरा तुमरा नाम हृदय लै तरना तुमरो बाल तुम संग सुहेले।

तानो राज जोबन धन बहुर बहुर फिर ताया सुख पाया तृष्णा सब बुझी है शांत पाई गुण गाया बिन बुझे पशु की न्याई भ्रम मोहे व्याप्यो माया साध संग जम जेवरी काटी नानक सहज समाया कानड़ा महला पंजवा हर के चरण हृदय गाए शीतला सुख शांत मूरत सिमर सिमर नित त्याए रहाओ सगल आस होत पूरन कोट जन्म दुख जा

आन दा सुख सहज मूरत तिसे आन नाही भांत सिमरत एक बार हर हर मिट कोट कसमल जात गुण रमंत दुख नास है रिद पयंत शांत अमृता रस पियो रसना नानक।

नु धो परम राख लीजे काट बेरी रहाउ बूढ़त संसार सागर उदरे हर सिमर रत्नागर शीतला हर नाम तेरा पूर्णो ठाकुर प्रभ मेरा दीन दर्द निवार तारन हर कृपा निद पतत उदारन कोट जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुर नाम दरडायो कानड़ा महला पंजवा धन ओह प्रीत चरण संग।

आए मिले पूर्ण बड़ भागी रहाउ। मोहे अनाथ दास जन तेरा, अवर ओट सगली मोहे त्यागी। भोर भरम काटे प्रभ सिमरत, ज्ञान अंजन मिल सोवत जागी। तू अथाह अत बड़ो स्वामी, कृपा सिंध पूर्ण रत लागी। नानक जाचक हर हर नाम मांगे, मस्त ज्ञान धरियो प्रभ पागी। कानड़ा महला पंजवा, कुचल कठोर कपट कामी। ज्यों जान है त्यों तार स्वामी, रहाव तू समरथ सरन जोग। तू राख है अपनी कल तार, जाप ताप नेम सुच संयम। नाही इन विदे छुटकार, गर्त घोर अंध ते काढ हो। प्रभ नानक नदर निहार। कानड़ा महला पंजवा, घर चौथा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद नारायण नरपत नमस्कार, ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुक्त मोहे तारे रहाओ, कवन कवन कमन गुण कहिए।

सब भला ही है रे, हार नहीं सब जीतै, सोग नाही सदा हर की है रे, छोड़ नाही किछ लेतै, कहो नानक जन हर हर हर है, कत आवै कत रमतै, कानड़ा महला पंजवा, हिये को प्रीतम बिसर ना जाए, तन मन गलत भये तिह संगे।

एउ गहे रहे अटकाए अनक भांत की एकै जाली ताकी गंठ नहीं छोराए फिरत फिरत नानक दास आयो।

अंतर करेर अठसठ मज्जन मैल कटेर सास सास त्यावोह मुख नहीं मोर किस संग ना चाले लाख करोर प्रभ जी को नाम।

दर्शन प्यास बहुत मन मेरा, मिल नानक देव जगत गुर केरा, कानला महला पंजवा, ऐसी कौन विदे दर्शन परसना रहाऊ, आस प्यास सफल मूरत, उमंग ही ओ तरस।

ईत हस्त पूर्ण सब संगा रहाव वर्त नेम तीर्थ सहत गंगा जल हेवत भूख अरनंगा पूजा चार करत मेलंगा चक्कर कर्म तिलक खाटंगा दर्शन भेटे बिन सतसंगा हठन ग्रह अत रहत बटंगा हौ रोग व्यापै चुकै ना पंगा काम क्रोध अत तृष्ण जरंगा सो मुक्त नानक जिस सतगुर चंगा कानड़ा महला पंजवां कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद देख बूझ गई मिल साध जना पंच भागे चोर सहजे सुखैनो

मना हर जाप, जो संत वेद कहत पंथ गाखरु, मोह मगन अहंताप रहाउ, जो राते माते संग बपरी माया, मोह संताप, नाम जपत सो जन उदरह, जिसह उदार हो आप, बिन सजाए मोह पै परमा, नानक संत प्रताप, कानड़ा महला पंजवां कर दसवां, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, ऐसो दान देहो जी संतो, जाप जियो बलिहार, मान मोही पंच दोही, उर्ज निकट बसेओ, ताकि सरन साधुआ दूत संग निवार, रहाओ कोट जन्म जोन भ्रम्यो, हार परयो द्वार, कृपा गोविंद पई मिलियो नाम आधार, दलभ जन्म सफल नानक पाव उतार पार, कानड़ा महला पंजवां घर ग्यारवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सहज सुभाए अपने आए, कछु न जानो कछु दिखाए, प्रभ मिलियो सुख बाले भोले रहाओ, संजोग मलाए साध संगाए, कतहु न जाए करह बसाए, गुण निधान प्रगट्यो एह चोलै, चरण लुभाए आनत जाए, थान थनाए सर्ब समाए, रसक रसक नानक गुण बोलै, कानड़ा महला पंजवा, गोविंद ठाकुर मिलन दुराई, परमत रूप अगम अगोचर, रहियो सर्ब समाई रहाउ, कहन भवन नाही पायो पायो, अनक उकत चतुराई, जतन जतन अनक उपावरी, तौ मिलियो जो किरपाई, प्रभु दयार किरपार किरपा निद, जन नानक संत रे नाई, कानड़ा महला पंजवा, माई सिमरत राम राम राम, प्रभ बिना नाही होर, चितवों चरनार बिंद, सासन निसपोर रहाओ, लाए प्रीत कीन आपन, टूटत नहीं जोर, प्राण मन धन सर्बसु, हर गुण निजे सुख मोर, ईत ऊत राम पूरन, निरखत रिद खोर, संत सरन तरन नानक, बिन से ओ दुख कोर।

तान मांगौ तान लक्ष्मी सुत दे मुकत जुगत भुगत पूरन परमानंद परम निदान पै पाए भगत निहाल नानक सदा सदा कुर्बान कानड़ा महला पंजवा करत करत चर्च चर्च चर्चरी जोग ध्यान भेख ज्ञान फिरत फिरत धरत धरत धरचरी रहाउ अहं अहं अह अवर मूड़ मूड़ मूड़ बबरई।

मृत निकट निकट सदा ही हर हरे हरे पाज कहत नानक सुनो रे मूड़ बिन भजन भजन भजन अहला जन्म गई कानड़ा अष्टपदियां।

वह सुख पावे, सतगुर सेव समावे गुर हाउ, भगत जना की खिन खिन लोचा, नाम जपत सुख पावे गु, अनरस साध गए सब नीकर, बिन नावे किस ना सखावे गु, गुरमत हर हर मीठा लागा, गुर मीठे बचन कढावे गु, सतगुर बाणी पुरख पुरखोतम, बाणी स्यों चित लावे गु, गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रव्या, मन पीना निज कर आवै गु, तैं अनहत धुनी बाजह नित बाजी, नीचर धार चवावै गु, राम नाम इक तिल तिल गावै, मन गुरमत नाम समावै गु, नाम सुनै नामो मन पावै, नामे ही तृप्तावै गु, कनक कनक पहरे बहु कंगना, काप

माया पटल पटल है भारी कर घूमन घेर कला वैगो पाप बकार मनूर सब भारी दिख दुत्तर तरयो ना जावैगो भौ बैराग भया है बोहित गुर खेवट शब्द तरावैगो राम नाम हर भेटी है हर राम नाम समावैगो अज्ञान लाए सवालिया।

हर हर नाम तरावै गु जो जो जपै सोई गत पावै ज्यों ध्रुव प्रहलाद समावै गु रहाउ कृपा कृपा कृपा कर हर जियो कर कृपा नाम लगावै गु कर कृपा सतगुरु मलावहु मिल सतगुरु नाम त्यावै गु जन्म जन्म की हम मैं मल लागी मिल संगत मल लह जावै गु ज्यों लोहा तरियो संग कास्ट लग शब्द गुरु हर पावै गु संगत संत मिलो सत संगत मिल संगत हर रस आवै गु बिन संगत कर्म करै अभिमानी कड पानी कीकड़ पावै गु भगत जना के हर रखवारी जन हर रस मीठ लगावै गु खिन खिन नाम दे वडियाई सतगुर उपदेश समावै गु भगत जना को सदा निव रही है जन निवह ता फल गुण पावै गु जो निंदा दुष्ट करह भगतां की हरनाक्ष ज्यों पच जावै गु ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावै गु जो जो भगत होए सो पूजो हो परमन परम चुकावै गु जात निजात देख मत परम हो सुख जनक पगी लग त्यावै गु जूठन जूठ पई सिर ऊपर खिन मनुआ तिल ना डलावै गु जनक जनक बैठे सिंघासन नौ मुनि धूर लै लावै गु नानक कृपा कृपा कर ठाकुर मैं दासन दास करावै गु कानड़ा महला चौथा मन गुरमत रस गुण गावै गु जिहवा एक होए लख कोटि कोट त्यावै गु रहाउ सहस फनी जप्यो सेख नागै हर जपत्या अंत न पावै गु तू अथाह अत अगम अगम है मत गुरमत मन ठहरावै गु जिन तू जप्यो तेई जन नीके हर जपत्या हो कौ सुख पावै गु बिदरदासी सुत छोक शोहरा कृष्ण अंक गल लावै गु जल ते ओपत पई है कासत कासत अंग तरावै गु राम जना हर आप सुवारी अपना बिरदर खावै गु हम पाथर लोहो लोहो बड पाथर गुर संगत नाव तरावै गु ज्यों सत संगत तरयो जुलाहो संत जना मन पावै गु खरे खरोए बैठत उठत मार्ग पंथ त्यावै गु सतगुर बचन बचन है सतगुर पाधर मुक्त जनावै गु सासन सास सास बल पाई है निह सासन नाम त्यावै गु गुर प्रसादी हम मैं बूजै तौ गुरमत नाम समावै गु सतगुर दाता जी जीअल को भागहीन नहीं पावै गु फिर एह वेला हाथ न आवै पर तापै पछतावै गु जे को भला लोड़ै भले अपना गुर आगै टह टह पावै गु नानक दया दया कर ठाकुर मैं सतगुर भस्म लगावै गु।

दुख पावै गो अनेक जन्म बिछड़े मेरे प्रीतम कर कृपा गुरु मलावै गो सतगुर मिलत महा सुख पाया मत मलीन बिगसावै गो हर हर कृपा करो जग जीवन मैं श्रद्धा नाम लगावै गो नानक गुरु गुरु।

जय तालकुंडे गुरियंकस शब्द दरडावैगु रहाउ चल तो चले चले दह दह दिस गुर राखे हर लिव लावैगु सतगुर शब्द देर दे अंतर मुख अमृत नाम चुवावैगु बिसियर बिसु परे है पूरन गुर गरड़ शब्द मुख पावैगु माया पोयंग तिस नेड़ ना आवै बिख चार चार लिव लावै गु स्वान लोभ नगर मह सबला गुरखिन मह मार कढावै गु सत संतोख धर्म आन राखी हर नगरी हर गुण गावै गु पंकज मोह निगरत है प्राणी गुर निगरत काड कढावै गु त्राहे त्राहे शरण जन आई गुर हाथी दे निकलावै गु सुपनंतर संसार सब बाजी।

लै खर्च चले पत पावै गो, खाए खर्च देवै बहुतेरा, हर दिन दे तोट ना आवै गो। राम नाम धन है हृदय अंतर, धन गुर

सतगुर शरण त्यावै गु लोहा हिरन हुवै संग पारस गुण पारस को हुए आवै गु रहाउ सतगुर महापुरख है पारस।

वैगु सतगुर बचन बचन है नीको गुर बचनी अमृत पावैगु ज्यो अमरीक अमरा पद पाई सतगुर मुख बचन त्यावैगु सतगुर सरन सरन मन पाई सुधा सुधा कर त्यावैगु दयाल दीन भय है सतगुर हर मार्ग पंथ दिखावैगु सतगुर सरन पय से थापे तिन राखन को प्रभ आवैगु जे को सर संदै जन ऊपर फिर उल्टो तिसै लगावैगु हर हर हर हर हर सर सेवह तिन दरगाह मान दवावैगु गुरमत गुरमत गुरमत त्यावह हर गल मेल मेल मलावैगु गुरमुख नाद वेद है गुरमुख गुरु परचै नाम त्यावैगु हर हर रूप होवै हर जन को पूज करावैगु साकत नर सतगुर नहीं पिया ते बेमुख हर परमावैगु लोभ लहर सुवान की संगत बिख माया करंग लगावैगु राम नाम सब जग का तारक लग संगत नाम त्यावैगु नानक राख राख प्रभ मेरे सत संगत राख

जतन माया के काम न आए, राम ते आए सब फल पाए, तन तन ते बड़ भागिया, सतसंग जागे नाम लागे, एक स्यों लिव लागिया, तज मान मोह बेकार साधु, लग तरहु तिन कै पाए, बिनवंत नानक शरण स्वामी, बड़ भाग दर्शन पाए, मिल साधु नित भजह नारायण, रसक रसक स्वामी गुण गायन, गुण गाए जीवह हर अमयो पीवह, जन्म मरना भागे, सतसंग पाइय हर त्याय, बहुड़ दुख ना लागे, कर दया दाते पुरख बधाते, संत सेव कमायन, बिनवंत नानक जन तूर बांचह, हर दर्स सहज समायन, सगले जंत भजो गोपाले, जप तप संयम पूरन काले, नित भजो स्वामी अंतर जामी, सफल जन्म सबाया, गोविंद गाइय नित त्याइय, प्रवान सोई आया, जप ताप संयम हर हर निरंजन, गोविंद धन संग चाले, बिनवंत नानक कर दया दीजै, हर रत्न बंध हो पालै, मंगल चार चोज अनंदा, कर कृपा मिले परमानंदा, प्रभ मिले स्वामी सुखा गामी।

एकार बिन से मंदा बिनवंत नानक मिले स्वामी पुरख परमानंदा। कानड़े की वार महला चौथा मूसे की वार की टुनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्लोक महला चौथा राम नाम निदान हर

तू आपे आप वर्तदा, तू आपे करह सो हो गिया। सत संगत सत गुर तन तनो, तन तन तनो, जित मिल हर बुलग बुलोगिया। सब कहो मुखो हर हर हरे, हर हर हरे, हर बोलत सब पाप लोहोगिया। श्लोक महला चौथा। हर हर हर हर नाम है, गुरमुख पावे कोई, होमे ममता नास होए, दुर्मत कड्डे धोए। नानक अन दिन गुण उच्चरै, जिनको धुर लिखिया होए महला चौथा। हर आपे आप दयाल हर, आपे करे सो होए, हर आपे आप वर्तदा, हर जेवड़ अवर ना कोई। जो हर प्रभ पावे सो थीए, जो हर प्रभ करे सो होए, कीमत किने ना पाईया, बेअंत प्रभु हर सोए। नानक गुरमुख हर सा लाहया, तन मन शीतल होए पौड़ी। सब जोत तेरी जग जीवना, तू घट घट हर रंग रंगना। सब त्यावह तुद मेरे प्रीतमा, तू सत सत पुरख निरंजना। एक दाता सब जगत पिखारिया, हर जाचह सब मंग मंगना।

हर हर नाम त्याए मन, हर दरगाह पावह मान। जो इच्छा है सो फल पाए सी, गुर शब्दी लगे ध्यान। किल विख पाप सब कटी है, हों मैं चुके गुमान। गुरमुख कमल विगसिया, सब आत्म ब्रह्म पछान। हर हर कृपा धार प्रभु, जन नानक जप हर नाम। महला चौथा, हर हर नाम पवित्र है, नाम जपत दुख जाए। जिनको पूर्व लिखिया, तिन मन वसिया आए। सतगुर कै भाणे जो चले, तिन दालद दुख लह जाए। अपने भाणे किने ना पायो, जन वेखो मन पति आए। जन नानक दासन दास है, जो सतगुर लागे पाए। पौड़ी तू थान थनंतर भरपूर है, करते सब तेरी बणत बनावनी। रंग परंग सिष्ट सब साजी, बहो बहो विद भांत उपावनी। सब तेरी जोत ज्योति विच वरत है, गुरमती तुदै लावनी। जिन होए दयाल तिन सतगुर मेलै, मुख गुरमुख हर समझावनी। सब बोलो हो राम रमो, श्री राम रमो। जित दालत दुख भुख सब लह जावनी। श्लोक महला चौथा, हर हर अमृत नाम रस। हर अमृत हर उरतार, विच संगत हर प्रभु वरतदा। बुझो हो शब्द विचार, मन हर हर नाम त्याया। विख हों मैं कड्डी मार, जिन हर हर नाम ना चेतेओ। तिन जूऐ जन्म सब हार, गुर टुठै हर चेताया। हर नामा हर उरतार, जन नानक ते मुख उजले। तित सच्चै दरबार, महला चौथा। हर कीरत उत्तम नाम है, विच कल युग करनी सार। मत गुरमत कीरत पाई है, हर नामा अर हुर हार। बड भागी जिन हर त्याया, तिन सौंपया हर भंडार। बिन नावै जे कर्म कमावणे, नित हों मैं होए खुआर। जल हस्ती मल नवाली है, सिर पी फिर पावै शार। हर मेलो सतगुर दया कर, मन वसै एकंकार। जिन गुरमुख सुन

भे वरतै सब जगत किया बणजारा सब जोत तेरी ज्योति विच करते सब सच तेरा पासारा सब त्यावह तुद सफल से गावह गुरमति हर निरंकारा सब चवह मुख हो जगन्नाथ जगन्नाथ जग जीवनो जित भवजन पार उतारा सलोक महला चौथा हमरी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जप है इयाणिया हर तुम वड अगम अगाह हर देहो प्रभु मत उत्तमा गुर सत गुर कै पग पाह सत संगत हर मेल

हर करहो कृपा जग जीवना, गुर सतगुर मेल दयाल, गुर सेवा हर हम पाईया, हर हुआ हर कृपाल, सब आसा मनसा विसरी, मन चूका आल जंजाल, गुर तुठे नाम दरडाया, हम किए शब्द निहाल, जन नानक अतुट धन पाया, हर नामा हर धन माल पौड़ी, हर तुम वड वड्डे वड्डे वड ऊचे, सब ऊपर वड्डे वडौना, जो त्यावे है हर अपरंपर हर हर, हर त्याए हरे ते होना, जो गावे है सुने है तेरा जस स्वामी, तिन काटे पाप कटोना, तुम जैसे हर पुरख जाने मत गुरमत, मुख वड वड भाग वडोना, सब त्याव हो आद सते, जुगाद सते, प्रतख सते।

हर यज्ञ में यागो चर यज्ञ महार हर मिलिया आए अचिंत हर आपे घट घट वर्तदा हर आपे आप बेअंत हर आपे सब रस भोगदा हर आपे कवला कंत हर आपे भिख्या पाएदा सब सिष्ट उपाई जी जंत हर देव दान दयाल प्रभ हर मांग है हर जन संत जन नानक के प्रभ आए मिल हम गाव है हर गुण शंत महला चौथा हर कब सज्जन नाम हर मैं मन तन नाम शरीर सब आसा गुरमुख पूरिया जन नानक सुन हर धीर पौड़ी हरि उत्तम हरिया नाम है हर पुरख निरंजन मौला जो जप दे हर हर दिन सरात तिन सेवे चरण नित कौला नित सार संभाले सब जी जंत हर वसै निकट सब जौला सो बूझै जिस आप बुझाए सी जिस सतगुरु पुरख प्रब सौला सब गाव हो गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समौला सलोक महला चौथा सुत्या हर प्रभ चेत मन हर सहज समाध समाए जन नानक हर हर चाओ मन गुर तुठा मेले माए महला चौथा हर इकस सेती पिरहड़ी हर इको मेरा चित जन नानक एक आधार हर प्रभ इकस ते गत पत पौड़ी पंचे शब्द वजे मत गुरमत वडभागी अनहद वजिया आनंद मूल राम सब देखिया गुर शब्दी गोविंद गजिया आदि जगाद वेस हर एको मत गुरमत हर प्रभ भजिया हर देव दान दयाल प्रभ जन राखो हर प्रभ लज्जिया सब धन कहो गुर सतगुरु गुर सतगुरु जित मिल हर पड़दा कज्जिया सलोक महला चौथा भगत सरोवर उछलै सुभार भरे वहन जिन्ना सतगुर मन्निया जन नानक वड भाग लहन महला चौथा हर हर नाम असंख हर हर के गुण कथन ना जाहे हर हर अगम अगाध हर जन कित बिद मिलह मलाहे हर हर जस जप तुज पंत जन एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लै हो लड़ लाए पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किस वखर होए सो वरनी है तिस रूप ना रिखा जिस बजाए आप बजाए दे सोई जन दिखा सत संगत सत गुर चट साल है जित हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पहधा सत गुरु जित मिल हर लेखा लिखा सलोक महला चौथा हर हर नाम अमृत है हर जपिया सतगुर पाए हर हर नाम पवित है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिन्नी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाए हर दरगाह जन पैनाइयन जिन हर मन वसिया आए जन नानक ते मुख उजले जिन हर सुनिया मन पाए महला चौथा हर हर नाम निदान है गुरमुख पाया जाए जिन तुर मस्तक लिखिया तिन सत गुर मिलिया आए तन मन शीतल होया शांत वसी मन आए नानक हर हर चौंदिया सब दालद दुख लह जाए पौड़ी हों वारिया तिन को सदा सदा जिन्ना सतगुरु मेरा प्यारा देखिया तिनको मिलिया मेरा सतगुरु जिनको तुर मस्तक लेखिया हर अगम त्याया गुरमति तिस रूप नहीं प्रभ रेखिया गुर बचन त्याया जिन्ना अगम हर ते ठाकुर सेव कराल एकिया सब कहो मुख हो नर नर हरे नर नर हरे नर नर हरे हर लाहा हर भगत वसेखिया सलोक महला चौथा राम नाम रम रव रहे रम रामो राम रमीत
ਘਟ ਘਟ ਆਤਮ ਰਾਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਖੇਲ ਕੀਓ ਰੰਗ ਰੀਤ, ਹਰ ਨਿਕਟ ਵਸੈ ਜਗ ਜੀਵਨਾ, ਪਰਗਾਸ ਕੀਓ ਗੁਰਮੀਤ। ਹਰ ਸਵਾਮੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤਿਨ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗੁਰਬਚਨ ਜਪਿਓ ਮਨ ਕੀਤ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੱਜਣ ਲੋੜ ਲਹੋ, ਭਾਗ ਵਸੈ ਵਡ ਭਾਗ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਦੇ ਖਾਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗ ਪੌੜੀ, ਧਨ ਧਨ ਸੁਹਾਵੀ ਸਫਲ ਘੜੀ। ਜਿਤ ਹਰ ਸੇਵਾ ਮਨ ਪਾਣੀ, ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਕਿਉ ਪਾਈਐ ਕਿਉ ਦੇਖੀਐ। ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਣੀ, ਹਰ ਮੇਲ ਦਿਖਾਏ ਆਪ ਹਰ। ਗੁਰਬਚਨੀ ਨਾਮ ਸਮਾਣੀ, ਤਿਨ ਵਿਟੋ ਨਾਨਕ ਵਾਰਿਆ। ਜੋ ਜਪਦੇ ਹਰ ਨਿਰਬਾਣੀ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਰੱਤੇ ਲੋਇਣਾ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਸੱਜਣ ਪਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਮਿਲੇ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਤਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਸਮਾਈ, ਨਾਮ ਚਿਤਵੈ।

नाम उपजे तृष्णा भुख सब जाय नानक नामे रतिया नामो पल्ले पाई पौड़ी तुदे आपे जगते पाए कै तुदे आपे वसगत कीता एक मनमुख कर हरायन एक ना मेल गुरु तिना जीता हर उत्तम हर प्रभ नाम है गुरबचन सुभागै लीता दुख दालद सबो लह गया जा नाम गुरु हर दीता सब सेव हो मोहनो मन मोहनो जग मोहनो जिन जगत अपाए सबो वस कीता श्लोक महला चौथा मन अंतर हों मैं रोग है भ्रम भूले मन मुख दुर्जना नानक रोग बंजाए मिल सतगुर साधु सज्जना महला चौथा मन तन ताम संघार।

जगदीशर करते अपरंपर पुरखे अतोल। हर नाम त्यागो मेरे गुर सिखो हो, हरि उत्तम हर नाम अमोल। जिन त्याया हृदय दिन सरात, ते मिले नहीं हर रोल। वड भागी संगत मिले, गुर सत गुर पूरा बोल। सब त्याग हो नर नारायणो नारायणो, जित चूका जम झगड़ चगोल। श्लोक महला चौथा, हर जन हर हर चौंदिया, सर संध्या गावार। नानक हर जन हर लिव उबरे, जिन संध्या तिस फिर मार। महला चौथा, अखी प्रेम कसाइया, हर हर नाम पिखन। जे कर दूजा देख दे, जन नानक काढ दे चन पौड़ी। जल थल महियल पूर्णो अपरंपर सोई, जी जंत प्रित पालदा जो करे सो होई। मात पिता सुत प्रात मीत, तिस बिन नहीं कोई। घट घट अंतर राव रहया, जपयो हो जन कोई। सगल जपो हो गोपाल गुण, प्रगट सब लोई। श्लोक महला चौथा, गुरमुख मिले से सजना, हर प्रभ पाया रंग। जन नानक नाम सलाहे तू, लुड लुड दरगह वान्य। महला चौथा, हर तू है दाता सब सदा। सब जी तुम्हारे, सब तुदैनो अराध दे। दान दे प्यारे, हर दाता दातार हाथ कढ़िया। मीह उठा संसारी, अनजमिया खेती भाओ कर। हर नाम समारे, जन नानक मंगै दान प्रभ। हर नाम अधारे पौड़ी, इच्छा मन की पूरी है। जपी है सुख सागर, हर के चरण अराधी है। गुर शब्द रतनागर, मिल साधु संग उधार होए। हाटै जम कागर, जन्म पदार्थ जीती है। जप हर बैरागर, सब पवो हो शरण सतगुरु की। बिन सह दो

हारे तुमरे तू बड़ पुरख पिता मेरा माया रहाउ हर के नाम असंख अगम है अगम अगम हर राया गुणी ज्ञानी सुरत बहु कीनी एक तिल नहीं कीमत पाया गोविंद गुण गोविंद सद गाव है गुण गोविंद अंत ना पाया तू अमित अतोल अपरंपर स्वामी बहु जपिया था ना पाया पुस्तत कर है तुमरी जन माधो गुण गाव है हर राया तुम जल निद हम मीने तुमरे तेरा अंत ना कतहु पाया जन को कृपा करहो मधुसूदन हर देव हो नाम जपाया मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है जन नानक गुरमुख पाया कल्याण महला चौथा हर जन गुण गावत हसया हर हर भगत बनी मत गुरमत तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहाउ गुर के पग सिमरो दिन राती मन हर हर हर बसया हर हर हर कीरत जग सारी कस चंदन जस कसया हर जन हर हर हर लिव लाई सब साकत खोज पया ज्यों किरत संजोग चल्यो नर निंदक।

जिथे सब तन मन अर्पौ अर्प अरापौ कोई मिले प्रभ मिलथे हर के गुण बहुत बहुत बहुत सोभा हम तुष कर कर बरंथे हमरी मत वसगत प्रभ तुमरे जन नानक के प्रभ समरथे। कल्याण महला चौथा मेरे मन जप हर गुण अकथ संथई धर्म अर्थ सब काम मोख है जन पीछे लग फिर थई रहाउ सो हर हर नाम त्यावै हर जन जिस बड़ भाग मथई जह दर्ग है प्रभ लेखा मांगे तह छूटै नाम त्याए थई हमरे दुख बहु जन्म जन्म के दुख हो मैं मैल लग थई गुरतार कृपा हर जल नावाई सब किल विख पाप गथई जन कै हृदय अंतर प्रभ स्वामी जन हर हर नाम पज थई जह अंती अवसर आए बनत है तह राखै नाम साथी जन तेरा जस गाव है हर हर प्रभ हर जपियो जगन थई जन नानक के प्रभ राखे स्वामी हम पाथर रख बुड थई। कल्याण महला चौथा हमरी चितवनी हर प्रभ

कह यहाँ की भगत मेरा प्रभ मान हर के चोज वडान देख जान जो खोटा खरा एक निमख पछान ताते जान को आनंद भया है।

आस प्रभ मोहे कब गल लावहंगे रहाउ हम बारिक मुग्ध इयान पिता समझावहंगे सुत खिन खिन भूल बिगार जगत पित पावहंगे जो हर स्वामी तुम देहो सोई हम पावहंगे मोहे दूजी नाही ठौर जिस पह हम जावहंगे जो हर पावह भगत

परस रे परस परस गुण गाई नानक तात तात स्यो मिलिय हीरे हीर बेधाई कल्याण महला पंजवा मेरे लालन की शोभा सद लव तन मन रंग।

ज्ञान भुगत सुरत शब्द तत बेते जप तप अखंडली ओत पोत मिल जोत नानक कछु दुख ना डंडली कल्याण महला पंजवा कौन बिद ता की कहां करूं धरत ध्यान ज्ञान शस्त्र गया।

दुर्गा कोट मदे मुक्त कहो कहो नानक नाम रस पाई साधु चरण गहो कल्याण महला पंजवा प्राण पत दयाल पुरख प्रभ सखे गर्भ जोन कल काल जाल दुख बनासन।

दूरे सो प्रसन्न भई सदा सुख कल्याण रहाउ। सर्ब कार्य सिद्ध भई गाए गुण गोपाल मिल साध संगत प्रभु सिमरे नाठिया दुख काल। कर कृपा प्रभु मेरिया करो दिन रहन सेव नानक दास शरणागति हर पुरख पूर्ण देव। कल्याण महला पंजवा प्रभ मेरा अंतर जामी जान कर कृपा पूर्ण परमेश्वर निश्चल सच शब्द निशान रहाउ। हर बिन आन न कोई समरथ तेरी आस तेरा मन तान सर्ब कटां के दाते स्वामी देहे सो पहरन खान सुरत मत चतराई।

जुगत अनक सुख हर भगत लवै ना लाम नु प्रभ दर्श लुभद दास नानक बहुड़ जोन ना धाम नु कल्याण महला चौथा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद रामा राम रामो सुन मन भीजै हर हर नाम अमृत रस मीठा गुरमत सहजे पीजै रहाउ काष्ट मह ज्यो है बै संतर मत संयम काढ कढीजै राम नाम है जोत सबाई तत गुरमत काढ लीजै नौ दरवाज नवे दर फीके रस अमृत दसवें चुईजै किरपा किरपा किरपा कर प्यारे गुर शब्दी हर रस पीजै काया नगर नगर है नीको विच सौदा हर रस कीजै रतन लाल अमोल अमोलक सतगुर सेवा लीजै सतगुर अगम अगम है ठाकुर।

लाल लाल है रंगन, मन रंगन कौ गुर दीजै। राम राम राम रंग राते, रस रसक घटक नित पीजै। वसुधा सप्त दीप है सागर, कड कंचन काड तरीजै। मेरे ठाकुर के जन इन्हो ना बांछ है, हर मांग है हर रस दीजै। साकत नर प्राणी सद भूखे, नित भूखन भूख करीजै। तावत ताए तावह प्रीत माया, लख कोसन को बिथ दीजै। हर हर हर हर हर जन उत्तम, क्या उपमा तिन दीजै। राम नाम तुल और ना उपमा, जन नानक कृपा करीजै। कल्याण महला चौथा, राम गुर पारस परस करीजै। हम निर्गुणी मनूर अत फीके, मिल सतगुर पारस की जय रहाओ। सुर्ग मुक्त बैकुंठ सब बांछ है, नित आसा आस करीजै। हर दर्शन के जन मुक्त ना मांग है, मिल दर्शन तृप्त मन तीजै। माया मोह सबल है भारी, मोह कालख दाग लगीजै। मेरे ठाकुर के जन अलिपत है मुक्ते, ज्यो मरगाई पंक ना पीजै। चंदन वास पोयंगम वेड़ी, किव मिलिए चंदन लीजै। काड खड़ग गुर ज्ञान करारा, बिख छेद छेद रस पीजै। आन आन समदा बहु कीनी, पल बै संतर भस्म करीजै। महा उग्र पाप साकत नर कीने, मिल साधु लूकी दीजै। साधु साध साध जननी के, जिन अंतर नाम तरीजै। परस न परस भय साधु जन, जन हर भगवान दिखीजै। साकत सूत बहु गुर जी भरिया, क्यों करतान तनीजै। तंत सूत किस निकसै नाही, साकत संग ना कीजै। सतगुर साध संगत है नीकी, मिल संगत राम रवीजै। अंतर रतन जवे हर मानक, गुर कृपा ते लीजै। मेरा ठाकुर वड्डा वड्डा है।

साध जननी के मिल साधु हर रंग की जय रहाओ। जी जंत सब जग है जेता मन डोलत डोल करी जय। कृपा कृपा कर साध मलाव हो जग थमन को थम दीजै। बसदा तलै तलै सब ऊपर मिल साधु चरण रलीजै। अति उत्तम अत उत्तम हो वो सब सिष्ट चरण तल दीजै। गुरमुख जोत भली सिवनी की आन पानी सकत परीजै। मैन दंत निकसे गुर बचनी सार चब चब हर रस पीजै। राम नाम अनग्रह बहु किया गुर साधु पुरख मलीजै। गुण राम नाम बिसथीरन किए हर सगल भवन जस दीजै। साधु साध साध मन प्रीतम।

अभाग अभाग है जिनके तिन साधु धूर ना पीजै तिन्ना तिसना जलत जलत नहीं बूझै दंड धर्म राय का दीजै सब तीर्थ वर्त जग पुन किए हिवै गाल गाल तन सीजै अतुला तोल राम नाम है गुरमत को पुजै ना तोल तलीजै तब गुण ब्रह्म ब्रह्म तू जान है जन नानक सरण परिजै तू जल निद मीन हम तेरे कर कृपा संग रखीजै कल्याण महला चौथा रामा राम रामो पूज करीजै मन तन अर्प धरो सब आगै रस गुरमत ज्ञान दृढ़ीजै रहाउ ब्रह्म नाम गुण साखत रोवर नित चुन चुन पूज करीजै आत्म देव देव है आत्म रस लागै पूज करीजै विवेक बुद्ध सब जग मह निर्मल विचर विचर रस

फुल फल गुर ज्ञान दृढ़ाया बहकार बास जग दीजै एक जोत एको मन वसिया सब ब्रह्म दृष्ट एक कीजै आत्म राम सब एक है पसरे सब चरण तले सिर दीजै नाम बिना नकटे नर देखो तिन कस कस नाक वडीजै साकत नार अहंकारी कही है बिन नावे त्रिग जीवीजै जब लग सास सास मन अंतर तत बेगल सरन परीजै नानक कृपा कृपा कर धारो मैं साधु चरण पखीजै कल्याण महला चौथा रामा मैं साधु चरण तवीजै तिल बिख दहन होहे खिन अंतर मेरे ठाकुर कृपा कीजै रहाउ मंगत जन दीन खरे दर ठाढे अत तरसन को दान दीजै त्राहे त्राहे सरन प्रभ आये मोको गुरमत नाम दृढ़ीजै काम क्रोध नगर मह सबला नित उठ उठ जूझ करीजै अंगीकार करहु रख लेवहु गुरपूरा काढ़ कढ़ीजै अंतर अग्न सबल अत बिखिया हिव शीतल शब्द गुर दीजै तन मन शांत हुए अधिकाई रोग काटे सूख सवीजै ज्यों सूरज किरण रविया सरबठाई सब घट घट राम रवीजै साधु साध मिले रस पावै तत निज घर बैठिया पीजै जन को प्रीत लगी गुर सेती ज्यों चकवी देख सूरीजै निरखत निरखत रैन सब निरखी मुख काढ़ै अमृत पीजै साकत सुहान कहियै बहु लोभी बहु दुर्मत मैल परीजै आपन सवाए करहै बहु बाता तिना का वसाहु क्या कीजै साधु साध सरन मिल संगत जित हर रस काढ़ कढ़ीजै पर उपकार बोलहै बहु गुणिया मुख संत भगत हर दीजै तू अगम दयाल दया पत दाता सब दया धार रख लीजै सर्ब जी जग जीवन एको नानक प्रतपाल करीजै कल्याण महला चौथा रामा हम दासन दास करीजै जब लग सास होए मन अंदर

जाय। प्रभाती महला पहला, तेरा नाम रखन कर्म चानन, सुरत तिथे लोए, अंधेरे अंधी वापरे, सगल लीजे खोए। इहो संसार सगल बेकार, तेरा नाम दारू अवर नासत, करन हार अपार रहाओ। पताल पुरियां एक पार, हो वह लाख करोड़।

एक वार प्रभाती महला पहला जय कारण वेद ब्रह्म उच्चरे शंकर छोड़ी माया जय कारण सिद्ध भये उदासी देवी मर्म ना पाया बाबा मन साचा मुख साचा कही है तरिय साचा होई।

शिव जोत कन्हो बुद्ध पाई सत गुरु रखवाला जा कै बरत नाही नेम नाही नाही बक बाई गत अवगत की चिंत नाही सत गुरु फुरमाई जा कै आस नाही निरास नाही चित सुत समझाई तंत को परम तंत मिलिया नानका बुद्ध पाई प्रभाती महला पहला ताका कहिया दर प्रवान बिख अमृत दोहे सम कर जान क्या कहिए सर्बे रहिया समवाय जो किछ वरतै सब तेरी रजाई रहाउ प्रगटी जोत चूका भगवान सतगुरु दिया अमृत नाम।

जल जाय। प्रभाती महला पहला अमृत नीर ज्ञान मन मज्जन अठ सठ तीरथ संग गए गुरु उपदेश जवाहर मानक सेवे सिख सो खोज लह।

जाकी वास बनासपत सौरै तास चरण निवरही है। गुरमुख जी प्राण उपज है, गुरमुख सेव घर जाई है। गुरमुख नानक सच समाई है, गुरमुख निज पद पाई है। प्रभाती महला पहला, गुर प्रसादी विद्या विचार है। पढ़ पढ़ पावे मान, आपा मदे आप परगासिया।

काल पंच तस्कर तावत राखी चूका माने अभमान दिष्ट विकारी दुर्मत भागी ऐसा ब्रह्म ज्ञान जत सत चावल दया कणक कर प्राप्त पाती तान दूध कर्म संतोख कियो कर ऐसा मांगो दान हिमा तीर्ज कर गौ लवेरी सहजे बछरा खीर पिए सिफत शर्म का कपड़ा मांगो हर गुण नानक रवत रह प्रभाती महला पहला आवत किने ना राखिया।

जैसे हरहट की माला टिंड लगत है, एक सखनी होर फेर भरियत है, तैसो ही एहो खेल खसम का, ज्यों उसकी वडियाई। सुरती कै मार्ग चल कै उल्टी नदर परगासी, मन विचार देख ब्रह्म ज्ञानी, कौन गिरही कौन उदासी, जिसकी आसा तिस ही सौंप कै एहो रहया निर्वाण, जिसते हो आसोई कर मानिया, नानक गिरही उदासी सो परवान। प्रभाती महला पहला, दिष्ट बिकारी बंधन बंद है, हौ तिसकै बल जाई, पाप पुन की सार ना जाने, भूला फिरै अजाई, बोलो सच नाम कर।

सुजानिया जगते पूरे प्रवान ता कहो समझावन जाइए जे को भूला होई आपे खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई नाओ प्रभात है शब्द ते आई है छोड़ हो दुनी परिता प्रणवत नानक दासन दासा जग हारिया तिन जीता। प्रभाती महला पहला मन माया मन ताया मन पंखी आकाश तस्कर शब्द निवारिया नगर बुठा साबास जा तू राख।

मन जोगी मन भोगिया मन मूर्ख गवार मन दाता मन मंगता मन सिर गुर करतार पंच मार सुख पाया ऐसा ब्रह्म विचार घट घट एक वखाणी कहो ना देखिया जाए खोटो पूठो।

जात जन्म नह पूछी है सच घर लेहो बताई सा जात सा पत है जे कर्म कमाए जन्म मरण दुख काटिए नानक छूट सुनाई प्रभाती महला।

है कहावै सोई। प्रभाती मोहल्ला पहला खाया मैल बधाया पहंद घर की हान बक बक वाद चलाया बिन नावे बिख जान। बाबा ऐसा बिकम जाल मन वासिया बिबल झाग सहज प्रगासिया रहाउ। बिख खाना बिख बोलना बिख की कार कमाए जम दरबादे मारी है छूटस साच नाय। जिव आया तिव जाए सी किया लिख ले जाए। मन मुख मूल गवाया दरगाह मिले सजाए। जग खोटो सच निर्मलो

घर चरै अमर आनंद स्वरूप नानक जल को मीन सै थे पावै राखो प्रीत प्रभाती महला पहला गीत नाद हरक चतुराई।

रस कमल बिगासे सस कर सूर समाया काल बिंदु मनसा मन मारी गुर प्रसाद प्रभ पाया आतरस रंग च लूलै राती दूजा रंग ना कोई नानक रसन रसाए राते रव रहे प्रभ सोई प्रभाती महला पहला बारह मह रावल खप जावे चौ छे मह सन्यासी जोगी का पड़िया सिर कूथे बिन शब्द गल पासी शब्द रते पूरे बैरागी औ हट हस्त मह भीखे आ जाची एक पाए लिव लागी रहा ब्राह्मण वाद पढ़े कर क्रिया करनी कर्म कराई बिन बूझे किस सूझे नाही मन मुख विछड़ दुख पाए शब्द मिले से सूचा चारी साची दरगाह माने आन दिन नाम रतन लिव लागे जुग जुग साच समाने सगले कर्म धर्म सुच संयम जप तप तीरथ शब्द वसे नानक सतगुर मिले मलाया दुख परासत काल नसे प्रभाती महला पहला संता की रेण साध जन संगत हर कीरत तर तारी कहां करे बपरा जम डर पै गुरमुख हृदय मुरारी जल जाओ जीवन नाम बिना हर जप जाप जपो जप माली गुरमुख आवे साध मना रहाऊ गुर उपदेश साच सुख जाको क्या तिस उपमा कही है लाल जवेहर रतन पदार्थ खोजत गुरमुख लही है तीना ज्ञान ध्यान तन साचो एक शब्द लिव लावे निरालंब निरहार निह केवल निरपहु ताड़ी लावे शायर सप्त भरे जल निर्मल उल्टी नाव तरावे बाहर जातो ठाक रहावे गुरमुख सहज समावे सो गिरही सो दास उदासी जिन गुरमुख आप पछानिया नानक कह अवर नहीं दूजा साच शब्द मन मानिया राग प्रभाती महला तीजा चौपदी।

सुख पाया, गुर तृष्णा अग्न बुझाई, जो तू करह सो होए करते, अवर ना करना जाई, नानक नावे जे बड़े अवर ना दाता, पूरे गुर ते पाई। प्रभाती महला तीजा, गुरमुख हर साल आया जिन्ना, तिन

शब्द समाहे प्रभाती महला तीजा गुरमुख हर जियो सदा त्यावहु जब लग जी प्राण गुर शब्दी मन निर्मल हुआ चूका मन अभमान सफल जन्म तिस प्राणी केरा हर कै नाम समान मेरे मन गुर की सिख सुनी जै हर का नाम सदा सुख दाता सहजे हर रस पीजै रहाऊ मूल पछाणन तिन निज कर वासा सहजे ही सुख होई गुर कै शब्द कमल प्रगासिया हम मैं दुर्मत खोई सबना मह एको सच वरतै बिरला बूझै कोई गुरमति मन निर्मल हुआ अमृत तत्व खानै हर का नाम सदा मन वसिया विच मन ही मन मानै सद बलिहारी गुरे अपने बिटहो जित आत्म राम पछानै मानस जन्म सतगुरु ना सेविया बिरथा जन्म गवाया नदर करे ता सतगुर मेले सहजे सहज समाया नानक नाम मिले वडियाई पूरे भाग त्याया प्रभाती महला तीजा आपे भांत बनाए बहुरंगी।

गुर दे अंतर पायो, गुरमंत दियो हर कान रहाओ। आवहु संत मिलो मेरे पाई, मिल हर हर नाम बखान। कित बिद क्यों पाइए प्रभ अपना, मोको करहो उपदेश हर दान। सत संगत मह हर हर वसिया, मिल संगत हर गुण जान। वड्डे भाग सत संगत पाई, गुर सत गुर परस भगवान। गुण गाव है प्रभ अगम ठाकुर के, गुण गाए रहे हैरान। जन नानक को गुर कृपा तारी, हर नाम दियो खिन दान। प्रभाती महला चौथा, उगवै सूर गुरमुख हर बोल है। सवरैन समाल है हर गाल, हमरे प्रभ हम लोच लगाई। हम करह प्रभु हर पाल, मेरा मन साधु धूर रवाल। हर हर नाम दरडायो गुर मीठा, गुर पग झारह हम बाल रहाओ।

काल सत संगत मिल मत बुद्ध पाई हौ छूटे ममता जाल हर नामा हर मीठ लगाना गुर की ये शब्द निहाल हम बारिक गुर अगम गुसाई गुर कर कृपा प्रतपाल बिख पौ जल डुब दे काड ले हो प्रभ गुर नानक बाल गोपाल प्रभाती महला चौथा एक खिन हर प्रभ कृपा तारी गुण गाए रस कर सीक गावत सुनत दो पय मुक्ते जिन्ना गुरमुख खिन हर पीक मेरा मन हर हर राम नाम रस पीक गुरमुख नाम शीतल जल पाया हर हर नाम पिया रस चीक रहाओ जिन हर हृदय प्रीत लगानी तिन्ना मस्तक उजल टीक हर जन सोभा सब जग ऊपर जो विच उडवा सस कीक जिन हर हृदय

साध संगत में बसे गोपाल, गुर मिल आए तुमरे द्वार, जन नानक दर्शन देहु मरार, प्रभाते महला पंजवा, प्रभ की सेवा जन की शोभा, काम क्रोध मिटे तिस लोभा, नाम तेरा जन कै भंडार।

प्रभु कै रंग तिन सुख पाया प्रभु कै संग जिस रस आया सोई जाने पेख पेख मन मह हैरान सो सुखिया सब ते उत्तम होए जां कै हृदय वस्या प्रभु सोए सोई निश्चल आवे ना जाए अन दिन प्रभु के

देवा, नानक उदरै जन की सेवा। प्रभाती महला पंजवा, गुण गावत मन हुए आनंद, आठ पहर सिमरो भगवंत, जाके सिमरन कल मल जाहे, तिस गुर की हम चरनी पाहे, समत देव हो।

बल जाई अगमे अगोचर बेअंत स्वामी ताका अंत न पाइये लाहा खाट हुई है तनवंता अपना प्रभु ते आई है आठ पहर पार ब्रह्म ते आई सदा सदा गुण गाया कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ पार ब्रह्म गुर पाया प्रभाती महला पंजवा सिमरत नाम किलबिख सब नास्ते सच नाम गुर दीनी रास्ते।

होई सदा सदा प्रभ जी कै संग उतरी मैल नाम कै रंग चरण कमल स्यों लागो प्यार बिनसे काम क्रोध अहंकार प्रभ मिलन का मार्ग जाना पाए भगत हर

गुरपूरा पाइय वड भागी निर्मल पूर्ण रीत रहाउ पाया लाभ बजी वधाई संत प्रसाद हर

अहंकार। नानक गुरमुख उतरह पार, प्रभाती महला पंजवा, गुर पूरा पूरी ताकी कला, गुर का शब्द सदा।

मोन ना पवे ईहा ऊहा चरण पूजारी मुख उज्जल साचे दरबारी जिस मस्तक गुर तरिया हाथ कोट मदे को विरला दास जल थल मैयल पेखै भरपूर नानक उदरस तिस जन की तूर प्रभाती महला पंजवां पुरबान जाई गुर पूरे अपने जिस प्रसाद हर हर जप जपने रहाऊ अमृत बाणी सुनत निहाल।

चीत हर प्रभ अपना आया चीत नाम जपत हुआ प्रगास गुर शब्दे की नारदय निवास गुर समरथ सदा दयाल हर जप जप नानक भय निहाल प्रभाती महला पंजवा।

अरगास हर हर जपत पूर्ण भई आस सर्ब कल्याण सुख मन बूठे हर गुण गाए गुर नानक टूठे प्रभाती महला।

क्रोध अहंकार बिनसै लगै कै प्रीत रहाउ। नाम लागै दुख भागै शरण पालन जोग। सतगुर भेटै जमना तेटै जिस तुर होवै संजोग। रैन दिन सत्याए हर हर तजहो मन के परम। साध संगत हर मिलै

इस लोभ मोह बिन सजाए हम ताप रहाउ। आप त्याग संत चरण लाग मन पवित्र जाहे पाप। नानक बारक कछु ना जाने राखन को प्रभ माई बाप। प्रभाती महला पंजवां चरण।

मज्जन नानक पावे सुख अनेक प्रभाती अष्टपदिया महला पहला बेपास एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुबदा बौरी मन बौराया झूठे लालच जन्म गवाया लपट रही फुन बंद ना पाया सतगुर राखे नाम दिरडाया ना मन मरे ना माया मरे जिन किश किया सोई जाने शब्द विचार भव सागर तरे रहाउ माया संच राजे अहंकारी माया साथ ना चले प्यारी माया ममता है बहुरंगी।

नानक खोज लहै जन कोई प्रभाती महला पहला माया मोहे सगल जग छाया कामन देख काम लुभाया सुत कंचन सिंहो हेत बधाया सब किसे अपना एक राम पराया ऐसा जाप जपो जप माली दुख सुख पर हर भगत निराली रहाउ गुण निदान तेरा अंत न पाया साच शब्द तुझ माहे समाया आवा गौण तुद आप रचाया सेई भगत जिन सच चित लाया ज्ञान ध्यान नरहर निर्बाणी बिन सतगुरु भेट।

मन वसाय विसंबनोद रहे परमादी गुरमत मानिया एक लिव लागी देख नवारिया जल मह आगी सो बूझै होवै बड़ भागी।

बाद दुष्टि सभा विभुती है बिकवाती जीवन बाद ए ब्रह्म भूले मरो ना कोई सतगुर सेव सदा सुख होई बिन सतगुर मुक्त किने ना पाई आवह जाहे मरह मर जाई एहो शरीर है त्रै गुण धात इसनो व्यापै सोग संताप सो सेव हो जिस माई ना बाप विच्चों चूकै तिसना अर आप जह जह देखा तह तह सोई बिन सतगुर भेटे मुक्त ना होई।

तुम्हार जान नानक नदरी नदर पछाण प्रभाति महला पहला दखनी गौतम तपा अहल्या स्त्री तिस देख इंद्र लोभाया सहस शरीर चिन्ह पग हुए ता मन पछोताया कोई जान न भूले पहाई सो भूले जिसे आप पलाई बुझे जिसे बुझाई रहाओ।

आई करो अढ़ाई धरती मांगी बामन रूप बहाना क्यों पयाल जाए क्यों चली है जे बल रूप पछाना राजा जनमेजा दे मती बर्ज ब्यास पढ़ाया तिन कर जग अठारह कहाई कीर्तना चलै चलाया गणतना गणी हुक्म पछाना बोली भाए सुपाई जो किछ वरतै तुदै सलाही सब तेरी वडियाई गुरमुख अलिपत लेप कदे ना लागै सदा रहै सरनाई मनमुख मुगध आगै चेतै नाही दुख लागै पछताई आपे करे कराए करता जिन एह रचना रचियै हर अभमान ना जाई जियो अभमाने पै पचियै भुलण विच किया सब कोई करता आप ना भुलै नानक सच नाम निस्तारा को गुर प्रसाद अकुलै प्रभाती महला पहला आखना सुनना नाम आधार धंधा छुटक गया बेकार ज्यों मनमुख दूजै

लागै बिन गुर बूढ़ै बारो बार रहाउ इस मन माया मोहे बनास तुर हुक्म लिखिया ता कही है कास गुरमुख विरला चीनै कोई नाम बिहु ना मुक्त ना होई ब्रह्म ब्रह्म डोलै लख चौरासी बिन गुर बूझे जम की फासी एहो मनुआ खिन खिन ऊब पयाल गुरमुख छूटै नाम संभाल आपे सदे ढिल ना होई शब्द मरै सहला जीवै सोई बिन गुर सूझी किसै ना होई आपे करै करावै सोई झगड़ चुकावै हर गुण गावै पूरा सतगुर सहज समावै एहो मन डो

कर्म धर्म पथ पूजा काम क्रोध अग्नि मैं पूजा हर रस चाखिया तौ मन पीजा प्रणवत नानक अवर ना दूजा प्रभाती महला पहला राम नाम जप अंतर पूजा गुर शब्द विचार अवर नहीं दूजा एको रव रहया सब ठाई अवर ना दिसै किस पूज चढ़ाई रहाउ मन तन आगे जियड़ा तुझ पास जो पावे त्यो रखो अरदास सच जिहवा हर रसन रसाई गुरमत छूटस।

ना पाई। प्रभाती महला पहला, एक तोर बख्श लए गुरपूर, सच्ची बणत बनाई। हर रंग राते सदा रंग साचा, दुख बिसरे पत पाई। झूठी दुर्मत की चतुराई, बिन सतबार न लागे काई। रहाओ मनमुख को दुख दर्द व्यापस, मनमुख दुख ना जाई। सुख दुख दाता गुरमुख जाता, मेल लए सरनाई। मनमुख ते अब भगत ना होवस, हौ मैं पचै दीवानी। इह मनुआ खिन ऊब पयाली, जब लग शब्द ना जाने। भूख प्यासा जग भया, किपत नहीं बिन सतगुर पाई। सहजै सहज मिलै सुख पाई, दरगाह पैंदा जाई। दरगाह दाना बिना एक आपी,

खुन त्रै मिल जगत उपाया ऐसा बल शल तिनको दिया हुक्मी ठाक रहाया ऐसे जन विरले जागे अंदर परख खजाने पाया जात वरन ते भय तीता ममता लोभ चकाया नाम रते तीर्थ से निर्मल दुख हों मैं मैल चुकाया नानक तिनके चरण पखाले जिन्ना गुरमुख साचा पाया।

है ज्ञान रतन प्रगट होए मनमुख मूल ना जाननी मानस हर मंदर ना होए हर मंदर हर जियो साजिया।

जन निर्मल हर कै नाम समाई। हर मंदिर हर का हाट है रखिया शब्द सवार। तिस विच सौदा एक नाम गुरमुख नैन सवार। हर मंदिर मह मन लोहट है मोहया दूजै पाई। पारस भेटिया कंचन भया कीमत कही ना जाई। हर मंदिर मह हर वसै सर्ब निरंतर सोई। नानक गुरमुख वणजीऐ सच्चा सौदा होय। प्रभाती महला तीजा तै पाए जागे से जन जागरण करह। हउमै मैल उतार सदा जाग है कर अपना राख है। पंच तस्कर काढ़ मार मन मेरे गुरमुख नाम ते आई। जित मार्ग हर पाई है मन से ही कर्म कमाए रहाओ। गुरमुख सहज तुन उपजै दुख हउमै विचों जाई। हर नामा हर मन वसै सहजे हर गुण गाई। गुरमती मुख सोहणे हर राखिया उर तार। ऐतै उतै सुख घणा जप हर हर उतरे पार। हउमै विच जागरण ना होवई हर भगत ना पवई थाई। मन मुख दर ढोई ना लह भाई दूजै कर्म कमाई। तिग खाणा तिग पैनना जिन्ना दूजै पाए प्यार। बिस्टा के कीड़े बिस्टा राते मर जमह होहे खुआर। जिनको सतगुर भेटिया तिन्ना विटो बल जाओ। तिनकी संगत मिल रहा सच्चे सच समाओ। पूरै भाग गुर पाईऐ उपाय कितै न पाया जाई। सतगुर ते सहज उपजै हउमै शब्द जलाई। हर सरनाई भज मन मेरे सब किछ करनै जोग। नानक नाम ना विसरै जो किछ करै सो होग। बेपास प्रभाती महला पंजवा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मात पिता भाई सुत बनता चूगह चोग आनंद सिंह जुगता। उर्ज परयो मन मीठ मोहारा गुण गाहक मेरे प्राण आधारा। एक हमारा अंतर जामी कर एका मैं टिक एकस की। सिर छाह वद पुरख स्वामी रहाऊ। छल नागन स्यों मेरी टूटन होई गुर।

प्रभाती महला पंजवा मन में क्रोध महा अहंकारा पूजा करह बहुत विस्तारा कर इशनान तन चक्र बनाए अंतर की माल कब ही ना जाए इत संयम प्रभ किन ही ना पाया भगौती मुद्रा मन मोहया माया रहाउ पाप करह पंचा के बासरे तीर्थ नाए कह सब उतरे बहुर कमावह हुए नसंक जमपुर बांध खरे कालंक घूंगर बांध बजावह ताला अंतर कपट फिरह बेताला वर्मी मारी साप नामुआ प्रभ सब किछ जानह जिन तू किया कुंवर ताप गेरी के बस्तरा अपदा का मारिया ग्रह ते नस्ता देश छोड़ परदेस सहताया पंच चंडाल नाले ले आया कान फराए हराए टूका घर घर मांगे त्रिपतावन ते चूका बनता छोड़ बद नदर पर नारी वेश ना पाईए महा दुखियारी बोले नाही होए बैठा मोनी अंतर कल्प पवाईए जोनी अनते रहता दुख देही सहता हुक्म ना बूझे व्यापिया ममता बिन सतगुर किने ना पाई परम गति पूछो सगल बेद सिमरते मनमुख कर्म करे।

आसोए, तिस बिन बीजो नाई कोए, बैर बरोध शेडे पै परमा, प्रभ पुन आत्मै कीने धर्मा, महा तरंग ते कांडै लागा, जन्म जन्म का टूटा गांडा, जप तप संयम नाम संभालिया, अपने ठाकुर नदर निहालिया, मंगल सुख कल्याण तथाई, जह सेवक गोपाल गुसाई, प्रभ सो प्रसन्न पये गोपाल, जन्म जन्म के मिटे बेताल, होम जग उर्द तप पूजा, कोट तीर्थ इशनान करीजा, चरण कमल निमख हृदय तारी, गोविंद जपत सब कार्य सारी, उच्चे ते उच्चा प्रवथान, हर जन लावह सहज ध्यान।

करना परभाती अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे लोगा परम ना पूलो पाई खालक खलक खलक मह खालक पूर रहो सब ठाई रहाऊ माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारे ना कछ पोच माटी के भांडे ना कछ पोच कुंभारे।

कहिए सोई। अलह अलख न जाई लखिया, गुर गुर दीना मीठा। कह कबीर मेरी शंका नासी, सर्व निरंजन दीठा। प्रभाती बेद कतेब कहो मत झूठा।

हे विनाशी माटी को बिस्मिल किया, ज्योत स्वरूप अनाहत लागी, कहो हलाल क्या किया, क्या उजू पाक किया मुंह तोया, क्या मसीत सिर लाया, जो दिल में कपट नवाज गुजार हो, क्या हज का बह जाया, तू ना पाक पाक नहीं सूझिया, तिसका मर्म ना जानिया, कह कबीर पिस्त ते चूका, दोजक स्यो मन मानिया, प्रभाती सुन संध्या तेरी देव देवाकर, अदपत आद समाई, सिद्ध समाधि अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाई, लेहो आरती हो पुरख निरंजन, सतगुर पूजो पहाई, ठाढ़ा ब्रह्मा निगम बीचार, अलख ना लखिया जाई, रहाओ तत तेल नाम किया बाती, दीपक दे उजियारा, ज्योत लाए जगदीश जगाया, बूझे बूझनहारा, पंचे शब्द अनाहद बाजी, संगे सारिंग पानी, कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्बाणी।

व्यापी निर्भउ समत बिचारी जो जन जान भजह पुरखोत्तम ताकी अवगत बाणी नामा कह जग जीवन पाया हृदय अलख बिडाणी प्रभाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ताका अंत ना जानिया सर्ब निरंतर राम रहिया रव ऐसा रूप बखानिया गोविंद गाजै शब्द बाजै आनंद रूपी मेरो रामैया रहाउ बावन बिखु बन बिखे बास ते सुख लागेला सर्बे आद परमलाद काष्ट चंदन पहला तुम चे पारस हम चे लोहा संगे कंचन पहला तू दयाल रतन लाल नामा साच समायला प्रभाती अकुल पुरख एक चलते उपाया काट काट अंतर

अमर हुए सद आखुल रहे। प्रभाती भगत बेणी जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तन चंदन मस्तक पाती, हृदय अंतर कर तल काती। ठग दिष्ट बग्गा लिव लागा, देख वैष्णो प्राण मुख भागा। कल भगवत बंद चिरामंग, क्रूर दिष्ट रता निस्बादं। रहाउ नित प्रत इशनान शरीरं, द्वे तोती कर्म मुख खीरं। हृदय शुरी संध्यानी, पर दर्भ हिरन की बानी। सिल पूजस चक्र गणेशं, निस जागस भगत परवेशं। पग नाचस चित अकर्मं, ए लंपट नाच अधर्मं। मृग आसन तुलसी माला, कारियुजल तिलक कपाला। हृदय कूड़ कंठ रुद्राखं, रे लंपट कृष्ण अपाखं।

तरन लाग जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है रहाउ सुपने ज्यों तन पछान काहे पर करत मान बारू की पीत जैसे बसदा को राज है नानक जन कहत बात बिनस जय है तेरो गात छिन

भज जन्म सिरात है कहूं कहां बार बार समझत नह क्यों गुवार बिनसत नह लगे बार पूरे समगात है रहाव सगल भरम डार दे गोविंद को नाम ले अंत

सहस कृति महला पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिल पूजस बगल समाधं मुख झूठ बेभूखन सारं त्रैपाल तिहाल विचारं गल माला तिलक लाटं दोए धोती बस्तर कपाटं जो जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट निश्चय कर्मं कहो नानक निश्चौ त्यावै बिन सतगुर बाट ना पावै निःपलं तस्य जन्मस्य जावद ब्रह्म ना बिन्दते सागरं संसारस्य गुर प्रसादी तरह के करण कारण समर्थ है कहो नानक विचार कारण करते वस है जिन काल रखी तार योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ता ब्राह्मण है क्षत्रिय शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं ता एक शब्दं

पुरुख निरपहु निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद कतंच माता कतंच पिता कतंच बनता बनोद सुतह कतंच प्रात मीत हित बंधव कतंच मोह कटंबयति कतंच चपल मोहनी रूपं पेखंते त्यागं क्रोत रहंत संग भगवान सिमरन नानक लभदेह अचुत तन है त्रिगंत मात पिता स्नेह त्रिग स्नेह प्रात बांध वह त्रिग स्नेह बंता बलास सुत है त्रिग स्नेह गिरहार्थ कह साध संग स्नेह सत्यं सुखियं बसंत नानक है मिथ्यंत देहं खिनंत बलनं बरदंत जरुआ हित्यंत माया अत्यंत आसा अथित्य पवनं गनंत स्वासा पयान धर्मं पतंत मोह कूप दुर्लभ्य देहं तात आश्रयं नानक गोविंद गोविंद गोविंद गोपाल कृपा काच कोटं रचंत तोयं लेपनं रक्त चरमण है नमंता द्वारं पीत रहतं बाई रूपंग असथंभ नह गोविंद नामंग नह सिमरंत अज्ञानी जानंत अस्त्रिंग दुर्लभ दे उदरंत साध सरन नानक हर हर हर हर हर हरे जपंत सुभंत त्वं अच्युत गुणज्ञं।

गोवंत आ गया भगवान पुरख है, नानक कीती सास अकरखते, शब्दं रतं हितं मया, कीर्तं कली कर्म कृत्व, मिटंत तत्रागत परम मोहं, भगवान रमणं सर्वत्र थान्यं, दृष्टत्वं अमोग दर्शनं, बसंत साध रसना, हर हर हर हरि नानक, प्रियं जाप जपना, कटंत रूपं कटंत दीपं, कटंत राव ससियर नखियतर गगनं, कटंत बसुदा गिर तर से खंडं, कटंत ललना सुत प्रात हीतं, कटंत कन

विलंब पापं दृढ़ंत नामं तजंत लोभं शरण संतं किल बिखनासं प्राप्तं धर्म लखियण नानक जेहे सो परसन माधवह मृत मोहं अल्प बुद्धिहं अरचंत बनता बनोद साहं जौवन बह क्रम कनक कुंडल विचित्र मंदर सोभंत बस्तरा इत्यंत माया व्यापतं हे अच्युत शरण संत नानक ओ भगवानी नमः जन्मंता मरणं।

वरतंत बनासन गोविंद भजन साध संगेन अस्त्रिं नानक भगवंत भजनासन किरपंत हरियं मत तत् ज्ञान बख्शी देह बुधा कुशल थान बसे अंतरिक्षं त्याग मानं शीतलंत हृदयं दृढ़ संत ज्ञानं रहंत जन्मं हर दर्शलीना बाजंत नानक शब्द बीना कहंत बेदा गुणंत गुनिया सुनंत बाला बहु विद प्रकारा दृढ़ंत सो विद्या हर हर कृपाला।

परवित माया संबंधन है, दयाल एक भगवान पुरख है, नानक सर्व जी प्रतपालक है, अनित्य है वितंग अनित्य है चितंग।

एक जठरागन नह सिमरंत मलीन बुद्धि हं हे गोविंद करत माया नानक पतत उदारन साध संग मह गिरंत गिर पतत पतालं जिलंत दे दीपे अभैसवांतर है बहंत अगाह तोय अंतरंगं दुखंत ग्रह चिंता जन्मं तामरन है अनक साधन ना सिद्धयते नानक अस्थंबं अस्थंबं अस्थंबं शब्द साध स्वजन है कोर दुखियं अनक हत्यं जन्म दारिद्रं महाबिख्यादं मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक काष्ठ पसमं करोत अंधकार सिमरत प्रकाशं गुण रमंत अग खंडन है रिद बसंत भय भीत दूत है कर्म करत महा निर्मल है जन्म मरण अरहंत सरोता सुख समूह अमोग दर्शन है शरण जोगं संत प्रिय नानक सो भगवान खेमं करोत पाशं क्रोत अग्रणी वह निरासंग आस पूर्ण है निर्तन भयं तनवंत है रोगियं रोग खंडन है भगत्यं भगत दानं राम नाम गुण कीर्तन है पार ब्रह्म पुरख दाता है नानक गुर सेवा क्यं न लभ्यते अतरंग तरंग धारण है निरतनंग धन नाम नरहर है अनाथ नाथ गोबिंद है बलहीन बल केशव है सर्वभूत दयाल अच्युत दीन बांधव दामोदर है सर्वज्ञ है पूर्ण पुरख भगवान है भगत वचल करुणामय घट घट बसंत वास देव है पार ब्रह्म परमेश्वर है जा चंत नानक कृपाल प्रसादं नह बिसरंत नारायण है नह समरथं नह सेवकं नह प्रीत परम पुरखोत्तमं ताव प्रसाद सिमरते नामं नानक कृपाल हर हर गुरं भरण पोखण करंत जिया विश्राम साधन देवंत दानं सिरजंत रतन जन्म चतुर चेतन है वर्तंत सुख आनंद प्रसाद है सिमरंत नानक हर हर हरि अनित्य है रचना निर्मोहते दानं परा पूर्वेण पूचलते महीपते विपरीत बुद्धिं मार्त लोक है नानक चिरंकाल दुख भोगते वृथा अनुग्रहंग बिंद है जस्य सिमरन रदंतर है।

संत ना त्रिप्यति सहनशील संतं सममित्रस्य दुर्जनः नानक भोजन अनक प्रकारेण निंदक आवद होए उपतिष्ठते तिरस्कार नह पवंत नह पवंत मान भंग नह सोबाहीन नह पवंत नह पोहंत संसार दुख नह गोविंद नाम जपंत मिल साध संग है नानक से प्राणी सुख बासन है सेना साध समूह सूर अजितं सन्नाहंग तन निमृता आवद है गुण गोबिंद रमण ओट गुर शब्द कर चरमण है अरुणते असवराथ नाग है बुझंते प्रभ मार्ग है विचरते निर्भयं सत्र सेना तायंते गोपाल कीर्तन है जितते विश्व संसार है नानक वस्यं क्रोत पांच तस्कर है मृग तृष्णा गंधर्व नगरं द्रुम छाया रच दुर्मत है ततः कुटंब मोह मिथ्या सिमरंत नानक राम राम नाम है नाच विद्या निदान निगमं नाच गुणज्ञ है नाम कीर्तन है नाच राग रतन

जीहि पणिज्यो उत्तम सलोक उदरण नैन नंदनी गुरमंत्रहीनस्य जो प्राणी तिरगंत जन्म प्रष्टन है कुकर है सुकर है गर्द बह काक है सर्पन है तुल खल है चरनार बिंद भजन हृदयंग नाम धारण है कीर्तन साध संगीन नानक नह दृष्टंत जम दूतन है नच दुर्लभंग धनंग रूपंग नच दुर्लभंग स्वर्ग राजन है नच दुर्लभंग भोजनंग बिंजनंग नच दुर्लभंग स्वास अंबर है नच दुर्लभंग सुत मित्र प्रात बांधव नच दुर्लभंग बनता बिलास है नच दुर्लभंग विद्या प्रवीणंग नच दुर्लभंग चतुर चंचल है दुर्लभंग एक भगवान नाम है नानक लब्ध्यं साध संग कृपा प्रभंग जात कत है तत है दृष्टं स्वर्ग मर्त पयाल लोक है सर्वत्र रमणंग गोविंद है नानक लेप शेप ना लिप्यते विख्या पयंत अमृतं दृष्टां सखा सुवजन है दुखियं पयंत सुखियं भय भीतंगता निर्भय है थान बिहून विश्राम नामं नानक कृपाल हर हर गुर है सर्वशील ममंग शीलं सर्व पावन मम पावन है सर्व कर्तव ममंग कर्ता नानक लेप छेप ना लिप्यते नह शीतलं चंदर देव है नह शीतलं बावन चंदन है नह शीतलं शीत रुतेन नानक शीतलं साध स्वजन है मंत्रं राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्ण है ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैरन है दयालं सर्वत्र जिया पंच दुख विवर्जित है भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहत है उपदेशं सम मित्र सत्र है भगवंत भगत पावनी पर निंदा नह स्रोत श्रवणं आप त्याग सगल रेणु कह खट लखियं पूर्णं पुरख है नानक नाम साध स्वजन है अजापो गंत कांड मूलं।

पाल नाम रमंत गुण गोबिंद नित प्रत है तरन सरन स्वामी रमन सील परमेश्वर है करन कारण समर्थ है दान देत प्रभ पूर्ण है निराश आस करन सगल अर्थ आलय गुण निधान सिमरंत नानक सगल जाचंत जाचक है दुर्गम स्थान सुगम महादुख सर्वसुख।

नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वर है एकामं नरक विश्रामं बहुजोनी परमावण है चित हरणं त्रैलोक गम्यं जप तप सील बदारण है अल्प सुख अवित चंचल ऊंच नीच समाव

कदंच करुणा न उपर्जते विखियंत जीवं वस्यं क्रोत नृत्यं क्रोत जथा मर्कट है अनक शासन ताड़ंत जमदूत है तब संगे अदमंग नर है दीन दुख भंजन दयाल प्रभ नानक सर्ब जी रक्या करोत हे लोबा लंपट संग सिर मोर है अनक लहरी कलोलते तावंत जिया बहु प्रकार अनक भांत बहु डोलते नच मित्रं नच इष्टं नच बांधो नच मात पिता तब लज्जिया अकरणं क्रोध अखाद्य है खाद्यं

अहंकारं पापात्मा मित्रं तजंत सत्रं दृढ़ंत अनक माया बस्तीर्ण है आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगण है ब्रह्म प्यान उद्यान रमण महाबिकट असाध रोगण है वैद्यं पार ब्रह्म परमेश्वर राध नानक हर हर हरे हे प्राण नाथ गोविंद है।

मित्र है। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं, हस्त काया रखिया परमेश्वर है। आत्म रखिया गोपाल स्वामी, तन चरण रखिया जगदीश्वर है। सर्ब रखिया गुरदयाल है, भय दुख विनाशन है। भगत वत्सल अनाथ नाथी, शरण नानक पुरख अच्युत है। जेन कला धारियो अकाशं, बैसंतरं काष्ट बेष्टं। जेन कला सस सूर नक्षत्र ज्योतियं, सासं शरीर धारणं। जेन कला मात गर्भ प्रतपालं, नह सिदंत जठर रोग।

सिमरणं सर्वत्र जीवन है लब्धिहं संत संगीन नानक श्वास मार्ग हर भगतन है मस्कं पगनंत सैलं कर्दमं तरंत पपील कह सागरं लगंत पिंगं तम प्रकाश अंध कह साध संगीन सिमरंत गोविंद शरण नानक हर हर हरि तिलकहीनंग जथा बिपरा अमरहीनंग जथारा।

संत स्वजन है आचेत मूड़ा ना जानंत कटंत सासा नित प्रति सिजंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रासती रचंत पुरख है कटंब लीला अनित आसा बिख्या बनोद परमहंत परमहंत बहु जन्म हारियो शरण नानक करुणामय हे देहबे हे रसगे मदर प्रियतवं सात हतं परम बादं वर्त इथ है सुद असरण है गोविंद दामोदर माधवी गर्भंत नारी मधुन मतं बलवंत बलात् कारण है चरण कमल नह पजंत त्रिण समान त्रिग जन्म नह हे पपील का ग्रस्ते गोविंद सिमरन त्वं तने नानक अनक बार नमो नमः त्रिणंगता मेरं सहकंगता हरियं बूडंगता तरियं ऊणंगता परियं अंधकार कोट सूर उजारं बिनवंत नानक हर गुर दयारं ब्राह्मण है संग उदरणं ब्रह्म कर्म जे पूर्ण है आत्मरतं संसार गहंते नर नानक निःफल है पर दर्भ हिरणं बहु विघ्न करणं उच्चरणं सर्व जी कह लो लई तृष्णा अतिप्त मन माए कर्म कर

कर्पूर पोहप सुगंधा परस मनुखे देहं मलीनं मज्झा रुदर दुर्गंधा नानक अथ गर्भेण अज्ञानणो।

समंतर साध बचना कोट दुख बनासन है हर चरण कमल त्यानंग नानक कुल समूह उदाहरण है सुंदर मंदर सैन है जेण मध्य है हर कीर्तन है मुक्ते रमन गोविंद है नानक लभदिहंग बड भागण है हर लभदो मित्र सुमितो विदारण कदे ना चित्तो जा का अस्थल तोल अमितो सोई नानक सखा जी संग कितो आप जसंग मटंत सत पुत्र है सिमत बिहर हृदय गुरमंत्रण है प्रीतम भगवान अच्युत।

नानक हर पूर्व लिखण है दसन बिहून पयंगं मंत्रं गारडी निवारं ब्याद उपाण संतं नानक लब्ध कर्मण है जात काथ रमणं शरणं सर्वत्र जियण है तत लगणं प्रेम नानक प्रसादं गुर दर्शन है चरणार बिंद मन भिद्यं सिद्धं सर्व कुशलन है गाथा गावंत नानक पभ्यं परापूर्वण है शुभ बचन रमणं गवणं साध संगेन उदरण है संसार सागरं नानक पुनरप जन्म न लभ्यते वेद पुराण शास्त्र विचारं एकंकार नाम उरतारं कुलह समूह सगल उदारं बडभागी नानक को तारं सिमरणं गोविंद नामं उदरणं कुल समूहण है लब्धं साध संगेन नानक बडभागी भेटंत दर्शन है सर्व दोख प्रंत्यागी सर्व धर्म दृढ़ंतरण है लब्धेन साध संगेन नानक मस्तक लिखियण है होयो है होवंतो हरण भरण संपूर्ण है।

कसो वरंगण है। रोग सोग बियोगं नानक सुख ना सुपन है। हुनहे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हाथ कलम अगम मस्तक लेखावती। उर्ज रहे हो सब संग अनूप रूपावती। उस्तत कहन न जाए मुख तोहारिया। मोही देख दर्श नानक बलिहारिया। संत सभा में बैस के कीर्त मैं कहा। हरपी सब शिंगार एहो जियो सब देवा। आस प्यासी सेज सो कंत बछाई है। हर हां मस्तक होवे भाग तां साजन पाई है। सखी काजल हार तंबोल सबे किस साजिया। सोलह किए शिंगार के अंजन पाजिया। जे घर आवे कंत तां सब किछ पाई है। हर हां कंते बाज शिंगार सब बिरथा जाई है। जिस घर वसिया कंत सा वड भागणे। तिस बनिया हब शिंगार साई सुहागणे। हौ सुती होए अचिंत मन आस पुराइया। हर हां जा घर आया कंत तां सब किछ पाइया। आसा इती आस के आस पुराइया। सतगुर भये दयाल तां पूरा पाइया। मैं तने अवगण बहुत के अवगण छाया। हरे हां सतगुर भये दयाल तां मन ठहराया। कहो नानक बेअंत बेअंत ते आया।

हर का नाम सतगुर ते पाया मेरा हाथ पदम आंगन सुख बासना सखी मोरे कंठ रतन पेख दुख नासना बासो संग गोपाल सगल सुख रास हर हर हां रिद सिद्ध नव निद बस है जिस सदा कर पार त्रय रावण जाहे से लाजी है नित प्रत हिरह पर दर्ब छिदर कत ढाकी है हर गुण रमत पवित्र सगल कुल तारई हरे हां सुनते पये पनीत पार ब्रह्म बीचारई ऊपर बने आकाश तले तार सोती दह दिस चमकै बीजल मुख को ज्योति खोजत फिरो उपदेश पियो कत पाइए हर हां जे मस्तक होवे भाग तां दर्श समाइए दिठे सबे थाम नहीं तुद जेहया बदहो पुरख बधाते तां तू सोहया वस दी सगन अपार अनूप राम दास पुर हर हां नानक कसमल जाहे नाये राम दास सार चात्रक चित सुचित सो साजन चाहिए जिस संग लागे प्राण तिसे कहो आहिए बन बन फिरते उदास बूंद जल कारने हरे हां त्यों हर जन मांगे नाम नानक बलिहार ने मित का चित अनूप मरम

है सच तना सुपने ऊ भी भई गहयो की ना अंचला सुंदर पुरख विराजत पेख मन बंचला।

आदि करण मुंड कालिया रसना जपै ना नाम तिल तिल कर कटी है हर हां जब बिसरै गोविंद राय दिनों दिन कटी है पंकज फाथे पंख महामद गुंफिया अंग संग उरझाए बिसरते सुंफिया है को ऐसा मीत जे तोरै बिखम गांठ नानक एक श्री

प्रभ त्याई है हरहा महा बिखादी कात पूर्ण गुर पाई है सतगुर कीनी दात मूल नानक हुटई खाव हो पुंचो हो सब गुरमुख छुटई अमृत नाम निदान दिता तो सहार नानक सदा।

प्रेम की दम के हो होती साट रावण होते सो रंक नह जिन सिर दीने काट प्रीत प्रेम तन खच रहया बीच न राई होत चरण कमल मन बेदे हो बूजन सुरत संयोग सागर मेर उद्यान बन नवखंड बसदा परम मूसन प्रेम परम कै गनो एक कर करम मूसन मस कर प्रेम की रही जो अंबर छाए बीते बांधे कमल मह भवर रहे लपटाए जप तप संयम हरख सुख मान महत अर गर्भ मूसन निमखक प्रेम पर वार वार देओ सर्ब मूसन मर्म ना जानी मरत हित संसार प्रेम पिरम ना बेदेओ उर्जेओ मिथ व्यवहार कब दब जब जा।

चरण चितव मन माहि, नानक बिरही ब्रह्म के आन न कतहु जाहि। लख घाटी ऊंचो घनो, चंचल चीत बेहाल, नीच कीच निमृत कनी, करनी कमल जमाल। कमल नैन अंजन श्याम, चंदर बदन चित चार, मूसन मगन मरम स्यों, खंड खंड कर हार। मगन भयो प्रिय प्रेम स्यों, सूद न सिमरत अंग, प्रगट भयो सब।

हम तज भलो सब कोए, जिने ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए, कबीर आई।

आई गुरु वो साकत बापरे जो हाथ है हाथ बिकाई कबीर साकत ऐसा है जैसे

पवन च फूलन हार, संतोह माखन खाया शास पिय संसार। कबीर माया डोलनी पवन वह हे अवतार, जिन बुलोया।

की कै हर के गुण गाए। कबीर मरता मरता जग मुआ, मर पी ना जानिया कोई, ऐसे मरने जो मरे बहुर।

राम रतन तब पाइय जो पहले तजह शरीर। कबीर चरख ना चरखी है तुमरो कहो ना होए, कर्म करीम जो कर रहे मेट ना साके कोई। कबीर कसम

एक हजार हरुए हरुए तिर गए, डूबे जिन सिर पार, कबीर हाड जरे ज्यो ला करी, केस जरे ज्यो कास, इहो जग जरता देख कै, भयो कबीर उदास, कबीर गर्ब ना कीजिए, चामल पेटे हाड, है वरी ऊपर शतर तर, ते फुन तरनी गाड, कबीर गर्ब ना कीजिए, ऊंचा देख आवास आज।

कोई सांझा करे कबीर सियों हर संग बणज करे कबीर एह चेतावनी मत सहसा रह जाए पाछे भोग जो भोगवे तिनको गुड़ लै खाए कबीर मैं जान्यो पढ़बो पलो पढ़बे स्यों पल जोग भगत ना छाडो।

फैसलों की कुकर भली साकत की बुरी माई। ओ नित सुने हर नाम जस ओ पाप बसाहन जाए। कबीर हर

कबीर रमैया कंठ में चूकह सर्व जंजाल, कबीर ऐसा को नहीं मंदर दे जराय, पांचों लड़के मार के रह राम लियो लाय, कबीर ऐसा को नहीं।

फिर सती पकार चेह चढ़ी सुनो हो वीर मसान लोग सबाया चल गयो हम तुम काम निदान कबीर मन पंखी पयो उड उड दह दिस जाए जो जैसी संगत मिले सो तै सो फल खाए कबीर जा को खोजते आयो सोई ठोर सोई फिर कह तू भया जा को कहता और कबीर मारी मरो पसंग की।

आए जिन हर का नाम ना चेते हो बाद है जन्मे आए कबीर आसा करिए राम की अवरै आस नरास नरक पर है ते मानई।

आई। सर्पन हुए कह अवतर जाए अपने खाए, कबीर हर का सिमरन छाड़ के ओहो राख नार। गद ही हुई कै अवतर पार सह मन चार, कबीर चतराई अत कणी

में है, जा मुख कहिए राम देही किसकी बापुरी, पवित्र हुए गो ग्राम कबीर सोई कुल भली, जा कुल हर को दास जेहे कुल दास ना उपजै, सो कुल ढाक पलास कबीर है गए बाहन सगन कन, लाख तजा फहराहे या सुख ते भिख्या भली, जो हर सिमरत दिन जाए कबीर सब जग हो फिरे मांडल कंध चढ़ाए।

आए जोत बिना जगदीश की जगत उलंगे जाए। बूढ़ा वंश कबीर का उपजियो पूत कमाल हर का सिमरन छाड़ के कर ले आया माल। कबीर साधु को मिलने जाइए साथ न लीजै कोई।

कहबे को सूबा नहीं देखा ही परवान। कबीर देख कह के कहो कहे ना को पते आए, हर जैसा तैसा उही रहो हरख गुन गाए। कबीर चुगे चितारे पी चुगे चुग चुग चितारे, जैसे बच रह कूंज मन माया ममतारे। कबीर अंबर कन हर छाया बरक।

रात जो नर बिसरे राम सिंह ना दिन मिले ना रात कबीर रह नायर बिछोरिया रहो रे संख मचूर देवल देवल ताहड़ी देस है उगवत सूर कबीर सूता क्या करह।

मांग तार भूले पटका खाए। कबीर पाहन परमेश्वर किया पूजै सब संसार, इस परवासे जो रहे बूढ़े काली तार। कबीर कागज की ओ भरी

सो जपया परवदगार कबीर कस्तूरी भया पवर पये सब दास ज्यों ज्यों भगत कबीर की त्यों त्यों राम निवास कबीर गह गच परयो कटंब कै कांठे रह गयो राम आए परे धर्म राय के बीच है तूमा ताम कबीर साकत ते सूकर भला राखे आछा गांव ओह साकत बपरा मर गया कोई ना लै है नाम कबीर कौडी कौडी जोर कै।

बार, बाहर कंचन बारहा भीतर परी पंगार। कबीर रोड़ा हुए रहो बाट का ताज मन का अपमान, ऐसा कोई दास हुए काहे

ऊंच पवन कन कामनी शिखर तजा फहराय ताते भली मधु करी संत संग गुण गाय कबीर पाटन ते उजर भला।

आए मान मुनि मुनिवर गले मान सबह को खाए। कबीर साचा सतगुर मैं मिलया शब्द जो बाहया एक लागत ही भोए मिल गया परया कलेजे शेक। कबीर साचा सतगुर क्या करे जो सिखा महचूक अंधे एक ना लागे ज्यो बांस बजाइए फूक। कबीर है गै बाहन सगन कन छत्रपति की नार ताश पतंत्र ना पुज्जै

ਘਾਟ ਜਬ ਹੀ ਪਾਈਐ ਪਾਰਖੂ ਤਬ ਹੀਰਨ ਕੀ ਸਾਟ ਕਬੀਰ ਕਾਮ ਪਰੇ ਹਰ ਸਿਮਰੀਐ ਐਸ

सरवर भरा पी ना सकै कोई नीर भाग बड़े तह पायो तू पर पियो कबीर कबीर पर बाते तारे खिसे।

संत मलयागर पोयंगम बेदेव ता शीतलता नात जंत कबीर मन शीतल पया पाया ब्रह्म ज्ञान जिन ज्वाला जग जारिया सो जन के उदक समान कबीर सारी सिर जनहार की जान नाही कोई कै जान आपन तनी कै दास दिवानी होए कबीर भली पई जो पौ परया दिशा गई सब भूल उरा गर पानी पया जाए मिले ओ ढल कूल।

के बिन मिले पलट पई सब खेहे। जह अनपो तह पै नहीं, जह पो तह हर नाही। कहियो कबीर बचार कह, संत सुनहो मन माहे। कबीर जिन्हों पिछू जानिया नहीं,

पीर जाकी दिन साबत नहीं, ताको कहां खुदाई। कबीर अल्लाह की कर बंदगी, जेहे सिमरत।

तब जानिए मिटै मोह तन ताप हरख सोग दाजै नहीं तब हरे आपह आप कबीर राम कहन मैं भेद है ता मह एक विचार सोई राम सबै कह सोई कौतकहार कबीर राम राम कहो कहबे माहे बबेक एक अनेक।

आई। ते कार मरहत सारखे भूत बस है तिन माहे। कबीर गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान। पावहु ते पिंगल भया मारिया सतगुर बान। कबीर सतगुर सूर में बाहया बान जो एक। लागत ही पोए गिर परया परा करे जे शेक। कबीर निर्मल बूंद आकाश की पर गई भूम बेकार। बिन संगत इओ मान नहीं होए गई पाठशार। कबीर निर्मल बूंद आकाश की लीनी भूम मलाए। अनक सियाने पच गए ना निरवारी जाए। कबीर हज काबे हो जाए था आगे मिलया खुदाए। साई मुझ स्यो लर परया तुझे किन फरमाई गाय। कबीर हज काबे हुए हुए गया।

मार है जोर कर, कहते है जो हलाल, दफ्तर दई जब काड है, होएगा कौन हवाल। कबीर जोर किया सो जुल्म है, ले जो बाब खदाई।

आस कबीर हर का सिमरण जो करे सो सुखिया संसार इतोत कतह ना डोलै जिस राखै सिर जनहार। कबीर कहानी पीड़ते सतगुर लिए छडाए परा पूर्व ली भावनी प्रगट होई आए। कबीर टालै टोलै दिन गया ब्याज बढ़ंतो जाए ना हर भजियो ना खत फटियो काल पहुंचो आए। महला पंजवा कबीर कूकर भौंकना करंग पिछे उठ ताए।

आया जिन्हों लिया छाय महला पंजवा कबीर धरती साध की तस्कर बै सहगाहे धरती भार ना ब्या।

आए संगुक संगी बैसते तब पूछे धर्म राय नामा माया मोहया कहत लोचन मीत काहे शी पोषाय ले।

फिर कोठे मंडप हेत कर काहे मरहो सवार कारज साडे तीन हाथ कनी ता पौने चार कबीर जो मैं चितमो ना करै या मेरे चितवे होए अपना चितवे आहर करै जो मेरे चित ना होए महला तीजा चिंता पे आप कराए सी अचिंत पे आपे दे नानक सो सला।

नाम जानियो नहीं पाल्यो कटक कुटंब तंदे ही मैं मर गयो बाहर पई ना बंब कबीर आखी केरे माटके के

वीर तरवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग छाया रूपी साध है, जिन तजिया बाद विवाद कबीर ऐसा बीज बोए, बारह मास फलंत शीतल छाया गहर फल पंखी केल करंत, कबीर दाता तरवर दया फल उपकारी जीवंत, पंखी चले दसावरी बिरखा सुफल फलंत, कबीर साधु संग प्राप्ति लिखया हुए ललाट, मुक्त पदार्थ पाईए थाक ना अवकट घाट, कबीर एक घड़ी आदि घड़ी आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोसटे जो कीने सो लाभ।

आमन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाही। अर्ज उर्ज कह पचमुआ, चारों बेदोह माहे। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए। कह कबीर गुर भली बुझाई, कीती होए कह खाए। कबीर जो तुहे साध पिरम की, सीस काट कर गोए। खेलत खेलत हाल कर, जो किश होए ता होए। कबीर जो तुहे साध पिरम की, पाके से ती खेल। काची सरसों पेल कै, ना खाल पई ना तेल। टूंडत डोल है अंधगत, हर चीनत ना ही संत। कह नामा क्यों पाईए, बिन भगत हो भगवंत। हर सो हीरा छाड़ कै, करह आन की आस। हे नर दोजक जाहेंगे, सत पाख है रविदास। कबीर जो ग्रह करह ता धर्म कर, नाही ता कर बैराग। बैरागी बंधन करह, ताको बड़ो अपाग। सलोक सेख फरीद के, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जित दिहाड़ है धन वरी।

किचर झत लंघाई है छप्पर टुटे मेह परिदा जंगल जंगल क्या पवे वन कंडा मोड़े वसी रब हाली है जंगल क्या टुंडे परिदा इनी निकी जंगी है फल डूंगर पवे ओम अज परिद कूजड़ा सह कोहा थे ओम फरीदा राती वड़िया तुख तुख उठन पास एक तिना दा जीविया जिन्ना वडानी आस फरीदा जे मैं होंदा वारिया मित्तां आड़िया हेड़ा जलै मजीठ ज्यों उपर अंगारा फरीदा लोड़े दाख बजौरिया।

कितनी जोबन प्रीत बिन सुख गए कुमलाय फरीदा चिंत खटोला वाण दुख बिरह बिछावन लीप यो हमारा जीवना।

तन बिहो ना उपजै सो तन जान मसान। फरीदा ए विस गंदलां धरियां खंड लिवाड़, एक राहिंदे रह गए एक राधी गए उजाड़। फरीदा चार गवाया हंड कै चार गवाया सम, लेखा रब मगेसिया तू आहू केरे कम। फरीदा दर दरवा जय जाए कै क्यों दिठो कड़ियाल, एहो न दोषा मारिए हम दोषा दा क्या हाल। कड़िए कड़िए मार।

सजाए तिनाहा प्रीदा कान मसल्ला सूफ गल गिलकाती गुड़वात बाहर दिसै चानना दिल अंधियारी रात प्रीदा रत्ती रात ना निकलै जे तन चीरै कोय जो तन रत्ते रब स्यो तिन तन रात ना होय महला तीजा एहो तन सबो रात है रात बिन तन ना होय जो सहरते अपने तित तन लोभ रात ना होय पै पै तन खीण होय लोभ रत विचों जाय ज्यों बैसंतर तात सुध होय त्यों हर का पौ दुरमत मैल गवाय नानक ते जन सोहने जे रत्ते हर रंग लाय फरीदा सोई सरवर ढूंढ लहो जिथों लभी वत छप्पड़ ढूंढै क्या होवै चिक्कड़ डुबै हाथ फरीदा नंढी कंत ना रावियो वड्डी थी मुयास धन कुकेंदी गोर में तै सह ना मिलियास फरीदा सिर पलिया दाड़ी पली मुछा पी पलिया रे मन गहले बावले मान है क्या रलिया फरीदा कोठे तुकण के तड़ा फिर नींदड़े निवार

मिट्टी पई अतोलवी कोई ना हो सी मेता फरीदा मंडप माल न लाए मर्ग सपाणी चित धार साई जाए समाल जिथे ही तो वंजना फरीदा जिन्नी कमी नाहे गुण ते कमड़े वसार मत शर्मिंदा थी वही साई दे दरबार फरीदा साहिब दी कर चाकरी।

वत कुवारी नाथी है कलर केरी छपड़ी आए उलथे हंज चिंजू बोड़न ना पीवह उड्डन संधी डंज हंस उडर कुदर पया लोक बडारन जाय गहला लोक ना जानदा हंस ना कुदरा खाय चल चल गईया पंखिया जिन्नी वसाए तल फरीदा सर भरिया पी चल सी थके कवल अकल।

पास फरीदा पन्नी कड़ी समन्नवी टूटी नागर लज अजराइल फरिश्ता कै घर नाथी अज फरीदा पन्नी कड़ी सम

सो सजन वीही एक टुंडेंदी नालाहा तुखां ज्यों बालीही कारण तिना मां फिरे फरीदा एहो तन भौंकना नित नित दुखी है कौन कन्नी बुझे दे रहा कित्ती वगै पौन फरीदा रब खजूरी पक्कियां माखिया नहीं बहन जो जो मंजै दिहड़ा सो उमर हाथ पवन फरीदा तन सुक्का पिंजर थिया तलियां कुंडह काग अजय सो रब ना बहुड़ो देख बंदे के भाग कागा क्रंग टंडोलिया सगला खाया मास ए दोए नैना मत छूहो फिर देखन की आस कागा चूंड ना पिंजरा बसै ता उडर जाहे जित पिंजरै मेरा सहो वसै मास ना तिदू खाहे फरीदा गोर नमाणी सड करे ने करे।

चल गई फरीदा लोका आपो अपनी मैं अपनी पई आप सवार है मैं मिले मैं मिलिया सुख होए फरीदा जे तू मेरा हुए रह सब जग तेरा होए कंधी उत्ते रुखड़ा किचरक बन्ने तीर फरीदा कच्चे पांडे रखिए किचर ताई नीर फरीदा महल न सखण रह गए वासा आया तल गोरां से निमाणिया।

करन कारण सब आपी सर्ब रहो भरपूर सगल घट रहो व्यापी व्यापत देखी है जगत जानै कौन तेरी गत सर्ब की रख्या करै आपे हर पत अवनासी अवगत आपे आप उत्पत एकै तू ही एकै अन नाही तुम पत हर अंत नाही पारावार कौन है करै बीचार जगत पिता है सर्ब प्राण को आधार जन नानक।

बल बल सद बलिहार अमृत प्रवाह सर अतुल भंडार भर परै ही ते परै अपर अपार पार अपनो पावन कर मंत्र ना दूसरो धर ओपत परलो एकै निमख तो घर आन नाही समसर उजियारो निर्मर कोट परास्त जाहे नाम लिए हर हर जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसार एक जी ही क्या बखाना खां के बल बल बल बल सद बलिहार सगल भवन तारे एक थे किए बिस्थारे पूर रहे हो श्रभ।

आप ही धारण धारी कुदरत है देखारी वर्ण चिन्ह नाही मुख नाम सारी जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर एक जी ही क्या बखाने हां की बल बल बल बल सद बलिहार सर्व गुण निधान कीमत ना ज्ञान ध्यान ऊचे ते ऊचो जा नीचे प्रभ तेरो थान मन धन तेरो प्राण एक सूत है जहान कवन उपमा देओ बड़े ते बडान जाने कौन तेरो प्यो अलख अपार देओ अकाल कला है प्रभ सर्ब को तानं जन नानक भगत दार

अपकार अशल पूर्ण अबनासी हरखवंत आनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावह बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी जा को होहि कृपाल सो जन प्रभ तुमह मलासी धन धन ते धन जन जे कृपाल हर हर पयो हर गुरु नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दोहों थे रहो सत सत हर सत सत सती सत पणिए दूसर आन ना अवर पुरख पौरा तन सुनिए अमृत हर को नाम लैत मन सब

तन भयो सत संगत ते प्यार हर गुरु नानक जिन परसे हो तिन सब कुल कियो उधार सच सभा दीवान सच सच्चे पह धरियो सच्चे तख्त निवास सच तपावस करियो सच सिरजियो संसार आप आपू।

गोविंद सर्व सुख तिन्हु पाए। हर गुरु नानक जिन परसेओ ते बहुड़ फिर जोन ना आए। कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन

मद माता विचरत बिकल बड़ो अभमानी पर तन पर अपवाद नार निंदा यह मीठी जी माहे हर्तानी।

चेत तन निर्मत दुर्लभ देहे स्वार धरी खान पान सोदे सुख पुंचत संकट काट विपत हरी मात पिता पाई अरबंदप गूजन की सब सूझ परी वर्तमान होवत दिन प्रतनित आवत निकट बिखम जरी रे गुणहीन दीन माया क्रिम सिमर स्वामी एक करी कर गह ले हो कृपाल कृपा निद नानक काट परम परी रे मन मूस बिला मह गर्भत करतब करत महा मुगना संपत दोल चोल संग चूलत माया मगन प्रमत कुगना सुत बनता साजन सुख बंदप तां स्यो मोह बढ़ियो सो कना बोयो बीज अहं मम अंकुर बीतत औध करत अगना मृत मंजार पसार मुख निरखत पुंचत भुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल सत संगत नानक जग जानत सुख।

असव ना गज सिंघासन छिन मह त्यागत नांग सदारु सूर ना वीर ना मीर ना खानम संग ना को दृष्ट निहारु कोट ना ओट ना कोस ना छोटा करत विकार दू कर चारु मित्र ना पुत्र कलत्तर साजन साख उल्टत जात बिरख की शारु दीन दयाल पुरख प्रभ पूरन छिन छिन सिमरु अगम अपारु श्री पत नाथ सरन नानक जन हे भगवंत कृपा कर तारु प्राण मान दान मग जोहन हीत चीत दे ले ले पारी साजन सहन मीत सुत पाई

औध तन जारी कर्म धर्म संयम सोच नेमा चंचल संग सगल बेदहारी पास पंखी बिरख अस्थावर बहु विद जोन प्रम्यो अत पारी हिन पल चसा नाम नहीं सिमरियो दीनानाथ प्राण पत सारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत चरण संग उदरे होर माया मगन चले सब डारी ब्रह्मादिक शिव संत मनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंदर मनिंदर खोजते गोरख तरन गगन आवत फुन तावत सिद्ध मनुख देव अरदानम एक तिल ताको मर्म ना पावत प्रिय प्रभ प्रीत प्रेम रस भगती।

सगल कस जावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत माया रंग बरंग करत ब्रह्म मोह कै कूप गुबार परयो है एता गब आकाश नाम आवत बिस्ता अस्त क्रिम उदर परयो है दह दिस ताए महा बिखिया को पर धन शीन अज्ञान हरयो है जोबन बीत जरा रोग ग्रसयो जम दूतन दन मृत मरयो है अनक जोन संकट नरक पुंचत सासन दुख गर्त गर्यो है प्रेम भगत पुदर है से नानक कर कृपा संत आप करयो है गुण समूह फल सगल मनोरथ पूरन होई आस हमारी औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिनस जाहे हर नाम उचारी स्नान दान तापन सुच किरिया चरण कमल हृदय प्रवतारी साजन मीत सखा हर बंदप जी तान प्रभ प्राण अधारी ओट गही स्वामी समर्थ है नानक दास सदा बलिहारी आवद कट्यो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग दामन बंध्यो ना जात विदे मन दर्श मग पावक जरयो ना जात रहयो जन धूर लग नीर ना साकस बोर चलह हर पंथ पग नानक रोग दोख अग मोहो छिदे हर नाम खग उदम कर लागे बहु पांति विच रह अनक शास्त्र बहु खटुआ भस्म लगाए तीर्थ बहु भ्रमते सूखम देह बंध है बहु जटुआ बिन हर भजन सगल दुख पावत ज्यो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ पूजा चक्र करत सोम पाका अनक पांत थाट है कर थटुआ सवैये महले पहले के एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक मन पुरख ते

तुरत निवारण शब्द सरे गावह गंभीर तीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान धरे गावह इंद्राद भगत प्रहलादक आत्म रस जिन जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावह जनकाद जुगत जोगेश्वर हर रस पूरन सर्व कला गावह सनकाद साध सिधादिक मुन जन गावह अशल चला गावह गुण धूम अटल मंडल वै भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावह कपलाद आद जुगेश्वर अपरंपर अवतार वरु गावह जम दगन परसरमेश्वर कर कुठार रग तेज हरियो उदो अक्रूर बिदर गुण गावह सर्वात्म जिन जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावह गुण बरन चार खत दर्शन ब्रह्मादिक सिमरंत गुना गावह गुण शेष सहस जिह बारस आद अंत लिव लाग तुना गावह गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो राज जोग मानियो बस्यो निर्वैर निरंतर सृष्ट सगल उदरी नाम ले तरियो निरंतर गुण गावह सनकाद आद जनकाद जुगह लग धन धन गुर धन जन्म सकियथ भलो जग पाताल पुरी जयकार धुन कब जन कल बखाणियो हर नाम रसक नानक गुर राज जोग तै मानियो सत जोग तै मानियो छलियो बल बावन पायो त्रेतै तै मानियो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मरार कंस किरतारत कियो उग्र सैन कौराज अपै भगत है जन दियो कल युग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अबचल अटल।

वर्ज पंच भूत एक कर राख ले समझ जग जीतो गुरुद्वार खिल है समत सार रत उन्मन लिव राख निरंकार कहो कीर्त कल सहार सप्त दीप मझार लहना जगतर गुर परस मुरार जा की दृष्ट अमृत धार

खवै कस बिमल बीचार है, एह तत जानियो सर्वगत अलख बिडाणी। सहज भाए संचियो किरण अमृत कल बाणी, गुरगम प्रमाण तै पायो सत संतोख ग्राहज लयो। हर परसे कल समुल वै,

मल त्रसन सद रंग सहज कल उच्च रह जस जंपो लहणी रसन नाम अवखद नाम आधार अर नाम समार।

संसारी जिन भगत भवजन तारी सिमरहो सोई नाम प्रधान तित नाम रसक नानक लहना थपियो जीन सर्व सिधि कव जन कल सुबुद्धि कीर्त जन अमरदास बिस्तरिया कीर्त रव किरण प्रगट संसार है साख तरोवर मबल सरा उत्तर दक्षिण है पुब अर पश्चिम जय जय कार्य पंथ नरा हर नाम रसन गुरमुख बरदायु उल्ट गंग पश्चिम धरिया सोई नाम अशल भगत है भव तारण अमरदास गुर कौ फुरिया सिमरह सोई नाम जख अर किन्नर साधक सिद्ध समाध हरा सिमरह नखियतर अवर ध्रुव मंडल नारदाद प्रहलाद वरा ससियर अरसूर नाम उलास है सैल लोजिन उदरिया सोई नाम अशल भगत है भव तारण अमरदास गुर कौ फुरिया सोई नाम सिवर नवनाथ निरंजन शिव सनकाद समुद्धरिया चौरासी सिद्ध बुद्ध जित राती अमरीक भवजन तरिया।

गुर अमर पणिजय नैन ता पर सके अथ नैन गुर अमर पखिजय श्रवण ता पर सके अथ श्रवण गुर अमर सुनिजय सक्यात सो ही ओ जित ही बसै गुर अमरदास निज जगत पित सक्यात सो सिर

गुरु अमरदास परसीय सिद्ध साधक असासह। गुरु अमरदास परसीय ध्यान लहिया पौ मुकह। गुर अमरदास परसीय अपौ लबे गौ चुकह। एक बिन दुगण जो तौ रह जा समंतर मान वह लह। जाल पाप दार्थ इतड़े गुरु अमरदास डिठे मिलह। सच नाम करतार सो दृढ़ नानक संग रहियो। ताते अंगत लहना प्रगट तास चरण है लिव रहियो। तित कुल गुर अमरदास आसा निवास तास गुण कवन बखानो। जो गुण अलख अगम तिन्ह गुण अंत ना जानो। बोहिथो विधाते निर्मयो सब संगत कुल अधरन। गुर अमरदास कीरत कह त्राहे त्राहे तो पासरन। आप नारायण कला तार जग मह परवरियो निरंकार आकार। जोत जग मंडल करियो जह कहत है भरपूर। शब्द दीपक दीपायो जेहे सिख है संग्रहियो। तात हर चरण मलायो नानक कुल निम्मल अवतरियो। अंगद लहने संग हो गुरु अमरदास तारन तरन। जन्म जन्म पासरन तो जप तप सत संतोख। पिख दर्शन गुर सिख है सरन पर है ते उभर है। छोड़ जमपुर की लिख है भगत भाई भरपूर। हृदय उचरै करतार है गुर गौहर दरियाऊ। पलक डबंत्य है तार है नानक कुल निम्मल अवतरियो। गुण करतार है उचरै गुरु अमरदास जिन सेवियो। तिन दुख दरिद्र

पास साध संगत हो तत्को तेरा हुक्म पवे निशान तो करो साहिब की सेवा जब गुर देखे शुभ दिष्ट नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो परमाव है सो कहूं गुरु अमरदास कारण करन जिव तू रख है तिव रहूं पिखे के गुर ज्ञान अर ध्यान तत स्यों तत मिलावे सच सच जानिए एक चित्त है लिव लावे काम क्रोध वस करे पवन उडंत ना तावे निरंकार कै वसै देश हुक्म बुझ।

सनाह ज्ञान है आसन चढ़यो ध्रम तनक कर गहयो भगत सील है सर लड़यो तय निरभउ हर अटल मन शब्द गुर नीजा गड्यो काम क्रोध लोभ मोह अपत पंच दूत बिख

इव जुद कार कनहर बूंद बसो रोमावल कुसुम बसंत गनंत ना आवे राव सास किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के

कब कल ठकुर हरदास तनी गुर रामदास सार अपार परी सतगुर मत गूढ़ बिमल सत संगत आत्म रंग चलूल भया जागिया मन कवल सहज प्रकाशिया अपै निरंजन करह लहा सतगुर दयाल हर नाम दिरडाया तिस प्रसाद वस पंच करे कब कल ठकुर हरदास तनी गुर रामदास सार अपार परी अनभव उन्मान अकल लिव लागी पारस भेटिया सहज करी सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए भंडार परी मेटिया जन्मांत मरण भउ भागा चित लागा संतोख सरे कब कल ठकुर हरदास तनी गुर रामदास सार अपार परे अपार परे पायो अपार हृदय अंतर तारियो दुख भंजन आत्म प्रबोध मन तत बीचारियो सदा चाहे हर पाई प्रेम रस आपे जाने सतगुर कै प्रसाद सहज सेती रंग माने नानक प्रसाद अंगद समत गुर अमर अमर वरतायो गुर रामदास कल उचरे तैं अटल अमर पद पायो संतोख सरोवर बसे अमै रस रसन प्रकाशे मिलत शांत उपजे दुरत दूर अंतर नासे सुख सागर पायो दिंत हर मगना हुटे संजम सत संतोख सील सनाहुम फुटे सतगुर प्रमाण बिदने सिरियो जग जस तूर बजायो गुर रामदास कल उचरे तैं अपै अमर पद पायो जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दिरडायो नवनिध नाम निदान रिद सिद्ध ताकी दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख भेट्यो अबनासी आदले भगत जित लग तरी।

संभवियो जगत गुर बचन तरायु अवगत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कल उच्चर तै जगत उदाहरण पायो जगत उदाहरण नव निदान भगत है भव तारन अमृत बूंद हर नाम बिस की बिखै निवारण सहज तरोवर फलियो ज्ञान अमृत फल लागी गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बड़ भागी ते मुक्त भए सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुरु रामदास कल उच्चरै।

आसू है गुर शब्द समाचरियो नाम टेक संगाद बो है आजोनियो पल अमल

पायो तिन सकियथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुकत सब गुरु लग सतगुर खेमा तानिया जुग जूत समाणे अनपहु नेजा नाम टेक जित भगत आगाणी गुरु नानक।

दस जानी जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ धरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावै तिहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बण आवै।

खिन मात्र जा कौ दृष्ट तारै शब्द हृद विचारै काम क्रोध खोवै जियो जियन सभन दाता अगम ज्ञान।

ज्ञान पावे गुरमुख ज्ञान दुर्मत मैल तो ऐ जियो सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत हो ऐ जियो धर्म कर्म पूरे सतगुर पाई है जा की सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचे हैं।

कार अकथ कथनहार तुझ बुझाई है परम भूले संसार छुट हो जूनी संगार जम को ना दंड काल गुरमत।

बल बन जाऊ सतगुर साचे नाम पार कमन उपमा देउ कमन सेवा सरेउ एक मुख रसना रसो जुग जोर कर फुन मन बच कर।

पांच भूत बस कीने जमत ना त्रास गुरु अमर गुरु श्री सत कल जोग राखी पत अघन देखत गत चरण कमल जास सब बिद मान्यो मन तब ही भयो प्रसन्न राज जोग तखत दीयन गुर रामदास रड जिसह धार्यो तरत अर व्योम अर पवन ते नीर सर अवर अनल अनाद कियो सास रेख निस सूर दिन सैल तरु फल फूल दियो सुर नर सप्त समुंदर के धार्यो त्रि भवन जास सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर परगास कच्चो हो कंचन भयो शब्द गुर सरवण है सुनियो बिख ते अमृत होयो नाम सतगुर मुख भण्यो लोहो होयो लाल नदर सतगुर जद धारै पाहण माणिक करै ज्ञान गुर कहियो बीचारै काठो श्री खंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए सतगुरु चरण जिन परसिया से पास परेत सुर नर भए

क्या कीजै जान गुरु होए वल ज्ञान अर ध्यान अनन पर जाम गुरु होए वल शब्द साखी सो सत्य है कार।

भूस पिवन की बंचत सिद्ध कहो बिद मलायो पूरन पो मन ठौर बसो रस बासन स्यो जो दहंग दिस तायो गोबिंद वाल गोबिंद पुरी सम जलन तीर बेपास बनायो गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो समरथ गुरु सिर हाथ धरियो गुरकीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरन अगन हरियो निस बासर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत पान डरियो पान दास सो आस जगतर गुरु की पारस भेट परस करियो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हाथ धरियो अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाखश फारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी सीनत बस्तर दीन बहु साज सोदामा अपदा ते राखिया गनका पड़त पूरे ते काज श्री सतगुर सो प्रसन्न कल युग होए

जग जन्म मरण भगा ए आई ही है प्रतीत प्रतीत ही है आई जिन जन कै तिन को पदवी उच भई तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई अवलोकया ब्रह्म परम सब छुटकया दिव दृष्ट कारण करन सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री राम दास तारन करन प्रताप सदा गुर का घट घट प्रगास भया जस जन कै एक पढ़ है सुन है गाव है प्रभाते हे करह स्नान स्नान करह प्रभात शुद्ध मन गुर पूजा विद सहत करन कंचन तन होए परस पारस कहो जोत स्वरूपी ध्यान धरं जग जीवन जगन्नाथ जल थल मह रहया पूर बहु विद वर्णन सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री राम दास तारन तरन जिन्हो बात निश्चल ध्रुव जानी ते जीव काल ते बचा तिन तरयो समुद्र रुद्र खिन इक मह जल हर बिंब जुगत जग रचा कुंडलनी सुरजी सत संगत परमानंद गुरु मुख मचा श्री गुरु साहिब सब ऊपर मन

परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेशुमार सरबर कौ काहे जियो सुथर चित भगत हित भेख धरियो हरनाख शहरियो नाख बेदार जियो शंख चक्र गदा पदम आप आप कियो शदम अपरंपर पार ब्रह्म लखै कौन ताहे जियो सत साच श्री निवास आद

माल मुकट शीश मोर पंख चाहे दियो, देव जीर बड़े तीर धर्म अंग अलाके अगम, खेल किया अपने उशाहे दियो, अकथ कथा कथी न जाए, तीन लोक रहे आसमाए, सुतह सिद्ध रूप धरयो, साहन कै साहे जियो, सत साच श्री निवास आ

गुर रामदास चित्तै बसै गुरु समरथ गह करिया ध्रुव बुद्ध समत समारन कौ हुन ध्रम तुजा फहरंत सदा अग पुंज तरंग निवारन कौ मथुरा जन जान कही जी साच सो और कछु ना विचारन कौ हर नाम बोहे।

मतरा पन भाग भले उनके मन इच्छत ही फल पावत है। रब के सुत को तिन त्रास कहां, जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुदा पर पूरन, शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर। गहर

कर बे कहो दर्शन गुरु सगल सुख सागर जां को मन ध्यान धरै फिरत सगल जुग कबहू का को पावै आत्म परगास कहो वेद बाणी सहत बिरंच जस गावै जाको शिव मन गह नात जात कबलास कहो।

धरियो गुर हाथ तीन भवन भरपूर रहे ओ सोई आपन सरस कियो ना जगत कोई आपने आप ही उपायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो पायो नहीं अंत सुरे असुर है नर गण गंधर्व खोजंत फिरे अविनाशी अचल अजूनी संभव पुरखोत्तम अपार परे करण कारण समर्थ सदा सोई सर्ब जी मन त्यायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तैं हर परम पद पायो सतगुर नानक भगत करी एक मन तन मन धन गोबिंद दियो अंगद अनंत मूर्त निज धारी अगम ज्ञान रस रस्यो हियो गुर अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो कर त्यायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तैं हर परम पद पायो नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा उब भगत हर के जो गण अम्बरीक जय देव तरलोचन नामा अवर कबीर भणं तिनको अवतार भयो कल भिंतर जस जगतर पर छायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तैं हर परम पद पायो मनसा कर सिमरंत तुझै नर काम क्रोध मिट्यो जो तिनं बाचा कर सिमरंत तुझै तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिणं कर्म कर तो दर्श परस पारस सर बल भट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तैं हर परम पद पायो जेह सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटह खिन जेह सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जेह सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै जेह सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नव निद पावै सोई रामदास गुर बल भण मिल संगत धन धन करहो जेह सतगुर लग प्रभ पाईऐ सो सतगुर सिमरहो नरहो जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करतना छोड्यो पास ताते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारू दुख दरिद्र अंधियार को नास कब कीर्त जो संत चरण मुड़ लाग है इन काम क्रोध जम को नहीं त्रास जिव अंगद अंग संग नानक गुर तिव गुर अमरदास कै गुर रामदास जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निसबासर हर चरण निवास ताते संगत सगन

आयर तिन शब्द सुरत की नीवर खाई। गुरु अमरदास की अकथ कथा है, एक जी

दंड लोभ अपमान स्यो झाड़ियो जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो होए सो मन्ने भाव सागर बंध्यो सिख तारी सो प्रसन्न सिर आत पत सचो तखत जोग भोग संयुत बल गुरु रामदास सच सल भण तू अटल राज अभग दल तू सतगुर चहो जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधिक सिद्ध सिख सेवंत तुरह तुर आद जुगाद अनाद कला धारी त्रिहो लोह अगमन।

सोहे जस बक्ता कुल सोडी गुर राम दास तन धर्म तुजा अर्जन हर भगता त्रम धीर गुरमत गंभीर पर दुख बसारन शब्द सार हर सम उधार अहमेव निवारण महादान सतगुर ज्ञान मन चाओ न हुटे सतवंत हर नाम मंत्र नव निद नान खुटे गुर राम दास तन सर्ब मैं सहज चंदुआ ताण्यो गुर अर्जन कल उचरै तै राज जोग रस जान्यो पै निरपहु माण्यो लाख मह अलख लखायो अगम अगोचर गत गंभीर

पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जन पिखो नैन सत रूप सत नाम सत संतोख धरियो और आदि पुरख प्रतख लिखियो अक्षर मस्तक धुर प्रगट ज्योत जगमगै तेज भू मंडल छायो पारस परस परस परस गुर गुरु कहायो भन मथुरा मूरत सदा थिर लाए चित सन मुख रहो कल युग जहाज अर्जन गुरु।

हर पूरन ब्रह्म निवास लियो, जब लो नहीं भाग ललार उदय, तब लो भ्रम ते फिरते बहुत आयो, कल घोर समुन्दर मैं बूढ़त थे, कबहू मिट है नहीं रे पछतायो। तत विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो, जप्यो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। कल समुन्दर भय रूप, प्रगट हर नाम उदारन, बसह संत जिस हृदय, दुख दारिद्र निवारण।

खहर अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नहावे नित पुराण बाची है वेद ब्रह्मा मुख गावे अजय चवर सिर टुले नाम अमृत मुख लियो गुर अर्जन सिर शतर आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पह गयो हर बंस जगत जस संच रयो सो कमन कह श्री गुरमुयो देवपुरी मह गयो आप परमेश्वर पायो हर संघासन दियो श्री गुरु तह बैठायो रहस कियो सुर देव तोहे जस जय जय जंपह असुर गए ते भाग पाप तिन भीतर कंपह काटे सो पाप तिन नरों के गुर राम दा

या किव करी निवण ना जाए थनी गच जे लगा गिड़बड़ी सखिए तौल हरी से पी तहंदे डिठ मैं मुंद ना गर्भ थनी सुन मुंदे हर लाखिए गूड़ा वैन अपार पहला

पुछतड़न कल ताहू खरे सुजान वन्या एनी कपरी झाड़ चखड़ ओहाड़ लहरी वहन लखेसरी सतगुर स्यों अलाए बेड़े डुबण नाहीं पौ नानक दुनिया कैसी होई।

जो लेवे सो देवे नाही, खट्टे दम सहमी पब्बर तू हरियावला, कवला कंचन वन कै दुखड़ै सड़ियो हे, काली होइया देहुरी नानक मैं तन भंग जाना पानी ना लहां, जैसेती मेरा संग।

वह सदा सदा सुरती ही पत होए। सर्फ है सर्फ है सदा सदा एव गई विहाय। नानक किसनो आखिया बिन पुछिया ही ले जाए। दोष ना दे राय नो मत चले जा बुढ़ा होए। गल्ला करे कनेरिया ता अन्ने पवना खाती तो है। पूरे का किया सब किश पूरा घट वध किश नाही। नानक गुरमुख ऐसा जाने पूरे माहे समाही।

गुर शब्दी हर मन वसै माया की भुख जाय से जन निर्मल उजले जे गुरमुख नाम समाय नानक होर पातशाहियां कूड़ियां नाम रते पातशाह ज्यों पुरख है कर भगती नार है हत लोचै भगती पाए बहु रस सालने सवार दी खट रस मीठे पाए त्यों बाणी भगत सलाह दे हर नामै चित लाए मन तन धन आगै राखिया सिर वेचिया गुर आगै जाए तै भगती भगत बहु लोच।

ज्ञान खड़ग पंच दूत संघारे गुरमत जागै सोए नाम रतन परगासिया मन तन निर्मल हो।

ਹਰ ਧਨ ਖੱਟਿਆ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ ਅਤੁੱਟ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ।

है मन चढ़िया दसवें आकाश किथे ऊग ना भुख है हर अमृत नाम सुख वास नानक दुख सुख व्यापत नहीं जिथे आत्म राम परगास काम क्रोध का चोलड़ा सब गल आए पाए एक उपज है एक बिनस जाहे हुक्मे आवे जाए जम्मण मरण ना चुकई रंग लगा दूजे पाए बंधन बंद पवाईयन।

आई मन मुख चंचल मत है अंतर बहुत चतुराई कीता करत्या बिरथा गया एक तिल थाए ना पाई पुन दान जो बीज दे सब धर्म राय कह जाय बिन सतगुरु जमकाल ना छोड़ई दूजे भाए खुआई जो बन जांदा नदर ना आवई जर पहुंचे मर जाय पुत कलात मोह हेत है अंत बेली को ना सखाई सतगुर सेवे सो सुख पाई नाओ वसै मन आई नानक से वड्डे वडभागी जे गुरमुख नाम समाई मनमुख नाम ना चेतनी।

अंदोले तिसमह अग्नि का वास, वाणी सुरत न बुझनी, शब्द न करह परगास। ओना अपनी अंदर शुद्ध नहीं, गुर बचन न करह विसास। ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है, नित हर लिव सदा विगास। हर ज्ञानिया की राखदा, हौ सद बलिहारी तास। गुरमुख जो हर सेम दे, जन नानक ता का दास। माया पुयंगम सर्प है, जग घेरिया बिख माए। बिख का मारन हर नाम है, गुर गरुड़ शब्द मुख पाए। जिन को पूर्व लिखिया, तिन सतगुर मिलिया आए। मिल सतगुर निर्मल होया, बिख हऊ मैं गया बिलाए। गुरमुखा के मुख उजले, हर दरगाह सुबा पाए। जन नानक सदा कुर्बान तिन, जो चल है सतगुर पाए। सतगुर पुरख निर्वैर है, नित हिरदय हर लिब लाए।

नानक बिन नावे सुख नहीं, आए गए पछताहे, चिंता तावत रह गए, ता मन भया आनंद, गुर प्रसादी बुझी है, सा तन सुती निचिंद, जिनको पूर्व लिखिया, तिन्ना भेटिया गुर गोविंद, नानक सहजे मिल रहे, हर पाया परमानंद, सतगुर सेवन अपना, गुर शब्दी विचार, सतगुर का

जन सिज्जै बिन शब्दै मुक्त ना होई। भेख करह बहु कर्म बगुत्ते पाए दूजै परज विगोई। नानक बिन सतगुर नाउ ना पाईऐ जे सौ लोचै कोई। हर का नाउ अत वड ऊंचा ऊंची हूं ऊंचा होई। अपड़ कोई ना सकई जे सौ लोचै कोई। मुख संयम हच्छा ना होवे कर भेख भवे सब कोई। गुर की पौड़ी जाए चढ़ै कर्म प्राप्त होई। अंतर आए वसै गुर शब्द विचारै कोई। नानक शब्द मरै मन मानिए साचे साची सोई। माया मोह दुख सागर है बिख

नानक करता सब किस जानदा, जिन रखी बणत बनाए, होम जग सब तीर्था, पढ़ पंडित थके पुराण, बिख माया मोह ना मिटई, विच हूं मैं आवन जान, सतगुर मिले मल उत्तरी, हर जपे

बहु चित्तवदी बहु आशा लोभ विकार मन मुख अस्तर ना थी मर बिन सजाई खिनवार।

जियो पिंड सब ते सदा प्रतपाल करे हर राय। चुगल निंदक भुखे रुल मोए इना हाथ ना कथाऊ पाए। बाहर पखंड सब कर्म करह मन हिरदय कपट

मिटिया अंतर अज्ञान गुबार। तब नर सुता जागिया सिर डंड लगा बहु पार। गुरमुखा करा उपर हर चेतिया से पाइन मोख द्वार। नानक आप उहे उदरे सब कुटंब तरे परवार। शब्द मरे सो मुआ जापे गुर प्रसादी हर रस त्रापे। हर दरगह गुर शब्द सिंघापे बिन शब्द मुआ है सब कोई। मन मुख मुआ अपना जन्म खोए हर नाम ना चेत है अंत दुख रोए।

सदा सदा हर गुण रवह, अंतर सहज ध्यान ओए सदा आनंद विवेक रह। दुख सुख एक समान, तिन्ना नदरी इको आया, सब आत्म राम पछान। मनमुख बालक बिरद समान है, जिन्ना अंतर हर सुरत नाही, विच हम मैं कर्म कमाव दे, सब धर्म राय कै जाही। गुरमुख हच्छे निर्मले, गुर कै शब्द सुपाई, ओना मैल पतंग ना लगई, जे चलन सतगुर पाई। मनमुख झूठ ना उतरै, जे सौ धोवन पाई, नानक गुरमुख मेलियन, गुर कै अंक समाई। बुरा करे सो केहा सिज्जै, अपने रोहे आपे ही दज्जै, मनमुख कमला रगड़ै लुज्जै, गुरमुख होए इस सब किस सुज्जै।

सुख पाया हत तिसना तज विकार जन्म मरण का दुख गया जन नानक शब्द बीचार हर हर नाम त्याए मन हर दरगाह पावह मान किल विख पाप सब कटी है हम मैं चुकै गुमान गुरमुख कमल विगसिया सब आत्म ब्रह्म पछान हर हर कृपा धार प्रभ जन नानक जप हर नाम तनासरी तनवंती जानी है भाई।

बूंद पवै सहज सुभाय, जल ही ते सब उपजै, बिन जल प्यास ना जाय। नानक हर जल जिन पिया, तिस भूख ना लागै आय। बाबी हा तू सहज बोल, सच्चै शब्द सुभाय।

तन मन सुख होए जा तत बूंद मोहे पाए। अन धन बहुता उपजै धरती शोभा पाए। अन दिन लोक भगत करे गुर कै शब्द समाए। आपे सच्चा बख्श लए कर कृपा करै रजाए। हर गुण गावहु कामणी सच्चै शब्द समाए। भय का सहज श्रृंगार करहु सच।

पास सतगुर मिले है जल पाई है चूकै भूख प्यास जियो पिंड सब तिसका सब किश तिसकै पास बिन बोलिया सब किश जानदा किस आग्या कीचै अरदास नानक घट घट एको वरतदा शब्द करे परगास नानक तिसै बसंत है जे सतगुर सेव समाए हर गुठा मन तन सब परफड़ै सब जग हरियावल होए शब्दे सदा बसंत है जित तन मन हरिया होए नानक नाम ना विसरै जिन सिरिया सब कोए नानक तिना बसंत है जिन्ना गुरमुख वस्या मन सोए हर उठै मन तन परफड़ै सब जग हरिया होए बडड़ै चाल चाल चलंबलै

योग पाइए सतगुर कै उपदेश चारे कुंडा जे भवह वेद पढ़ह जुग चार नानक साचा भेटै हर मन वसै पावह मोख द्वार नानक हुक्म वरतै खसम का मत पवी फिरह चल चित मन मुख सहु कर दोस्ती सुख के पुछह मित गुरमुख सहु कर दोस्ती।

प्रसाद वडभागियां सुहागणी जिन्ना गुरमुख मिलिया हर राय अंतर जोत परगासिया नानक नाम सुमाय वाहो वाहो सत गुर पुरख है जिन सच

है जिसनों समत सब कोय। वाहु वाहु सतगुर निर्वैर है जिस निंदा उस्तत तुल होय। वाहु वाहु सतगुर सुजान है जिस अंतर ब्रह्म विचार। वाहु वाहु सतगुर।

क्यों सज्जन मिलह प्यारिया औंट नेंदी तिन सज्जन सच सुआरिया सतगुर मैं दा मित है जे मिले ता एहो मन वारिया।

सतगुरु का फरमाया मन ना सकी दुत्तर तरिया ना जाए नदर करे जिस अपनी सो चले सतगुर पाए सतगुर का दर

नानक थीवन पी हरे जिन्ना गुरमुख अंदर ने हो तै प्रीतम सच्चै लाया राती अतै डे हो नानक प्रेम समाया गुरमुख सच्ची आशकी जित प्रीतम सच्चा पाईऐ अन दिन रह आनंद नानक सहज समाईऐ।

आए मानव को हुक्म ना बुझे बपड़ी नेता हो मैं कर्म कमाए वर्त नेम सोच संयम पूजा पाखंड भरम ना जाए अंतरोह कुशुद्ध माया मोहे बेदे ज्यों हस्ती शार उड़ाए जिन उपाय तिसे ना चेत है बिन चेते क्यों सुख पाए नानक परपंच किया तुर करत है पूर्व लिखिया कमाए गुरमुख प्रतीत पई मन मानिया

कूड़ करे आहार भिख माया धन संच मर है अंते हुए सब शार कर्म धर्म सुच संजम कर है अंतर लोभ विकार नानक मनमुख जे कमावे सो थाए ना पवे दरगाह हुए खुआर सबना रागा विच सो भला पाई जित वसिया मन आए राग नाद।

जागन जे रसना नाम उचारने मृग तिसना पेख भुलने वुठे नगर गंधर्व जिन्नी सच अरादिया नानक मन तन फब पतत उदाहरण पार ब्रह्म समरथ पुरखे अपार जिसह उदारे नानका सो सिमरे सिरजनहार दूजी छोड़ कवातड़ी इकस सौ चित लाए।

जिस पास बहते आंसू ही है सबना दावे सा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला नौवां गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारत कीन कहो नानक हर भज मना जेह बिद जल कौमीन बिखियन स्यों काहे रचियो निमुख न होए उदास कहो नानक पज हर मना पर ना जम की फास तरन आपो यों ही गयो लियो जरा तन जीत कहो नानक पज हर मना औद जात है बीत बिरद पयो सूजै नहीं काल।